परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: देशभर में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही है मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, पंडालों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। विजयदशमी से पहले प्रयागराज की सड़कों पर निकली रावण की भव्य शोभा यात्रा, निराले अंदाज में रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज। केदारधाम में भक्ति का नया रिकॉर्ड, 15 सितंबर के बाद अब तक करीब 1.5 लाख भक्त पहुंचे बाबा केदार के धाम, रोजाना 15,000 से अधिक भक्त कर रहे हैं दर्शन। हिमाचल में मौसम ने अचानक ली करवट, धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश, धर्मशाला और मैक्लोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म का किया सफल परीक्षण, परीक्षण उड़ान ने हासिल की समुद्र तल से 21 किलोमीटर की ऊंचाई।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना।
2: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
3: और मेरे पागलो, जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, ये पक्का है। आर्मी की जब परेड होती है उसमें लाइन से खड़ा किया जाता है, तब परेड कराने वाला जो मुखिया होता है वो खड़ा होता है और इशारे करके कुछ बोलता है, क्रिया करने को कहता है। तो जो सबसे आगे खड़ा होता उसको जो परेड कराने वाला व्यक्ति होता है ऑफिसर, एकदम पास होता है जो सबसे आगे खड़ा होता लाइन में, 100 लोग लाइन में लगे हो, जो सबसे आगे होता है वो ऑफिसर के एकदम नजदीक होता है। लेकिन उसी वक्त ऑफिसर कहता है पीछे मुड़, तो जो सबसे आगे खड़ा होता है वो सबसे पीछे हो जाता है, और जो सबसे पीछे होता है वो सबसे आगे हो जाता है। एक इशारा पीछे मुड़, तो जितने भी यहां पीछे बैठे हैं, यहां बैठे या संसार में तुम पीछे की लाइन में लगे हो, घबराना नहीं, बस इंतजार करो कब तुम्हारा गुरु और कब तुम्हारा परमात्मा कह दे पीछे मुड़। और जिस दिन उसने ये कह दिया पीछे मुड़, देखना तुम आगे हो जाओगे, जमाना पीछे हो जाएगा और फिर तुम फिल्मी गीत गाओगे, आज मैं ऊपर जमाना नीचे। इंग्लैंड का एक दार्शनिक हुआ, बड़ा ऊंचा आदमी, इंग्लैंड में एक जगह है लेस्टर, लेस्टर के आसपास एक गांव में उसका जन्म हुआ। फकीर था, शादीशुदा था, पर बड़ा प्रसिद्ध था। एक चर्च में उसको बुलाया गया कि तुमको प्रवचन करने, भाषण देने आना है चर्च में। तो प्रवचन देने के लिए जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने कहा कि सुनो, तुम भूलने में बहुत माहिर हो, 2 बजे की कह के 4 बजे आते, 12 बजे की कह के 2 बजे आते,

0: भूलने में बहुत माहिर हो, तो कृपा करो कि कल 4 बजे ही आना, क्योंकि कल बहुत बड़ा भाषण है और चर्च में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पोप भी आ रहे हैं, इसलिए समय पे आ जाना। उसने कहा आप चिंता मत करो, हम समय पे आ जाएं। चर्च वालों ने फिर समझाया कि फिर सुनो, 4 बजे मतलब 4 बजे, 6 ना बजे। उसने कहा नहीं नहीं 4 बजे क्या, मैं 4:15 पे पहुंच जाऊं। चर्च वाले चले गए तैयारी करने। दूसरा दिन हुआ, पुराना जमाना था, घोड़े पर चर्च से एक घोड़ा आया। रात को ही रख दिया गया कि आप घोड़े से आए ताकि आप जल्दी आ सके। वो फकीर उस घोड़े पर बैठा और चर्च की तरफ चला और ठीक 2:30 बजे निकल भी गया कि लेट ना हो जाए। उन्होंने कहा था पक्के टाइम पे आना। बेचारा गया, चला, उसका मन हुआ कि घोड़ा चल ही रहा है, टाइम है ही है, जरा सिगरेट पी ली जाए, सिगरेट का मजा ले ले। उसने सिगरेट निकाली, लाइटर निकाला तो बड़ी जोर की सामने से हवा आ रही थी, तो बार बार लाइटर बुझ जाए और सिगरेट जले ना। तो उसने सोचा कि ये तो बड़ा लफड़ा है, क्या किया जाए कि सिगरेट जल जाए। उसने देखा कि इस तरफ से हवा आ रही, पीछे की तरफ हवा नहीं आएगी, तो उसने घोड़ा मोड़ दिया, जिस तरफ से आया था उसी तरफ, और सिगरेट में इतना डूब गया, सिगरेट पीते पीते, कि उसे होश ही नहीं रहा कि घोड़ा मुड़ गया है और इस तरफ नहीं जाना, फिर से मोड़ना है। जिस तरफ मुड़ा था वो उसी तरफ चल पड़ा। घोड़ा लौटकर घर वापस आ गया। इधर 4 बज गए, चर्च वाले लोग भागे भागे घर गए कि हमने कल कहा था कि आप 4 बजे आ जाना। बोले हम तो 4 बजे पहुंच जाते पर घोड़ा ही उल्टा है, ये कब मुड़ गया, कब इस तरफ आ गया, पता नहीं चला। मेरे पागलो, ये फकीर आज 4 बजे पहुंच जाता टाइम पर यदि ये सिगरेट में ना फंसता, और सिगरेट में फंस भी गया था यदि ये घोड़ा ना मोड़ता, और घोड़ा मोड़ भी लिया था तो वापस यदि मोड़ लेता तो 4 बजे चला जाता, लेकिन उसने घोड़ा मोड़ लिया तो वापस ना जा पाया, वापस उल्टा घर आ गया, चर्च ना पहुंच पाया। ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी में एक मोड़ तुम्हारी मंजिल बदल देती है। यदि तुम वापस घर की तरफ मुड़ना चाहते हो तो वापस घर जाओ, और यदि तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो यहां से बालाजी की तरफ मुड़ जाओ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इस तरफ मुड़ना है या इस तरफ मुड़ना है। घर वापसी की तरफ मुड़ोगे कुछ ना पाओगे, और तुम हमारे तरफ भी मत मुड़ना। मुड़ने का मतलब साइड बदलना नहीं होता, मुड़ने का मतलब मन का मुड़ना होता है। तुम भले ही घर चले जाओ पर मन बालाजी के पास हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास लोग आते हैं, हमें बताते हैं कि अब आजकल तो हम जब से घर गए हैं सपने में भी धाम दिखता है, और 10-15 दिन से ज्यादा रह नहीं पाते, बार बार खुजली होती है, और फिर लगता है कि चलो यार भाई बड़ी देर हो गई है, बड़े दिन हो गए हैं, मंगलवार शनिवार आता है तो फिर याद आती है, चाहे जो हो जाए चलो धाम। इसका मतलब है तुम मुड़ चुके हो, और तुम मुड़ चुके हो मतलब सही जगह मुड़ चुके हो। यदि तुम्हें बालाजी की बार बार याद आती है तो तुम मुड़ चुके हो, और ये याद बनी रहे, दुनिया की याद से तो बेहतर है परमात्मा की याद बनी रहे। अंत में एक बात और सुने तुम्हारे काम की। परमात्मा तब तक चमत्कार नहीं कर सकता जब तक तुम अपना चमत्कार खुद नहीं चाहते। और हम एक बात तुम्हें बहुत दावे के साथ कहना चाह रहे कि छोटे मोटे चमत्कारों से तुम प्रभावित ना हो। मन की बात बता देना, पर्चा बना लेना, पर्चे में नाम आ जाना, या पर्चे में बिना बताए बातें आ जाना, ये बहुत छोटी बातें, इनसे तुम प्रभावित ना हो। ये कोई गहरे राज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा गहरा रहस्य नहीं है, क्योंकि जो मन की बातें तुम जानते हो वही हम बता देते हैं, कुछ खास बात नहीं है। हम तो तुम्हें जीवन की बात बताने बैठे हैं, मन की बात बताने नहीं बैठे। हम चाहते हैं तुम्हारे जीवन में हमेशा दुख आते ही रहना है। आज हम तुम्हारा पर्चा बना दें पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, कल सिर का दर्द तुम्हारा करेगा, सिर का दर्द ठीक होगा परसों पड़ोसी दर्द करेगा, पड़ोसी का दर्द ठीक होगा लुगाई दर्द करने लगेगी, लुगाई ठीक होगी तो पड़ोसन परेशान करेगी, एक ना एक तुम्हें झंझट बने ही रहना है, एक ना एक तुम्हें दिक्कत बनी रहनी है। तुम हमारे पास आए हो, हम तुम्हें ऐसी चाबी देना चाहते हैं कि तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं, ताकि दर्द आते रहें, संकट आते रहें, पर संकट मोचन तुम्हारे बने रहें। भाई संकट तो आते रहना है, किसी ने जब छाता बनाया होगा बारिश से बचने के लिए, तो पहले ऐसा छाता बनाया गया था कि एक बारिश में सिर्फ एक छाता काम आएगा, अब वो फट जाता था, ज्यादा तेज बारिश होती थी वो फट जाता था। तो छाता बनाने वालों ने शोध किया, रिसर्च किया, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे कि भाई एक बारिश छाता झेल पाता, आदमी ऐसे कितने छाता खरीदेगा, चार महीने में बड़ी बारिशें होती हैं, हर रोज बारिश होती है, दिन में दो दो तीन तीन बार होती है, ऐसा छाता बनाया जाना चाहिए कि जो कई बारिश झेल पाए और फटे ना। और फिर बाद में धीरे धीरे अपग्रेड हुआ और ऐसा छाता बन गया आज कि अनेक बारिश होती है, छाता कई सालों तक चलता है। यही हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहां संकट तो रोज आते ही जाते रहने हैं, हम चाहते हैं हम तुम्हें एक ऐसा छाता, छाता नहीं बालाजी की ऐसी छत्र छाया तुमको दे दी जाए, ऐसी छत्र छाया तुम्हें मिल जाए ताकि तुम्हारे जीवन में संकट आते रहेंगे, आने दो आते रहेंगे, घबराओ मत, तुम कोई नए आदमी नहीं हो कि तुम पे दिक्कत है, तुम कोई अकेले आदमी नहीं हो कि तुम बहुत परेशान हो। यहां ये जितने भीड़ दिखाई पड़ रही है ये सब परेशान लोगों की दिखाई पड़ रही है। अरे तुम अपनी छोड़ो, हम तुम तो आम हैं। राम के जीवन में भी यही हुआ, मीरा को उसके देवर ने जहर दिया, सूरदास को गांव के लोगों ने धक्के दिए, तुम तो कुशल मनाओ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जरा राम जी के जीवन में तो देखो, कल राजा बनना था, रात को ही वनवास मिल गया, तुम्हें तो घर से अभी निकाला भी नहीं गया, और उनके जीवन में तो देखो कि वो जंगल गए माता जानकी जी को लेके, लक्ष्मण जी को लेके, और घरवाली हर गई, चोरी हो गई, कम से कम तुम्हारी चोरी तो नहीं हुई, तुम्हारी अभी बची है। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं मिला, ज्यादा पीड़ा नहीं मिली, जब भगवान राम को भी इतनी पीड़ा सहनी पड़ी तो तुम सोचो तुम्हें कितनी सहनी पड़ेगी। पर हम इतना कहेंगे, समस्याओं के पास समस्या मिलेगी, संसार में समस्या होंगी, संसार में जन्म लिया है, समस्याएं आएंगी, तुम्हारे जीवन में भी आते, हमारे जीवन में भी आती, बस हमने जीने का तरीका बदल लिया। हम समस्याओं से डरते इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं डरते क्योंकि जब भी समस्या आती है तो हम परमात्मा से नहीं कहते कि समस्या विकट है, हम परमात्मा के पास जाके नहीं कहते कि समस्या बड़ी विकट है, समस्या के पास जाकर के कहते हैं कि बालाजी निकट है, और काम हो जाता, वो लाज रख देते हैं, वो कृपा कर देते हैं। हमारे अंदर भी चिंता आती है कभी कभी, गुरुकुलम कैसे चलेगा, कन्या विवाह कैसे होगा, कैंसर हॉस्पिटल कैसे बनेगा, अभी नेपाल में हजारों लोग घर बेघर हो गए तो 1000 लोगों को राशन भेजा बागेश्वर धाम से, 1000 परिवार। तो हमें भी कभी कभी विचार आता, पर सोचते नहीं है, भगवान दया कर देते हैं, जिनके सहारे बैठे हैं वो हमारी चिंता करते हैं क्योंकि हम उनका काम करने आए हैं, तो हमारी चिंता वो करें। हम तुमसे भी यही कह देते, अब तक की तुम्हारी जितनी बकवास थी, जितने झंझट थे, आज के बाद उनको तुम इन पे छोड़ दो, हम पे छोड़ दो, आगे की तुम देख लेना। हम इतना कह सकते हैं, आज के बाद तुम फ्री होकर के जीना सीख लो, जो भी समस्या है छोड़ दो, या तो तुम गुरु को छोड़ दो या गुरु पर छोड़ दो। एक बात बताओ, हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता है? ठीक से सुना नहीं, एक बात बताओ, हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता है? हाथ उठाओ, छोड़ना चाहती हैं, इन्हें खड़ा करो, जरा खड़ा करो, बहन जी को खड़ी हो, बहन खड़ी हो जाओ, जगत जननी छोड़ना चाहती हैं, कहो बहन जी, तो हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता है बोलो, छोड़ना चाहते हो तो एक बात बताओ, हनुमान जी पर कौन कौन अपने आप को छोड़ना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोर से बोलो, पक्का? एक दो दिन के लिए या जीवन भर के लिए? सोच लो, पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, जब तक तुम्हारी समस्या न निपट जाएगी तब तक हम बालाजी से तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। जब तक तुम्हारे ऊपर हम लड़ते रहेंगे, तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम पर कृपा होगी होगी, हमें बालाजी पर भरोसा है। उन्होंने लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे वो। इसी गांव में अपनी बहन के विवाह के लिए 20,000 रुपया हम उधार ना उठा पाए, इतनी औकात ना थी हमारी। और इसी गांव में देखो तुम चमत्कार, इसी मंच से हजारों बेटियों का घर बसाया जा रहा है। इसी गांव में कोई बड़ा दवा खाना ना था, कोई अस्पताल तो था ही नहीं सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावा, वो भी कभी कभार खुलता था। अब उनका प्रत्यक्ष चमत्कार तो देखो, 300 बेड का फुल हाईटेक विदेशी मशीनरी सहित, बेललेस सेंटर सहित, केवल कैंसर हॉस्पिटल नहीं, कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा? इसी गांव में हमारे यहां के विधायक 5 साल में एक बार आते थे, वो भी वोट मांगने। अब चमत्कार तो देखो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों 3-3 दिन में दर्शन करने बालाजी के आ रहे हैं। मेरे पागलो, बालाजी से बड़ा दयालु कोई नहीं है। हमारे जीवन का प्रण है, हमने तो जो दिन देखे सो देखे, पर भारत के हिंदुओं को वो दिन ना देखने पड़े, ये हमारा सपना है। हमने जो कष्ट सहे सो सहे, पर तुम्हें ना सहने पड़ेंगे। हम अपने लिए नहीं जीते 18-18 घंटे, हम सिर्फ इसलिए जागते हैं, सोते भी नहीं, भोजन भी समय पे नहीं कर पाते, परिवार को तो मिल ही नहीं पाते, क्योंकि अब पूरी दुनिया हमारा परिवार हो गई। और हमारा सपना है भारत को बदलने का। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, बागेश्वर धाम पर बालाजी ने गुरुकुलम खुलाया, वहां पर बच्चे संस्कृत भी पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं। अंत में हम इतना कहेंगे, आज के बाद सदा सदा के लिए तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं। हमें भरोसा है तुम्हारे भी दिन बदलेंगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उसमें 1100 कुंडी यज्ञ है, 365 साल भर में दिन होते हैं, हर दिन के हिसाब से एक बेटी का विवाह है। आप सबको उसमें आना है, हमारी आज्ञा है आप सब समय जरूर उसमें निकालना, उसमें आना। बेटियों का विवाह नजदीक आ गया है, कन्या विवाह नजदीक है, इसलिए कथाओं का करना बहुत जरूरी है, उससे कुछ दक्षिणा मिल जाती है, नहीं तो भंडारी वाले छोड़ के और भाग जाएंगे। तो हमें कथा करने लंदन जाना है, वहां से फिर मुंबई मठ पहुंच जाएंगे। आप सब पर बालाजी की कृपा हो।
1: मंगल के भारी होने का मतलब क्या है? क्या मंगल का भारी होना जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है? क्या मंगल के भारी होने से व्यक्ति को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है? मंगल के भारी होने का क्या है कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देशभर में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही है माँ की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, पंडालों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। विजयदशमी से पहले प्रयागराज की सड़कों पर निकली रावण की भव्य शोभा यात्रा, निराले अंदाज में रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज। केदारधाम में भक्ति का नया रिकॉर्ड, 15 सितंबर के बाद अब तक करीब 1.5 लाख भक्त पहुंचे बाबा केदार के धाम, रोजाना 15,000 से अधिक भक्त कर रहे हैं दर्शन। हिमाचल में मौसम ने अचानक करवट ली, धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश, धर्मशाला और मैक्लोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म का किया सफल परीक्षण, परीक्षण उड़ान ने हासिल की समुद्र तल से 21 किलोमीटर की ऊंचाई।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: पश्चिम बंगाल में जोरों शोरों से जारी है शक्ति पर्व की तैयारियां, पुरुलिया में बनाया जा रहा विशाल पंडाल। भामुरिया बाधानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए तैयार किया गया खास थीम, पाषाणे प्राण यानी पत्थरों में प्राण। इस थीम के जरिए पहाड़ के बीच मौजूद गुफा मंदिर में मां दुर्गा की आराधना और प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक पेश करने की है कोशिश। पंडाल में सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा, उनके दाईं ओर भगवान शिव और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा की गई है स्थापित। पंडालों के बीचों बीच पहाड़ के ऊपर एक गुफा मंदिर का स्वरूप किया गया तैयार, इसी गुफा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा होगी विराजमान। नवरात्र की तैयारियों के बीच अमरावती के अंबा देवी और एकवीरा माता मंदिर में कारीगर देवी के आभूषणों और चांदी की पूजा सामग्री को चमकाने में जुटे। आभूषणों को सोडा और एसिड मिले, गुनगुने पानी से साफ करने के बाद ब्रश से चमकाया गया, इसके बाद स्वच्छ पानी से धोकर मुलायम कपड़े से पोछा गया। अमरावती में सजे नवरात्र के बाजार, कोलकाता की देवी प्रतिमाओं से लेकर गुजरात की गरबा ड्रेस तक बने आकर्षण का केंद्र। शहर के बाजारों में गुजरात के भावनगर में खास तौर पर गरबा रास की ट्रेडिशनल ड्रेस मंगाई गई, खरीदारी के लिए उमड़ रही है भीड़। आगरा में मुख्य चुनाव आयोग के पैतृक आवास पर निकाली गई कलश यात्रा, शंख और घंटे की ध्वनि के बीच हुआ सुंदर कांड का पाठ। राजस्थान में नवरात्र की तैयारियां तेज, धौलपुर में मां की प्रतिमाओं से सजे बाजार, बाजारों में दिख रहा है भक्तिमय माहौल। मिट्टी और प्लास्टर से बनने वाली मूर्तियों को तराशने में लगे हैं कारीगर, प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। माता रानी के स्वरूपों के अनुकूल तैयार की जा रही है माता की आकर्षक और सुंदर पोशाकें। संगम नगरी प्रयागराज में भी नवरात्र की तैयारियां तेज, कोलकाता से आए मूर्तिकार प्रतिमाएं सजाने में है व्यस्त। गंगा की मिट्टी से तैयार की जा रही है मां की मूर्तियां, श्रृंगार के लिए प्राकृतिक रंगों का हो रहा है इस्तेमाल। दिल्ली के चितरंजन पार्क के काली मंदिर में नवरात्र की भव्य तैयारियां, नवरात्र की पंचमी को होगा प्रतिमा स्थापना। दुर्गा पूजा को लेकर बनाया जा रहा भव्य पंडाल, बंगाल की परंपरा के तहत होगी मां की पूजा। पूजा से पहले काली मंदिर परिसर में सजने लगे दुकान, 15 अक्टूबर को पंचमी से शुरू हो जाएगी पूजा। तिरुमाला में तमिलनाडु के सीएम विजय की मां शोभा चंद्रशेखर ने किए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन, भगवान के आशीर्वाद लिया। भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में पहुंची अमेरिकी काउंसलर जनरल लॉरा विलियम्स, विधि विधान से की पूजा पाठ। दूसरे चरण की केदारनाथ यात्रा में बन रहा है नया रिकॉर्ड, 15 सितंबर के बाद 1.5 लाख यात्री पहुंचे धाम। हर दिन 15,000 से अधिक भक्त कर रहे हैं दर्शन, अभी एक महीने की यात्रा है शेष, भक्तों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना। यात्रा शुरू होने से अब तक करीब 16,50,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई हैरान करने वाली तस्वीरें, 14,500 फीट में आदि कैलाश में वाहनों की लगी लंबी कतार, पहली बार हिमालय में लगा जाम। भारी बर्फबारी के बावजूद बड़ी संख्या में दर्शन को जा रहे हैं भक्त, इस साल अब तक करीब 63,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। धर्मशाला में बढ़ते सैलानियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन उठा रहा है सख्त कदम। त्रियुन ट्रैक पर ओवरक्राउडिंग रोकने के लिए अब रोजाना 1,000 पर्यटकों की ही होगी एंट्री। कैंची धाम में बढ़ रही श्रद्धालुओं की बेकाबू भीड़ को देखने के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, अब रजिस्ट्रेशन से तय होगी श्रद्धालुओं की संख्या। फिलहाल 20,000 से 25,000 लोगों के लिए कैंप की व्यवस्था, मंदिर में एंट्री एग्जिट होंगे अलग, हाईवे जाम रोकने का मास्टर प्लान भी हो रहा है तैयार। अबूधाबी का संस्कृति और पर्यटन विभाग यात्रियों को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में दिवाली मनाने के लिए कर रहा है आमंत्रित। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत को एक और बड़ी उपलब्धि, एचएएल कोरापुट में 2,000वें एयरो इंजन का रक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। शक्ति हेलीकॉप्टर इंजन की दूसरी उत्पादन लाइन भी शुरू की गई, रक्षा मंत्री ने टीम को दी बधाई। रक्षा मंत्री बोले, भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं, निर्माता और निर्यातक बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने वायुसेना के नए प्रमुख, 31 अक्टूबर को एयर चीफ मार्शल का ग्रहण करेंगे कार्यभार। आशुतोष दीक्षित करगिल जंग में भी थे शामिल, 20 तरह के लड़ाकू जहाज उड़ाने में माहिर। नेवी को मिली पहली स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट शिप, विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ, FSS-5 की भी आधारशिला। FSS-1 नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं 5 बेड़ा सहायता जहाजों में से पहला जहाज, इस्पात काटने के महज 18 महीने बाद ये बंगाल की खाड़ी के जल क्षेत्र में करेगा प्रवेश। नौसेना की पहली स्वदेशी फ्लीट सपोर्ट है शिवान हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित, ये भारतीय नौसेना का पहला फ्लीट सपोर्ट पोत। उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन की गोलियथन क्रेन का भी किया उद्घाटन, हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की लंबे समय तक काम करने की क्षमता और बढ़ेगी। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष नौसैनिक कमांडर्स के साथ किया संवाद, कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, वायुसेना ने दिखाया अपना दमखम, आसमान में गूंजा जाबाजों का शौर्य। वायुसेना दिवस समारोह की थीम अचूक अभेद सटीक, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवानों ने किया शानदार प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना की ताकत और जाबाजी की दिखी झलक, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस का ग्रैंड सेलिब्रेशन। जोधपुर में अभ्यास सरंग शक्ति में जर्मन वायुसेना की एंट्री, जर्मनी की वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में लिया हिस्सा। जोधपुर के आसमान में दिखी भारत जर्मनी की ताकत, तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान जर्मन और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाई हवाई युद्ध कौशल। डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, स्वदेशी रूप से विकसित ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म एचएपीएस का किया सफल उड़ान परीक्षण। उड़ान के दौरान इस प्लेटफॉर्म ने समुद्र तल से 21 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई हासिल की और करीब 30 मिनट तक आसमान में रहे। भुवनेश्वर में भारतीय तटरक्षक बल 24वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक की करेगा मेजबानी। पारादीप के तट पर सारेक्स 2026 का भी होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में 1 नवंबर से दवाओं की दुकानों में दवाएं खरीद कर बिक्री कर की मूल्य सूची प्रदर्शित करना हुआ अनिवार्य। यूपीएफ डीएनए सभी रिटेल फार्मेसीज को पब्लिक वेबसाइट तैयार करने के निर्देश दिए। फार्मेसी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को भी हर सप्ताह अपडेट करना होगा। नौसेना के वॉरशिप के लिए खरीदे जाएंगे ब्रह्मोस लॉन्चर सिस्टम। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ की 661 करोड़ रुपए की डील। आत्मनिर्भर भारत की दिखेगी झलक। टिहरी में आतंकी हमले से निपटने के लिए जवानों ने किया मॉक ड्रिल, सुरक्षा एजेंसीज की तैयारियों को परखा। सीआईएसएफ पुलिस समेत कई एजेंसीज ने संभाला मोर्चा। रिस्पॉन्स टाइम से लेकर सर्च ऑपरेशन तक का किया ट्रायल। महाराष्ट्र के 68 भक्त अंबाजी से पैदल यात्रा पर निकले। महाराष्ट्र मां अंबाजी के लगाए जयकारे। 25 साल से गाड़ी में जोत लेने आते हैं भक्त, फिर नंगे पांव जाते हैं महाराष्ट्र। कोटा में इस बार खास होगा विजयदशमी का त्योहार। 105 फीट से ज्यादा ऊंचा रावण का पुतला बनेगा आकर्षण का केंद्र। ये रावण 360 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमाएगा, साथ ही साथ तलवार चलाएगा, मूछे हिलाएगा और आंखें भी झपकाएगा। पुतलों के निर्माण में करीब 5 टन का लोहा, लगभग 500 बांस की खपचियां, 1500 मीटर वेलवेट कपड़ा, 300 किलो सुतली और करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी का हो रहा है इस्तेमाल। झारखंड में होमगार्ड की बहाली के लिए 1600 मीटर दौड़ के ट्रायल में साड़ी में दौड़ी महिलाएं। महिलाओं के हौसले को दर्शकों ने सलाम किया। धनतेरस के चलते जयपुर में बदला पंचायत चुनाव का स्केड्यूल। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के कार्यक्रम में एक दिन का बदला।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: मंगल के भारी होने का मतलब क्या है? क्या मंगल का भारी होना जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है? क्या मंगल के भारी होने से व्यक्ति को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है? मंगल के भारी होने का क्या है कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम हनुमान जी की एक अनूठी स्तुति की बात करेंगे जिसका पाठ करने से जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। आज बात करेंगे बजरंग बाण की और इसके प्रयोग के नियम की। अब जान लेते हैं दिनांक 7 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में तथा चंद्रमा और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बजरंग बाण की। बजरंग बाण क्या है? हनुमान जी भक्ति शक्ति और ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। तमाम पूजा विधियों से उनकी प्रार्थनाएं की जाती हैं और अलग अलग तरह की प्रार्थनाओं से उनसे तमाम तरह की कामनाएं पूरी करवाई जाती हैं। शत्रु के लिए, रोग के लिए और भय के नाश के लिए हनुमान जी की अमोघ स्तुति है, अमोघ प्रयोग है बजरंग बाण। बजरंग बाण में दोहे और चौपाइयों के साथ साथ तमाम बीज मंत्रों का प्रयोग भी किया गया है, जिस वजह से बजरंग बाण अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन याद रखिए, सामान्य दशाओं में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। विशेष दशाओं में नियमों के साथ ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हर स्थिति परिस्थिति में बिना विशेष जरूरत के बजरंग बाण का पाठ ना करें। बजरंग बाण पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। जैसा आपको पहले बताया कि जीवन की कठिनाई बहुत ज्यादा हो या जीवन की मुश्किल बहुत ज्यादा हो, तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो किन दशाओं में बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी होता है? अगर स्वास्थ्य की कोई बड़ी भारी समस्या हो, कोई बहुत गंभीर समस्या हो और कारण समझ में ना आ रहा हो, मरने जीने का प्रश्न पैदा हो गया हो, तब बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। अगर कुंडली में भयंकर मंगल दोष हो और इस भयंकर मंगल दोष से समस्या हो रही हो, तो भी बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। अगर आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं
या कोई बड़ा मुकदमा आपको लगातार परेशान कर रहा है, मुकदमे से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तब भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर भयंकर तंत्र मंत्र हो या आपके ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो, तब भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अगर किसी बड़े ऑपरेशन की नौबत आ गई हो या रक्त से संबंधित कोई बड़ी समस्या पैदा हो गई हो, तो बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। हमेशा याद रखिए कि जीवन मरण का प्रश्न हो या कठिनाई बहुत ज्यादा हो, तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। सामान्य समस्याओं में या सामान्य स्थितियों में बजरंग बाण का पाठ ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो बजरंग बाण विशेष स्थितियों में अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन इसका पाठ करेंगे कैसे, पाठ करने के नियम क्या हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का मैं पाठ करूंगा या करूंगी, ऐसा संकल्प लीजिए। किसी भी मंगलवार या शनिवार को इसके पाठ की शुरुआत करिएगा। अपने सामने एक घी का दीपक जला लें, लाल या नारंगी रंग का वस्त्र पहने और लाल आसन पर या कुश के आसन पर बैठें। पहले सबसे पहले तो भगवान राम को याद करना है। एक मिनट के लिए ही सही, भगवान राम को नमस्कार करें। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करें, तब पूजा की शुरुआत करेंगे। एक बार में ही सारे बजरंग बाण का पाठ करें, कोई अंतर न दें। जितने दिन बजरंग बाण का पाठ करें उतने दिन सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। बजरंग बाण के पाठ करने के बाद लोगों में लड्डू या गुड़ बांटना चाहिए और घर में गुग्गल की धूप बत्ती जलाकर इसकी सुगंध घर में फैलानी चाहिए। अगर इस तरीके से आप नियमित रूप से या मंगलवार या शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। भोजन करने के पहले भगवान का स्मरण जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जीवन भर आपको अन्न जल का अभाव नहीं होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 7 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा
अपने पास रख लीजिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की

तेज। दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही है मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, पंडालों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। विजयदशमी से पहले प्रयागराज की सड़कों पर निकली रावण की भव्य शोभा यात्रा, निराले अंदाज में रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज। केदारधाम में भक्ति का नया रिकॉर्ड, 15 सितंबर के बाद अब तक करीब 1.5 लाख भक्त पहुंचे बाबा केदार के धाम। रोजाना 15,000 से अधिक भक्त कर रहे हैं दर्शन। हिमाचल में मौसम ने अचानक ली करवट, धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़। डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म का किया सफल परीक्षण, परीक्षण उड़ान ने हासिल की समुद्र तल से 21 किलोमीटर की ऊंचाई।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो आज हम बात करने वाले हैं भारी मंगल के बारे में। आपने बहुत से लोगों को ऐसे कहते सुना होगा कि तुम्हारा मंगल तो बहुत भारी है। देखिए, अगर मंगल ग्रह की हम बात करें तो बहुत ही तीव्र ग्रह इसे माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में आपका मंगल ग्रह भारी होता है तो आपके जीवन पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है, और अगर आपकी कुंडली में भारी मंगल है तो इसे किस तरीके से शांत किया जा सकता है, इसके बारे में पंडित जी से आज विस्तार में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: भोजन उसी व्यक्ति का ग्रहण करें जिसकी सोच सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव सोच वाला, अच्छी सोच वाला इंसान हो। नकारात्मक व्यक्ति का, निगेटिव व्यक्ति का भोजन कभी ग्रहण मत करें। निगेटिव व्यक्ति का भोजन करने से आपकी सेहत और आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 7 अक्टूबर 2026 यानी कि दिन बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 7 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:16 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 9:40 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि आपका तो मंगल भारी है, हमारी कुंडली में मंगल भारी है, तो आखिरकार ये मंगल भारी होना होता क्या है?
1: जी देखिए, जैसा सरगम ने कहा कि आम बोलचाल में भी लोग कहते हैं कि मंगल भारी है। मंगल भारी है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, मंगल ग्रहों में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। मंगल चूंकि बहुत ताकतवर है,

0: इसीलिए इसको ग्रहों का सेनापति मानते हैं। मंगल व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल का संबंध कर्ज से, भूमि से, सेना से और उच्च पद से भी होता है और आम तौर पर मंगल निगेटिव होने पर जीवन में प्रेशर, भार और दबाव पैदा कर देता है। इसीलिए जब मंगल खराब होता है तो सामान्यतः लोग कहते हैं कि मंगल भारी है। मंगल के भारी होने का मतलब कि मंगल आपका नकारात्मक है और ये जीवन पर प्रेशर और भार पैदा कर रहा है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है।
0: मेष राशि, शिक्षा में, प्रतियोगिता में आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। वाद विवाद से बचाव करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए भारी मंगल के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर असेंडेंट की बात करते हैं, यानी अगर आपकी कुंडली में जो आपका लग्न है वो मेष है, सिंह है या धनु है तो भारी मंगल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जानते हैं।
0: अगर आपका लग्न, राशि नहीं लग्न, मेष, सिंह या धनु है और मंगल भारी है तो क्या प्रभाव है? देखिए, अगर आपके लग्न की राशि अग्नि राशि है तो मंगल आपका कंट्रोलिंग प्लेनेट है। मंगल आपका नियंत्रक ग्रह है। अगर यहां मंगल भारी है तो चोट चपेट और दुर्घटनाओं की संभावना बन जाती है। कभी कभी रक्त की समस्या और शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन की, सर्जरी की नौबत आ जाती है। यानी अग्नि तत्व के लग्न वालों के लिए अगर मंगल भारी होगा तो सर्जरी, दुर्घटना या ब्लड की प्रॉब्लम परेशान करेगी। ऐसे में सलाह लेकर एक मोती धारण करें और नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ लाल रंग की वस्तुओं से इस समय आपको परहेज करना चाहिए, जब तक भारी मंगल का दुष्प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, परिवार की समस्या आपकी हल होगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च बढ़ा रहेगा, संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभी समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न मंजरी जी ने हमें लिखा है और मंजरी जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 1999, रात में 9:05, धूलिया, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा आगे मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है, क्या उसके लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई करना अच्छा रहेगा और उसका करियर भविष्य में कैसा रहेगा। मंजरी जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो आगे MBA करते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए काफी बेहतर रहेगा, इस क्षेत्र में बेहतर करियर बना सकेंगे। भविष्य में नौकरी करने के लिए अपने परिवार से दूर जाएंगे और दूर जाकर के सेटल होंगे, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। आपके बेटे के बेहतर करियर और जीवन के लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से इनको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारे ये कार्यक्रम रोज देखते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार पंडित जी से सवाल पूछना है पूछे कैसे, तो आपको बता दें कि बहुत ही आसान तरीका है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारा ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, इस पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, आपके सवालों का जवाब पंडित जी जरूर देंगे। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किस व्यूअर का ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी, अगला प्रश्न शैली जी ने हमें लिखा है और शैली जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 मई 1984, जन्म का समय दोपहर के 2:55, जन्म स्थान है जोधपुर राजस्थान। शैली कह रही हैं कि मैं दूसरे विवाह के लिए प्रयास कर रही हूं, क्या मेरा दूसरा विवाह हो सकेगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शैली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह की संभावना साल 2027 में बनती है। मार्च 2027 के बाद आपके दूसरे विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं और दूसरा विवाह आपका कुल मिला जुला के सफल रहेगा। भविष्य में करियर में कोई दिक्कत नहीं लगती और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। आप बेंगलोर में रहकर ही सेकंड मैरिज भी कर पाएंगी और बेंगलोर में रहकर अपना करियर भी बना सकेंगी। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक ओपल 12 से 14 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारी मंगल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और अब पंडित जी बताने वाले हैं कि अगर आपका लग्न वृष है, कन्या है या फिर मकर है, ध्यान रहे कि राशि नहीं, यानी कि लग्न की बात यहाँ पर हो रही है, अगर आपका लग्न इन तीनों ही राशियों में है तो भारी मंगल का आपके जीवन पर किस तरीके से असर पड़ सकता है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जानकारी लेते हैं।
0: अगर आपका लग्न वृषभ, कन्या या मकर लग्न है और मंगल भारी है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। वृष, कन्या और मकर लग्न मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व प्रधान लग्न है। पृथ्वी तत्व के लग्न मंगल के बड़े करीबी समझे जाते हैं और अगर इनका मंगल भारी हो गया तो परिवार और रिश्तों पर बहुत बुरा असर, बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। वृषभ, कन्या या मकर लग्न में अगर मंगल भारी है तो वैवाहिक जीवन और वाणी बहुत खराब हो जाती है, ये छिन्न भिन्न हो जाती है। यानी वृष, कन्या और मकर लग्न में मंगल का खराब होना रिश्तों के लिए बुरा होता है। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में सलाह लेकर एक ओपल धारण करना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती हैं, दोनों एकादशियों का व्रत रखना चाहिए और अधिक से अधिक सफेद रंग का या क्रीम रंग का प्रयोग करना चाहिए, भारी मंगल का दोष भंग हो जाएगा।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, इस समय किसी यात्रा पर जा सकते हैं, धन और उपहार का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपका लग्न मिथुन तुला या फिर कुंभ हो तो फिर भारी मंगल का आपके जीवन पर किस तरीके से असर पड़ सकता है, किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जानते हैं।
0: अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है, तुला लग्न है या कुंभ लग्न है और मंगल भारी है तो वो क्या करेगा? मिथुन तुला और कुंभ लग्न वायु तत्व प्रधान लग्न है, मंगल इनके लिए सामान्यतः नकारात्मक होता है, नॉर्मली भी मंगल इनके लिए निगेटिव होता है। मिथुन तुला और कुंभ लग्न वालों का मंगल अगर भारी है तो कर्जा जीवन में बढ़ेगा और धन हानि की स्थिति जीवन में बन जाएगी। व्यक्ति को जीवन में रोजगार में काफी नुकसान उठाना पड़ेगा और पैसे का कष्ट जीवन में झेलना पड़ेगा। अगर मंगल भारी है, लग्न मिथुन तुला या कुंभ है तो ओपल धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा, साथ ही साथ नियमित रूप से हर मंगलवार को अगर आप लाल फल का दान करें, सेब का या अनार का, तो ऐसा करना भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपका एसेंडेंट यानी कि आपका लग्न कर्क वृश्चिक या फिर मीन हो, ऐसे में भारी मंगल का आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं।
0: अगर आपका लग्न कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न या मीन लग्न है और आपका मंगल भारी है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न जल तत्व प्रधान लग्न है, यहां मंगल काफी ज्यादा कमजोर माना जाता है। यहां पर अगर मंगल भारी हो गया कर्क वृश्चिक या मीन लग्न वालों का, तो व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर बुरा असर पड़ता है। व्यक्ति के आत्मविश्वास का और साहस का स्तर डगमगा जाता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होता है। व्यक्ति डरता घबराता बहुत है। मंगल अगर यहां भारी है तो व्यक्ति की शिक्षा में और युवावस्था में काफी बाधा आ जाती है। ऐसी दशा में रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सलाह लेकर एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें। ज्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम हनुमान चालीसा सुबह शाम एक एक बार पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें। मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की प्राप्ति होगी। बड़ों की सलाह लेकर काम करिएगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम का दबाव कम होगा। करियर में सुधार होगा। यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में समय हो गया है आज के तीसरे सवाल का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का अगला प्रश्न जगत नारायण जी ने हमें लिखा है और जगत नारायण जी पटना बिहार से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1993 शाम को 6:05। जन्म स्थान है छपरा बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का अब तक विवाह नहीं हो पाया है तो उसका विवाह कब होगा और उसका भविष्य कैसा रहेगा। जगत नारायण जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से जुलाई 2027 के पहले स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से इनका विवाह होगा। जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिलाकर जांच पड़ताल करके देख लिया जाए, जल्दबाजी में विवाह का निर्णय ना लिया जाए। अपनी पुत्री को एक पीला पुखराज, 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे पहनाइए और आप अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो काफी बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल का समय हो गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं और पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल जो है हमें लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी, आज का अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताइए।
0: आज का अंतिम प्रश्न गौरव जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। गौरव की जन्म की तारीख है 28 नवंबर 1985, जन्म का समय सुबह के 6:55, जन्म स्थान है भोपाल मध्य प्रदेश। गौरव कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है, तो क्या हमारा विवाह चल सकेगा या आगे चल करके सेपरेशन हो जाएगा। गौरव, जो आपने अपनी पत्नी की डिटेल भेजी है और जो आपकी कुंडली है उसके हिसाब से विवाह के चल पाने की संभावना नहीं लगती है। ऐसा लग रहा है कि साल 2027 में आपसी सुलह समझौते से सेपरेशन होगा। 2028 में आपके दूसरे विवाह के योग बनते हैं, 2027 में पहले विवाह में सेपरेशन होगा और बच्चा भी आपकी पत्नी के पास ही रहेगा, उसकी कस्टडी के लिए प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है। आप ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और एक गोमेद, लगभग 8-9 रत्ती का गोमेद चांदी में दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: तो पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी। आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि अगर भारी मंगल हमारी कुंडली में हो तो हमारे जीवन पर उसका किस तरीके से असर पड़ सकता है, लेकिन कहते हैं कि हर चीज के पीछे बुरी चीजें हैं तो अच्छी चीजें भी छिपी होती हैं। ऐसे में भारी मंगल का क्या कोई सकारात्मक प्रभाव भी होता है जीवन पर, उसके बारे में बताएं।
0: जी देखिए, मंगल जो है ना, एक लाइन में आपकी सुरक्षा, आपके साहस, फिजिकल वर्क, शारीरिक श्रम और आत्मविश्वास का स्वामी है। मानसिक श्रम का मालिक है बुध और शारीरिक श्रम का मालिक है मंगल। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुंडली में मंगल भारी अगर हो तो व्यक्ति पुलिस में, आर्मी में, सेना में या साहस के क्षेत्र में भी जा सकता है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में मंगल भारी होता है लेकिन वो उनको नुकसान नहीं करता, सेना में, साहस में, पुलिस आदि क्षेत्रों में ले जाता है या उनको बहुत अच्छा खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन बनाता है, ताकत वाले खेलों में, बॉक्सिंग में, फुटबॉल में, शक्ति वाले क्षेत्रों में उनको सफलता देता है। और मंगल का ताकतवर होना, मंगल का भारी होना जल तत्व के लग्नों में कर्क वृश्चिक और मीन लग्न में आदमी को मेडिकल प्रोफेशन से या सर्जन से जोड़ देता है, व्यक्ति बहुत अच्छा सर्जन बनता है या व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन में बहुत तरक्की करता है। जिनका भी मंगल भारी हो, नुकसान उन्हें जो भी हो, लेकिन सामान्यतः वो जीवन में बड़े शक्तिशाली होंगे, बड़े कॉन्फिडेंट होंगे और बड़ी से बड़ी मुश्किलों को अपने साहस के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर दूर कर ले जाएंगे।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन 7 अक्टूबर को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का जो आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 7 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में परिवर्तन होगा, धन का लाभ होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। इस साल स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, अविवाहितों का विवाह भी हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या बेडरूम में, शयन कक्ष में पूजा घर बना सकते हैं? देखिए, सामान्यतः शयन कक्ष में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर एक ही कमरा है, कम जगह है, तो फिर बना लीजिए। पूजा स्थान पर एक पर्दा लगा दीजिए, पूजा के समय उसको खोल दीजिए और बाकी समय पर्दा डाल करके रखिए तो बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 7 अक्टूबर 2026 यानी कि दिन बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 7 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में गणेश जी की आरती करिएगा, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 7 अक्टूबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के शिक्षा की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है कर्क, इनकी शिक्षा में थोड़ी रुकावट और बार बार शिक्षा में बदलाव होता है। कर्क राशि के लोगों को शिक्षा में सफलता के लिए भगवान शिव की पूजा करना अच्छा रहता है।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर आपके शरीर में बहुत दर्द होता हो, तमाम दवाइयां कर चुके, तमाम उपाय कर चुके, शरीर का दर्द नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे पूजा के लिए बैठिए, सामने एक पात्र में, लोटे में जल भर करके रख लीजिए और इसके बाद बोल बोल कर हनुमान बाहुक का पाठ करिए और जल को प्रभावित स्थानों में जहां जहां दर्द होता है उस जल को प्रभावित स्थानों पर लगाइएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो दर्द की पेन की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी।
1: पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए जेएनटी के साथ।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: क्या है बजरंग बाण की महिमा, क्या है बजरंग बाण के पाठ का विधान, और बजरंग बाण के पाठ से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और चलते चलते आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
9: फ्लोरिडा में स्काई डाइवर्स की ये रोमांचक कलाकारी देखिए। यहाँ 20 देशों के 104 स्काई डाइवर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं, वो भी ऊंचे आसमान में, और फिर सबने मिलकर ऐसा मनमोहक नजारा पेश किया कि लोग हैरान बस देखते रह गए। खुले आसमान में बिना किसी सहारे की अनोखी आकृति बनाना आसान तो नहीं होगा ना, लेकिन इन्होंने कर दिखाया, और जब कर दिखाया तो इनके नाम रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। इस इवेंट का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, इसे सबसे बड़ा कैनोपी रिलेटिव वर्क फॉर्मेशन माना गया है। यहाँ लय भी है, गति भी और सटीकता भी, सबको एक फ्रेम में इस तरह देखना दिलचस्प है। सीढ़ियों पर इस तरह कदम ताल करना आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभ्यास से मुश्किल भी कुछ नहीं। और फिर ये तो फिटनेस का इम्तिहान देने निकले हैं और खुद को साबित भी किया है। वैसे फिटनेस अपनी जगह है, इन्हें इस तरह से लयबद्ध होकर कदम ताल करते देखना दिलचस्प है। इन्हें देखिए, ऐसे अटैक कर रहे हैं मानो हरा ही देंगे मुकाबले में। आत्मविश्वास भरपूर है, वो भी क्यों नहीं, सामने वाला भी तो इस लड़ाई में खूब दिलचस्पी ले रहा है। भले ही बच्चे का मन रखने की गरज से खेल खेल रहे हों, लेकिन बच्चा भला अपने को बच्चा समझ कहाँ रहा है। बछड़े की ये मासूमियत देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये लड़कियां हैं या कठपुतलियां? हवा में ऐसे लहरा रही हैं मानो परियां आसमान से जमीन पर उतर रही हैं। अंदाज ऐसा कि नजरें हटाना मुश्किल। असल में ये खास तरह का डांस है जिसे माउंटेन्स एंड रिवर्स इन एम्ब्रस कहा जाता है। इस डांस परफॉर्मेंस में पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक डिजिटल आर्ट का अनूठा मेल देखने को मिल रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर

0: का वक्त, रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: क्या है बजरंग बाण की महिमा, क्या है बजरंग बाण के पाठ का विधान, और बजरंग बाण के पाठ से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा के 25 साल पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो।
9: देश भर में शक्ति उपासना की तैयारी तेज, दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही है मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, पंडालों को दिया जा रहा है अंतिम रूप।
8: प्रयागराज में नवरात्र के साथ रामलीला की भी तैयारी, विधि विधान से किया गया प्राचीन मुकुट पूजन, लाहौर के कारीगरों ने तैयार किया था सोने चांदी का मुकुट।
9: पुरी में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज।
8: केदारनाथ में खराब मौसम के बीच एयर एम्बुलेंस बनी संजीवनी, 50 से ज्यादा यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट, ऑक्सीजन की कमी के चलते बिगड़ी थी तीर्थयात्रियों की तबीयत।
9: ओडिशा में आज से सरेक्स 2026 अभ्यास का होगा आगाज, थल नभ और जल की शक्ति का प्रदर्शन, सेना के विमानों और 15 तटरक्षक जहाजों का जुटान।
8: लियोनेल मेसी ने जीत के साथ ली इंटरनेशनल फुटबॉल से विदाई, बेनिन के खिलाफ अपने आखिरी मैच को गोल और असिस्ट के साथ बना यादगार, 17 अगस्त 2005 को अर्जेंटीना के लिए खेला था पहला मैच।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: देखो को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़ना।
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। बिना रुके बिना थमे अगले घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: शुभ समाचार की शुरुआत आज समय खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सरोजनी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम से पीएम तक सत्ता के केंद्र में 25 साल पूरे होने पर उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद लिया। सुबह पहले गणपति को नमन किया और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। आज बीजेपी की ओर से वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प कार्यक्रमों की गूंज सुनाई पड़ रही है। आज पीएम मोदी कई और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, इनके बारे में भी आगे हम विस्तार से बात करेंगे।
2: तो वहीं चंद दिनों बाद ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का महापर्व शुरू हो रहा है, यानी कि शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होगा। लिहाजा देश भर में मूर्तिकार माँ की भव्य प्रतिमाओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं, तो कारीगर पंडालों के निर्माण में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आगे दिखाएंगे।
1: कैंची धाम में नया एंट्री प्लान तैयार होगा। उत्तराखंड के नैनीताल में मौजूद कैंची धाम देश दुनिया के खास धार्मिक स्थलों में शामिल है। वहां बाबा नीम करौरी महाराज के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। खास मौके और छुट्टियों के दौरान यहां श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बीते दिनों भी धाम में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ऐसे में मंदिर परिसर में भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए भी खास तैयारियां की जा रही है। क्या है ये प्लान, आगे होगी बात।
2: उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई है। केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम में अब तक 16.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में मौसम की करवट लेने के बाद भले ही सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन भक्तों का गर्मजोशी से धाम आना जारी है।
1: इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में मौसम बदल गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते पहाड़ कूल कूल हो गए। आसमान पर बादल छा चुके हैं, ठंडी हवाओं ने दस्तक दी और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। तो ये खूबसूरत तस्वीरें भी थोड़ी देर में होंगी आपके सामने, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
2: पश्चिम बंगाल में शक्ति पर्व यानी दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। पुरुलिया में भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी खास थीम बाला विशाल पंडाल तैयार कर रही है। इस बार पाषाणे प्राण यानी कि पत्थरों में प्राण थीम के जरिए गुफा मंदिर और प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। पहाड़ के बीच बनी गुफा के स्वरूप वाली माँ दुर्गा की प्रतिमा इस पंडाल में विराजेंगी।
1: नवरात्र की तैयारियों के बीच अमरावती के अंबा देवी और एक वीरा माता मंदिर में तैयारियां तेज हो गई हैं। कारीगर देवी के आभूषणों और चांदी की पूजा सामग्री को चमकाने में जुटे हुए हैं। सोडा और एसिड मिले गुनगुने पानी से आभूषणों की सफाई के बाद ब्रश से उन्हें चमकाया जा रहा है, फिर स्वच्छ पानी से धोकर मुलायम कपड़े से पोछा भी गया।
2: अमरावती में नवरात्र को लेकर बाजार सजकर तैयार हैं। कोलकाता की देवी प्रतिमाओं से लेकर गुजरात के गरबा ड्रेस तक बने आकर्षण का केंद्र। भावनगर से खास तौर पर मंगाई गई गरबा रास की ट्रेडिशनल ड्रेस की जमकर खरीदारी हो रही है।
1: विजयदशमी से पहले प्रयागराज में रावण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सड़कों पर निकली रावण की सवारी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। निराले अंदाज में रावण की पूजा अर्चना के साथ दशहरा उत्सव का आगाज हुआ।
2: करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश में पहली बार वाहनों का लंबा जाम नजर आया। पीएम मोदी के दौरे के बाद यहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023 में जहां 10,000 यात्री पहुंचे थे, तो वहीं इस साल अब तक करीब 63,000 पर्यटक आदि कैलाश पहुंच चुके हैं।
1: केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। अब तक 16,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और हर दिन औसतन 15,000 से ज्यादा भक्त धाम पहुंच रहे हैं, जबकि एक महीने और यात्रा बाकी है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
2: हिमाचल में मौसम ने अचानक करवट ली। धर्मशाला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। बर्फबारी के बाद धर्मशाला और मैक्लोडगंज की खूबसूरती निखर गई है। मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं।
1: डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड एयरशिप का सफल उड़ान परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान एयरशिप 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक उड़ान भरी। समताप मंडल ने लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता का प्रदर्शन इसमें निगरानी और एरोस्पेस क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि।
2: अभिनेत्री यामी गौतम की अपकमिंग फिल्म नई नवेली का दूसरा गाना फटा पटाखा रिलीज हो गया है। ये एक डांस सॉन्ग है जो यामी पर फिल्माया गया। नेशनल अवार्ड विनर जीवी प्रकाश कुमार ने इस गाने को कंपोज किया। इसके बोल वायु ने लिखे हैं और इसे गाया है मधुबंती बागची ने। फिल्म 16 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

0: तो पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जारी हैं, बाजारों में रौनक है, मां के पंडाल सज रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आस्था भक्ति की ये तस्वीर आप देखिए। आज सुबह की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर पीएम मोदी ने मंगल मूर्ति श्री गणेश का आशीष लिया।
1: तो राजधानी का ये श्री विनायक मंदिर सरोजिनी नगर में स्थित है। यहाँ श्री गणेश के साथ ही भगवान शिव, हनुमान जी और नवग्रह की मूर्तियां भी स्थापित है। खास बात यह है कि मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं।
2: ओम नमस्ते भगवान।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सरोजनी नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम से पीएम तक सत्ता में रहते हुए सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद लिया। पीएम ने शिवलिंग की पूजा की, जल चढ़ाया, नारियल पुष्प अर्पित किए और आज पीएम मोदी कई और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो ये मंदिर सरोजनी नगर में है। प्रधानमंत्री आवास से इसकी दूरी 7 किलोमीटर की है। खास बात यह है कि ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनायक मंदिर गए हैं दर्शन पूजन के लिए। और ये मंदिर बेहद पुराना है और खास बात यह है कि ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री आवास से इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर की है और ये मंदिर सरोजनी नगर में स्थित है। और अब आपको वडनगर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सेवा संकल्प अभियान के तहत निकाली गई वाराणसी वडनगर सेवा यात्रा का भव्य समापन हुआ। वाराणसी से शुरू हुई इस यात्रा में शामिल 500 युवा बाइकर्स वडनगर पहुंचे, जहां उनके पहुंचने पर उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। 6 अक्टूबर की शाम वडनगर के ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में वाराणसी में पहुंचे सभी 500 बाइकर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूरा परिसर शिव भजन और भक्ति संगीत से गूंज उठा।

0: तो वही नवरात्र में अब बस 3 दिन का इंतजार है। फिर 3 दिन बाद माँ दुर्गा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगी। माँ के स्वागत के लिए भक्तों ने भी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश भर में माँ के भव्य स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कहीं दुर्गा पंडालों में अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं माँ की प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जा रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि माँ के दरबार को भव्य दिव्य रूप से सजाया जा सके। बाजारों में भी नवरात्र की रौनक देखते बन रही है। माँ के श्रृंगार के सामान से लेकर चुनरी, पूजा सामग्री और आभूषणों तक की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। वहीं युवाओं और महिलाओं में नवरात्र के पारंपरिक परिधानों को लेकर काफी उत्साह है। मंदिरों से लेकर बाजार तक रौनक ही रौनक है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक अनोखी थीम पर पंडाल तैयार हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा की मिट्टी से माँ की प्रतिमा आकार ले रही है तो वहीं अमरावती में माँ के आभूषणों की खास सफाई और श्रृंगार की तैयारी चल रही है। तो नवरात्र उत्सव में माँ दुर्गा के पंडाल तो सस्ते ही हैं, साथ ही शहर शहर रामलीला का मंचन भी होता है जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर जारी हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा भी मनाया जाता है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में विजयादशमी से जुड़े आयोजन का रंग थोड़ा अलग होता है। यहाँ दशहरा उत्सव मनाया जाता है जिसकी शुरुआत ही लंकाधिपति रावण के सम्मान और उनकी भव्य सवारी से होती है। तो देखिए नजारा, रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस तरह से रामायण के मंचन की शुरुआत होती है। दशहरे से पहले रावण का दरबार सजता है, रावण के पात्रों की झांकी यहाँ निकाली जाती है और एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन होता है जिसमें रावण का स्वरूप लेकर निकला जाता है और वो शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो प्रयागराज
1: की सड़कों पर भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें परंपरा, भव्यता और लोक संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिला। रावण के विशाल स्वरूप के साथ रामायण के किरदार भी इस यात्रा का हिस्सा बने हैं।

0: way to improve my ability to drive.
1: शोभायात्रा में बैंड बाजे और ढोल की गूंज के बीच पूरा शहर उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। देखिए किस तरह से ढोल ताशे बज रहे हैं और ये गूंज है शोभायात्रा में बज रहे ढोल नगाड़ों की। किस तरह से भक्त जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं शोभायात्रा में और उस बीच ढोल नगाड़ों की ये गूंज शोभायात्रा।

0: दशानन की वो हंसी जिसके गूंज से दशो दिशाएं कांप उठे, सिर पर मुकुट, हाथ में शस्त्र और चेहरे पर लंकापति वाला रौब। जब रावण का रथ सड़कों पर निकलता है तो निगाहें खुद ब खुद उसी पर ठहर जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में कुछ ऐसा ही भव्य नजारा देखने को मिला, जहां लंकापति रावण की शोभा यात्रा निकली।
1: रावण की पत्नी मंदोदरी बनी हूँ आज, और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ भ्रमण के लिए निकले हैं। हमारे प्रधान मेघनाथ, कुंभकर्ण और विभीषण और उनके दास लोग हैं हम लोग के साथ, और हम लोग ये अपने नाना के नलियाल आए हुए हैं।
0: रावण की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सड़कों पर अपार जनसैलाब उमड़ा। ऐसे में रावण के विशाल स्वरूप ने पूरे माहौल को रामायण काल की यादों से भर दिया।
2: रावण की भव्यता, उनके आकर्षण, उनका व्यक्तित्व, उनके ज्ञान और उनके दर्शन को दर्शाते हुए नटवारा मेला कमेटी उनकी शोभा यात्रा का शुभारम्भ करती है।
0: बैंड बाजों की धुन और जय घोष के बीच भव्य शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में लंकापति रावण का विशाल स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहा, तो वहीं राम और लक्ष्मण के रूप में सजे कलाकार भी लोगों का ध्यान खींचते नजर आए।
1: पूरे वर्ष इंतजार रहता है अपनी संस्कृति को एक बार फिर से देखने का, और इतना उत्सव, सबका खुशी, सबकी व्यवस्था और इतना इंतजाम जो लोगों के द्वारा होता है, सबका उल्लास है जो अपनी संस्कृति को लेकर बनाए रखने को, ये सब बहुत ही प्रेरणादायक होता है।
0: शोभा यात्रा के साथ बैंड की शानदार परफॉर्मेंस ने माहौल में और रंग भर दिया। कहीं ढोल की थाप गूंजती दिखी तो कहीं अलग अलग तरह के ढोल की आवाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रयागराज में दशहरा उत्सव की शुरुआत भी कुछ अलग अंदाज में होती है। यहां तीनों लोकों के विजेता कहे जाने वाले लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज होता है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जब लंकापति रावण अपने पूरे शाही अंदाज में शहर की सड़कों पर निकलता है।
3: हजारों वर्षों का पुराना इतिहास है कि रावण की शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। रावण का ननिहाल महर्षि भरद्वाज मुनि क्षेत्र में, महर्षि भरद्वाज मुनि नाना लगते थे, इसलिए हम लोग सम्मान देने के नाते रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं।
0: रावण की ये भव्य सवारी हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज की सड़कों पर अपनी अलग छाप छोड़ गई, मगर इस भव्यता के पीछे एक संदेश भी छिपा है। अहंकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, विजय हमेशा सत्य की ही होती है। इस संदेश के साथ प्रयागराज में दशहरे की तैयारियां अपने पूरे रंग में नजर आ रही हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: के चंद दिनों बाद ही माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की उपासना का महापर्व है, यानी कि शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होगा। इन नौ दिनों में हर तरफ उत्साह, उमंग और आस्था में डूबे श्रद्धालु माँ के दरबार में हाजिरी लगाते भक्त नजर आते हैं। देश भर में मूर्तिकार माँ की भव्य प्रतिमाओं को पूर्ण करने में जुटे हैं, तो कारीगर पंडालों के निर्माण में लगे हुए हैं।

0: माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। हर तरफ माँ के आगमन की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। माँ की मूर्ति का निर्माण और श्रृंगार कार्य अंतिम चरण में है। वहीं माँ का दरबार सजाने सवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है, जहाँ भारद्वाज पार्क में कोलकाता से आए मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सभी मूर्तियां गंगा की शुद्ध मिट्टी से बनाई जा रही हैं, जिन्हें प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल रंगों से इन्हें सजाया जा रहा है।
1: ये इको फ्रेंडली कलर है, ये कोई मूर्तियों में हाँ फूल नहीं है। मूर्तियां गंगा जी की मिट्टियों से बनी है और नवरात्र है तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रयागराज के जितने भी पंडाल की मूर्तियां हैं हमें बनाने को मिल रही है, उसका डिजाइन करने उसको कलर करने की प्रतिमाओं को मिल रहा है। पंडाल में हमने क्या नाम है कलर किए हैं, डिजाइन बनाए हैं, मूर्ति को सजाया है, साड़ी से लेकर बॉर्डर हर एक एक चीज, मतलब माता रानी को एकदम अच्छे से सजा दिया है कि वो बहुत सुंदर लगती है देखने के। मन ही नहीं करता कि इनको विसर्जन किया जाए।
0: कहीं माँ दुर्गा की आंखों में भाव उकेरे जा रहे हैं तो कहीं उनके मुकुट और आभूषणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रंगों की अंतिम परत के साथ प्रतिमाओं में मानो जीवन का संचार हो रहा है। यहाँ 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। साथ भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी गंगा की मिट्टी से ही बनाई जा रही है।
2: पूरे देश में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त भरद्वाज पार्क में हैं, जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो बनाने का काम है वो चल रहा है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं और इन मूर्तियों को बनाया और संवारा जा रहा है। ये मूर्तियां 3 फीट से लेकर के 10 फीट तक हैं और तमाम ये बड़ी छोटी मूर्तियां यहां बनाई जाती हैं। तमाम कलाकार यहां पर इन रंग भरने का इन मूर्तियों में काम कर रहे हैं।
0: नवरात्र शुरू होते ही ये प्रतिमाएं शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में स्थापित की जाएगी। एक ओर जहां आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं आकार ले रही है, वहीं दूसरी ओर मां जगदम्बे को ही समर्पित भव्य पंडालों का निर्माण भी जोरों पर है। ये भव्य तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की है, जहां भव्य पंडालों का बनाने का काम शुरू हो गया है। पुरुलिया में प्रसिद्ध भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी हर साल खास थीम पर पंडाल बनाती है। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए खास थीम पाषाणे प्राण यानी पत्थरों में प्राण पर पंडाल निर्माण किया गया है। इस थीम के जरिए प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक को सामने लाने की कोशिश की गई है, यानी शानदार थीम और पारंपरिक भव्यता को किस तरीके से दर्शाया जाए इसको लेकर कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई व्यस्त है। पूजा आयोजकों और कलाकारों ने पुराने समय के उस धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को जीवंत करने का प्रयास किया है, जब पहाड़ों और गुफाओं के बीच मंदिरों में देवी देवताओं की आराधना की जाती थी।
3: हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा और हर साल के तरह इस साल भी भीड़ उमड़ पड़ेगा इधर।
0: यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा है। उनके दाईं ओर भगवान शिव और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। पंडाल के प्रत्येक पिलर और दीवार पर भारतीय संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं की विभिन्न आकृतियां पत्थर की नकाशी की शैली में उकेरी गई है। ऐसी गुफा मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होगी और यही माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ पुरुलिया से सत्यजीत बैनर्जी, गुड न्यूज टुडे।
4: माँ के दरबार को सजाने संवारने की परंपरा भी अपने आप में खास है। अमरावती में नवरात्रि से पहले देवी के सोने चांदी के आभूषण और पूजा सामग्री को चमकाने की जिम्मेदारी समाज निभाता है। खास बात यह है कि यह सेवा पिछले 60 साल से लगातार चली आ रही है। विदर्भ की कुलस्वामिनी माँ अम्बा और एकवीरा माता के मंदिर में भी शारदीय नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ मंदिर के पुजारियों की मौजूदगी में देवी की उत्सव मूर्ति, पादुका, गदा, तलवार, चौकी, थाल, दीपक, धूप, पात्र, पालना, कलश, समयी, झूमर और दूसरे आभूषणों की विशेष सफाई की गई। अब जब नवरात्रि में मां का दरबार सजेगा तो इन चमकते आभूषणों के साथ मंदिर की भव्यता भी देखते ही बनेगी। बाजारों में भी नवरात्र की रंगत देखते बन रही है। गरबा रास के लिए खास पारंपरिक ड्रेस की अलग अलग वेरायटी दुकानों पर पहुंच चुकी है। अमरावती में गुजरात के भावनगर से आई इन ड्रेस को लेकर खास उत्साह नजर आ रहा है। उधर मुंबई के बाजार भी नवरात्र के रंग में पूरी तरह से रंगे नजर आ रहे हैं। दुकानों पर ट्रेंडिंग और स्टाइलिश ड्रेस सजी हैं। गरबा नाइट के लिए अपने लुक को खास बनाने की चाहत में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए पहले T20 में टीम इंडिया के सरपंच का शतक।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
4: पीएम मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो।
13: देशभर में शक्ति उपासना की तैयारी तेज, दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, पंडालों को दिया जा रहा है अंतिम रूप।
4: प्रयागराज में नवरात्र के साथ रामलीला की भी तैयारी, विधि विधान से किया गया प्राचीन मुकुट पूजन, लाहौर के कारीगरों ने तैयार किया था सोने चांदी का मुकुट।
13: केदारनाथ में खराब मौसम के बीच एयर एम्बुलेंस बनी संजीवनी, 50 से ज्यादा यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट, ऑक्सीजन की कमी के चलते बिगड़ी थी तीर्थयात्रियों की तबीयत।
4: ओडिशा में आज से SAREX सेरेक्स 2026 अभ्यास का होगा आगाज, थल नब और जल की शक्ति का प्रदर्शन, सेना के विमानों और 15 तटरक्षक जहाजों का जुटान।
13: लियोनेल मेसी ने जीत के साथ ली इंटरनेशनल फुटबॉल से विदाई, बेनिन के खिलाफ अपने आखिरी मैच को गोल और असिस्ट के साथ बनाया यादगार, 17 अगस्त 2005 को अर्जेंटीना के लिए खेला था पहला मैच।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
13: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभ समाचार में। आप पेश करते हैं जीत वाली गुड न्यूज। कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 में 8 विकेट से मात दी। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। मेहमान टीम 19 ओवर और एक गेंद में 171 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में टीम इंडिया ने भी 35 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने विरोधी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और भारत ने बड़ी आसानी से 8 विकेट में मुकाबला जीत लिया। टीम इंडिया की इस जीत के नायक रहे कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 43 गेंदों पर 102 रन की तूफानी पारी खेली।
14: इंडिया इंडिया
15: बहुत बहुत बहुत मजा आया, बहुत बहुत बहुत मजा आया। इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती बहुत ही मजा।
16: चार चार अय्यर ने फॉरेन में कुछ नहीं किया, इंडिया में चार छक्के मारे। पीपुल नीड टू वॉच दिस।
17: बहुत मजा आ गया मैच देख के। आखिरी में जो शतक पड़ा है श्रेयस अय्यर का, हम लोग सिर्फ उसी में रुके थे और इतने जल्दी उन्होंने मैच निपटा दिया। 15 को पहले ही मैच खत्म हो गया। अगर इंडिया पहले बैटिंग करे 250 तो लगना ही लगना था। इस लेके चलो अभी देखो भी 5 ओवर बचा था, 170 ऐसे बन गया, 80 रन बनाए तो 5 ओवर में आराम से। श्रेयस अय्यर हो गए, नमन थे की बॉलिंग, अनएक्सपेक्टेड उनकी बॉलिंग, उसको बॉलिंग से मिलती नहीं है पर उसकी बॉलिंग अनएक्सपेक्टेड थी, आवाज अच्छी बॉलिंग की। और स्टार्टिंग में जिसने हर्षदीप ने विकेट लिया पावर प्ले में, वो बहुत खुशी था।
18: श्रेयस अय्यर की बैटिंग देख के इसको काफी अच्छा लगा और टीम इंडिया बहुत अच्छे तरीके से जो है मैनेज किया और आखिरी में जो है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की पारी टीम इंडिया को जीत दिला दी है आखिरी में।
4: एशियन गेम्स में भारत का परचम लहराकर स्वर्ण पदक जीतने वाले सोनीपत के होनहार खिलाड़ियों का घर लौटने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में सोनीपत में जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय हॉकी टीमों में सोनीपत के 7 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इनमें महिला हॉकी टीम की नेहा गोयल, शिल्पी, साक्षी राणा और ज्योति शामिल रही, जबकि पुरुष हॉकी टीम में यशदीप सिवाच, अभिषेक नैन और सुमित कुमार ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। इन खिलाड़ियों की उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरा सोनीपत गौरवान्वित है। जैसे ही ये पदकवीर अपने शहर पहुंचे, उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। ढोल नगाड़े, फूल मालाएं और भारत माता के जयकारों के बीच खिलाड़ियों का जोरदार तरीके से अभिनंदन किया गया और फिर सोनीपत के मिशन चौक से लेकर औद्योगिक क्षेत्र स्थित हॉकी ग्राउंड तक भव्य विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान खिलाड़ियों को खुली गाड़ी में सम्मान के साथ ले जाया गया और रास्ते भर लोगों ने अपने चैंपियन खिलाड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया।
19: टूर्नामेंट सारे प्रेशर वाले होते हैं, पर जैसे एशियन गेम्स है वो डायरेक्ट ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए होता है तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर होता है, तो प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा था इस टूर्नामेंट में। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं बड़े टूर्नामेंट खेल लूँ और उनमें गोल्ड मेडल लेके आऊँ।
20: मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आपका ड्रीम है और हमेशा हार्डवर्क करो और कभी भी गिव अप नहीं करना, बिकॉज मेरे लाइफ में भी ऐसे स्ट्रगल आए थे कि मैं कभी मेरे को लगा कि मैं हॉकी छोड़ दूँ, बट मेरी मैम ने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया, मेरे घर वालों ने, मेरे हस्बैंड ने, कि जब मेरे को इंजरी हुई थी तो मेरे को जब से सबसे ज़्यादा जरूरत थी तो वे मेरे साथ खड़े थे। तो यही है कि गिव अप नहीं करना, आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे बट हमेशा हार्डवर्क करना है।
21: बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है हमारा और हमारा स्टार्टिंग से यही था कि हमें ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है। हम मैच बाय मैच जा रहे थे, एक ये नहीं था हमारा किसी दम फाइनल का सोच रहे थे, हमें ये था स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक एक मैच से अच्छा इम्प्रूव करते जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहे और जीत के आए हैं तो और भी अच्छा है।
22: अब काफ़ी खुशी हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे पूरा देश, पूरा डिस्ट्रिक्ट और गाँव और पूरे सोनीपत के लोग इतना अच्छा स्वागत कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है।
13: और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की।

0: उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक मौसम ने करवट ली है। कहीं पहाड़ों पर मौसम सुहाना हो गया है तो कहीं पर बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी है। केदारनाथ में मौसम साफ और खुशनुमा होने के साथ श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं हिमाचल के धर्मशाला में बारिश के बाद मौसम ने ठंडक बढ़ा दी है। आगे बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में पहाड़ों पर पहुंचे सैलानी मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उधर बद्रीनाथ धाम भी मौसम बदला लेकिन आस्था का उत्साह बरकरार है। यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है।
1: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश आया है। केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम में अब तक 16.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं तो वहीं बद्रीनाथ धाम में मौसम ने करवट ले ली है और भले ही सर्दी ने दस्तक दे दी हो लेकिन भक्तों का गर्मजोशी से धाम आना जारी है।
2: हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रही है पूरी केदार घाटी। बाबा केदार के दरबार में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर रास्ता श्रद्धालुओं से भरा नजर आ रहा है। कड़ी चढ़ाई, बदलता मौसम, लंबा सफर और तमाम चुनौतियां, लेकिन महादेव के भक्तों का उत्साह हर मुश्किल पर भारी पड़ रहा है। हर साल केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक द्वितीय चरण की केदार यात्रा में 15 सितंबर के बाद अब तक 1.5 लाख यात्री धाम पहुंचे हैं। हर दिन 15,000 से अधिक भक्त दर्शन कर रहे हैं। यात्रा शुरू होने से अब तक करीब 16,50,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
3: बीते 20 दिनों में 1.5 लाख भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं जबकि अभी तक कुल 16.5 लाख से अधिक भक्त रिकॉर्ड संख्या में बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अभी 1 माह की यात्रा शेष बची हुई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यात्रा के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और इस बार की केदारनाथ यात्रा नया कीर्तिमान रचेगी।
2: भारी भीड़ के चलते कई जगह लंबी कतार और जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है लेकिन बाबा के दर्शन की आस में भक्त पूरे धैर्य और उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन यात्रा को व्यवस्थित रखने में जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं को बाबा केदार के सुगम दर्शन हो इसका इंतजाम किया गया है।
4: श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में 2026 में अभी तक करीब 16,54,000 लोग यहाँ पे सुगम दर्शन कर चुके हैं। मानसून के खत्म होने के बाद से सितंबर माह के अंत से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। उसके दृष्टिगत जो हमारा पुलिस का व्यवस्थापन है उसको भी बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो हमारी प्रशासन की तैयारियां और प्रशासन की विभिन्न टीमें हैं उनको भी तैनात किया गया है ताकि इस बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा कराई जा सके।
2: श्रद्धालुओं का कहना है कि केदारनाथ पहुंचते ही सारी थकान और परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंदिर परिसर में गूंजता हर हर महादेव का जयघोष, बर्फ से ढकी चोटियां और शिव भक्ति में डूबा वातावरण हर किसी को एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो भगवान बद्री विशाल का ये धाम भी श्रद्धालुओं से गुलजार है। कपाट खुलने के बाद से अब तक लाखों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि मौसम में आए बदलाव ने अब तीर्थ यात्रियों की चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार 11 अक्टूबर तक पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।
5: बद्रीनाथ धाम में जहाँ इस समय लगातार भीड़ देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं से बद्रीनाथ धाम खचाखच दिखाई दे रहा है तो वहीं अब मौसम के करवट बदलने के साथ ही जबरदस्त ठंड का एहसास देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से मौसम बदल रहा है तो ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऐसे में हर कोई उत्साहित है, पहली बर्फ शायद क्या पता इस बार देखने को मिल जाए।
2: ऐसे में यात्रा सीजन के पीक दौर में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने चार धाम यात्रियों को यात्रा मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए पहाड़ों पर तेजी से मौसम करवट बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। आसमान पर बादलों का डेरा, कई जगहों पर ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है।
2: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते पहाड़ कूल कूल हो गए। आसमान पर बादल छाए, ठंडी हवाओं ने दस्तक दी और फिर शुरू हुई झमाझम बारिश। धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, यानी मौसम ने पल भर में गर्मी से राहत का ऐसा इंतजाम किया कि पहाड़ों की फिजा ही बदल गई। इस बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए धर्मशाला और मैकलोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंडी हवाओं, बारिश और पहाड़ों की हसीन फिजाओं ने सैलानियों का मजा दोगुना कर दिया है। बारिश और ओलावृष्टि के बीच भी त्रिवेणी ट्रैक को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों की खूबसूरती और बदलते मौसम का मजा लेने त्रिवेणी का रुख कर रहे हैं। असल में मौसम के इस बदलते मिजाज का अंदेशा मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था। विभाग ने आने वाले दिनों में भी पहाड़ों पर मौसम के ऐसे ही तेवर बनने के अनुमान जताए हैं।
6: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हमारे जो स्पेशली क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगभग 9 अक्टूबर तक प्रदेश के जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट में जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे मध्य बारिश का दौर है वो देखने को मिलेगा।
2: इसी के साथ पहाड़ों पर मौसम का अगला रंग बर्फबारी का हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरने के साथ बर्फ गिरने की संभावना है। इसी को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है।
6: इसके प्रभाव से जो हमारे जो क्षेत्र है जिसमें कांगड़ा है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हाँ संभावना है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। देखिए अलर्ट मुख्यतः जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है तथा जो मध्य डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और शिमला, यहाँ पे आफ्टरनून और लेट इवनिंग में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया गया आगामी 4 दिनों के लिए येलो कैटेगरी में।
2: मौसम के बदले मिजाज ने पहाड़ों की फिजा के साथ साथ पर्यटन का रंग भी बदल दिया है। अब सबकी नजरें मौसम के अगले करवट पर है, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम अपने साथ खूबसूरती के नए रंग भी लेकर आता है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: झारखंड के रामगढ़ में होमगार्ड की नौकरी के लिए युवाओं और महिलाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 284 पदों पर भर्ती होनी है। इसी सरकारी भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए एक डिफेंस एकेडमी ने 1600 मीटर दौड़ का प्रैक्टिस ट्रायल कराया। इस दौरान महिलाओं का जज्बा खासतौर पर देखने को मिला। कई महिलाएं साड़ी पहनकर ही मैदान में उतर गई और पूरी ताकत के साथ दौड़ पूरी की। साड़ी में दौड़ना आसान नहीं था, लेकिन इन महिलाओं के हौसले के आगे मुश्किल भी छोटी पड़ गई। तो देखिए किस तरह से मैदान में दिखा औरतों का दमखम और साड़ी में दौड़ती महिलाओं की आप तस्वीर देख सकते हैं कि साड़ी पहनकर भी ये महिलाएं दौड़ रही हैं। और इसी सरकारी भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तैयारी चल रही है। डिफेंस एकेडमी ने 1600 मीटर दौड़ का प्रैक्टिस ट्रायल इनसे कराया।
0: सैन फ्रांसिस्को के येरबा बुएना गार्डन्स में इन दिनों घास पर आपस में जुड़े हाथों की स्केचिंग लोगों का ध्यान खींच रही है। दरअसल ये विशाल आर्ट दुनिया भर में मशहूर स्विट्जरलैंड आर्टिस्ट सेपे का प्रसिद्ध विश्व कला प्रोजेक्ट बियॉन्ड वॉल्स का एक हिस्सा है। इसमें दो विशाल हाथों को एक दूसरे से जोड़े हुए दिखाया गया है, जो कि एकजुटता और मानवीय जुड़ाव का प्रतीक है। ये कलाकृति पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, जिसे चौक और कोयले जैसे प्राकृतिक पिगमेंट से बनाया गया है। सेपे का ये बियॉन्ड वॉल्स प्रोजेक्ट 2019 में पेरिस में आईफिल टावर के पास सामने शुरू हुआ था, जिसके बाद कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए सेपे अपने प्रोजेक्ट के साथ 23वें शहर सैन फ्रांसिस्को पहुंचे।
1: और चलिए अब आपको दिल्ली में पान की एक ऐसी दुकान पर लिए चलते हैं जहां पान सिर्फ आम ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। दावा है कि आजादी के बाद ये लगातार राष्ट्रपति भवन में होने वाले खास आयोजनों के लिए यहीं से पान जाता है। राष्ट्रपति भवन में आने वाले खास मेहमानों को भी यहाँ का पान परोसे जाने की परंपरा रही है।
7: देवी प्रसाद पांडे जी मेरे साथ में है, इस दुकान की तीसरी पीढ़ी है। बाबूजी, जब से शुरू हुआ था तब से आज तक बदलाव क्या आया, पहले ये बताइए मुझे।
8: बदलाव ये आया कि तम्बाकू खाने वालों की बहुत कमी हो गई। अब जो यंग जनरेशन है वो मीठा और सादा पान पे ही ध्यान देते हैं, तो तम्बाकू ना के बराबर रहेगा। जो पुराने लोग हैं वही खाते हैं, बाकी हम नए जो बच्चे हैं मुँह लाल ना हो, ये ना हो, इसका हमने खास ध्यान रखा है। मीठा पान अब हमारा 20 खाली मुँह लाल नहीं होगा।
7: अच्छा,
8: जैसा मुंह है ऐसे ही रहेगा, दांतों में स्किन नहीं आएगी। तो हमने अपने तरीके से कुछ प्रोडक्ट किया है जिससे कि हाइजीनिक भी हो और लोग पसंद भी करें और दांत भी सुरक्षित रहें।
7: कैसे शुरुआत हुई थी इस दुकान की, इस लेगेसी की, पहली बार किसने शुरुआत की?
8: ये हमारे पिताजी ने शुरुआत की और 1943 में, उसके बाद देश आज़ाद हुआ तो राजेंद्र प्रसाद जी वगैरह, पहले तो कॉमन था नेताओं से मिलना, तो पिताजी के उनसे संपर्क रहे, तो उन्होंने एक परंपरा चलाई कि भोजन के पान बाद पान अनिवार्य है, तो जो भी प्रेजेंट हाउस में डिनर या लंच होता है तो उसके बाद पान मस्ट है।
9: और हमारे किसी भी पान में फ्लेवर या कलर या ड्राई या एसेंस नहीं, नेचुरल फ्रूट। जैसे आप मैंगो पान देख रहे हैं तो इसके अंदर फ्रेश मैंगो गुलकंद एंड लीफ, दैट्स इट, नो कत्था, नो चूना, नो सुपर, क्योंकि ये पान हमारा 3 साल का बच्चा भी खाता है तो इसको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक पान के पत्ते में 21 गुड़ होते हैं, तो आप 3 साल के बच्चे से लेकर आप किसी को भी खिलाते हो तो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे डाइजेशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, फेस ग्लोइंग के लिए, वाटर लेवल के लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे हमारे पास जैसे ब्लू बेरी,
7: एक बार नाम दिखाता हूँ आपको, ये अनार पान है,
9: अनार है।
7: ये ग्रेप्स पान है, अंगूर से बना है,
9: हाँ, ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स है। इसी तरीके से नागपुरी ऑरेंज है, पाइनएप्पल पान है, पीना कोलाडा फ्रेश पाइनएप्पल बिट टेंडर कोकोनट के साथ है। ये हमारा फोर्थ इडियट पान है,
7: फोर्थ इडियट मतलब थ्री इडियट के बाद वाला
9: जी। इसके अंदर सर नेचुरल 4 बेरीज का पान है, इसके अंदर मिक्स ऑफ 4 बेरीज है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो जैसे आप ब्लूबेरी देख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ फ्रेश ब्लूबेरी, गुलकंद एंड लीफ। तो हर एक पान का पैटर्न ही सेम, बट जिसमें जो चीज़ लिखा हुआ ना वो नेचुरल और फ्रेश है, चाहे फ्रूट हो, बेरीज हो या नट्स हो।
7: अगर आपको भी इस लेगेसी को महसूस करना है, पान में कुछ अलग ट्राई करना है, या अगर आप पान नहीं भी खाते हैं तो भी आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको पान नहीं दिया जा रहा है, आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस परोसा जा रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
0: तो गया इंस्टा स्टोरी का, आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाएंगे कि जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने में पीछे नहीं है। देखिए ईशा मालवी की फनी इंस्टा स्टोरी।
10: कल मेरे को बोलता है ये तू कचरे की थैली है क्या? मेरे को पहले बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने बोला काय को, तो बोलता है तेरे को बाहर लेके जाने का मन करता है।
11: क्या बात है, क्या बात है,
10: मैं तो शर्मा ही दी।
12: चिंगम खाई हो?
13: हाँ।
12: चिंगम खाने के बाद क्या करती हो?
13: चबा के फेंक देते हैं।
12: चबा के फेंक देते हैं, ऐसे ही दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे।
0: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
1: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
15: क्या है बजरंग बाण की महिमा, क्या है बजरंग बाण के पाठ का विधान, और बजरंग बाण के पाठ से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
19: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें
20: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
22: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
21: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
23: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
0: पीएम मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण। देश भर में शक्ति उपासना की तैयारी तेज, दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, पंडालों को दिया जा रहा अंतिम रूप। प्रयागराज में नवरात्र के साथ रामलीला की भी तैयारी, विधि विधान से किया गया प्राचीन मुकुट पूजन, लाहौर के कारीगरों ने तैयार किया था सोने चांदी का मुकुट। केदारनाथ में खराब मौसम के बीच एयर एम्बुलेंस बनी संजय।

दूर कर सकते हैं। आज बात करेंगे बजरंग बाण की और इसके प्रयोग के नियम की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:16 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 9:40 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में तथा चंद्रमा और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बजरंग बाण की। बजरंग बाण क्या है? हनुमान जी भक्ति शक्ति और ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। तमाम पूजा विधियों से उनकी प्रार्थनाएं की जाती हैं और अलग अलग तरह की प्रार्थनाओं से उनसे तमाम तरह की कामनाएं पूरी करवाई जाती हैं। शत्रु के लिए, रोग के लिए और भय के नाश के लिए हनुमान जी की अमोघ स्तुति है, अमोघ प्रयोग है बजरंग बाण। बजरंग बाण में दोहे और चौपाइयों के साथ साथ तमाम बीज मंत्रों का प्रयोग भी किया गया है, जिस वजह से बजरंग बाण अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन याद रखिए, सामान्य दशाओं में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। विशेष दशाओं में नियमों के साथ ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हर स्थिति परिस्थिति में बिना विशेष जरूरत के बजरंग बाण का पाठ ना करें। बजरंग बाण पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।

अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। वाद विवाद से बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक समस्या हल होगी।

कर्क राशि, परिवार की समस्या हल होगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। जैसा आपको पहले बताया कि जीवन की कठिनाई बहुत ज्यादा हो या जीवन की मुश्किल बहुत ज्यादा हो, तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो किन दशाओं में बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी होता है? अगर स्वास्थ्य की कोई बड़ी भारी समस्या हो, कोई बहुत गंभीर समस्या हो और कारण समझ में ना आ रहा हो, मरने जीने का प्रश्न पैदा हो गया हो, तब बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। अगर कुंडली में भयंकर मंगल दोष हो और इस भयंकर मंगल दोष से समस्या हो रही हो, तो भी बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। अगर आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं या कोई बड़ा मुकदमा आपको लगातार परेशान कर रहा है, मुकदमे से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तब भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर भयंकर तंत्र मंत्र हो या आपके ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो, तब भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अगर किसी बड़े ऑपरेशन की नौबत आ गई हो या रक्त से संबंधित कोई बड़ी समस्या पैदा हो गई हो, तो बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। हमेशा याद रखिए कि जीवन मरण का प्रश्न हो या कठिनाई बहुत ज्यादा हो, तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। सामान्य समस्याओं में या सामान्य स्थितियों में बजरंग बाण का पाठ ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बे

रखें, धन खर्च बढ़ा रहेगा, संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, धन और उपहार का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो बजरंग बाण विशेष स्थितियों में अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, लेकिन इसका पाठ करेंगे कैसे, पाठ करने के नियम क्या हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का मैं पाठ करूंगा या करूंगी, ऐसा संकल्प लीजिए। किसी भी मंगलवार या शनिवार को इसके पाठ की शुरुआत करिएगा। अपने सामने एक घी का दीपक जला लें, लाल या नारंगी रंग का वस्त्र पहने और लाल आसन पर या कुश के आसन पर बैठें। सबसे पहले तो भगवान राम को याद करना है, एक मिनट के लिए ही सही, भगवान राम को नमस्कार करें। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करें, तब पूजा की शुरुआत करेंगे। एक बार में ही सारे बजरंग बाण का पाठ करें, कोई अंतर न दें। जितने दिन बजरंग बाण का पाठ करें उतने दिन सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। बजरंग बाण के पाठ करने के बाद लोगों में लड्डू या गुड़ बांटना चाहिए और घर में गुग्गल की धूप बत्ती जलाकर इसकी सुगंध घर में फैलानी चाहिए। अगर इस तरीके से आप नियमित रूप से या मंगलवार या शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे,
धन की प्राप्ति होगी। बड़ों की सलाह लेकर काम करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काम का दबाव कम होगा, करियर में सुधार होगा, यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। भोजन करने के पहले भगवान का स्मरण जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जीवन भर आपको अन्न जल का अभाव नहीं होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 7 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

और मेरे पागलो, जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, ये पक्का है। आर्मी की जब परेड होती है उसमें लाइन से खड़ा किया जाता है, तब परेड कराने वाला जो मुखिया होता है वो खड़ा होता है और इशारे करके कुछ बोलता है, क्रिया करने को कहता है। तो जो सबसे आगे खड़ा होता, उसको जो परेड कराने वाला व्यक्ति होता है, ऑफिसर एकदम पास होता है, जो सबसे आगे खड़ा होता लाइन में, 100 लोग लाइन में लगे हो, जो सबसे आगे होता है वो ऑफिसर के एकदम नजदीक होता है। लेकिन उसी वक्त ऑफिसर कहता है पीछे मुड़, तो जो सबसे आगे खड़ा होता है वो सबसे पीछे हो जाता है। और जो सबसे पीछे होता है वो सबसे आगे हो जाता है। एक इशारा पीछे मुड़, तो जितने भी यहां पीछे बैठे हैं, यहां बैठे हैं, या संसार में तुम पीछे की लाइन में लगे हो, घबराना नहीं, बस इंतजार करो कब तुम्हारा गुरु और कब तुम्हारा परमात्मा कह दे पीछे मुड़। और जिस दिन उसने ये कह दिया पीछे मुड़, देखना तुम आगे हो जाओगे, जमाना पीछे हो जाएगा और फिर तुम फिल्मी गीत गाओगे, आज मैं ऊपर जमाना नीचे। इंग्लैंड का एक दार्शनिक हुआ, बड़ा ऊंचा आदमी। इंग्लैंड में एक जगह है लेस्टर, लेस्टर के आसपास एक गांव में उसका जन्म हुआ। फकीर था, शादीशुदा था, पर बड़ा प्रसिद्ध था। एक चर्च में उसको बुलाया गया कि तुमको प्रवचन करने, भाषण देने आना है चर्च में। तो प्रवचन देने के लिए जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने कहा कि सुनो, तुम भूलने में बहुत माहिर हो, 2 बजे की कह के 4 बजे आते, 12 बजे की कह के 2 बजे आते, भूलने में बहुत माहिर हो, तो कृपा करो कि कल 4 बजे ही आना, क्योंकि कल बहुत बड़ा भाषण है और चर्च में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पोप भी आ रहे हैं, इसलिए समय पे आ जाना। उसने कहा आप चिंता मत करो, हम समय पे आ जाएं। चर्च वालों ने फिर समझाया कि फिर सुनो, 4 बजे मतलब 4 बजे, 6 ना बजे। उसने कहा नहीं नहीं, 4 बजे क्या, मैं 4:15 पे पहुंच जाऊंगा। चर्च वाले चले गए तैयारी करने। दूसरा दिन हुआ, पुराना जमाना था, घोड़े पर चर्च से एक घोड़ा आया, रात को ही रख दिया गया कि आप घोड़े से आए ताकि आप जल्दी आ सकें। वो फकीर उस घोड़े पर बैठा और चर्च की तरफ चला और ठीक 2:30 बजे निकल भी गया कि लेट ना हो जाए। उन्होंने कहा था पक्के टाइम पे आना। बेचारा गया, चला, उसका मन हुआ कि घोड़ा चल ही रहा है, टाइम है ही है, जरा सिगरेट पी ली जाए, सिगरेट का मजा ले ले। उसने सिगरेट निकाली, लाइटर निकाला, तो बड़ी जोर की सामने से हवा आ रही थी, तो बार बार लाइटर बुझ जाए और सिगरेट जले ना। तो उसने सोचा कि ये तो बड़ा लफड़ा है, क्या किया जाए कि सिगरेट जल जाए। उसने देखा कि इस तरफ से हवा आ रही, पीछे की तरफ हवा नहीं आएगी, तो उसने घोड़ा मोड़ दिया, जिस तरफ से आया था उसी तरफ, और सिगरेट में इतना डूब गया सिगरेट पीते पीते कि उसे होश ही नहीं रहा कि घोड़ा मुड़ गया है और इस तरफ नहीं जाना, फिर से मोड़ना है। जिस तरफ मुड़ा था वो उसी तरफ चल पड़ा। घोड़ा लौटकर घर वापस आ गया। इधर 4 बज गए, चर्च वाले लोग भागे भागे घर गए कि हमने कल कहा था कि आप 4 बजे आ जाना। बोले हम तो 4 बजे पहुंच जाते पर घोड़ा ही उल्टा है, ये कब मुड़ गया, कब इस तरफ आ गया, पता नहीं चला। मेरे पागलो, ये फकीर आज 4 बजे पहुंच जाता टाइम पर यदि ये सिगरेट में ना फंसता, और सिगरेट में फंस भी गया था यदि ये घोड़ा ना मोड़ता, और घोड़ा मोड़ भी लिया था तो वापस यदि मोड़ लेता तो 4 बजे चला जाता, लेकिन उसने घोड़ा मोड़ लिया तो वापस ना जा पाया, वापस उल्टा घर आ गया, चर्च ना पहुंच पाया। ऐसी जिंदगी है, जिंदगी में एक मोड़ तुम्हारी मंजिल बदल देती है। यदि तुम वापस घर की तरफ मुड़ना चाहते हो तो वापस घर जाओ,
और यदि तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो यहां से बालाजी की तरफ मुड़ जाओ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इस तरफ मुड़ना है या इस तरफ मुड़ना है। घर वापसी की तरफ मुड़ोगे कुछ ना पाओगे, और तुम हमारे तरफ भी मत मुड़ना। मुड़ने का मतलब साइड बदलना नहीं होता, मुड़ने का मतलब मन का मुड़ना होता है। तुम भले ही घर चले जाओ पर मन बालाजी के पास हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास लोग आते हैं, हमें बताते हैं कि अब आजकल तो हम जब से घर गए हैं सपने में भी धाम दिखता है, और 10-15 दिन से ज्यादा रह नहीं पाते, बार बार खुजली होती है, और फिर लगता है कि चलो यार भाई बड़ी देर हो गई है, बड़े दिन हो गए हैं। मंगलवार शनिवार आता है तो फिर याद आती है, चाहे जो हो जाए चलो धाम। इसका मतलब है तुम मुड़ चुके हो, और तुम मुड़ चुके हो मतलब सही जगह मुड़ चुके हो। यदि तुम्हें बालाजी की बार बार याद आती है तो तुम मुड़ चुके हो, और ये याद बनी रहे, दुनिया की याद से तो बेहतर है परमात्मा की याद बनी रहे। अंत में एक बात और सुने तुम्हारे काम की। परमात्मा तब तक चमत्कार नहीं कर सकता जब तक तुम अपना चमत्कार खुद नहीं चाहते। और हम एक बात तुम्हें बहुत दावे के साथ कहना चाह रहे कि छोटे मोटे चमत्कारों से तुम प्रभावित ना हो। मन की बात बता देना, पर्चा बना लेना, पर्चे में नाम आ जाना, या पर्चे में बिना बताए बातें आ जाना, ये बहुत छोटी बातें, इनसे तुम प्रभावित ना हो। ये कोई गहरे राज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा गहरा रहस्य नहीं है, क्योंकि जो मन की बातें तुम जानते हो वही हम बता देते हैं, कुछ खास बात नहीं है। हम तो तुम्हें जीवन की बात बताने बैठे हैं, मन की बात बताने नहीं बैठे। हम चाहते हैं तुम्हारे जीवन में हमेशा दुख आते ही रहना है। आज हम तुम्हारा पर्चा बना दें, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, कल सिर का दर्द तुम्हारा करेगा, सिर का दर्द ठीक होगा, परसों पड़ोसी दर्द करेगा, पड़ोसी का दर्द ठीक होगा, लुगाई दर्द करने लगेगी, लुगाई ठीक होगी तो पड़ोसन परेशान करेगी, एक ना एक तुम्हें झंझट बना ही रहना है, एक ना एक तुम्हें दिक्कत बनी रहनी है। तुम हमारे पास आए हो, हम तुम्हें ऐसी चाबी देना चाहते हैं कि तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाए, ताकि दर्द आते रहें, संकट आते रहें, पर संकट मोचन तुम्हारे बने रहें। भाई संकट तो आते रहना है। किसी ने जब छाता बनाया होगा बारिश से बचने के लिए, तो पहले ऐसा छाता बनाया गया था कि एक बारिश में सिर्फ एक छाता काम आएगा, अब वो फट जाता था, ज्यादा तेज बारिश होती थी वो फट जाता था। तो छाता बनाने वालों ने शोध किया, रिसर्च किया, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे कि भाई एक बारिश छाता झेल पाता, आदमी ऐसे कितने छाता खरीदेगा, 4 महीने में बड़ी बारिशें होती हैं, हर रोज बारिश होती है, दिन में 2-2, 3-3 बार होती है, ऐसा छाता बनाया जाना चाहिए कि जो कई बारिश झेल पाए और फटे ना। और फिर बाद में धीरे धीरे अपग्रेड हुआ और ऐसा छाता बन गया आज कि अनेक बारिश होती है, छाता कई सालों तक चलता है। यही हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहां संकट तो रोज आते ही जाते रहने हैं, हम चाहते हैं हम तुम्हें एक ऐसा छाता, छाता नहीं बालाजी की ऐसी छत्र छाया तुमको दे दी जाए, ऐसी छत्र छाया तुम्हें मिल जाए ताकि तुम्हारे जीवन में संकट आते रहेंगे, आने दो, आते रहेंगे, घबराओ मत। तुम कोई नए आदमी नहीं हो कि तुम पे दिक्कत है, तुम कोई अकेले आदमी नहीं हो कि तुम बहुत परेशान हो। यहां ये जितने भीड़ दिखाई पड़ रही है ये सब परेशान लोगों की दिखाई पड़ रही है। अरे तुम अपनी छोड़ो, हम तुम तो आम हैं। राम के जीवन में भी यही हुआ, मीरा को उसके देवर ने जहर दिया, सूरदास को गांव के लोगों ने धक्के दिए, तुम तो कुशल मनाओ कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जरा राम जी के जीवन में तो देखो, कल राजा बनना था, रात को ही वनवास मिल गया, तुम्हें तो घर से अभी निकाला भी नहीं गया। और उनके जीवन में तो देखो कि वो जंगल गए माता जानकी जी को लेके, लक्ष्मण जी को लेके, और घरवाली हर गई, चोरी हो गई, कम से कम तुम्हारी चोरी तो नहीं हुई, तुम्हारी अभी बची है। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं मिला, ज्यादा पीड़ा नहीं मिली। जब भगवान राम को भी इतनी पीड़ा सहनी पड़ी तो तुम सोचो तुम्हें कितनी सहनी पड़ेगी। पर हम इतना कहेंगे
समस्याओं के पास समस्या मिलेगी, संसार में समस्या होंगी, संसार में जन्म लिया है, समस्याएं आएंगी, तुम्हारे जीवन में भी आते, हमारे जीवन में भी आती, बस हमने जीने का तरीका बदल लिया। हम समस्याओं से डरते इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं डरते क्योंकि जब भी समस्या आती है तो हम परमात्मा से नहीं कहते कि समस्या विकट है, हम परमात्मा के पास जाके नहीं कहते कि समस्या बड़ी विकट है, समस्या के पास जाकर के कहते हैं कि बालाजी निकट है और काम हो जाता है। वो लाज रख देते हैं, वो कृपा कर देते हैं। हमारे अंदर भी चिंता आती है कभी कभी, गुरुकुलम कैसे चलेगा, कन्या विवाह कैसे होगा, कैंसर हॉस्पिटल कैसे बनेगा। अभी नेपाल में हजारों लोग घर बेघर हो गए तो 1000 लोगों को राशन भेजा बागेश्वर धाम से, 1000 परिवार। तो हमें भी कभी कभी विचार आता पर सोचते नहीं है, भगवान दया कर देते हैं, जिनके सहारे बैठे हैं वो हमारी चिंता करते हैं क्योंकि हम उनका काम करने आए हैं, तो हमारी चिंता वो करें। हम तुमसे भी यही कह देते, अब तक की तुम्हारी जितनी बकवास थी, जितने झंझट थे, आज के बाद उनको तुम इन पे छोड़ दो, हम पे छोड़ दो, आगे की तुम देख लेना। हम इतना कह सकते हैं आज के बाद तुम फ्री होकर के जीना सीख लो, जो भी समस्या है छोड़ दो, या तो तुम गुरु को छोड़ दो या गुरु पर छोड़ दो। एक बात बताओ, हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता? ठीक से सुना नहीं। एक बात बताओ, हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता है? हाथ उठाओ। छोड़ना चाहती हैं, इन्हें खड़ा करो, जरा खड़ा करो बहन जी को, खड़ी हो बहन, खड़ी हो जाओ जगत जननी। छोड़ना चाहती हैं, कहो बहन जी। तो हनुमान जी को कौन कौन छोड़ना चाहता है, बोलो छोड़ना चाहता है? तो एक बात बताओ, हनुमान जी पर कौन कौन अपने आप को छोड़ना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोर से बोलो, पक्का? एक दो दिन के लिए या जीवन भर के लिए? सोच लो, पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, जब तक तुम्हारी समस्या न निपट जाएगी तब तक हम बालाजी से तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। जब तक तुम्हारे ऊपर हम लड़ते रहेंगे, तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम पर कृपा होगी होगी, हमें बालाजी पर भरोसा है। उन्होंने लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे वो। इसी गांव में अपनी बहन के विवाह के लिए 20,000 रुपया हम उधार ना उठा पाए, इतनी औकात ना थी हमारी। और इसी गांव में देखो तुम चमत्कार, इसी मंच से हजारों बेटियों का घर बसाया जा रहा है। इसी गांव में कोई बड़ा दवा खाना ना था, कोई अस्पताल तो था ही नहीं सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावा, वो भी कभी कभार खुलता था। अब उनका प्रत्यक्ष चमत्कार तो देखो, 300 बेड का फुल हाईटेक विदेशी मशीनरी सहित, बेललेस सेंटर सहित, केवल कैंसर हॉस्पिटल नहीं, कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा? इसी गांव में हमारे यहां के विधायक 5 साल में एक बार आते थे, वो भी वोट मांगने। अब चमत्कार तो देखो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों 3-3 दिन में दर्शन करने बालाजी के आ रहे हैं। मेरे पागलो,
बालाजी से बड़ा दयालु कोई नहीं है। हमारे जीवन का प्रण है, हमने तो जो दिन देखे सो देखे, पर भारत के हिंदुओं को वो दिन ना देखने पड़े, ये हमारा सपना है। हमने जो कष्ट सहे सो सहे, पर तुम्हें ना सहने पड़ेंगे। हम अपने लिए नहीं जीते 18-18 घंटे, हम सिर्फ इसलिए जागते हैं, सोते भी नहीं, भोजन भी समय पे नहीं कर पाते, परिवार को तो मिल ही नहीं पाते, क्योंकि अब पूरी दुनिया हमारा परिवार हो गई। और हमारा सपना है भारत को बदलने का। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, बागेश्वर धाम पर बालाजी ने गुरुकुलम खुलाया, वहां पर बच्चे संस्कृत भी पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं। अंत में हम इतना कहेंगे, आज के बाद सदा सदा के लिए तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं। हमें भरोसा है तुम्हारे भी दिन बदलेंगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उसमें 1100 कुंडी यज्ञ है, 365 साल भर में दिन होते हैं, हर दिन के हिसाब से एक बेटी का विवाह है। आप सबको उसमें आना है, हमारी आज्ञा है आप सब समय जरूर उसमें निकालना, उसमें आना। बेटियों का विवाह नजदीक आ गया है, कन्या विवाह नजदीक है, इसलिए कथाओं का करना बहुत जरूरी है, उससे कुछ दक्षिणा मिल जाती है, नहीं तो भंडारी वाले छोड़ के और भाग जाएंगे। तो हमें कथा करने लंदन जाना है, वहां से फिर मुंबई मठ पहुंच जाएंगे। आप सब पर बालाजी की कृपा हो।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म कम हुआ है यार, इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में, और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
16: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
17: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
18: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
19: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
20: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
21: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
5: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
22: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
23: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
24: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
25: और दुर्भाग्य कहता है
24: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
24: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
24: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
24: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास।

0: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: पीएम मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण। पीएम मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण। देश भर में शक्ति उपासना की तैयारी तेज, दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, गरबा खेलने की भी की जा रही है प्रैक्टिस। प्रयागराज में नवरात्र के साथ रामलीला की भी तैयारी, विधि विधान से किया गया प्राचीन मुकुट पूजन, लाहौर के कारीगरों ने तैयार किया था सोने चांदी का मुकुट। भदोही के कारपेट एक्सपो में खास कालीन बना आकर्षण का केंद्र, कालीन पर उकेरी अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियां, बुनकरों ने 6 महीनों की मेहनत से किया इसे तैयार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
7: पीएम मोदी की लोक सेवा के 25 साल पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो। पीएम मोदी ने की शिवलिंग की पूजा, जल चढ़ाया और नारियल पुष्प अर्पित किए। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प सभा में लिया हिस्सा, बीजेपी अध्यक्ष

0: नितिन नबीन ने किया उनका स्वागत। वडनगर से वाराणसी तक बीजेपी के खास आयोजन, पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर की गई महाआरती, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी को दी बधाई, पूरी बीच पर बनाई 25 फीट लंबी सैंड आर्ट। विजयदशमी से पहले प्रयागराज की सड़कों पर निकली रावण की भव्य शोभा यात्रा, निराले अंदाज में रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज। रावण की शोभा यात्रा में दिखे कई तरह के रावण, परंपरागत अंदाज में दिखे दशहरा की झलक। रावण की शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों की धूम पर जमकर नाचे लोग, शोभा यात्रा देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। सैकड़ों साल पुरानी है प्रयागराज में रावण की शोभा यात्रा की परंपरा, सजधज कर रावण शोभा यात्रा में शामिल होते हैं कलाकार। प्रयागराज में होती है रावण की पूजा, दशहरे पे कटरा रामलीला कमेटी नहीं करती रावण का वध, ना ही जलाया जाता है रावण का पुतला। प्रयागराज के ऐतिहासिक पजावा रामलीला में मुकुट पूजन, मुकुट की उतारी गई आरती। रामलीला मंचन के दौरान कलाकार पारंपरिक मुकुटों और आभूषणों को करेंगे धारण, पूजा से पहले मुकुटों की गई साफ सफाई। 100 साल से अधिक पुराने हैं लाहौरी मुकुट, लाहौर के कारीगरों ने तैयार किया था सोने चांदी का मुकुट। रायपुर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां तेज, मां की प्रतिमा बनाने में जुटे कारीगर। दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, सजाने और संवारने में जुटे कारीगर। झांसी की हुनरमंद बेटी महिला सशक्तिकरण की बनी मिसाल, पढ़ाई के साथ साथ बना रही मां दुर्गा समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं। चार बहनें पढ़ाई के साथ परिवार की 15 साल पुरानी मूर्ति निर्माण परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, करीब 150 प्रतिमाएं कर रही हैं तैयार। मिट्टी से लेके रंगाई और सजावट तक खुद करते हैं सभी काम, एक प्रतिमा को तैयार करने में करीब 6 से 7 महीने का समय लगता है। काम के साथ साथ चारों बहनें कर रही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सभी ग्रेजुएशन पूरे कर चुके हैं। अगरतला में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सख्त, कई इलाकों में चलाया वाहन जांच अभियान। पश्चिम बंगाल में जोर शोर से जारी है शक्ति पर्व की तैयारियां, पुरुलिया में बनाया जा रहा विशाल पंडाल। भामूरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए तैयार किया गया है खास थीम, पाषाणी प्राण यानी पत्थरों में प्राण। इस थीम के जरिए पहाड़ के बीच मौजूद गुफा मंदिर में मां दुर्गा की आराधना और प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक पेश करने की कोशिश की जा रही है। पंडाल में सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा, उनकी दाई और भगवान शिव और बाई और भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापित की गई है। पंडाल के बीचों बीच पहाड़ के ऊपर एक गुफा मंदिर का स्वरूप किया गया है तैयार, इसी गुफा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा होगी विराजमान। नवरात्र की तैयारियों के बीच अमरावती के अम्बा देवी और इकवीरा माता मंदिर में कारीगर देवी के आभूषणों और चांदी की पूजा सामग्री को जुटाने में जुटे हुए हैं। आभूषणों को सोडा और एसिड में ले गुनगुने पानी से साफ करने के बाद ब्रश से चमकाया गया, इसके बाद स्वच्छ पानी से धोकर मुलायम कपड़े से पोंछा गया। अमरावती में सजे नवरात्र के बाजार, कोलकाता की देवी प्रतिमाओं से लेकर गुजरात की गरबा ड्रेस तक बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। शहर के बाजारों में गुजरात के भावनगर से खास तौर पर गरबा रास की ट्रेडिशनल ड्रेस मंगवाई गई, खरीदारी के लिए उमड़ रही भीड़। आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर निकाली गई कलश यात्रा, शंख और घंटे की ध्वनि के बीच हुआ सुंदरकांड का पाठ। पुरी में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, भगवान जगन्नाथ की उतारी गई मंगला आरती। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। केदारनाथ में खराब मौसम के बीच एयर एम्बुलेंस बनी संजीवनी, 50 से ज्यादा यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट। ऑक्सीजन की कमी के चलते बिगड़ी थी तीर्थयात्रियों की तबीयत, प्रशासन ने टीमें की तैनात। बीकानेर में विधायक रविन्द्र भाटी का अनोखा स्वागत, 40 फुट लंबी मूछों की माला से किया गया उनका स्वागत। उत्तर काशी में सीएम धामी ने काशी विश्वनाथ श्री शक्ति माता मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। एलजीवी के सक्सेना ने लद्दाख पुलिस कर्मियों की विदाई और पासिंग आउट परेड में शिरकत की, लद्दाख को मिले 114 नए एसपीओस। उपराज्यपाल ने कर्मियों के आवास के लिए 24 BHK घरों का किया उद्घाटन, लद्दाख फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की आधिकारिक वेबसाइट का भी किया उद्घाटन। वदोई कारपेट एक्सपो में अनोखा कालीन पर उकेरी अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियां। कालीन में महान कवि हरिवंश राय बच्चन, अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की तस्वीर बनाई गई। गुवाहाटी पहुंची एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, एयरपोर्ट पर हुआ उनका भव्य स्वागत। भुवनेश्वर में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास और शिलानंद लाखड़ा का जोरदार स्वागत हुआ, लोगों ने फूलों की माला पहनाकर जीत की बधाई दी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सल हिंसा के पीड़ितों के लिए मेगा कैंप का हुआ आयोजन, पीड़ितों को मुफ्त में दी गई कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण। असम के चूराचंदपुर में चिकित्सा शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। कोहिमा में कमजोर परिवारों के लिए अच्छी पहल, NSRLM और BRAC इंटरनेशनल ने 4000 बेहद कमजोर परिवारों की मदद के लिए किए MOU पे साइन। यूपी में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का महिलाओं बेटियों को मिल रहा है लाभ, जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक मिलने वाली 25,000 रुपए की राशि से मिल रही है आर्थिक मदद। चमोली बद्रीनाथ में बदल गया मौसम का मिजाज, 6 से 11 अक्टूबर तक बारिश का पूर्व अनुमान, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। अलवर के एक सरकारी स्कूल में 19 फीट ऊंचा बथुए का पौधा बना आकर्षण का केंद्र, 6 महीने में तैयार हुआ पौधा, दूर दूर से इसे देखने आ रहे लोग। कैप्टन स्मिथ की तबीयत में तेजी से हो रहा सुधार, कैप्टन के परिवार से संपर्क में भारतीय दूतावास, कैप्टन के लिए दुआ करने वाले सभी लोगों का किया शुक्रिया। अमेरिका में पायलट स्मिथ मछुआर को सम्मानित करने का प्रस्ताव किया गया पारित, कांग्रेस के प्रस्ताव में किसी व्यक्ति का नाम शामिल किया जाना बड़ी बात है। दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने की तैयारियां तेज, MCD ने 6,127 किलोमीटर सड़कों पर बनाई निगरानी। 46 हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी, 4 लाख से ज्यादा पौधे लगाएगी दिल्ली सरकार। वाटर स्प्रिंकलिंग एंटी स्मॉग गन, निर्माण गतिविधियों की होगी निगरानी, हरित क्षेत्र बढ़ाने पर रहेगा खास फोकस। किराड़ी समेत 4 विधानसभा क्षेत्रों में जलभराव से राहत की बड़ी तैयारी, 263 करोड़ रुपए के ट्रंक ड्रिंक को मंजूरी। राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा, नई व्यवस्था साल 2026-2027 सत्र में होगी लागू, फरवरी मार्च में पहली परीक्षा और मई जून में दूसरी परीक्षा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए। मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए, और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, ये है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु, लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: 4 साल में पहली बार RBI ने बढ़ाया रेपो रेट 5.25 से 5.50 किया। होम और कार लोन होंगे महंगे, बढ़ेगी EMI। पीएम मोदी के लोक सेवा के 25 साल हुए पूरे। दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण। देश भर में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज। दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, गरबा खेलने की भी प्रैक्टिस। प्रयागराज में नवरात्र के साथ रामलीला की भी तैयारी, विधि विधान से किया गया प्राचीन मुकुट पूजन। लाहौर के कारीगरों ने तैयार किया था सोने चांदी का मुकुट। भदोही के कारपेट एक्सपो में खास कालीन बना आकर्षण का केंद्र। कालीन पर उकेरे अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियां, बुनकरों ने 6 महीने की मेहनत से किया इसे तैयार। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की गर्जना जारी। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सहित कई देश ले रहे हैं इसमें हिस्सा। 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय वायुसेना की होगी। तो इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना 94वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शानदार समारोह का आयोजन होने वाला है। इस बार वायुसेना की थीम है अचूक अभेद्य सटीक। एयरफोर्स डे से पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रिहर्सल के दौरान हिंडन एयरबेस पे भारतीय वायुसेना के जाबाजों का जोश जो था वो देखने लायक था। एक तरफ जाबाजों ने परेड का अभ्यास किया तो वहीं हिंडन एयरफोर्स पे स्टैटिक डिस्प्ले में वायुसेना के फाइटर जेट्स और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का दमखम भी नजर आया। अब सभी को इंतजार है कल का यानी 8 अक्टूबर का। वायुसेना दिवस के अभ्यास की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 26 पूरे जोश और रफ्तार के साथ जारी है। पहले टेक ऑफ से लेकर अब तक हर मिशन में भारतीय वायु शक्ति, तकनीकी दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का शानदार मेल देखने को मिल रहा है। आसमान में लगातार उड़ान भरते लड़ाकू विमान, सटीक मिशन और अलग अलग देशों की वायु सेनाओं के बीच साझा अनुभव। तरंग शक्ति 2026 को सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने वाला अहम मंच बना रहे हैं।

0: भारतीय वायुसेना पिछले 9 दशकों से देश के आसमान में एक मजबूत प्रहरी की भूमिका निभाती आई है। हिंदुस्तान ये जानता है कि जब तक उसके आसमान पर इन वायु वीरों की नजरें टिकी हैं, तब तक देश की धरती को कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती। एयरफोर्स के इसी जज्बे को सलाम करते हुए हर 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायु सेना के 94वें स्थापना दिवस का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस मौके पर हिंडन एयरबेस वायु सेना की अद्भुत शक्ति, जज्बे और अनुशासन का गवाह बना।
1: भारतीय वायुसेना अपने स्थापना के 94 साल मना रही है और हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन पर हम देख रहे हैं कि हर साल की तरह इस बार भी एक भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। ये ड्रमर्स ड्रिल है जिसे पहली बार इस आयोजन का हिस्सा बनाया गया है। 94 सालों में भारतीय वायुसेना ने अलग अलग ऑपरेशंस किए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर सबसे ताज़ा ऑपरेशन है और उसके साथ ही किस तरह से भारतीय वायुसेना लगातार अलग अलग मिशंस को अंजाम देती है, वो सारा जो वीरता है, वो साहस है, उस शौर्य का यहाँ पर एक जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हिंडन में एक स्टैटिक डिस्प्ले भी है जहाँ पर जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे वो रफाल हों, Su-30 हों या फिर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स हों, जिन्होंने पाकिस्तान के भीतर आतंक के ठिकानों को ख़त्म किया, वो भी यहाँ पर स्टैटिक डिस्प्ले का हिस्सा बनाए गए हैं। इसके साथ ही जागुआर, जो 4 दशक से भी ज़्यादा से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने हुए हैं, तेजस जो भारत की अपना गौरव है, वो यहाँ पर डिस्प्ले में शामिल है। लॉयटरिंग मिनिशंस यहाँ पर है, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स और रेडार सिस्टम्स, ये सब कुछ इस स्टैटिक डिस्प्ले का हिस्सा बने हुए हैं।
0: 8 अक्टूबर को समारोह का आगाज ध्वज फ्लाई पास्ट से होगा, जिसमें MI-17 हेलीकॉप्टर्स आसमान में तिरंगा और वायुसेना का ध्वज लहराते हुए गरजेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शुरू होगी वायु वीरों की एक अद्भुत परेड। मुख्य परेड ग्राउंड पर पुरुष और महिला वायु सैनिकों का संयुक्त दस्ता मार्च करेगा। हमेशा की तरह वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह परेड का निरीक्षण करेंगे। उनके साथ थल और जल सेना प्रमुख भी इसमें शामिल होने वाले हैं।
2: द मेन इवेंट द एयर फोर्स डे परेड विल बी हेल्ड एट एयर फोर्स स्टेशन हिंडन ऑन 8 अक्टूबर। द परेड लास्ट ईयर वॉज हेल्ड एट हिंडन आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years। इन द ईयर 2022 द परेड वॉज हेल्ड एट चंडीगढ़, इन 2023 एट प्रयागराज and in 2024 at Chennai, in alignment with the government's vision of offering citizens across the nation a closer glimpse of the might and capability of their Indian Air Force.
0: Air Force Day ke liye Hindon Air Base par Vayu Sena ke fighter jets aur loitering ammunition ka static display bhi lagaya gaya hai. Full dress rehearsal ke mauke par bhi ye jet aur hathiyar Vayu Sena ki taakat ki nazir pesh kar rahe the. आपको बता दें कि इस डिस्प्ले में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को रखा गया है। ब्रह्मोस के साथ ही तेजस, सुखोई और प्रचंड भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए हैं।
1: हिंडन एयरबेस पर आप देख सकते हैं एक भव्य आयोजन के साथ तमाम जहाज, तमाम फाइटर्स और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को भी रखा गया है ताकि लोग आकर देख सकें, भारत की सेना का शौर्य देख सकें, पराक्रम देख सकें और साथ ही ब्रह्मोस के बारे में और ज्यादा जान सकें। ब्रह्मोस जो भारत का गौरव है, भारत में बनाई गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और सिर्फ भारतीय वायुसेना ही नहीं, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना के भी वर्जन यहां पर मौजूद हैं और भारतीय वायुसेना हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के ठिकानों को तबाह कर चुकी है और ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा है। आप देख सकते हैं यहां पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स रखे हुए हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, अब कई देश इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ब्रह्मोस के साथ साथ यहां पर तमाम दूसरे एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर्स हैं, Su-30, रफाल, हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें हम अलग अलग ऑपरेशंस और मिशंस में देखते हैं। लॉयटरिंग म्यूनिशन यहां पर तैनात किए गए हैं, दिखाए गए हैं स्टैटिक डिस्प्ले में, लेकिन हर कोई ब्रह्मोस की ताकत, ब्रह्मोस को देखना चाहता है, ब्रह्मोस के साथ जुड़ी हुई जो शौर्य की कहानियां हैं उनको सुनना चाहता है।
0: स्टैटिक डिस्प्ले में लड़ाकू और परिवहन विमान के साथ हेलीकॉप्टर, सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार सिस्टम, रडार और एक तरफा हमला करने वाले मानव रहित हवाई सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल को भी दर्शाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम, जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर शामिल हैं, एक अनोखा म्यूजिकल प्रदर्शन पेश करने वाली है। इस परफॉर्मेंस में स्नेयर ड्रम, रोटो ड्रम, बास ड्रम और सिंबल का इस्तेमाल होगा। साथ ही खास ड्रमिंग पैटर्न, शानदार फॉर्मेशन और कलाबाजी वाली गतिविधियां भी शामिल होंगी। इसके बाद IAF हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिनमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर 2 और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में वायुसेना दिवस की परेड 2022 में चंडीगढ़, 2023 में प्रयागराज, 2024 में चेन्नई और 2025 में हिंडन एयरबेस पर आयोजित की गई थी। सरकार के इस कदम का मकसद वायुसेना दिवस के आयोजन को अलग अलग शहरों तक पहुंचाना है, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता, पराक्रम और हवाई कर्तव्य को करीब से देखने का मौका मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ अब की बार वायुसेना दिवस समारोह को दो भागों में आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना दिवस की आधिकारिक मुख्य परेड और ग्राउंड डिस्प्ले हमेशा की तरह 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से ही संपन्न होगी, लेकिन जनता के लिए बड़ा और मुख्य फ्लाई पास्ट एयर शो इस बार वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इतिहास में यह पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा। 24 से 26 अक्टूबर के बीच वाराणसी में एयर शो और फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो का आयोजन होगा। शो के दौरान वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा नदी के ऊपर एयरफोर्स के विमान करतब दिखाएंगे। मेगा एयर शो में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। राफेल, तेजस और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आसमान में जाबाजी का प्रदर्शन करेंगी। काशी की आध्यात्मिक पहचान को दर्शाने के लिए आसमान में विशेष त्रिशूल फॉर्मेशन भी बनाया जाएगा। सुखोई, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मिलकर इस डिस्प्ले को आकार देंगे। बताया जा रहा है कि ये एयर शो लगभग 90 मिनट का होगा और 24 से 26 अक्टूबर के बीच रोजाना 12 बजे के करीब इसे आयोजित किया जाएगा। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच गंगा किनारे लाखों लोग इस नजारे को लाइव देख सकेंगे।
1: पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना दिवस के इस समारोह को दो हिस्सों में मना रही है। पहला हिंडन में इस परेड के साथ और दूसरा बनारस में एक भव्य फ्लाई पास्ट के साथ इस बार ये जश्न मनाया जाएगा, जो 25 अक्टूबर को होने वाला है। और भारतीय वायुसेना लगातार साहस, शौर्य, पराक्रम के साथ अपने आप को आधुनिक और आत्मनिर्भर भी कर रही है।
0: यानी 94वें वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद से लेकर बनारस तक, हिंडन से लेकर गंगा की लहरों तक इंडियन एयरफोर्स की ताकत, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और स्वर्णिम इतिहास के रंग बिखरे नजर आएंगे। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इंडियन एयरफोर्स ने आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर अब तक लड़े गए सभी युद्धों में अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर 1965 के युद्ध में पहली बार दुनिया ने भारतीय वायुसेना का जोरदार पराक्रम देखा था। इससे पहले 1971 और फिर 1999 में हमारी वायुसेना ने आर्मी के साथ मिलकर युद्ध में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। और सबसे ताजा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर का, जब हमारे वायुवीरों ने पाकिस्तान के एयरबेसिस के परखच्चे उड़ा दिए थे। शौर्य के इन दास्तानों के तमाम अहम किरदार यानी हमारी वायुसेना के फाइटर जेट्स को इस खास मौके के लिए हिंडन एयरबेस पर शान से डिस्प्ले किया गया है।
1: भारतीय वायुसेना अपने साहस और पराक्रम के 94 वर्ष मना रही है और हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में एक भव्य समारोह के साथ साथ स्टैटिक डिस्प्ले में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स भी डिस्प्ले में रखे गए हैं। आप देख सकते हैं ये Su-30MK आए है, जो रूस में बनाया गया था लेकिन अब इसे भारत में अपग्रेड किया जा रहा है। तमाम अलग अलग कॉम्प्लेक्स मिशंस, तमाम ऑपरेशंस का हिस्सा रहा Su-30MKI, भारतीय वायुसेना की फाइटर स्क्वाड्रन की एक अहम कड़ी है, एक अहम हिस्सा है। और Su-30MKI के साथ साथ आप देख सकते हैं जो सबसे नया सदस्य भारतीय वायुसेना का है वो है रफाल। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि रफाल को भी यहाँ पर डिस्प्ले में रखा गया है। रफाल जिसे फ्रांस से भारत में लाया गया, दो स्क्वाड्रन्स इसके अब भारत में है। अम्बाला के साथ हाशिमारा में अलग अलग स्क्वाड्रन्स हैं और अलग अलग ऑपरेशंस में रफाल लगातार अपने अपने ताकत, अपने साहस को दिखाता आया है। और सबसे ताज़ा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय वायुसेना ने अपने रफाल की ताकत से, ब्रह्मोस की ताकत से, तमाम अलग अलग वेपन सिस्टम्स के साथ आतंक के ठिकानों को पाकिस्तान में तबाह किया, और उसके बाद जब ड्रोन से हमले किए गए पाकिस्तान की तरफ से, तो किस तरह से एक बड़ा एक्शन हुआ। भारतीय वायुसेना ने तमाम असेट्स पाकिस्तान के भीतर तबाह किए, उनके एयर बेसिस में क्रेटर्स हुए, और यही रफाल, यही भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स वहां पर डिप्लॉय किए गए। तो भारतीय वायुसेना के बारे में जानने यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह से भारतीय वायुसेना लगातार शौर्य के साथ, साहस के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रही है, और कैसे आधुनिकीकरण के साथ आगे बढ़ रही है। और जब हम रफाल की बात करते हैं, तो मल्टी रोल फाइटर प्रोग्राम के तहत अब 114 नए रफाल भारत में आने हैं, जिसको लेकर बातचीत शुरू हो गई है। जल्द इस पर समझौता पूरा हो सकता है, डील हो सकती है, और आने वाले कुछ सालों में नए रफाल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकते हैं। तो रफाल जो सबसे नए सदस्य हैं भारतीय वायुसेना के बेड़े के, उनके फाइटर फ्लीट के, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। रफाल के साथ भारत में बनने वाला तेजस भी है और जैगुआर भी है, जो लगभग 4 दशक से ज़्यादा से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना हुआ है। तो हर कोई यहाँ पर भारतीय वायुसेना के इन जो स्वॉर्ड्स कहा जाता है, जो भारतीय वायुसेना की फायर पावर की ताकत है, उसको देखने आ रहा है।
3: जब भी देश को जरूरत पड़ी, आसमान का सीना चीर कर ये वायुवीर आए और शत्रु को उनकी हद दिखा दी। ऐसा स्वर्णिम इतिहास है हमारी वायुसेना का, लेकिन इतिहास जितना सुनहरा, भविष्य भी उतना ही उज्जवल, क्योंकि अब इंडियन एयरफोर्स हर गुजरते दिन के साथ खुद को भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है, और इसकी झलक वायुसेना दिवस के मौके पर हिंडन एयरबेस पर भी नजर आने वाली है।
1: एक गौरवशाली इतिहास के साथ भारतीय वायुसेना खुद को भविष्य की लड़ाइयों और चुनौतियों के लिए भी तैयार कर रही है, और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्टैटिक डिस्प्ले है, उसमें ये शॉर्ट रेंज लॉयटरिंग म्यूनिशंस भी रखे गए हैं। ये जो भारत में बनाए गए हैं, भारत की लड़ाई, भारत की ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज किए गए हैं, और ये 14,400 फीट की ऊँचाई तक इनका ऑल्टीट्यूड है, यानी किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी के साथ ये किसी भी तरह के क्विक डिप्लॉयमेंट और लॉन्च के लिए तैनात हो सकते हैं। ऑटोनॉमस टारगेटिंग, यानी खुद ब खुद ये कामिकाजी ड्रोन्स की तर्ज पर किसी भी टारगेट को निशाना बना सकते हैं। ऑटोनॉमस टारगेटिंग, लो ऑपरेशनल फुटप्रिंट, यानी कि कम से कम जो मानव के यहां पर इंटरफेरेंस के साथ के अलावा ये अपने आप काम कर सकते हैं, और इसी तरह के तमाम ड्रोन्स, अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं। तो कामिकाजी ड्रोन्स, जो शॉर्ट रेंज लॉयटरिंग म्यूनिशन है, जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, भारत में बनाए गए, खासतौर पर जो इंडिजिनस होती भारतीय वायुसेना है, उसका भी एक नमूना है, और किस तरह से अपनी काबिलियत को, अपने प्रिसिशन को बढ़ाया जाए, जहाँ पर फाइटर जेट्स नहीं है वहाँ पर किस तरह से इन ड्रोन्स के जरिए एक दुश्मन के ठिकाने को तबाह किया जा सकता है, वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो अपने भविष्य की चुनौतियों के लिए भी भारतीय वायुसेना खुद को तैयार कर रही है, और 94 साल के इस गौरवशाली इतिहास में, इस यात्रा में किस तरह से आगे के लिए, चुनौतियों के लिए, लड़ाइयों के लिए तैयारी की जा रही है, उसे भी यहां पर दिखाया गया है। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ शिवानी शर्मा, हिंडन एयरबेस।
3: तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: चार साल में पहली बार आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट, 5.25 से 5.50 किया। होम और कार लोन होंगे महंगे, बढ़ेगी आपकी ईएमआई। पीएम मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण।

0: पांच मिनट में बच्चे अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक सेवा के 25 साल हुए पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण। वडनगर से वाराणसी तक बीजेपी के खास आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर की गई महाआरती, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई, पूरी बीच में बनाई 25 फीट लंबी सैंड आर्ट। केदारनाथ में खराब मौसम के बीच एयर एम्बुलेंस बनी संजीवनी, 50 से ज्यादा यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट। नवरात्र की तैयारियों के बीच अमरावती के अंबा देवी और एकवीरा माता मंदिर में कारीगर देवी के आभूषणों और चांदी की पूजा सामग्री को चमकाने में जुटे। अमरावती में सजे नवरात्र के बाजार, कोलकाता की देवी प्रतिमाओं से लेकर गुजरात के गरबा ड्रेस तक बने आकर्षण का केंद्र। विजयदशमी से पहले प्रयागराज की सड़कों पर निकली रावण की भव्य शोभा यात्रा, निराले अंदाज में रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज। प्रयागराज के ऐतिहासिक पजावर रामलीला के मुकुट पूजन, मुकुट की उतारी गई आरती। झांसी की हुनरमंद बेटियां महिला सशक्तिकरण की बनी मिसाल, पढ़ाई के साथ साथ बना रही मां दुर्गा समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं। रायपुर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां तेज, मां की प्रतिमा बनाने में जुटे कारीगर।

0: उत्तरकाशी में सीएम धामी ने काशी विश्वनाथ श्री शक्ति माता मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। पुरी में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, भगवान जगन्नाथ की उतारे गए मंगला आरती। एलजीबी के सक्सेना ने लद्दाख पुलिस कर्मियों को विदाई और पासिंग आउट परेड में शिरकत की, लद्दाख को मिले 114 नए एसपीओस। भदोही कारपेट एक्सपो में अनोखा कालीन पर उकेरी अमिताभ बच्चन की तीन पीढ़ियां। कालीन में महान कवि हरिवंश राय बच्चन, अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की तस्वीर बनाई गई।
1: गुवाहाटी पहुंची एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता लवलीना बोरगोहन, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। भुवनेश्वर में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास और शिलानंद लाकड़ा का जोरदार स्वागत, लोगों ने फूलों की माला पहनाकर दी जीत की बधाई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सल हिंसा के पीड़ितों के लिए मेगा कैंप का आयोजन, पीड़ितों को मुफ्त में दी गई है कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण। असम के चूराचंदपुर में चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच। कोहिमा में कमजोर परिवारों के लिए अच्छी पहल, एनएसआरएलएम और बीआरएसी इंटरनेशनल ने 4000 बेहद कमजोर परिवारों की मदद के लिए किया एमओयू पर साइन।
0: करण जौहर और अभिषेक वर्मन ने अपनी नई फिल्म गदाधारी भीम का किया ऐलान, जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। कॉफी विद करण के नए सीजन में आलिया भट्ट और उनके बहन शाहीन भट्ट नजर आएंगी, बहनों की बॉन्डिंग पर होगी चर्चा। हर माधवन दुबई में नए बिजनेस रियलिटी शो द गेम चेंजर्स के करेंगे मेजबानी, जल्द शुरू होगा ये शो। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग लाइव और मंदाडी समेत 8 नई फिल्में और सीरीज इस महीने रिलीज होंगी, दर्शकों को भरपूर मनोरंजन का मिलने वाला है डोज़।

0: एक्ट्रेस जानवी कपूर ने शिखर पहाड़िया से किया प्यार का इजहार, फैंस दे रहे शादी करने की सलाह।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है,
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: पीएम मोदी के लोकसभा के 25 साल पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना।
0: देश भर में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं।
2: भदोही के कारपेट एक्सपो में खास कालीन बना आकर्षण का केंद्र, कालीन पर उकेरी गई अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियां।
0: जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की गर्जना जारी, अमेरिका फ्रांस जर्मनी सहित कई देश ले रहे हैं इसमें हिस्सा।
2: लियोनेल मेसी ने जीत के साथ ली इंटरनेशनल फुटबॉल से विदाई, बेनिन के खिलाफ अपने आखिरी मैच को गोल और असिस्ट के साथ बनाया यादगार।

तो चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। शक्ति की उपासना के महापर्व की शुरुआत होने वाली है, माँ पधारने वाली है। 3 दिन बाद शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है, लिहाजा शहर शहर माँ के स्वागत की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। पूजा पंडालों से लेकर बाजार तक हर जगह नवरात्र की रौनक जो है अभी से ही नजर आने वाली है, क्योंकि नवरात्रि में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। कहीं दुर्गा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं माँ की प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जा रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि माँ के दरबार को भव्य और दिव्य रूप दिया जा सके। झांसी की 4 बहनें महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। पढ़ाई के साथ ये बहनें अपने परिवार की करीब 15 साल पुरानी मूर्ति निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। वहीं प्रयागराज में सालों पुरानी परंपरा के मुताबिक विधि विधान से मुकुट पूजन किया गया। यहाँ नवरात्र के साथ ही ऐतिहासिक दशहरा और रामलीला उत्सव की शुरुआत हो जाती है। तो बात अमरावती की करें तो अमरावती में माँ के आभूषणों की साफ सफाई जो है वो की जा रही है। मंदिरों से लेकर बाजारों तक रौनक जो है वो देखते ही बन रही है। माँ के श्रृंगार के सामान से लेकर उनकी चुनरी, पूजा सामग्री और आभूषणों तक की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ी हुई है। युवाओं और महिलाओं में नवरात्र के पारंपरिक परिधानों को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। वहीं गुजरात से लेकर मुंबई तक महिलाएं पारंपरिक चनिया चोली और गरबा परिधानों को खरीदने भी लगातार पहुंच रही हैं, ताकि धूमधाम से माँ की उपासना पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जा सके। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नवरात्र में भले ही थोड़ा सा समय अभी बाकी है, लेकिन चाहे दुकानें हो या फिर गलियां जहां पे माँ की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, उन्हें अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। रौनक जो है वो देखते ही बन रही है, क्योंकि देखिए मौका ही ऐसा है, माँ पधारने वाली है और उसे लेकर के श्रद्धालुओं में जो भक्त है उनमें काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि बाजारों में भी श्रद्धालुओं की, लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है, क्योंकि हर कोई नवरात्रि से पहले शॉपिंग करने में भी जुटा हुआ है।

0: माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। हर तरफ माँ के आगमन की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। माँ की मूर्ति का निर्माण और श्रृंगार कार्य अंतिम चरण में है। वहीं माँ का दरबार सजाने सवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है, जहाँ भारद्वाज पार्क में कोलकाता से आए मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सभी मूर्तियां गंगा की शुद्ध मिट्टी से बनाई जा रही हैं, जिन्हें प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल रंगों से इन्हें सजाया जा रहा है।
1: ये इको फ्रेंडली कलर है, ये कोई मूर्तियों में हाफ फूल नहीं है। मूर्तियां गंगा जी की मिट्टियों से बनी है और नवरात्र है तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रयागराज के जितने भी पंडाल की मूर्तियां हैं हमें बनाने को मिल रही है, उसका डिजाइन करने उसको कलर करने की प्रतिमाओं को मिल रहा है। पंडाल में हमने क्या नाम है कलर किए हैं, डिजाइन बनाई है, मूर्ति को सजाया है, साड़ी से लेकर बॉर्डर हर एक एक चीज, मतलब माता रानी को एकदम अच्छे से सजा दिया है कि वो बहुत सुंदर लगती है देखने के, मन ही नहीं करता कि इनको विसर्जन किया जाए।
0: कहीं माँ दुर्गा की आंखों में भाव उकेरे जा रहे हैं तो कहीं उनके मुकुट और आभूषणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रंगों की अंतिम परत के साथ प्रतिमाओं में मानव जीवन का संचार हो रहा है। यहाँ 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। साथ भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी गंगा की मिट्टी से ही बनाई जा रही है।
2: पूरे देश में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त भरद्वाज पार्क में हैं, जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो बनाने का काम है वो चल रहा है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं और इन मूर्तियों को बनाया और संवारा जा रहा है। ये मूर्तियां 3 फीट से लेकर के 10 फीट तक हैं और तमाम ये बड़ी छोटी मूर्तियां यहां बनाई जाती हैं। तमाम कलाकार यहां पर इन रंग भरने का इन मूर्तियों में काम कर रहे हैं।
0: नवरात्र शुरू होते ही ये प्रतिमाएं शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में स्थापित की जाएगी। एक ओर जहां आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं आकार ले रही है, वहीं दूसरी ओर मां जगदम्बे को ही समर्पित भव्य पंडालों का निर्माण भी जोरों पर है। ये भव्य तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की है, जहां भव्य पंडालों का बनाने का काम शुरू हो गया है। पुरुलिया में प्रसिद्ध भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी हर साल खास थीम पर पंडाल बनाती है। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए खास थीम पाषाणे प्राण यानी पत्थरों में प्राण पर पंडाल निर्माण किया गया है। इस थीम के जरिए प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक को सामने लाने की कोशिश की गई है, यानी शानदार थीम और पारंपरिक भव्यता को किस तरीके से दर्शाया जाए इसको लेकर कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई व्यस्त है। पूजा आयोजकों और कलाकारों ने पुराने समय के उस धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को जीवंत करने का प्रयास किया है, जब पहाड़ों और गुफाओं के बीच मंदिरों में देवी देवताओं की आराधना की जाती थी।
3: हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा और हर साल के तरह इस साल भी भीड़ उमड़ पड़ेगा इधर।
0: यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा है, उनके दाईं ओर भगवान शिव और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। पंडाल के प्रत्येक पिलर और दीवार पर भारतीय संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं की विभिन्न आकृतियाँ पत्थर की नक्काशी की शैली में उकेरी गई है। ऐसी गुफा मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होगी और यही माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ पुरुलिया से सत्यजीत बैनर्जी, गुड न्यूज टुडे।
4: देखिए, माँ के दरबार को सजाने सवारने की परंपरा अपने आप में काफी खास है। अमरावती में नवरात्र से पहले देवी के सोने चांदी के आभूषणों और पूजा सामग्री को चमकाने की जिम्मेदारी समाज निभाता है। खास बात यह है कि ये सेवा पिछले 60 साल से लगातार चली आ रही है। विदर्भ की कुल स्वामिनी माँ अम्बा और एकविरा माता के मंदिर में भी शारदीय नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई। यहाँ मंदिर के पुजारियों की मौजूदगी में देवी की उत्सव मूर्ति, पादुका, गदा, तलवार, चौकी, थाल, दीपक, धूप पात्र, पालना, कलश, समय, साथ ही झूमर और दूसरे आभूषणों की विशेष सफाई की गई। अब जब नवरात्रि में मां का दरबार सजेगा तो इन चमकते आभूषणों के साथ मंदिर की भव्यता भी देखते ही बनेगी। तो देखिए, बाजारों में भी नवरात्र की रंगत जो है वो देखते ही बन रही है। गरबा रास के लिए खास पारंपरिक ड्रेस की अलग अलग वैरायटी दुकानों पर पहुंच चुकी है। अमरावती में गुजरात के भावनगर से आई इन ड्रेस को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। उधर मुंबई के बाजार भी नवरात्रि के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से डांडिया को लेकर, गरबा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और लोग जो है वो दुकानों पर लगातार खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। दुकानों पर एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग और स्टाइलिश ड्रेस जो है वो उपलब्ध है। हर बार की तरह चनिया चोली की खास डिमांड जो है वो नजर आ रही है। इस बार जो चनिया चोली डिमांडिंग और ट्रेंडिंग में है उसमें बैकलेस, लटकन, सिंगल स्ट्रिप, मल्टी रोल राजस्थानी लुक शामिल है। तो वहीं पुरुषों के लिए केडिया धोती, यूनिसेक्स धोती, नवरात्रि स्पेशल कुर्ती भी इसमें शामिल है। गरबा नाइट के लिए अपने लुक को खास बनाने की चाहत में लोग जम कर खरीदारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर नवरात्रि की जो रौनक है वो दुकानों में अभी से ही देखने को मिल रही है।
5: तो राजस्थान के पाली में भी नवरात्र की रौनक छाने लगी है। मां को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले गरबा रास को लेकर जोरदार तैयारी चल रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर लड़कियां और महिलाएं जी जान से गरबा सीखने में जुटी हैं। ट्रेडिशनल से लेकर ट्रेंडिंग गरबा स्टेप सीख रही हैं। गरबा रास मुख्य रूप से शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माँ की आराधना, भक्ति और जीवन के उत्सव को मनाने के लिए किया जाता है। मूल रूप से गुजरात से शुरू हुआ ये पारंपरिक लोक नृत्य अब पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है।
6: गरबा में बेसिकली तो दो ताली, तीन ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं। बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन जी के हिसाब से अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डाल दे तो उनको करने में भी मजा आता है और उस तरीके से करते तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं उसकी।
4: तो देखिए, दशहरा का त्यौहार आते ही देश भर में रामलीला और रावण दहन की तैयारियां जो है वो तेज हो जाती हैं। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में विजयदशमी से जुड़े आयोजन का रंग थोड़ा सा अलग नजर आता है। यहाँ दशहरा उत्सव की शुरुआत ही लंकाधिपति रावण के सम्मान और उनकी भव्य सवारी से होती है। सड़कों पर निकलने वाली इस शोभा यात्रा में परंपरा, भव्यता और लोक संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। रावण के विशाल स्वरूप के साथ रामायण के किरदार भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं और बैंड बाजों और ढोल की गूंज के बीच पूरा शहर उत्सव के रंग में तब्दील हो जाता है।

0: दशानन की वो हंसी जिसकी गूंज से दशो दिशाएं कांप उठे, सिर पर मुकुट, हाथ में शस्त्र और चेहरे पर लंकापति वाला रौब। जब रावण का रथ सड़कों पर निकलता है तो निगाहें खुद ब खुद उसी पर ठहर जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में कुछ ऐसा ही भव्य नजारा देखने को मिला, जहां लंकापति रावण की शोभा यात्रा निकली।
1: रावण की पत्नी मंदोदरी बनी हूँ आज, और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ भ्रमण के लिए निकले हैं। हमारे परिवार मेघनाथ, कुंभकर्ण और विभीषण और उनके दास लोग हैं हम लोग के साथ, और हम लोग अपने नाना के नलियाल आए हुए हैं।
0: रावण की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सड़कों पर अपार जनसैलाब उमड़ा। ऐसे में रावण के विशाल स्वरूप ने पूरे माहौल को रामायण काल की यादों से भर दिया।
2: में रावण की भव्यता, उनके आकर्षण, उनका व्यक्तित्व, उनके ज्ञान और उनके दर्शन को दर्शाते हुए नटवारा मेला कमेटी उनकी शोभा यात्रा का शुभारम्भ करती है।
0: बैंड बाजों की धुन और जय घोष के बीच भव्य शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में लंकापति रावण का विशाल स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहा, तो वहीं राम और लक्ष्मण के रूप में सजे कलाकार भी लोगों का ध्यान खींचते नजर आए।
1: पूरे वर्ष इंतजार रहता है अपनी संस्कृति को एक बार फिर से देखने का, और इतना उत्सव, सबका खुशी, सबकी व्यवस्था और इतना इंतजाम जो लोगों के द्वारा होता है, सबका उल्लास है जो अपनी संस्कृति को लेकर बनाए रखने को, ये सब बहुत ही प्रेरणादायक होता है।
0: शोभा यात्रा के साथ बैंड की शानदार परफॉर्मेंस ने माहौल में और रंग भर दिया। कहीं ढोल की थाप गूंजती दिखी तो कहीं अलग अलग तरह के ढोल की आवाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रयागराज में दशहरा उत्सव की शुरुआत भी कुछ अलग अंदाज में होती है। यहां तीनों लोकों के विजेता कहे जाने वाले लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज होता है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जब लंकापति रावण अपने पूरे शाही अंदाज में शहर की सड़कों पर निकलता है।
3: हजारों वर्षों का पुराना इतिहास है जी, रावण की शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। रावण का ननिहाल महर्षि भरद्वाज मुनि क्षेत्र में, महर्षि भरद्वाज मुनि नाना लगते थे, इसलिए हम लोग सम्मान देने के नाते रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं।
0: रावण की ये भव्य सवारी हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज की सड़कों पर अपनी अलग छाप छोड़ गई, मगर इस भव्यता के पीछे एक संदेश भी छिपा है। अहंकार कितना ही बड़ा क्यों न हो, विजय हमेशा सत्य की ही होती है। इस संदेश के साथ प्रयागराज में दशहरे की तैयारियां अपने पूरे रंग में नजर आ रही हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: वहीं कोटा में इस बार विजयदशमी यानी कि दशहरा बेहद खास और रोमांचक होने जा रहा है। दशहरे पर यहां 105 फीट से ज्यादा ऊंचा रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र रहेगा। खास बात यह होगी कि ये रावण सिर्फ खड़ा नहीं रहेगा बल्कि 360 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमाता नजर आएगा। इसके साथ ही रावण हाथ में तलवार चलाएगा, मूंछें हिलाएगा और आंखें भी झपकाएगा। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले करीब 70-70 फीट ऊंचे होंगे। तीनों पुतलों के निर्माण का काम बड़े ही स्तर पर चल रहा है।

0: दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की आस्था और भक्ति की तस्वीर। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने मंगल मूर्ति श्री गणेश का आशीष लेकर दिन की शुरुआत की। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक किया, साथ ही में भगवान के सामने पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में जाके भगवान श्री गणेश के दर्शन किए और उनके सामने शीश नवाया। उन्होंने मंदिर परिसर के अलग अलग स्थानों पर भी प्रार्थना की और प्रसाद ग्रहण किया। राजधानी का ये श्री विनायक मंदिर सरोजनी नगर में स्थित है। यहाँ श्री गणेश के साथ ही भगवान शिव, हनुमान जी और नवग्रह की मूर्तियां भी स्थापित है। खास बात यह है कि मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सरोजनी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम से पीएम तक सत्ता में रहते हुए सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया, आशीर्वाद लिया। पीएम ने शिवलिंग की पूजा की, जल चढ़ाया और नारियल पुष्प अर्पित किए। आज पीएम मोदी कई और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। चलिए अब आपको गुजरात के वडनगर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सेवा संकल्प अभियान के तहत निकाली गई वाराणसी वडनगर सेवा यात्रा का भव्य समापन हुआ। वाराणसी से शुरू हुई इस यात्रा में शामिल 500 युवा बाइकर्स वडनगर पहुंचे, जहां उनके पहुंचने पर उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। 6 अक्टूबर की शाम वडनगर के ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में वाराणसी से पहुंचे सभी 500 बाइकर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूरा परिसर शिव भजनों और भक्ति संगीत से गूंज उठा।

और अब बात केंद्रीय धाम में नए एंट्री प्लान की। उत्तराखंड के नैनीताल में मौजूद केंद्रीय धाम देश दुनिया के खास धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहाँ बाबा नीव करौली महाराज के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और देखिए खास मौकों और छुट्टियों के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बीते दिनों में भी धाम में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ऐसे में मंदिर परिसर में भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए भी खास तैयारी की जा रही है।

0: ये आस्था का वो बड़ा धाम है जहां हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। बाबा नीम करौली के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बीते दिनों तो कैची धाम में आस्था का ऐसा समंदर उमड़ा कि सड़कों से लेकर मंदिर परिसर तक हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए। बढ़ती आस्था के साथ बढ़ती भीड़ ने प्रशासन के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी। ऐसे में अब प्रशासन ने व्यवस्था को और बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आला अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।
1: जैसे आपने देखा पिछले वीकेंड में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि वहाँ पे श्रद्धालु का है, उनकी संख्या में देखी गई। इनफैक्ट जो डिटेल्स पुलिस ने मुझे बताए हैं 50,000 को भी एक दिन में वो क्रॉस कर गया, और उस कैपेसिटी के लिए जहाँ पे जो मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं बना है और अन्य भी नहीं बना है। तो आज सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक थी, इसमें पुलिस प्रशासन आरटीओ के अलावा लोकल्स के भी जितने स्टेक होल्डर्स थे उसमें मीडिया खुद थी, बाहर के लोग थे, होटल हमारा जो एसोसिएशन है उनके लोग थे, केमो के थे, टैक्सी यूनियंस थी।
0: यानी आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और व्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर रहेगा ताकि बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों को सुविधाजनक माहौल मिल सके।
1: आप सभी से बातचीत करने पे ये कंसेंसस बना है कि एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को यही नहीं पता कि कितने लोग आएंगे या कितने आ सकते हैं तो आगे कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। तो एक तो इसमें डीएम और एसएसपी जॉइंटली एक रिकमेंडेशन अपनी शासन को देंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
0: इसी के तहत मंदिर परिसर में भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए भी खास तैयारी की जा रही है।
1: तो ये भी फैसला हुआ है कि जो मंदिर में एंट्री और एग्जिट है इसको सेपरेट ही रखा जाए, क्योंकि जहाँ पे दो लोग ऐसे क्लैश करते हैं, दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे खतरे की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
0: सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं, कैची धाम तक पहुंचने वाले रास्तों पर भी व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों की आवाजाही भी सुचारू बनी रहे।
1: हमारी जो हाईवे है वो बंद नहीं होनी चाहिए। जो हमारे लोग लोकल सलमोड़ा जा रहे हैं, बागेश्वर जा रहे हैं, पिथौरागढ़ जा रहे हैं, उनका मूवमेंट आसानी से होना चाहिए। इन सबको लेके ये सहमति बनी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
0: खास मौकों पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए पहले से तैयारियां करने पर जोर दिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को मौके पर किसी तरह की असुविधा ना हो।
1: हर वीकेंड से पहले या जब भी कोई विशेष पर्व हो तो बिना किसी के बोले ही ऑटोमेटिकली एसडीएम सीओ एआरटीओ अनिवार्य रूप से बैठक करेंगे और उसमें जो जो इंतजाम होने हैं विशेषकर शटल के, क्योंकि जब भी भीड़ ज्यादा होती है तो हम भीमताल से और अन्य जगहों से शटल चलाते हैं, तो केमो भी यहाँ पे मौजूद थी, आरटीओ भी थे, वो एक तरह से परमानेंट व्यवस्था रहेगी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब विशेष पर्व हो तब उसे करते हैं, लेकिन आजकल हमने देखा है कि बहुत छोटे नोटिस पे भी ज्यादा लोग आ जा रहे हैं।
0: आस्था के इस धाम में आने वाले श्रद्धालुओं से भी प्रशासन ने सहयोग की अपील की है, क्योंकि बाबा के दरबार में आने का मकसद सिर्फ पहुंचना नहीं, श्रद्धा के साथ दर्शन करना और उस पवित्र माहौल को बनाए रखना भी है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे केदारनाथ में रिकॉर्ड दर्श।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: 4 साल में पहली बार RBI ने बढ़ाया रेपो रेट 5.25 से 5.50 किया। होम और कार लोन होंगे महंगे, बढ़ेगी आपकी EMI।
8: पीएम मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण।
7: देशभर में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, गरबा खेलने की भी की जा रही है प्रैक्टिस।
8: भदोही के कारपेट एक्सपो में खास कालीन बना आकर्षण का केंद्र, कालीन पर उकेरी गई अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियां, बुनकरों ने 6 महीने की मेहनत से किया तैयार।
7: जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की गर्जना जारी, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई देश ले रहे हैं इसमें हिस्सा, 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक मौसम ने करवट ले ली है। कई पहाड़ों पर मौसम सुहाना हुआ तो कहीं बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। केदारनाथ में मौसम साफ और खुशनुमा होने के साथ ही श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ भी है जो देखने को मिल रही है। वहीं हिमाचल के धर्मशाला में बारिश के बाद मौसम ने ठंडक बढ़ा दी है और आगे बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में पहाड़ों पर पहुंचे सैलानी मौसम का जमकर लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उधर बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो वहां पर भी मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है, लेकिन आस्था का उत्साह बरकरार है। यहां भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है।
1: तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई है। केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। केदारनाथ धाम में अब तक 16.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में मौसम की करवट लेने के बाद भले ही सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन भक्तों का गर्मजोशी से धाम आना जारी है।
2: हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रही है पूरी केदार घाटी। बाबा केदार के दरबार में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर रास्ता श्रद्धालुओं से भरा नजर आ रहा है। कड़ी चढ़ाई, बदलता मौसम, लंबा सफर और तमाम चुनौतियां, लेकिन महादेव के भक्तों का उत्साह हर मुश्किल पर भारी पड़ रहा है। हर साल केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक द्वितीय चरण की केदार यात्रा में 15 सितंबर के बाद अब तक 1.5 लाख यात्री धाम पहुंचे हैं। हर दिन 15,000 से अधिक भक्त दर्शन कर रहे हैं। यात्रा शुरू होने से अब तक करीब 16,50,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
3: बीते 20 दिनों में 1.5 लाख भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि अभी तक कुल 16.5 लाख से अधिक भक्त रिकॉर्ड संख्या में बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अभी 1 माह की यात्रा शेष बची हुई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यात्रा के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और इस बार की केदारनाथ यात्रा नया कीर्तिमान रचेगी।
2: भारी भीड़ के चलते कई जगह लंबी कतार और जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, लेकिन बाबा के दर्शन की आस में भक्त पूरे धैर्य और उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन यात्रा को व्यवस्थित रखने में जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं को बाबा केदार के सुगम दर्शन हो, इसका इंतजाम किया गया है।
4: श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में 2026 में अभी तक करीब 16,54,000 लोग यहाँ पे सुगम दर्शन कर चुके हैं। मानसून के खत्म होने के बाद से सितंबर माह के अंत से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। उसके दृष्टिगत जो हमारा पुलिस का व्यवस्थापन है उसको भी बढ़ाया गया है, साथ ही साथ जो हमारी प्रशासन की तैयारियां और प्रशासन की विभिन्न टीमें हैं उनको भी तैनात किया गया है, ताकि इस बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा कराई जा सके।
2: श्रद्धालुओं का कहना है कि केदारनाथ पहुंचते ही सारी थकान और परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंदिर परिसर में गूंजता हर हर महादेव का जयघोष, बर्फ से ढकी चोटियां और शिव भक्ति में डूबा वातावरण हर किसी को एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो भगवान बद्री विशाल का ये धाम भी श्रद्धालुओं से गुलजार है। कपाट खुलने के बाद से अब तक लाखों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि मौसम में आए बदलाव ने अब तीर्थ यात्रियों की चुनौतियां भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार 11 अक्टूबर तक पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।
5: बद्रीनाथ धाम में जहाँ इस समय लगातार भीड़ देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं से, बद्रीनाथ धाम खचाखच दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब मौसम के करवट बदलने के साथ ही जबरदस्त ठंड का एहसास देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से मौसम बदल रहा है तो ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऐसे में हर कोई उत्साहित है, पहली बर्फ शायद क्या पता इस बार देखने को मिल जाए।
2: ऐसे में यात्रा सीजन के पीक दौर में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने चार धाम यात्रियों को यात्रा मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
0: पहाड़ों पर तेजी से मौसम करवट बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज जो है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। आसमान पर बादलों का डेरा है और कई जगहों पर ठंडी हवाओं के साथ ही झमाझम बारिश भी शुरू हो गई है।
2: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते पहाड़ कूल कूल हो गए। आसमान पर बादल छाए, ठंडी हवाओं ने दस्तक दी और फिर शुरू हुई झमाझम बारिश। धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, यानी मौसम ने पल भर में गर्मी से राहत का ऐसा इंतजाम किया कि पहाड़ों की फिजा ही बदल गई। इस बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए धर्मशाला और मैकलोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंडी हवाओं, बारिश और पहाड़ों की हसीन फिजाओं ने सैलानियों का मजा दो गुना कर दिया है। बारिश और ओलावृष्टि के बीच भी त्रिउंड ट्रैक को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों की खूबसूरती और बदलते मौसम का मजा लेने त्रिउंड का रुख कर रहे हैं। असल में मौसम के इस बदलते मिजाज का अंदेशा मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था। विभाग ने आने वाले दिनों में भी पहाड़ों पर मौसम के ऐसे ही तेवर बनने के अनुमान जताए हैं।
6: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हमारे जो स्पेशली क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगभग 9 अक्टूबर तक प्रदेश के जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मध्यम बारिश का दौर है वो देखने को मिलेगा।
2: इसी के साथ पहाड़ों पर मौसम का अगला रंग बर्फबारी का हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरने के साथ बर्फ गिरने की संभावना है। इसी को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है।
6: प्रभाव से जो हमारे जो क्षेत्र है जिसमें कांगड़ा है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हाँ संभावना है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। देखिए अलर्ट मुख्यतः जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और शिमला, यहाँ पे आफ्टरनून और लेट इवनिंग में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया गया आगामी 4 दिनों के लिए येलो कैटेगरी में।
2: मौसम के बदले मिजाज ने पहाड़ों की फिजा के साथ साथ पर्यटन का रंग भी बदल दिया है। अब सबकी नजरें मौसम के अगले करवट पर है, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम अपने साथ खूबसूरती के नए रंग भी लेकर आता है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में मौजूद एक पान की दुकान इन दिनों चर्चा में है। ये कोई आम पान की दुकान नहीं है, बल्कि करीब सालों साल पुरानी पांडे पान दुकान है। इस दुकान की खासियत है कि यहां मिलने वाले करीब 150 तरह के पान इस दुकान के पान को ट्रंप से लेकर ओबामा तक चख चुके हैं। तो आखिर क्या है इस पान की दुकान की खासियत, देखिए।
7: अकबर इलाहाबादी का मशहूर शेर है कि लगावट की अदा से उनका कहना पान हाजिर है, कयामत है, सितम है, दिल फिदा है, जान हाजिर है। समझ लीजिए इस दुकान की बरकत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ के पान केवल महकते नहीं हैं, मुंह में घुलते भी हैं और हमेशा के लिए जहन में उतरते भी हैं।
8: दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में है हम और मेरे पीछे आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई पड़ रहा है। आज आपको एक ऐसी पान की दुकान में लेकर जाऊंगा जो इस राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब है। खास बात क्या है कि आज़ादी के बाद से लगातार इस पान की दुकान से राष्ट्रपति भवन में पान जाते रहे हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि देश के हर राष्ट्रपति ने इस दुकान का पान खाया है।
7: इस दुकान में केवल पान का हर पत्ता ही खास नहीं है, बल्कि इस दुकान का पता भी खास है। यहाँ दीवारों पर देश के कई राष्ट्रपतियों की तस्वीरें हैं और दावा तो यहाँ तक है कि बराक ओबामा और ट्रंप जैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भी यहाँ का पान चखा है।
8: देवी प्रसाद पांडे जी मेरे साथ में हैं, इस दुकान की तीसरी पीढ़ी है ये। बाबू जी, जब से शुरू हुआ था तब से आज तक बदलाव क्या आया, पहले ये बताइए मुझे।
9: बदलाव ये आया कि तम्बाकू खाने वालों की बहुत कमी हो गई। अब जो यंग जनरेशन है वो मीठा और सादा पान पे ही ध्यान देते हैं, तो तम्बाकू ना के बराबर रह गए। जो पुराने लोग हैं वही खाते हैं, बाकी हम नए जो बच्चे हैं, मुँह लाल ना हो, ये ना हो, इसका हमने खास ध्यान रखा है। मीठा पान अब हमारा 20 खाने मुँह लाल नहीं होगा।
7: इस दुकान की कहानी आज की नहीं है, साल 1943 में शिवनारायण पांडे ने महज 8 पैसे से इस कारोबार की शुरुआत की थी और आज यही दुकान दिल्ली के सबसे चर्चित पान ठिकानों में शामिल है। साल 1948 से राष्ट्रपति भवन को यहां से पान की सप्लाई शुरू हुई जो बदस्तूर जारी है।
9: हमारे पिताजी ने शुरुआत की और 1943 में, उसके बाद देश आजाद हुआ तो राजेंद्र प्रसाद जी वगैरह, पहले तो कॉमन था नेताओं से मिलना, तो पिताजी के उनसे संपर्क रहे, तो उन्होंने एक परंपरा चलाई कि भोजन के पान बाद पान अनिवार्य है, तो जो भी प्रेजेंट हाउस में डिनर या लंच होता है तो उसके बाद पान मस्ट है, पान जरूर जाएगा, तो ये पिताजी की देन है। उसके बाद हम इसी लाइन में लगे रहे, फिर जो सेवा का मौका हमें मिला हम करते रहे।
7: पांडे पान की पहुंच सिर्फ हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन तक नहीं रही, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आए थे तो उन्हें भी पांडे पान का खास पान खिलाया गया था।
8: देश में तो ठीक था, मैं देख रहा हूँ कि बराक ओबामा का नाम है, ट्रंप का नाम है और बहुत सारे जो बाहरी भी नेता रहे उनको भी आपका पान पहुंचा है, कौन कौन से लोग रहे हैं?
9: देखिए, जो भी प्रेजिडेंट बाहर का प्रेजिडेंट हाउस में डिनर या लंच पे आया तो उसने पान खाया।
8: नहीं, एक बार खा लेना तो अलग बात है, कई लोगों ने दोबारा मंगवाया आपके ऑर्डर देके।
9: वो तो जिसको पसंद आया वो तो मंगवाता ही रहता है।
8: जैसे कौन कौन मंगवाया?
9: अब ये सब चीजें अलग, सॉरी।
8: वहाँ पे देखिए, आपकी एक दादाजी नाम नहीं बता रहे पर वहाँ लिखा हुआ है कि मेड इन इंडिया फॉर मिशेल एंड फैमिली। ये बराक ओबामा जी की पत्नी थी जो कि इस पान की फैन हो गई थी और उन्होंने अलग से ऑर्डर करवा के भी यहाँ से पान मंगवाए थे। ट्रंप साहब को आपका पान कब पहुँचा?
9: जब ट्रंप साहब आए थे फर्स्ट टाइम।
8: कौन सा पान उनके लिए आपने तैयार किया था?
9: वॉफल।
8: वॉफल पान?
9: वॉफल पान।
7: पांडे पान के पते पर पान की किस्मों की कोई कमी नहीं है, आपको यहाँ एक से बढ़कर एक फ्लेवर मिल जाएंगे, लेकिन जिस पान का किस्सा और स्वाद आपके मुंह में घुल जाएगा वो है माधुरी दीक्षित के नाम का स्पेशल पान।
9: देखिए, माधुरी जी के नाम से पान है वो तो एक डिफरेंट केस ही हो गया।
8: क्या क्या किस्सा है वो?
9: कि हुसैन साहब उनको खिलाते थे,
8: हुसैन साहब,
9: और बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे इनके नाम से पान लॉन्च करो, जो फार्मूला इन्हें पसंद है। तो हमने कहा ठीक है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पेंटिंग दी और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये पेंटिंग यहाँ लगाओ और माधुरी के नाम से, तो माधुरी का मेनू में नाम लिख दिया, मेनू में माधुरी का नाम लिखा लेकिन स्टिकर नहीं लगाया उस पर।
8: क्यों नहीं लगाया?
9: नहीं लगा, नाम का स्टिकर नहीं लगा। हमने और बटर स्कॉच वगैरह चॉकलेट वगैरह इनके स्टिकर लगाए हैं, किसी का नाम का स्टिकर नहीं।
8: और आप देखिए कि ये उस पेंटिंग की बात कर रहे हैं जो आप हनुमान जी देख रहे हैं, वो पेंटिंग एम एफ हुसैन जी ने खुद इन्हें गिफ्ट की थी, उसके नीचे आप हुसैन साहब का फोटो भी देख पा रहे हैं।
9: खास बात यह है कि जो पहाड़ उठाए हनुमान जी उस पे पान का पत्ता है।
8: ये हमने भी नोटिस किया
9: कि सजीवन बूटी पान का पत्ता ही था।
7: कहते हैं हिंदुस्तानी शहरों के तमाम किस्से पान की दुकानों के हवाले होते हैं, लेकिन दिल्ली के दिल में बसा पान का ये वो ठिकाना है जिसका ठिकाना न जाने कितनों के किस्सों के हिस्सों में शामिल है।
8: बड़ी बात ये है कि कभी भी आपको यहाँ पर कोई ऐसी चीज, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी दिखाई नहीं पड़ेगी कि कोई बड़ा एक्टर आया तो फोटो खिंचाई और टांग दी या सोशल मीडिया पे डाल दिया, कोई बड़ा क्रिकेटर आया तो फोटो खिंचाई डाल दी, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अपने पान को अहमियत देते हैं और कहते हैं जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक आप पहुंच गए हैं तो उसके बाद किसी और तक क्या पहुंचना है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
0: इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: और अब बात तरंग शक्ति युद्धाभ्यास की। जोधपुर का आसमान इन दिनों लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज रहा है। भारत की अगुवाई में वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2026 पूरी लय रफ्तार और सैन्य जज्बे के साथ जारी है। दुनिया के दिग्गज वायु सेनाओं के बीच सामरिक तालमेल और साझा युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया जा रहा है। जोधपुर एयरबेस पर अलग अलग देशों के अत्याधुनिक विमान अपनी ताकत, तकनीक और ऑपरेशनल क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर ये युद्धाभ्यास 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभ्यास में मेजबान भारत के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे मित्र राष्ट्रों की वायु सेनाएं अपने लड़ाकू विमानों और सैन्य कर्मियों के साथ सीधे भाग ले रही हैं, जबकि 30 से ज्यादा देश पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुए। फ्लाई दुबई फ्लाइट को क्रैश होने से बचाने वाले भारतीय पायलट स्मिथ मछार के सम्मान में इसराइल में होर्डिंग लगाए गए हैं। ये होर्डिंग इसराइल में हाईवे किनारे लगाए गए हैं, जिसपे हिंदी में धन्यवाद नायक लिखा हुआ है। इससे पहले मुंबई में इसराइल के कॉन्सुलेट जनरल ने फ्लाई दुबई के पायलट स्मिथ मछार को शहर में एक बिलबोर्ड लगाकर सम्मानित किया था, जिसपे लिखा गया था थैंक यू कैप्टन स्मिथ, इसराइलियों की जान बचाने के लिए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले स्मिथ मछार ने 175 यात्रियों की जान बचाई थी, प्लेन को हाईजैक होने से बचाया था, जिसके बाद चाहे ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू, सबने उनकी जमकर तारीफ की थी।
1: झारखंड के रामगढ़ में होमगार्ड की नौकरी के लिए युवाओं और महिलाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 284 पदों पर भर्ती होनी है और इसी सरकारी भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए एक डिफेंस एकेडमी ने 1600 मीटर दौड़ का प्रैक्टिस ट्रायल कराया। इस दौरान महिलाओं का जज्बा खासतौर पर देखने को मिला। कई महिलाएं साड़ी पहनकर ही मैदान में उतर गईं और पूरी ताकत के साथ दौड़ पूरी की। साड़ी में दौड़ना आसान नहीं था, लेकिन इन महिलाओं के हौसले के आगे मुश्किल भी छोटी पड़ गई।
16: उम्र का अपना ये करता कि मेरा उम्र हो गया तो इनसे सीखो।
0: सैन फ्रांसिस्को के येरबा बुएना गार्डन्स में इन दिनों घास पर आपस में जुड़े हाथों की स्केचिंग का लोगों का ध्यान जो है वो अपनी ओर खूब खींच रही है। दरअसल ये विशाल आर्ट दुनिया भर में मशहूर स्विट्जरलैंड आर्टिस्ट सेपे का प्रसिद्ध वैश्विक कला प्रोजेक्ट बियॉन्ड वॉल्स का हिस्सा है। इसमें दो विशाल हाथों को एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाया गया है जो एकजुटता और मानवीय जुड़ाव का प्रतीक है। ये कलाकृति पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है जिसे चाक और कोयले जैसे प्राकृतिक पिगमेंट से खास तौर पर बनाया गया है। सेपे का ये बियॉन्ड वॉल्स प्रोजेक्ट साल 2019 में पेरिस में आइफिल टावर के सामने शुरू हुआ था, जिसके बाद कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए सेपे अपने प्रोजेक्ट के साथ 23वें शहर सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके हैं। तो आपको यहां पर बता दें किस तरीके से प्रोजेक्ट बियॉन्ड वॉल्स के तहत ये जो विशाल कलाकृति है ये तैयार की गई है, और आपको बता दें कि मशहूर आर्टिस्ट सेपे ने इसे तैयार किया है जो कि ह्यूमैनिटी और एकजुटता को प्रदर्शित करता है।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
0: बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
16: बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: आसमान में बढ़ेगी वायु वीरों की ताकत, तेजस MK-1A फाइटर जेट को मिली नई रफ्तार, जी ने सितंबर में 4 इंजन भेजे। चार साल में पहली बार RBI ने बढ़ाया रेपो रेट, 5.25 से 5.50 किया, होम और कार लोन होंगे महंगे, बढ़ेगी EMI। मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो। देश भर में शक्ति उपासना की तैयारी तेज, दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, गरबा खेलने की भी प्रैक्टिस। भदोही के कारपेट एक्सपो में खास कालीन बना आकर्षण का केंद्र, कालीन पर उकेरी अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियां, बुनकरों ने 6 महीने की मेहनत से किया तैयार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: विजयदशमी से पहले प्रयागराज की सड़कों पर निकली रावण की भव्य शोभा यात्रा, निराले अंदाज में रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज। रावण की शोभा यात्रा में दिखे कई तरह के रावण, परंपरागत अंदाज में दिखी दशहरा की झलक। रावण की शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों की धूम पर जमकर नाचे लोग, शोभा यात्रा देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। सैकड़ों साल पुरानी है प्रयागराज में रावण की शोभा यात्रा की परंपरा, सज धज कर रावण शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। प्रयागराज में होती है रावण की पूजा, दशहरे पर कटरा रामलीला कमेटी नहीं करती रावण का वध, ना ही जलाया जाता है रावण का पुतला। प्रयागराज की ऐतिहासिक पजावा रामलीला में मुकुट पूजन, मुकुट की उतारी गई आरती। रामलीला मंचन के दौरान कलाकार पारंपरिक मुकुटों और आभूषणों को करेंगे धारण, पूजा से पहले मुकुटों की गई साफ सफाई। 100 साल से अधिक पुराने हैं लाहौरी मुकुट, लाहौर के कारीगरों ने तैयार किया था सोने चांदी का मुकुट। रायपुर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां तेज, मां की प्रतिमा बनाने में जुटे कारीगर। दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, सजाने और सवारने में भी जुटे कारीगर। झांसी की हुनरमंद बेटियां महिला सशक्तिकरण की बनी मिसाल, पढ़ाई के साथ साथ बना रही मां दुर्गा समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमा। 4 बहनें पढ़ाई के साथ परिवार की 15 साल पुरानी मूर्ति निर्माण परंपरा को बढ़ा रही हैं आगे, करीब 150 प्रतिमाएं कर रही हैं तैयार। मिट्टी से लेकर रंगाई और सजावट तक खुद करती है काम, एक प्रतिमा को तैयार करने में करीब 6 से 7 महीने का लगता है समय। काम के साथ साथ चारों बहनें कर रही हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सभी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी हैं। अगरतला में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सख्त, कई इलाकों में चला वाहन जांच अभियान। पश्चिम बंगाल में जोरों शोरों से जारी है शक्ति पर्व की तैयारियां, पुरुलिया में बनाया जा रहा विशाल पंडाल। भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए तैयार किया गया खास थीम, पाषाणे प्राण यानी पत्थरों से प्राण। इस थीम के जरिए पहाड़ के बीच मौजूद गुफा मंदिर में मां दुर्गा की आराधना और प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक पेश करने की है कोशिश।

में सबसे पहले भगवान बजरंगबली की प्रतिमा, उनके दाईं ओर भगवान शिव और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा की गई है स्थापित। पंडाल के बीचों बीच पहाड़ के ऊपर एक गुफा मंदिर का स्वरूप किया गया तैयार। इसी गुफा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा होगी विराजमान। नवरात्र की तैयारियों के बीच अमरावती के अंबा देवी और एकवीरा माता मंदिर में कारीगर देवी के आभूषणों और चांदी की पूजा सामग्री को चमकाने में जुटे। आभूषणों को सोडा और एसिड मिले, गुनगुने पानी से साफ करने के बाद ब्रश से चमकाया गया। इसके बाद स्वच्छ पानी से धोकर मुलायम कपड़े से पोछा गया। अमरावती में सजे नवरात्र के बाजार, कोलकाता की देवी प्रतिमाओं से लेकर गुजरात की गरबा ड्रेस तक बने आकर्षण का केंद्र। शहर के बाजारों में गुजरात के भावनगर में खासतौर पर गरबा रास की ट्रेडिशनल ड्रेस मंगाई गई, खरीदारी के लिए उमड़ रही है भीड़। आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर निकाली गई कलश यात्रा, शंख और घंटे की ध्वनि के बीच हुआ सुंदरकांड का पाठ। पुरी में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, भगवान जगन्नाथ की उतारी गई मंगला आरती। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। केदारनाथ में खराब मौसम के बीच एयर एम्बुलेंस बनी संजीवनी, 50 से ज्यादा यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट। ऑक्सीजन की कमी के चलते बिगड़ी थी तीर्थयात्रियों की तबीयत, प्रशासन ने की टीमें तैनात। बीकानेर में विधायक रविंद्र भाटी का अनोखा स्वागत, 40 फीट लंबी मूछों की माला से किया गया स्वागत। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने काशी विश्वनाथ और श्री शक्ति माता मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। एलजीवीके सक्सेना ने लद्दाख पुलिस कर्मियों की विदाई और पासिंग आउट परेड में शामिल हुए, लद्दाख को मिले 114 नए एसपीओस। उपराज्यपाल ने कर्मियों के आवास के लिए 24 BHK घरों का किया उद्घाटन, लद्दाख फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की आधिकारिक वेबसाइट का भी उद्घाटन। मदोही कारपेट एक्सपो में अनोखा कालीन, कालीन पर उकेरी अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियां। कालीन में महान कवि हरिवंश राय बच्चन, अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की तस्वीर बनाई गई। गुवाहाटी पहुंची एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य तरीके से स्वागत। भुवनेश्वर में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास और शिलानंद लाखड़ा का जोरदार स्वागत, लोगों ने फूलों की माला पहनाकर जीत की बधाई दी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सल हिंसा के पीड़ितों के लिए मेला कैंप का आयोजन, पीड़ितों को मुफ्त में दी गई कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण। असम के चूराचंदपुर में चिकित्सा शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। कोहिमा में कमजोर परिवारों के लिए अच्छी पहल, NSRLM और BRAC इंटरनेशनल ने 4000 बेहद कमजोर परिवारों की मदद के लिए किए MOU पर साइन। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की गर्जना जारी, अमेरिका फ्रांस जर्मनी समेत कई देश ले रहे हैं हिस्सा। वायुसेना की तरंग शक्ति की रफ्तार, आसमान में देखा साझेदारी कदम। भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल, सुखोई, मिराज 2000, तेजस, जगुआर और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान आसमान में दिखाई दी इन्होंने अपनी ताकत, 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। 4 साल में पहली बार RBI ने बढ़ाया रेपो रेट, 5.25 से 5.50 किया। होम से लेकर कार लोन होंगे महंगे, बढ़ेगी EMI। प्रधानमंत्री मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे, दिल्ली के शिव विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो। पीएम मोदी ने की शिवलिंग की पूजा, जल चढ़ाया और नारियल पुष्प किए अर्पित।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प सभा में लिया हिस्सा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया स्वागत। वडनगर से वाराणसी तक बीजेपी के खास आयोजन, पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर की गई महाआरती, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी को दी बधाई, पुरी बीच पर बनाई 25 फीट लंबी सैंड आर्ट। पीएम मोदी के लोकसभा के 25 साल पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत, लोगों ने उतारी मां गंगा की आरती। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां गंगा का दूध से किया अभिषेक, घाटों पर सफाई की। पीएम मोदी के लोकसभा के 25 साल पूरे होने पर राजकोट में 1500 विद्यार्थियों ने बनाई भारत के नक्शे की मानव श्रृंखला, स्वच्छता एकता तथा स्वच्छ भारत का सशक्त संदेश दिया। गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा का केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया, सीएम सैनी भी रहे मौजूद। गाजियाबाद में सेवा संकल्प अभियान का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। यूपी में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का महिलाओं बेटियों को मिल रहा है लाभ, जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक मिलने वाली 25,000 की राशि से मिल रही है आर्थिक मदद। चमोली बद्रीनाथ में बदला मौसम, 6 से 11 अक्टूबर तक बारिश का पूर्वानुमान, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। अलवर के एक सरकारी स्कूल में 19 फीट ऊंचा बथुए का पौधा बना आकर्षण का केंद्र, 6 महीने में तैयार हुआ पौधा, दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं। कैप्टन स्मिथ की तबियत में तेजी से हो रहा है सुधार, कैप्टन के परिवार से संपर्क में है भारतीय दूतावास, कैप्टन के लिए दुआ करने वाले सभी लोगों का किया शुक्रिया। अमेरिका में पायलट स्मिथ मछार को सम्मानित करने का प्रस्ताव किया गया पारित, कांग्रेस के प्रस्ताव में किसी व्यक्ति का नाम शामिल किया जाना बड़ी बात। दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण से निपटने की तैयारियां तेज, एमसीडी ने 6,127 किलोमीटर सड़कों पर बढ़ाई निगरानी। 46 हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी, 4,00,000 से ज्यादा पौधे लगाएगी दिल्ली सरकार। वाटर स्प्रिंकलिंग एंटी स्मॉग गन निर्माण गतिविधियों की होगी निगरानी, हरित क्षेत्र बढ़ाने पर रहेगा खास फोकस। खिराड़ी समेत 4 विधानसभा क्षेत्रों में जलभराव से राहत की बड़ी तैयारी, 263 करोड़ के ट्रंक ड्रेन को मजबूरी। राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव, अब साल में 2 बार होगी परीक्षा, नई व्यवस्था 2026 से 27 सत्र में होगी लागू, फरवरी मार्च में पहली परीक्षा और मई जून में दूसरी परीक्षा। हिमाचल में मौसम ने अचानक ली करवट, धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं सैलानी। त्रिउंड ट्रैक को लेकर पर्यटकों में देखा खासा उत्साह, पर्यटक त्रिउंड ट्रैक की ओर कर रहे हैं रुख। मैक्लोडगंज की सड़कों से लेकर बाजारों और पर्यटन स्थलों तक पर्यटक की चहल पहल, पर्यटक की भारी भीड़ से कारोबारियों के खिले चेहरे। धर्मशाला में भारी बारिश से फसलों पर पहुंचा नुकसान, किसान हुए परेशान। शिमला में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 9 अक्टूबर तक बारिश की संभावना। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी, 3 दिनों तक होगी बर्फबारी। कांगड़ा कुल्लू और लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना, ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। हिमाचल के किन्नौर में बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में आई गिरावट। ओलावृष्टि से फसलों और सब्जियों को पहुंचा भारी नुकसान, किसान हुए परेशान। धर्मशाला में बढ़ते सैलानियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन उठा रहा है सख्त कदम। त्रिउंड ट्रैक पर ओवरक्राउडिंग रोकने के लिए अब रोजाना 1,000 पर्यटकों की होगी एंट्री। केएचई धाम में बढ़ रही श्रद्धालुओं की बेकाबू भीड़ को देखने के बाद एक्शन मोड में प्रशासन। अब रजिस्ट्रेशन से तय होगी श्रद्धालुओं की संख्या। फिलहाल 20 से 25,000 लोगों के लिए कैंप की व्यवस्था। मंदिर में एंट्री एग्जिट होंगे अलग। हाईवे जाम रोकने का मास्टर प्लान भी हो रहा है तैयार। अबूधाबी का संस्कृति और पर्यटन विभाग यात्रियों को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी में दिवाली मनाने के लिए कर रहा है आमंत्रित।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: आसमान में बढ़ेगी वायु वीरों की ताकत, तेजस MK-1A फाइटर जेट को मिली नई रफ्तार, GE ने सितंबर में 4 इंजन भेजे। 4 साल में पहली बार RBI ने बढ़ा रेपो रेट, 5.25 से 5.50 किया, होम और कार लोन होंगे महंगे, बढ़ेगी EMI। प्रधानमंत्री मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे, दिल्ली के शिवनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो। देशभर में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही है मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, गरबा खेलने की भी प्रैक्टिस। मदोही के कारपेट एक्सपो में खास कालीन बना आकर्षण का केंद्र, कालीन पर उकेरी अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियां, बुनकरों ने 6 महीने की मेहनत से तैयार किया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है।
8: हेलो दोस्तों, मनोरंजन का पिटारा लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। टेलीविजन की दुनिया के ड्रामे से लेकर OTT और रियलिटी शोज की हर हलचल पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज की खास हेडलाइंस के साथ।
9: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए मायरा की बिगड़ेगी तबीयत, कबीर रखेगा ख्याल, मायरा कबीर को आएगी मम्मी पापा की याद।

पति पत्नी और पंगा सीजन 2 के लॉन्च पर दिखेगा जोड़ियों का डांस धमाल, लगेगा एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का। छोड़कर जाएगा नीरव, संजय को मिलेंगे ताने।

0: कजरी होगी बेहोश, आकाश को होगी चिंता, दिखेगा आकाश और कजरी का बेपनाह प्यार।
1: तुमसे प्यार नहीं,
2: सबके पीछे रुद्र का हाथ है, तो रैंसम के पैसों का ट्रेल मुझे रुद्र तक पहुंचा सकता है।
0: आरती के किडनैपिंग के बाद घर वाले होंगे परेशान, करेंगे आरती को ढूंढने की कोशिश।
3: अमित जी, यहाँ हम सिर्फ खेल खेलने नहीं आए हैं, आपके जन्मदिन का जश्न मनाए।
0: कौन बनेगा करोड़पति में खास मेहमान बनकर आएंगी माधुरी दीक्षित। बिग बी और माधुरी दीक्षित लगाएंगे एंटरटेनमेंट का तड़का।
3: करना तुम्हें ओढ़ो प्रेम है,
4: तो भगवान की तरह होते हैं लोग। जिस दिन आप लोगों का स्नेह प्यार बंद हो जाएगा, हम भी बंद हो जाएंगे।
5: हैप्पी बर्थडे,
3: हैप्पी बर्थडे,
6: हैप्पी बर्थडे अमिताभ सर।
3: वी लव यू अमित।
0: और अनुपमा की मीता यानी की शिवानी करेगी कोलकाता की सैर, पहुँचेंगी अपने ननिहाल, देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
7: सीरियल कैसी तेरी दिल लगी में आकाश कजरी को आग से बचा लाया है, लेकिन कजरी बेहोश है और ये देख आकाश परेशान है और अपनी चोट को भूल वो कजरी को जगाने में जुटा है। ऐसे में देखने को मिली आकाश और कजरी के प्यार की कसक।

0: दंगल टीवी के सीरियल कैसी तेरी दिल्लगी में आ गया था आग वाला ट्विस्ट, जिससे कचरी को आकाश बचा कर ले आया है, लेकिन कचरी बेहोश है। ऐसे में देखिए कैसे आकाश पैनिक हो रहा है और कचरी को जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कचरी उठने का नाम नहीं ले रही।
1: कचरी वेगा, कचरी उठो प्लीज, कचरी आंखें खोलो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? सुन पा रही हो मुझे? कचरी, कचरी वेगा, कचरी आंखें खोलो प्लीज। कचरी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? कचरी, कचरी, काकी जल्दी आइस पैक लेके आइए, घर में जितनी बर्फ है सब लेके आइए प्लीज, जल्दी।
2: भैया आप अपना भी तो इलाज करवाइए प्लीज, आप भी तो चले हैं।
1: अधीरा मुझे अपनी परवाह नहीं है, जब तक कचरी आंखें नहीं खोलेगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा।
0: आकाश को तो अपनी चोट की भी चिंता नहीं है, वो खुद का दर्द भुलाकर बस कचरी को होश में लाने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि वो अपनी बहन को भी चिल्ला देता है।
1: अधीरा, डॉक्टर को लेके आ जल्दी।
2: भैया आप एक बार उठिए, मैं करती हूँ प्लीज।
1: मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, कचरी को मेरी जरूरत है, उसे कुछ नहीं होगा, मर जाऊंगा। कचरी उठो, कजरी, कजरी वेक अप,
0: भाई। कजरी को होश में लाने की कोशिश करते करते आकाश खुद भी बेहोश हो गया है, लेकिन कजरी के हाथों में आकाश का हाथ है। ऐसे में आकाश की बहन दोनों का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत है कि दोनों ही एक दूसरे का हाथ छोड़ तक नहीं रहे। भाई इसी से तो देखने को मिलती है इनकी आशिकी, कि दोनों में कितना प्यार है।

कुछ देर बाद अपने आप ही कजरी को होश आता है और जब वो आकाश की चोट देखती है तो वो बुरी तरह से घबरा जाती है। ऐसे में आज कजरी का रियल साइड देखने को मिला। देखिए कैसे अपने पुराने रूप में कजरी वापस आ गई है और आकाश की चिंता कर रही है, उसकी मरहम पट्टी कर रही है और आकाश को प्यार से डांट भी रही है। ये सब देखकर आकाश भी काफी खुश है।

0: मेरी छोड़ ठीक हो ना? बेहोश हो गई, अब चक्कर तो नहीं आ रहे ना? हाथ में झुलस के बेहोश हो गई थी तुम्हें।
1: तुम्हारी चोट ठीक करने से फुर्सत नहीं।

0: para una dieta poco pico. Conchazo. Chale, gai. Pero si bien jugo, le acerca de garilla. ¿Quieres cómo estás? ¿Quieres que si no escuchas, le va a acerca de café?
1: अगर मैं पट्टी पहले ही करवा लेता वो पुरानी वाली कजरी की गाली वाली डांट सुनने को नहीं मिलती।
2: लेकिन कुछ समय बाद कजरी को ये रियलाइज होता है कि उसे आकाश के करीब नहीं जाना है। ऐसे में वो आकाश की बहन को मरहम थमा देती है और वहाँ से जाने लगती है कि आकाश कजरी का हाथ थाम लेता है और उसे सब कुछ भुलाकर वापस आने के लिए कहता है।
0: पूरी ऑइंटमेंट तो लगा दो।

0: se va a quitar ahí. Ahora sí que se puede. Ya me quiero escribir. भैया कुछ चोट लेकर तुम भी भूल गई थी ना, हमारी शादी हो चुकी है।
1: कितनी इज्जत करोगी गजरी? मस्ती करो प्लीज, चलो मेरे साथ। तुम्हारी इज्जत की वजह से सिर्फ मुझे तुम्हारी तकलीफ।
2: कचरी अब काफी आगे निकल चुकी है और कचरी और आकाश के प्यार में दूरियां भी है। अब देखना होगा कि ये दूरियां कब और कैसे मिटती है और फिर एक बार कचरी और आकाश एक होते हैं। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल तू ही रे दिल में संजय के कारण नीरव ने घर छोड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में जहाँ एक तरफ घर में हंगामा और तमाशा हो रहा है, तो वहीं नीरव के जाने से बुआ जी का रो रो कर बुरा हाल है।

0: नीरव को मिला घर निकाला। कर हुआ रूपल का हाल बेहाल।
1: और मुझे बिना धक्के मार कर निकालना, निकाल मुझे घर से, नहीं मुझे निकालना घर से बाहर। चल ताकत आसमान है मुझ पे भी, नहीं आप पकड़ लिया मुझे निकालना इस घर से, निकालना मुझे इस घर से। तू
2: प्लीज संभालिए।
0: जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज संजय के घर में बवाल मच गया है, क्योंकि घर के जमाईसा यानी कि नीरव वो घर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में रूपल अपने पति को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तो रुकने से रहा। जरा देखिए कैसे आज रूपल का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। इतना ही नहीं, रूपल को रोता हुआ देखकर कविता से भी रहा नहीं जाता। वो आती है उसे चुप कराने के लिए। इतना ही नहीं, वो तो रूपल को ये भी बताती है कि नीरव ने गलती की है। ऐसे में उसे गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन रूपल कविता की बात मानने को तैयार नहीं है।
1: छोड़ दो इसे, चल उठ, उठ जाएगा। नहीं माई इसे क्या, सब जान रही हूँ, समझ में आ रहा है।
3: क्या समझ में आ रहा है तुझे?
1: ये समझ में आ रहा है कि इस घर पर बहुत बड़ा श्राप लगा हुआ है। क्या कह रही है तू? और नहीं तो क्या बात, इस घर की औरतों के जीवन में पति कसों की रही नहीं।
0: भाई रूपल की माँ और रूपल के पापा दोनों ही रूपल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूपल उसके आंसू थम नहीं रहे, या यूँ कह लो वो तो समझना ही नहीं चाहती। ऐसे में वहाँ पर संजय आता है, जो अपनी बुआ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बुआ वो तो अपने भतीजे पर ही नाराज होने लगती है। भाई जैसे तैसे संजय ने अपनी रूपल बुआ को मना लिया है, और कविता ये देखकर हैरान है, तो वहीं दूसरी ओर वृंदा घर के इस तमाशे को देखकर हो रही है इमोशनल, क्योंकि वो नहीं चाहती कि संजय का पूरा परिवार बिखर जाए। ऐसे में संजय अपनी रूपल बुआ को वहाँ से ले जाता है, और कविता जाते जाते संजय की माँ को घूर कर देखती है। इतना ही नहीं, टेंशन भी दिखाती है। बस फिर क्या, कविता के जाते ही सरिता की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर वृंदा रहती है, जो आकर उन्हें संभाल लेती है।
4: स्वाति को मैं बहू मान चुकी हूँ, वृंदा से एक दिल का रिश्ता है, तो ये माँ के लिए तो एक माँ के लिए तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति होने वाली है कि किस्मत किसको बीवी बनाती है मेरे बेटे की, मेरी बहू कौन बनती है, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। और मैं इतना मैं जानती हूँ, सरिता बहुत ही सुलझी हुई है और बहुत ही इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है, बिकॉज वो भी ऐसे ही सिचुएशंस में इस घर में आई थी और आज तक इसलिए उसके ताने मारे जाते हैं इन चीज़ों को लेके। तो आई थिंक सरिता बहुत सेंसिटिव तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेगी।
0: भाई वृंदा तो सरिता को अच्छे से संभाल रही है, लेकिन अब संजय असमंजस में है। ऐसे में वो पहुंच गया है अपने घर के मंदिर में और देखिए कैसे वहां हाथ जोड़ कर रहा है ऊपर वाले से प्रार्थना, क्योंकि उसकी दुविधा बढ़ती जा रही है।

0: एक तरफ माँ की रिस्पेक्ट है तो दूसरी तरफ बुआ जी के दिल का दर्द। ऐसे में वो फैसला ले नहीं पा रहा। इसी बीच अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिससे उसे एहसास होता है कि सामने रखे दिए से उसका नुकसान हो सकता था। खैर, उसने अपने आप को संभाल लिया और ऐसे में वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ कौन है, कि तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है।
1: एक मंदिर का जो समय जो जलता है उसकी लौ मेरे कपड़े से लगने वाली होती है, और उससे पहले वृंदा भी बाई कोइंसिडेंस वहाँ आ गई है और मुझे देख रही है, और मेरा कपड़े में आग लगने ही वाली होती है, पर वो कुछ घिरा के मेरा अटेंशन अपनी तरफ करती है और मैं बच जाता हूँ। तो एक बार फिर वो उसने मुझे सेव किया है, बचाया है। तो वृंदा कहीं ना कहीं एक सेवियर की तरह भी हैं संजय की लाइफ में, उसकी वेलविशर है और उसको हमेशा ऐसी सिचुएशन से बचाती हैं।
0: फिलहाल तो संजय अपने बुआ के दर्द को कम करने के लिए नीरव को वापस घर लाना चाहता है। ऐसे में वो अपनी माँ को रोककर पहले तो माफ़ी मांगता है, लेकिन तभी संजय की माँ उसे दिलासा देती है और रिश्तों को संजो कर रखने का हवाला भी देती है, साथ ही उसके फैसले पर हामी भी भरती है ताकि घर में शांति बनी रहे।
2: मैं संजो को रिक्वेस्ट कर रही थी कि तू गलत नहीं है, पर हमारे जो घर जवाई हैं नीरव जी, वो बहुत नटखट हैं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं हमारे घर में, तो आज उन्होंने हमारी घर की बेटी के साथ भी थोड़ी बदतमीजी की, उनकी बीवी के साथ, तो वो थोड़ी नाराज़गी थी और वो खुद ही घर छोड़ के जाते हैं। तो मैं संजू को समझाती हूँ कि कितने भी वो जो भी है, हमें अपनी बुआ के लिए उन्हें वापस लाना होगा, तो तू जाके मना के वापस ले के आ। तो संजू कहता नहीं, उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की। मैंने कहा जो भी है, हमें थोड़ा बड़ा बन के उनको घर वापस लाना होगा।
0: फिलहाल तो संजय को कॉल भी आ जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी नीरव फूफा कहाँ है। खैर, संजय तैयारी कर रहा है अपने फूफा को घर वापस लाने की, तो वहीं वृंदा उसे भी पता चल गया है और वो झटपट संजू के साथ निकल चुकी है। अब देखना होगा कि कैसे वृंदा और संजय दोनों का आमना सामना होगा।
3: तू नीरव जी से माफी मांग ले, उन्हें घर लेके आ जा।
1: नहीं माँ, ये मैं नहीं कर सकता।
3: तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगा?
1: हाँ, कहाँ है आप?
4: चोर बाजार के पीछे,
1: मस्ताना बाजार। ठीक है, मैं वहाँ आता हूँ।
3: बाद में अभी आपसे खेलने जा रही हूँ, उसके लिए आपका हौसला रहना बहुत जरूरी है। संजय जी यहाँ पर आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे।
0: मुंबई से कामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: घर तो जाएंगे पर उन्हें माफी मांगने नहीं देंगे।
5: सीरियल जगधात्री में आरती किडनैप हो चुकी है और उसे लेकर घर वाले परेशान हैं। एक तरफ जहाँ घर वाले फिरौती की रकम जुटाने में लगे हैं, तो वहीं जगधात्री किडनैपर का पता लगाने में जुटी है। क्या जगधात्री अपने इस नए मिशन में कामयाब हो पाएगी? चलिए देखते हैं।
6: सबके पीछे रुद्र का हाथ है, तो रैंसम के पैसों का ट्रेल मुझे रुद्र तक पहुंचा सकता है।
0: जगधात्री की जासूसी।

महेश की परेशानी। शिवाय की कोशिशें। जी टीवी के सीरियल जगधात्री में जगधात्री सच का पता लगाने के लिए जासूसी कर रही है, चेहरा ढककर लोगों से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उन्होंने आरती को देखा है या नहीं।

0: असल में आरती का किडनैप हो गया है। ऐसे में किडनैपर्स ने घर वालों से 25 करोड़ रुपए मांगे हैं और उनके वादे को पूरा करते हुए महेश वो रुपए लेकर पहुंच भी जाते हैं और तो और उनके कहे अनुसार वो रुपयों से भरा सूटकेस उस ऑटो में भी रख देते हैं जो किडनैपर्स उन्हें बताता है। लेकिन महेश उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि उनका पीछा जगधात्री कर रही है।
1: जी मैं हूँ महेश काका के पीछे। आरती जी जो हैं हमारी आरती काकी उनकी किडनैपिंग हो गई है। वो घर पे है नहीं मौजूद और यहाँ पर महेश काका एक बाहरी मोटी रकम लेके जाते हैं देने के लिए जो किडनैपर्स हैं उनको। तो मैं यहाँ पर आई हूँ उनके पीछे क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि किसी भी बाहर वाले को बताना नहीं है, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है। बट ऑफकोर्स पता तो लगाना पड़ेगा कि आरती काकी एक्चुअली किडनैप हुई है या फिर ये कोई ये कोई एक गेम है रुद्र तपस्या आरती काकी और महेश काका का जहाँ पर ये रुद्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पैसे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही पता करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ।
2: अरे जब बाप के ऊपर बनाती है ना, जब बेटे को बचाना होता है तो कोई बैग या कोई पहाड़ भी भारी लगता नहीं है वो, क्योंकि एक ही लक्ष्य होता है, एक ही बस फोकस वही होता है कि कैसे भी करके उसको बचा लिया जाए जो उसका हाल देख रहे हैं। और यहाँ तो उसकी वाइफ भी किडनैप हो गई है आरती, तो आरती को मतलब जिंदा लेके आना है गुंडों के पास से, तो वो तो उठाएगा ना महेश कितना भी भारी बैग हो। तो यही है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीक्वेंस है, किडनैप हो गई है, 25 करोड़ मांगा है और वो इतने कम टाइम पे एक घंटे में 25 करोड़ का इंतज़ाम करना था जो होके हो गया है। अब बस वो पहुँचा दिया है जहाँ उन्होंने कहा था, एक ऑटो रिक्शा में। अब देखो उसके आगे क्या होता है, उसके बावजूद ये लोग छोड़ते हैं आरती को या नहीं छोड़ते हैं, पहुंचा के तो आ गया है महेश।
0: वहीं दूसरी ओर शिवाय को भी शक हो गया है लिली पर। ऐसे में उसने अपनी टीम से अनुषा को कुछ काम दिया था जिसे रिलेटेड वो फोन पर बातें कर रहा है, मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे कई सारी चीजें पता भी चल गई हैं। ऐसे में वो सारी जानकारी लेकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर आ जाती है जाह्नवी जो शिवाय को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन शिवाय रुकने का नाम नहीं लेता क्योंकि उसे अपना अधूरा काम जो निपटाना है। ऐसे में वो वहाँ से चला जाता है और जाह्नवी ये सुनकर हैरान रह जाती है।
3: मैं भी मतलब ये पता करना चाहता हूँ कि कौन है, किडनैपिंग कैसे हुई है, आरती काकी को किसने किडनैप किया है, 25 करोड़ की एक बड़ी रकम मांगी है उन्होंने और वो रकम बाबा तुरंत ले भी आए, तो काफ़ी कुछ है जो सस्पिशियस है और वो देखना होगा अलग अलग एंगल से कि क्या होता है कैसे होता है। और मेन तो यही है कि जगधात्री कहाँ है और वो कब आएंगी।
1: आगे अब बहुत जल्द रुद्र का खुलासा होने वाला है, वही ऑडियंस की इच्छा है और जगधात्री भी यही होप कर रही है कि जल्दी से पता चले कि रुद्र जिंदा है घर वालों को और जगधात्री अपनी इनोसेंस कि वो इनोसेंट है वो दिखा पाए।
0: अब देखना होगा कि कैसे जगधात्री असली गुनहगार तक पहुंचेगी और कैसे अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी और कैसे शिवाय जगधात्री का साथ जाने अनजाने देगा। मुंबई से कामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: रुख करते हैं मनोरंजन की उस रंगीन दुनिया का जहां से हम खास आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ रॉकिंग और कुछ शॉकिंग खबरें। ये मसालादार खबरें यकीनन आपके चेहरे पर भी ले आएंगी एक हल्की सी मुस्कान। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज की रॉकिंग न्यूज।
5: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं कौन बनेगा करोड़पति की, जिसमें खास मेहमान बनकर आने वाली हैं माधुरी दीक्षित। ऐसे में देख लीजिए इसके एडवांस नज़ारे जहां पर माधुरी दीक्षित और बिग बी लगा रहे हैं एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का।
6: इसलिए जिंदगी में जल्दबाजी करने से पहले
7: हिंदुस्तान में दो तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, एक किताब की और दूसरी अमिताभ जी की।
8: अमित जी यहाँ हम सिर्फ खेल खेलने नहीं आए हैं, आपके जन्मदिन का जश्न मनाए। जनरेशन बदलती जाएंगी लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जाएगी।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
8: काय करना तुम्हें ओढ़ प्रेम है
6: तो भगवान की तरह होते हैं लोग। जिस दिन आप लोगों का स्नेह प्यार बंद हो जाएगा हम भी बंद हो जाएंगे।
9: हैप्पी बर्थडे।
10: हैप्पी बर्थडे।
11: हैप्पी बर्थडे अमिताभ सर।
8: वी लव यू अमित जी।
12: बिग बी के बर्थडे का पूरे इंडिया को है निमंत्रण।
6: एक बार हमसे बड़े गुस्ताखी हो गई थी, एक फिल्म थी हमने एक दो तीन ऐसे पीछे हटके किया था।
8: हम भी दिखा दें।
10: एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह
6: कहाँ के लोग निकाल के ला रहे।
13: एक अच्छे गाने को किस तरह खराब किया जाए वो इधर देखा आपने अभी।
5: कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर पहुंचे मिका सिंह और फाल्गुनी पाठक पे। नवरात्रे आने वाली है, ऐसे में शुरू हो गई है तैयारियां। और सिद्धार्थ के फैंस के लिए है गुड न्यूज। जल्द ही कियारा और सिद्धार्थ फिर से मम्मी पापा बनने वाले हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने शेयर की है ये न्यूज कि वो फिर एक बार मम्मी पापा बनेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेम एक्टर मोहसिन खान ने शेयर किए हैं अनसीन नजारे अपनी वेडिंग के। देख लीजिए मोहसिन और तमन्ना की ये केमिस्ट्री।

0: बट तुम मेरी लाइफ में मेरे साथ हंसी से बात की ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ।
1: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की बन गई है जोड़ी। बड़े पर्दे पर ये साथ साथ नजर आएंगे। आने वाली फिल्म तू है मेरी किरण में सामने आया है इस फिल्म का ट्रेलर।
2: लिसन, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आज की बात तो मुझे कभी फोन नहीं करोगी, समझे?
0: तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हा? तुम जानती हो हमारा कनेक्शन कितना स्पेशल है।
2: आप बकवास कर रहे हो।
0: ये कहानी ऐसे खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये कहानी तो अब शुरू होने वाली है।
2: कुछ अजीब हो रहा है, ये तुमने कैसे किया? सुनो, तुम्हें जो चाहिए सब ले लो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज।
1: बिग बॉस में फिर होने वाला है नया बवाल, जहां पर कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से लड़ेंगे और शुरू होगा नया तमाशा।
3: ब्रेकिंग न्यूज करवालों, आज आसिफ होंगे न्यूज एंकर जो अपना न्यूज प्रस्तुत करेंगे।
4: दोस्तों नमस्कार, बीबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। काजी तौकीर, जिनको की उछलने कूदने का बहुत शौक है ये पूरा भारत जानता है, वो बीच में कूदे और उन्होंने कहा कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था।
5: जोकर वाला कौन सा गाना था यार?
6: अरे आई एम प्राउड टू बी अ जोकर, लेट्स डू टॉक नाइट।
7: अबे थूक मत रे,
6: नहीं थूका।
7: ये क्या कर रहा है? ये क्या मतलब
6: थूक मत मेरे पास?
5: थूका नहीं, मैं समझा ना, धक्का मत दे, समझा?
7: भोकते रहे।
6: हां भोकूंगा,
7: भोक
6: चला।
1: उड़ान फेम एक्टर विजेंद्र कुमेरिया ने सोशल मीडिया के जरिए कंफर्म किया है कि उन्होंने अपनी वाइफ प्रीति से डिवोर्स ले लिया है और साथ ही ये भी बताया कि ये दोनों 2022 में ही सेपरेट हो गए थे।
8: नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस,
1: बिग बॉस 16 फेम अर्चना गौतम के मुंबई के कैफे में चोरी हो गई है। ऐसे में सामने आया है ये सीसीटीवी फुटेज, जहां पर चोर पूरा कैश काउंटर ही ले गया है। अब होगी इसकी जांच।
8: ये दिन में मेरे कैफे में आता है और पूरा कैश काउंटर उठा के लेके जाता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। इसे पूरे मुंबई में सिर्फ मेरा ही कैफे मिला है जिसमें ये चोरी किया है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि मुंबई में चोरी हुई है, बट पहली बार मैं खुद देख रही हूँ कि मेरे कैफे में चोरी हो रही है और मैं देख रही हूँ। और इसको थोड़ा भी डर नहीं है मुंबई पुलिस का कि इसको पकड़ लेंगे नहीं पकड़ेंगे। और ये शराफत से देखो किस तरह से चोरी कर रहा है, ये पूरा कैश काउंटर मेरा उठा के लेके गया, मेरा कैफे तोड़ के आया अंदर और चोरी। ये ऐसे लोगों को पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है? सो मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि जिससे आप लोगों को भी पता चले, आप लोग भी सतर्क रहें कि मुंबई में चोर है।
1: धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने वाला है मॉडर्न माइथोलॉजिकल सुपर हीरो फिल्म, जिसका नाम है गदाधारी भीम। इसकी स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है।

0: सहर में आने वाला है नया ट्विस्ट, जहां साथ मिलकर माहिद और सहर करेंगे हैदर की नई चुनौतियों का सामना।
1: शादी मुबारक हो माहिद और सहर। वैसे मुबारकबाद आप हमें भी दे सकते हैं, हमने भी निकाह कर लिया है अमाल से। अमाल से
2: हैदर के इस जाल से अपनी बहन को किसी भी कीमत पर आजाद करवा कर रहेंगे,
3: और हम आपका साथ जरूर देंगे इसमें।
4: पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा में मीता कोठारी का किरदार निभा रही शिवानी चक्रवर्ती इन दिनों दुर्गा पूजा के रंग में रंगी नजर आ रही हैं। शिवानी पहुंची हैं अपने ननिहाल कोलकाता, जहां दुर्गा पूजा की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। तो चलिए शिवानी के साथ घूमकर देखते हैं कोलकाता में त्योहार की ये खास तैयारी।

पूरे इंडिया की तरह कोलकाता में भी छा गई है नवरात्रि की धूम। भाई दुर्गा पूजा का त्यौहार आ गया है और ऐसे में दुर्गा पूजा के खास महोत्सव में शामिल होने पहुंची मीता कोठारी यानी शिवानी चक्रवर्ती। भाई शिवानी चक्रवर्ती के रूट्स बंगाल से है। शिवानी के एंसेस्टर्स बंगाल से आए थे। मुंबई में वो सीरियल्स में काम करती है, लेकिन वो पहुंची अपने ननिहाल। भाई अपने ननिहाल में आकर उन्होंने बचपन की यादें ताज़ा की, यहाँ की ठाकुरबाड़ी में दर्शन किए, यहाँ का खाना खाया, अपने परिवार से जुड़ी और इसके बाद उन्होंने कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर और बेलूर मठ की यात्रा की, बंगाल के स्वाद को समझा, यहाँ की संस्कृति में रम गई। तो सास बहू और बेटियाँ आज कर रहा है खास होम टाउन वाला डे आउट अभिनेत्री शिवानी चक्रवर्ती के साथ, जो सीधा मुंबई से फ्लाइट पकड़कर पहुंच गई है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, और यहीं से शुरू होती है उनकी बंगाल यात्रा।

मुंबई से कोलकाता की यात्रा काफी लंबी है और 2.5 घंटे की इस यात्रा में शिवानी का जोश फुलाई है क्योंकि यहाँ पर मिल गई फैन। जी हाँ, ये एयर होस्टेस इनका सीन और इनके किरदार को देखती है और उन्हें मिला एयरलाइंस में ये खास सरप्राइज। शिवानी चक्रवर्ती पहुंची कोलकाता एयरपोर्ट पर और यहां पर बंगाल की खुशबू ने उनके बचपन की यादों को जगा दिया।

0: कोलकाता से उतरकर वो आज जा रही हैं अपने ननिहाल जो पड़ता है बंगाल के कालना डिस्ट्रिक्ट में। भाई कालना एक बहुत पुरानी जगह है जहां पर है शिवानी चक्रवर्ती का ननिहाल, यानी वो घर जहां वो घर घर खेली। और देखिए यहां पर उनकी मामी रहती हैं और उनकी फैमिली रहती है। भाई देखिए उनका कैसे ट्रेडिशनल अंदाज में हुआ स्वागत।
1: ये है मेरे मामा का घर का एंट्री। सारी बचपन सारी बातें यहाँ से याद आ जाती है। लगता है जैसे ये अभी की कल की बात हो कि हम यहाँ खेलते थे इसी घर में। बट ओनली द थिंग इज कि अभी यहाँ पे नाना और नानी नहीं है, बट उनका आशीर्वाद आज भी है हमारे साथ। मिस बहुत कर रही हूँ उन लोगों को। मामा है, मामी है और अभी भी हमारा वो घर थोड़ा सा चेंज जरूर हो गया है क्योंकि दिन मतलब ऑब्वियसली चीज़ें चेंज होती है तो काफ़ी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती है। तो यस आंगन चिकन सीधा आंगन तो बड़ा आंगन होता है और ये हमारा यहाँ पे हम लोग इतनी मस्ती करते थे ना, ये जो आपको दिख रहा है ना ये खिड़की, यहाँ पे हम इतना खेलते थे सब भाई बहन लोग मिल के सारे लोग, जब देखो तब खेलते रहते थे। शुंदे दे रही है, शुंदे देना बहुत इम्पोर्टेंट है महिमा और हम इन लोगों से हमने सब सीखा है पूजा पाठ करना। सो जय नीताई, मैं आ चुकी हूँ अपने मामा के घर में और अब ये जो ऑथेंटिसिटी आप देख रहे हैं ना ये और कहीं नहीं मिलेगी। ये जो नानी वाला घर होता है ना वही मिल सकती है। आज भी यहाँ पे वही फील है, वही वाइब्स है। मैं यहाँ पे कितना खेली हूँ आपको पता है, ये एरिया में नानी हम लोग सब मिलकर अचार वचार रखते थे।

0: हाँ, मामा है, मामी है और मेरा भाई है जो अभी बाहर नौकरी करता है तो अभी है नहीं. बट दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यू नो बचपन कह सकते हो कि नानी के घर जाना है. आप लोगों ने सब लोगों ने वो फील किया होगा कि नाना के घर जाना है, मामी के घर जाना है, मामा के घर जाना है. तो जो हम लोग बैग पैक करके भागते थे ना, वही फीलिंग आ जाए कि मैं मतलब आई कैन जस्ट एक्सप्रेस, में बता नहीं पा रही हूँ मुझे क्या फील हो रहा है. आई कैन जस्ट फील इट. और ये खिड़की जो देख रहे हैं आप लोग ऊपर ही, यहाँ पे लोग बैठ के, मैं, मेरी दीदी, हम लोग सारे कजिन, सारे बहन यहाँ बैठ के खेलते थे, बहुत मजा करते थे.
1: शिवानी चक्रवर्ती के ननिहाल यानी कालना में ये उनका कुलदेवी मंदिर है जहाँ पर हमेशा से उनका परिवार पूजा करता है. तो इस ठाकुर बाड़ी में उन्होंने पूजा की और अपने पितरों का आशीर्वाद पाया.
0: आवाज़ मेरी के साथ.

0: अगला पड़ाव है कुछ मीठा हो जाए। भाई बंगाल अपनी मिष्टी दोई के लिए जाना जाता है और यहाँ पर मिलती है ऑथेंटिक मिष्टी दोई। और देखिए शिवानी कैसे इस मिष्टी दोई का मजा उठा रही है।
1: सो दिस इज माई फेवरेट थिंग मिष्टी दोई। और कोलकाता आने के बाद, मामा के घर आने के बाद अगर मैं मिष्टी दोई ना खाऊं तो ट्रिप अधूरी है। और इसकी बहुत कहानियां हैं। बचपन में मैं बहुत लड़ाई करती थी, अभी तक मामी को याद है कि मैं इसकी हंडी में आती थी, बड़ी हंडी, तो मामा सबके लिए लाते थे, तो मेरा कहना था कि ये सिर्फ पूरा मैं ही खाऊं। और उस समय मैंने एक दिन वो तोड़ ली। तो ऐसे छोटे मोटे किस्से किए हैं मैंने नानी के घर में। कहते लाड़ होता है नानी के घर का, मामा के घर का, वो मैंने इन्जॉय किया और अभी भी करती हूँ। सो प्लीज़ लेट मी इन्जॉय माई दही एंड माई यू नो माई मीट।

0: अगले दिन शिवानी निकल पड़ी कोलकाता, क्योंकि आज वो जा रही है दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए और इसलिए उन्होंने खास साड़ी पहनी है।
1: नमस्कार। सो कोलकाता का डे 216 और अभी मैं जा रही हूँ वो जगह जहाँ पे बिना किए मेरी ये जो कोलकाता की जर्नी है वो इनकम्प्लीट रहे, दक्षिणेश्वरी काली। और यहाँ से थोड़ा दूर है आपको और जैम की वजह से हमें थोड़ा पहले निकलना पड़ रहा है और मुझे शाम वाले दर्शन मिलेंगे। आई होप कि एक मुझे आरती मिल जाए क्योंकि मैंने सुना आरती देखना इट्स वेरी यू आर वेरी लकी टू गेट द आरती। लेट्स सी। और हाँ, अंदर तो कैमरा दिख जाएगा बट बाहर जितना भी मैं आपको दिखा सकती हूँ वहाँ का वाइब, वहाँ का जो माहौल आई ट्राई टू। ये स्पेशली इसलिए भी होती है माँ काली हम लोगों की और बॉन्ग्स की कह सकते हैं, हमारी कह सकते हैं क्योंकि वो मेरी कुलदेवी है माँ काली। और कहते हैं कि कुल के लिए प्रे करना हो और कुछ विश मांगना हो तो सबसे पहले कुलदेवी के पास ही जाना चाहिए और मैं इतनी पास आके अगर उधर ना जाऊँ तो ये मेरे लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उधर जाऊँ और जो है माँ लास्ट में I was very, very small that time. I was a kid. School में थी आई गेस 10th में या 11th में होंगी एंड मैंने सालों बाद आना और दर्शन करना और कोलकाता की स्ट्रीट्स देखना और यू नो वो छोटी छोटी

0: चीजें जैसे सिंगारा खाना, चौप खाना, फुचका खाना. फुचका वेदर मेरा बचा हुआ है अभी. मैं ठीक है चलिए ठीक कर गई, चीजें करेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो इतने सालों का जो नॉस्टैल्जिया का एक बैगेज है वो अब एकदम बर्स्ट आउट हो गया है मेरा. कहीं भी जाऊंगी तो ये था वो था. स्टिल आई रिमेम्बर सम प्लेसेस, जैसे देख के याद आता है कि अरे ये तो वो है ना, यहाँ पे ऐसा था ना, वहाँ पे सब. ऑल्दो इट चेंज्ड अ लॉट, कोलकाता इज लाइक अभी तो वैसे ही वो लार्जेस्ट सिटी है, बट अभी तो इतना सुंदर अलग हो गया. उन्हें ट्रैफिक जाम इज द बैड पार्ट, बाकी तो सब ठीक है. कोलकाता इज ऑलवेज कोलकाता. जॉय कोलकाता, जॉय बांद्रा.
1: कालना से दक्षिणेश्वर की यात्रा में उन्होंने रास्ते के रोचक नजारों को देखा. और फाइनली पहुंची दक्षिणेश्वर मंदिर. दक्षिणेश्वर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की.
2: ढाक

0: वैसे यहाँ पर उन्होंने एक खास चना चूर खाया। चना चूर और झालमुरी कोलकाता का बहुत पॉपुलर स्नैक है, जब भी कोई आता है तो इसका स्वाद जरूर खाता है।
1: खाके देखिए, झालमुरी तो हर जगह मिलता है, ये
2: अच्छा
1: तीखा बनाओ
2: नहीं।

कोलकाता आने के बाद, अच्छा अच्छा खाने के बाद, मासी के घर में बहुत अच्छा अच्छा खाने के बाद, अब हम निकल पड़े हैं शॉपिंग। और जो कि पहले का जो माहौल होता है कोलकाता का, सॉसी, अभी मैं जा रही हूँ न्यू मार्केट, आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ का हाल। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। और आप लोगों को थोड़ा गर्मी भी यहाँ का दिखा देती हूँ और धूप भी, लेकिन सी दैट यू नो पैशन ऑफ घूमना एंड पैशन ऑफ शॉपिंग, वो तो आप लोगों को शुरू से पता है। दैट गर्मी का दिन कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्म लगा, बट से शॉपिंग करेंगे, घूमना तो है, अब इतने कम टाइम किए हैं तो आई कांट वेस्ट टाइम। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।

0: बाजारों में और कोलकाता के कुछ और नजारों को घूमकर आखिरकार खत्म हुई शिवानी चक्रवर्ती की कोलकाता यात्रा। कोलकाता में अब दुर्गा पूजा की धूम मच चुकी है, पंडाल सज चुके हैं, माँ दुर्गा पधारने वाली है। ऐसे में ये तैयारियों का नजारा भी शिवानी ने लिया और ढेर सारी यादों के साथ वापस आ गई मुंबई, क्योंकि उन्हें अपने सीरियल की शूटिंग जो करनी है। तो शिवानी की बंगाल यात्रा के खास पल दिखे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियों में, जो हमेशा कोशिश करता है कि आपके कलाकारों का एक ऐसा अंदाज दिखा सके जो उनके सीरियल में नहीं दिखता। कोलकाता से नूपुर मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: ट्विस्ट और टर्न्स से भरी होती है टीवी सीरियल्स की दुनिया, जहां हर मोड पर एक नया ड्रामा दर्शकों को हैरान करता है। किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना काफी मजेदार होगा। तो चलिए चलते हैं सीरियल्स की इस दिलचस्प दुनिया में।
2: अनुपमा,
3: उसके सीरियल अनुपमा में दिग्विजय अनुपमा के साथ पहुंच गया है मंदिर अपनी बेटी साबी के जन्मदिन की पूजा करने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसी मंदिर में आरवी यानी कि उसका बेटा रणविजय भी आया है। इसी बीच वहां पर आ जाते हैं राही और प्रेम भी, जो आकर अनुपमा को देते हैं जानकारी आरवी के वहां होने की।
4: मम्मी आप?
5: अरे अंकल आप कब आए?
6: मैं बेटा बस अभी सवेरे ही थोड़ी देर पहले आया।
7: तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
4: अरे हम तो आरवी के साथ आए हैं।
8: आरवी किधर है?
5: वो रहे

0: यू बेटा।
1: थैंक यू और बेटा एक साथ नहीं बोलते मैम।
0: हमारे कैफे के नए पार्टनर यही है।
2: आप अनुपमा जी हैं?
3: हाँ।
2: राही की मॉम।
4: भाई आरवी को इस तरह सावी की तस्वीर सामने रखकर पूजा करता देख अनुपमा को यकीन हो गया कि ये रणविजय है, यानी कि दिग्विजय का बेटा। ऐसे में अनुपमा तो हैरान है ही, प्रेम और राही वो भी दोनों हैरान है कि इतने दिनों से आरवी के साथ होते हुए भी वो ये पहचान नहीं पाए कि आरवी दिग्विजय का बेटा है। खैर दिग्विजय तो गुस्साया हुआ है, वो तो आरवी से बात भी करना चाहता है लेकिन अनुपमा उसे रोक लेती है। इतना ही नहीं, दिग्विजय ने तो प्रेम, राही और अनुपमा तीनों को पहले ही आगाह कर दिया है कि आरवी यहाँ उन्हें बर्बाद करने आया है।
5: राही और प्रेम को अपने बेटे के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता।
6: सर,
5: तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज नहीं, आज मेरी बहन का बर्थडे है और आज उसे याद करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो इंसान भी नहीं जिसकी वजह से आज वो मेरे साथ नहीं है। मैंने तुमसे पूछा।
2: आई सेड नॉट टुडे।
5: मिस्टर दिग्विजय सूद, मिस्टर दिग्विजय सूद,
3: सर घर चल के बात करते हैं। सर सावी के नाम का हवन चल रहा है। सर सावी के लिए क्या नहीं, सर घर चल के बात करते हैं। सर चलिए चलिए सर।
4: आज तो आरवी बिना कहे वहाँ से चले गए लेकिन रणविजय का गुस्सा अनुपमा ने भांप लिया है। एक तरफ रणविजय का गुस्सा है तो दूसरी तरफ बंकू के लापता होने की खबर सभी घर वालों को कर देगी परेशान।
7: बंकू कहीं जा रहा है क्या?
8: बंकू
7: पता नहीं अनुमा, अभी जल्दी जल्दी में बैग लेकर कहीं जा रहा था।
0: अरे नौकर जाते हुए गहने वहने चोरी करके जाते हैं, कैफे में कैश वैश चेक कर लेना एक बार।
9: क्या कहा तूने बंकू से?
0: एक मामूली वेटर को अपनी जिंदगी का गुजारा करना बहुत महंगा पड़ता है। अरे इतना खर्चा पानी है, कैसे बीवी बच्चे का ख्याल रख पाएगा तू?
9: बंकू
10: तो मुझे छोड़ के क्यों चले गए? बंकू
11: नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं।
10: तो बैग तो बंकू के पास है।
12: बीच रास्ते में चल रहा था, गाड़ी उड़ा के चली गई। पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया।
13: महादेव इंसान।
7: अच्छा ठीक है सपना जी, एक आप बात बताइए, आप जब जंगल गई थी तो अपनी इन फौज के साथ में गई थी, इस फौज के फौजदार कौन है? बजीर सिंह जी। अब आपको वाकई ऐसा लगता है कि बजीर सिंह जैसे काबिल अफसर की नाक के नीचे से, इनकी आंखों के सामने से हम जंगल जाएंगे, वहां से आप जैसी कहानी बता रहे हैं, वहां से कोई
4: कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में जंगल में सारी छानबीन करने के बाद सपना अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गई है महादेव के घर में और देखिए कैसे वो महादेव से सच जानने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में इंस्पेक्टर वजीर को आ जाता है गुस्सा और देखिए कैसे वो महादेव के सामने ही उनके बेटे धीरज का कॉलर पकड़ लेता है और देता है धमकी घसीट कर जेल ले जाने की।
7: अगर आपको
4: इतना ही नहीं, वो तो थर्ड डिग्री देने का भी ऐलान कर देता है। बस फिर क्या, ये सुनते ही महादेव अपने आप को रोक नहीं पाए और देखिए कैसे ढाल बनकर अपने बेटे और इंस्पेक्टर के बीच में खड़े हो गए।
7: किसी काम के नहीं है फिर ये।
14: मुंह कम खोल, समझा?
7: और मैम मैं तो कह रहा हूँ
15: इसे मुझे हिरासत में लेने दो।
4: गर्मा गर्मी और बढ़ती, सपना ने तो रोक ली लेकिन सपना सबूत के साथ आई है। तभी तो देखिए कैसे उसने महादेव को वो फुटेज दिखा दिया जिसमें उनकी गाड़ी रिकॉर्ड हुई है। बस फिर क्या, ये देखते ही कहीं ना कहीं महादेव और उसका पूरा परिवार एक पल के लिए तो डर गया लेकिन महादेव को पूरा यकीन है कि उनका पूरा परिवार साथ में है। तभी तो उन्हें पहले ही पता था कि अगर ये किस्सा सामने आया तो सभी को मिलकर क्या जवाब देना है।
7: दोनों बहुओं के साथ खाना खाने के लिए रिजॉर्ट में गए थे, ये गाड़ी फिरू चला रहा था, बाकी हम सब लोग घर के अंदर थे। हम बता चुके हैं ये वाली बात आपको पहले।
3: और तुम्हारे पिछले बयान के हिसाब से ये लोग रिजॉर्ट छोड़कर घर पर लगभग 11:30 तक पहुंचे, है ना?
7: ये भी बता दिया था हमने आपको।
3: हमारे एक सीसीटीवी कैमरा ने तुम्हारी गाड़ी को जंगल में जाते हुए कैप्चर कर लिया।
4: भाई महादेव के कहे अनुसार सभी ने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी जो एक दूसरे से मिलती हुई है। ऐसे में सपना हैरान है, लेकिन सपना ने भी ठान ली है कि वो सच उगलवा कर रहेगी, चाहे बातों से या फिर मारपीट से। देखना होगा उसमें वो कामयाब होगी या नहीं।
5: हमारे लिए जरूरी पड़ा।
3: बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी गलती से कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। तुम लोग जितनी भी कहानियां बना लो, लेकिन पीछे सबूत तो छोड़ गए। लेकिन अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी।
8: नर्क के दरवाजे तक पहुंचाऊंगी मैं तुम्हें।
10: धीरज, धीरज वो तुम्हें ले जाएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे।
13: ये फितूर तेरा।
4: स्टार प्लस के सीरियल ये फितूर तेरा में सौम्या कॉलेज पहुंच तो गई है, लेकिन थोड़ा लेट से आई है और ये बात उसके पापा को पता चल गई है और सौम्या इस बात से अनजान है कि उसके कॉलेज में उसके पापा पहुंच गए हैं। ऐसे में सौम्या अपने पापा को बताती है कि वो जीत की बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने गई थी। बस फिर क्या, सौम्या के पापा सौम्या पर नाराज होने लगते हैं।
5: कहा था ना इन मामलों में मत पड़ना, जब जीत का टाइम आता है तो क्या हो जाता है तुम्हें, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है तुम्हें, और तुम्हें इतना भरोसा कैसे है कि जीत बेगुनाह है। बेटा तुम बहुत छोटी हो, दुनियादारी की समझ नहीं है तुम्हें, तुमने उस जीत का सिर्फ एक साइड देखा है, हो सकता है कि उसका एक दूसरा साइड है जो तुमने नहीं देखा है अभी तक। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जीत जवान खून है, उसका कोई परिवार नहीं है, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तुम्हें याद है ना तुम्हारी ताई जी ने उसे रात बिरात घर से बाहर जाते हुए देखा, और मैंने खुद उसे नशे में धुत देखा है। चलो मान लिया कि नशे में उसने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन नशे में एक जवान लड़का कुछ भी कर सकता है, कुछ भी।
4: भाई सौम्या के पापा तो जीत को लेकर गलत फहमी का शिकार है, लेकिन सौम्या को पूरा विश्वास है कि जीत कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। ऐसे में देखिए कैसे सौम्या अपने पापा को ना सिर्फ विश्वास दिलाती है, बल्कि अपने पापा को लेकर जाती है उस जगह पर जहाँ पर हमेशा रात को जीत जाता है।
11: 10-15 दिन से रोज रात को आकर एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ो, एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आओ, लेकिन तुम सब शैतान बंदर, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा तुम लोगों का।
5: तो जीत रोज रात को यहाँ आता है।
10: जी पापा, इन बच्चों के एग्जाम्स के लिए।
11: क्यों पढ़ाई में ध्यान नहीं है बताओ?
16: वो हमने सुना कि ये गंदी दीदी आपको जेल में डालना चाहती है।
17: सब जानते हैं कि आप बैड नहीं हो भैया, तो बेस्ट हो, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे।
18: कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे।
19: अरे अरे शांत, झांसी की रानी हो, रुक जाओ,
11: थम जाओ, चिल करो। आपके भैया ने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आपके जीत भैया को कोई जेल में क्यों ही डालेगा भला।
4: कहीं ना कहीं सौम्या के पापा को यकीन तो हो गया है कि जीत अच्छा लड़का है। इसी के साथ सौम्या ने अपने पापा को ये भी बताया कि वो सोनाली से मिली थी और सोनाली ने जीत पर झूठा इल्जाम लगाया है। ये बात सोनाली ने खुद कही है। सौम्या तो शौर्य का सच सामने ला कर ही रहेगी, जिसका उसको बड़ा भुगतान भी करना पड़ेगा, क्योंकि शौर्य के गुंडे उसे घेर लेंगे, जहाँ पर जीत बनकर आएगा सौम्या का रक्षक भी और बदलेगी कहानी जीत और सौम्या की।
10: मेरा हाथ थाम लीजिए सर।

0: कलर्स के सीरियल मन्नत में धैर्य को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि धैर्य ने गुनाह किया है और उस पर उसे पछतावा भी हो रहा है। ऐसे में मन्नत और विक्रांत चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे।
1: आगूंगा नहीं, मैं आप लोगों से ना खुद से और ना अपनी गलतियों से माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है। शायद मैं तुम सबका गुनहगार हूं, इस बात का एहसास है मुझे। काश मैं अपने अंदर झांक कर अपनी नफरत को पहचान पाता, उसे लड़ पाता, उसको हरा पाता। सही कहा तुमने, शायद विशाखा कुमार की परवरिश आड़े आ। पर क्यों करें हम किसी को भी ब्लेम, गलती मेरी ही थी। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूं।
0: भाई धैर्य ने जो भी किया है वो माफी के लायक है तो नहीं, बस वो यही उम्मीद लगा रहा है कि उसकी बेटी दुआ उसे नफरत ना करे। खैर विक्रांत और मन्नत वो तो धैर्य से नफरत करते हैं, लेकिन दुआ नफरत करेगी या नहीं इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं है।
1: मैं जानता हूँ मुझसे गलतियाँ हुई, बहुत गलतियाँ हुई। कोशिश कीजिएगा दुआ मुझसे नफरत ना करे।
2: कोशिश करो ना, तो भी तुम्हारे लिए नहीं अपनी बेटी दुआ की खाते। पर दुआ तुमसे नफरत करेगी या तुम्हें बुरा सपना समझ के भूल जाएगी, ये दुआ के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं।
3: धैर्य ने घुटने टेक दिए, पर्यंत नहीं है, मेरे बदले की शुरुआत है।
0: धैर्य भले ही मन्नत और विक्रांत की जिंदगी से चला गया हो, लेकिन अंकित ऐसा बड़ा कदम उठाने वाला है जिससे विक्रांत के ऊपर इल्जाम लगेगा।
4: और मेरी मान्यता का खून किया है विक्रांत सलूजा ने, और मैं चाहती हूँ कि विक्रांत सलूजा मेरी मान्यता के खून के इल्जाम में जेल जाए।
5: मेरी फैमिली ने बहुत सारे दुख देखे, तो कुछ ऐसा करिए जो हमारे सारे दुख ना दूर कर दीजिए।

छोटे पर्दे पर जल्द ही दस्तक देने वाला है नया रियलिटी शो धमाल विद पति पत्नी और पंगा का सीजन 2। बीती शाम हुआ शो का लॉन्च, जहां होस्ट मुनव्वर और सोनाली बेंद्रे के साथ शो की जोड़ियों ने अपने डांस का टैलेंट दिखाया और बिखेरे मनोरंजन के रंग। तो चलिए देखते हैं लॉन्च इवेंट के ये मजेदार नजारे।

0: कलर्स टीवी पर चल शुरू होने जा रहा है धमाल विद पति पत्नी और पंगा का सीजन 2। ऐसे में बीती शाम हुआ इसका लॉन्च, जिसमें नजर आए सभी कंटेस्टेंट्स और होस्ट। होस्ट हैं सोनाली बेंद्रे और मुनावर, जो एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का तो लगाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हैं जोड़ियां भी, यानी कि पति और पत्नी की ये जोड़ियां, जो पंगा भी करेंगी, डांस भी करेंगी, एंटरटेनमेंट भी करेंगी और होगा ढेर सारा धमाल।
1: जोर मचाओ, हमारे को नया सीजन हुआ है, पति पत्नी को पंगा हुआ है, क्या आप एक्साइटेड हो?
2: तो डरे हुए
1: पंगा शुरू किया जाए।
3: सबसे बड़ा पंगा मुझे लगता है यहाँ होने वाला है, ये 35 साल के
1: बड़ा से बड़ा से।
4: अर्जुन बहुत अच्छा पति है, बट टीवी पर
0: ज्यादा इधर भी करेंगी, एंटरटेनमेंट भी करेंगी और होगा ढेर सारा धमाल।
1: जोर मचाओ, हमारे को नया सीजन हुआ है,
2: तो डरे हुए
1: शुरू किया जाए। सबसे

0: होस्ट हैं सोनाली बेंद्रे और मुनावर, जो एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का तो लगाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ है जोड़ियां भी, यानी कि पति और पत्नी की ये जोड़ियां, जो पंगा भी करेंगी, डांस भी करेंगी, एंटरटेनमेंट भी करेंगी और होगा ढेर सारा धमाल।
1: जोर मचाओ, हमारे को नया सीजन हुआ है, पति पत्नी को पंगा हुआ है, क्या आप एक्साइटेड हो?
2: तो डरे हुए
1: शुरू किया जाए।
3: सबसे बड़ा पंगा मुझे लगता है यही होने वाला, ये 35 साल के
1: बड़ा से बड़ा से।
4: बहुत अच्छा पति है, बट टीवी
0: ज्यादा इधर भी करेंगी, एंटरटेनमेंट भी करेंगी और होगा ढेर सारा धमाल।
1: जोर मचाओ, हमारे को नया सीजन हुआ है, पति पत्नी को पंगा हुआ है, क्या आप एक्साइटेड हो?
2: तो डरे हुए
1: शुरू किया जाए।
3: सबसे बड़ा पंगा मुझे लगता है यही होने वाला, ये 35 साल के
1: बड़ा से बड़ा से।
4: बहुत अच्छा पति है, बट टीवी
1: ज्यादा इधर।
5: एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां।
6: थैंक यू। वैसे आई
7: मस्ट से मीडिया को देखकर मैं एक बात ध्यान में आती हूँ, इट इज अ बिग सिमिलैरिटी मीडिया में और हमारे शो, पता ही क्या है, दोनों को पंगा पसंद है।
5: मीडिया का तो पता नहीं, लेकिन सोनाली मैम को पंगा इतना पसंद है ना, वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, इनके लिए है लव एट फर्स्ट फाइट। हाँ, इतना जगह
7: ये लव वाला धमाल पहले से ज्यादा बिल्कुल दुगना। और हमारे जो कपल्स हैं उनका तो क्या कहना, और कपल्स की जो केमिस्ट्री है, उनकी जो कंपैटिबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए जो रियलिटी चेक करते हैं ना, वो भी डबल मुश्किल, डबल धमाल, बेसिकली डबल दबंगा।
5: और इसी के बीच में, पति पत्नियों के बीच में वो नोक झोंक तो होगी ही, बीटी सी कपल्स की झिझक के साथ उनके राज भी खुलेंगे।
7: और ऐसे पंगे होंगे कि क्या बताएं।
0: तो भाई एंटरटेनमेंट और पंगे के लिए सभी दर्शक तो तैयार है, लेकिन फिलहाल इनके लॉन्च के नज़ारे देखते हैं, जहां पर सभी जोड़ियों ने अपने डांस का धमाल दिखाया। एक एक कर जोड़ियों का ये डांस स्टेशन हम भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जोड़ी आई अर्जुन नेहा और साथ आए शब्बीर कांची, और देखिए कैसे दोनों एक दूसरे की ताल से ताल मिला रहे हैं, और शुरू हुआ है इनका नच बलिए।
5: जो सालों से टेलीविजन के सबसे फेवरेट स्टार्स हैं, लेट्स वेलकम शब्बीर आलूवालिया एंड कांची।

0: छब्बी एक बहुत हॉट लग रहा है, ऐसे ही थोड़ी शादी की। आपको आदत है इस कॉम्प्लीमेंट्स की, देखने के कोई टैक्स नहीं लगता है, तो प्लीज पांच लाइफ टाइम मेंबरशिप इधर की ही है गाइस।
1: मुझे हमेशा बोलते हो क्या गंदी फोटो डाली है, वो तो ताना हुआ।
2: मैंने कभी दी या नहीं तुम्हें ताना,
1: झूठी हो यार।
2: अच्छा घर चल के बात करें।
3: अपनी अपनी बीवी नंबर वन संग आए परमीत और विवेक, यानी कि दिखी अर्चना परमीत और दिव्यांका विवेक की ये जोड़ी, और इनके डांस के तो क्या कहने भाई, एंट्री में ही इतना धमाका है तो सोचिए शो में क्या कुछ होने वाला है।

0: भैया 35 साल चल रही हमारी शादी, अब ये मुनव्वर हमारी तुड़वा कर ही रहेगा।
1: थैंक यू मुनव्वर।
2: इधर नहीं मिला ना अटेंशन, ऐसा ना हो कि कोई और चिड़िया उड़ा ले जाए।
3: अगली जोड़ी है राहुल दिशा और मनोज सुरभि की, तो ये जनाबे आली पहुंच गए हैं स्टेज पर दिखाने अपने डांस और पंगों का धमाल।

0: पत्नी से पहली बार कहाँ मिले थे?
1: अरे भाई आप बताइए,
2: बताइए ना कहाँ मिले थे?
3: आपको याद नहीं कि हम पहली बार कहाँ मिले थे?
4: नहीं हमें क्या, आप बताओ कहाँ मिले।
2: मंत्री जी फंस गए।
3: इसी के साथ सोलो जोड़ी स्टेज पर एंट्री करती है, जो कि है दीपिका और रोहित की जोड़ी, जिन्होंने अपने डांस से चार चांद लगा दिए। भाई दीपिका तो बेहद अच्छी डांसर है ही, आज तो रोहित भी उनकी ताल से ताल मिलाते नजर आए।

0: बचाओ, हमारे को नया सीजन हुआ है, पति पत्नी को पंगा हुआ है।
1: रोहित, आपको कम बोलने की आदत है या दीपिका बोलने नहीं देती?
2: नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी सोच लेती हूँ, जल्दी बोलती हूँ।
1: मतलब आपका कहना है कि वो जल्दी नहीं सोचते?
2: मतलब ही टेक्स लॉन्ग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड आई एम वेरी फास्ट फास्ट फास्ट।
3: जब हमारी शादी हुई थी ना, तब बोला था कि मैंने वो लड़का चुना है जो मुझे सुनता है।
1: दीपिका ये तो बोलने दो।

0: भाई ट्रेलर इतना मजेदार है तो सोचिए पिक्चर क्या होगी, यानी कि शो में क्या कुछ होने वाला है। वैसे सभी ने साथ साथ मिलकर फोटोज खिंचवाई, दिखी जोड़ियों की केमिस्ट्री, तो आप सब भी हो जाइए तैयार पति पत्नी और पंगा के साथ साथ एंटरटेनमेंट और धमाल देखने के लिए, जो कि 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा।
1: देश का हर पति अपने माता पिता के साथ साथ पत्नी की भी ड्यूटी पे रहे।
2: मनोज जी बता दीजिए किसकी पत्नी की ड्यूटी।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में घर से भागी मायरा अब कबीर के साथ रहती है और इसी बीच बिगड़ गई है मायरा की तबीयत, जहां कबीर उसकी सेवा में जुटा है। लेकिन कबीर और मायरा दोनों अब अपने अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे हैं।
0: मम्मी पापा की याद में तड़पे कबीर और मायरा, पापा को याद कर बिगड़ी मायरा की तबीयत, प्यार में छिपा परिवार के लिए दर्द। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अचानक मुंबई में बिगड़ गई है मायरा की तबीयत और ऐसे में कबीर उसका ख्याल भी रख रहा है। तभी तो देखिए कैसे उसे ठंड ना लगे इसलिए कबीर पंखा बंद कर रहा है। इतना ही नहीं, मायरा को तो अपने माँ के नुस्खे भी याद आ रहे हैं। कितने बहाने
4: दो जा को। अब मेरी सॉक्स में प्याज भी तो रखो।
5: चाहे बुखार में तुम्हारा दिमाग भी
4: कबीर, जो बोल रही हूँ करो ना यार, ये कोल के लिए मैं मम्मा कर चुका है। लम्हों की सारी
5: बातें तड़पाती हैं। ओके जाता हूँ।
0: याद ही रह जाती। यहाँ कबीर प्याज लेने चला गया तो वहाँ मायरा लॉकेट में अपने मम्मी पापा की तस्वीर देखकर हो रही है इमोशनल। इसी बीच वहाँ पर कबीर भी आ जाता है जो मायरा को अपनी मम्मी पापा की तस्वीर देखकर इमोशनल होता हुआ देख रहा है।

0: मैं प्यास ले आया।
1: हमने घर छोड़ा है
2: कबीर, मुझे मंडी नहीं लगानी है।
0: हम मायरा, मैं तुमसे बहुत प्यास करता हूँ। सॉस में प्याज डाल रहा हूँ।
2: पूरा का पूरा प्याज नहीं डालना है
0: तो
2: प्याज काटना पड़ेगा।
0: All thanks to God. हम दोनों ना एक नंबर के चल रहे हैं। हम कितनी बार ढाबे पे जाते हैं, वहाँ पे प्याज ऐसी।
3: मायरा और कबीर घर से भागकर आ चुके हैं। काफ़ी छोटे हैं दोनों, दोनों को पता नहीं है कैसे लाइफ कैसे वर्क करती है, वर्ल्ड कैसे वर्क करता है। दोनों फिगर आउट कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं ताकि एक दूसरे को हर्ट ना करें, और यू नो अकेले दे फाइट देयर ओन बैटल्स। बट ऐसा नहीं है, एक टाइम पर आकर दोनों चीज़ें कन्फेस करते हैं कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो वो सारी चीज़ें हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है जो आपको देखने मिलेगा।
4: बिल्कुल सही कहा, दोनों ही अपने आप को झूठ बोल रहे थे कि इन्हें मम्मी पापा की याद नहीं आ रही, पर दोनों ही अपने माँ बाप के लिए तड़प रहे हैं। हालांकि कबीर मायरा का बखूबी ख्याल रख रहा है, सिर पर ठंडी पट्टियां रख रहा है, और मायरा ये सब देख भी रही है। इतना ही नहीं, कबीर तो मायरा के लिए नारियल पानी भी लाता है, जिसे देखकर मायरा और भी इमोशनल हो जाती है, और उसी इमोशंस में आकर वो कबीर के सामने अपना दर्द बयां कर देती है, और कबीर भी उसके दर्द को बखूबी समझ रहा है।
0: मैम को मिस कर रही हूँ।
3: रियलाइजेशन ये है कि मायरा को भी घर की याद आ रही थी और कबीर को भी घर की बहुत याद आ रही थी, उसकी फैमिली की, पा की, नंदू की, बड़ी दादी की, ताऊ की, और वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर मिस कर रहे थे और एक दूसरे को बता नहीं रहे थे कि हम मिस कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे को हर्ट ना हो कि हम लोग साथ में भाग कर आए हैं, तो सामने वो ये ना सोचे कि हम एक दूसरे को बिट्रे कर रहे हैं। और फिर एक मोमेंट आता है जब वो एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं कि हम दोनों घर को मिस कर रहे हैं, तो ये वो मोमेंट हमने जस्ट शूट किया है और हम ख़त्म करके अभी उठे हैं।
4: भाई मायरा के दर्द को देखते हुए कबीर ने मायरा को गले लगा लिया, और मायरा के आंसुओं के साथ साथ वो खुद अपने आंसू भी पोंछ रहा है। इतना ही नहीं, वो अपने आंसू मायरा से छिपा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। ऐसे में उसने मायरा को अपना दर्द भी बताया, साथ ही मायरा ने तो अपने आप को कसूरवार भी ठहरा दिया, क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा को न जाने क्या क्या बोला था। ऐसे में कबीर भी इस बात पर हामी भरता है, क्योंकि मायरा ही नहीं बल्कि कबीर ने भी अपने माँ बाप को बुरा भला बोला है। बस फिर क्या, ये सारी बातें सुनकर मायरा गिल्ट में चली गई, और गिल्ट में आकर अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगी, क्योंकि वो अपने आप को सजा देना चाहती है।
2: मायरा, क्या
0: 18 years हमारी हर बात मानी. Wow.
2: Papa was right. हम एक नंबर के स्पॉइल ब्रांड्स हैं.
0: हम खुद को कूल समझते थे, पर रियल में हम एक सेकंड में नाराज हो जाने वाले टिपिकल रिश्तेदार निकले.
2: I know, right? हमने अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया और उन्हें इतनी बड़ी बात समझने के लिए एक मिनट भी नहीं दिया.
3: हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि हमने जो भी किया है बहुत गलत किया है. अब हम दोनों मिस कर रहे हैं फैमिलीज को, बट दोनों डिलेमा में है कि हमारे घर वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं हमें घर जाने से पहले. तो बस वही सोच रहे हैं कि जाए या ना जाए. और घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हम वापस कैसे मैनेज करेंगे चीज़ें, वापस आना रहना. तो बस वही डिस्कस कर रहे हैं अभी और डिलेमा में कि जाए या ना जाए. हम सब ने देखा है कि हमारी फैमिलीज हमें रिगार्डलेस बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस इज़ देयर पार्ट. हमारा काम है, हमने गलती की है, हम उसे सुधारेंगे. और इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है कि हम कैसे जाएंगे, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जाने के बाद हम कैसे हैंडल करेंगे फैमिलीज़ को और एक दूसरे को, कि मायरा और कबीर अगर वापस जाते हैं तो क्या वो उनकी रिलेशनशिप कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और फैमिलीज़ को कैसे हैंडल करेंगे. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है.
4: अब मायरा हो या फिर कबीर, दोनों को ही अपनी गलती का एहसास तो हुआ है और दोनों ने तय भी किया है कि वो अब वापस अपने घर जरूर जाएंगे. लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर भी है कि उनके मम्मी पापा उन्हें अपनाएंगे या नहीं. इसी बात को लेकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे साथ दे रहे हैं. अब देखना होगा जब मुंबई से वापस अपने घर जाएंगे तो क्या इनके प्यार को इनके माँ बाप समझ पाएंगे.
5: बेटियाँ पाँव नहीं छूती है बेटा.
2: ये सब रूल्स अच्छी बेटियों के लिए होते हैं पापा, पर मैं वो बेटी हूँ. सॉरी बोलने का हम तो नहीं है, पर फिर भी मेरी सॉरी.
5: कुछ भी मत बोलो प्लीज, अपनी सॉरी अपने पास रखो. हमें जो चाहिए था हमें मिल गया.
6: अपनी गलती मानने वाले तो माता रानी के स्पेशल फेवरेट्स होते हैं.
4: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
7: सीरियल पति ब्रह्मचारी में नवरात्रि सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और इसी बीच सूरज और ईशा ने इस बार साथ में डांडिया नहीं खेलने का फैसला लिया है. अब देखना होगा कि ऐसे में उनका फैसला चलता है या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आता है.
4: सूरज और ईशा की टशनेबाजी.

0: जोड़ी के डांस का क्या होगा, कैसे बनेगी जोड़ी?
1: देवर जी, देवर जी, और छुई मुझे की जोड़ी बना दे और इसे डांडे के ला दे, हम नीचे
2: करना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है।
3: ताई मां ने जारी किया फरमान। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में काव्या, रिया और बंटी के रिश्ते को लेकर सूरज और ईशा के बीच की टशनेबाजी भी बढ़ती ही जा रही है। दोनों ने तो साथ में डांडिया खेलने से भी मना कर दिया है। जरा देखिए कैसे दोनों में होड़ लगी हुई है, हर जगह पहले जाने की, इसलिए दोनों टस से मस नहीं हो रहे। ऐसे में पूरण और मोनिका ने प्लान बनाया, तभी तो देखिए कैसे पूरण ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया और चीख चीख कर सभी को पुकारने लगा, क्योंकि उसके पैर में चोट जो लग गई है। ऐसे में सूरज और ईशा ये सोचकर हैरान है कि आखिर चोट लगी तो लगी कैसे। बस फिर क्या, पूरन को उठाते वक्त मोनिका ने ईशा को बताना शुरू कर दिया कि आखिर कैसे पूरन को चोट आई है।
0: अरे उसे चलने लायक नहीं छोड़ा, डांस सिखा रही थी। अब जोड़ी के डांस का क्या होगा, कैसे बनेगी जोड़ी?
1: देवर जी, देवर जी, और छुई मुझे की जोड़ी बना देते और इसे डांडे के ला दे, हम नीचे
2: करना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है।
4: नहीं टाइम हो, हम
2: इस बार पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी लिए हमने।
5: हाँ, तो ईशा मतलब ये चाहती थी कि जिम्मेदारी ली है मोहल्ले को इस बार संभालने की, तो हमें ही जोड़े में डांस करना चाहिए डांडिया। तो सूरज मना करता है कि जो मुझ पे भरोसा नहीं करता, जो मुझसे बात छुपाता है, उसके साथ मुझे कोई जोड़ा बना के डांस नहीं करना है। तो ईशा को वो चीज़ें बहुत बुरी लगती है, और ईशा कहने भी चाहती है कि मैंने छुपाया नहीं था, मैं बताने वाली थी, बस थोड़ी सी देरी हो गई। तो इसी चक्कर में फिर वो चीज़ सूरज फिर चला जाता है और ईशा को बहुत हर्ट होती है, ईशा रोती भी, आंसू गिरते। फिर अंदर जाके देखते हैं तो मोनिका भाभी और पूरन भैया नहीं कर पाते परफॉर्म, तो इसी चक्कर में ईशा और सूरज को ही करना पड़ता है। और फिर ईशा सूरज को वो ताने भी मारती है कि देखा शायद माता रानी भी चाहती है हम ही करें, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो कभी एक बार में। तो फिर वो छोटे नोकझोंक हो रहे हैं, वो मतलब मन ही मन बातें चल रही है, दोनों मन ही मन लड़ाई कर रहे हैं। तो वही सीन था। अभी
6: सभी ऑडियंस को इंतजार है, सूरज ईशा डांडिया ना खेले, हीरो हीरोइन डांडिया ना खेले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो डांडिया खेलेंगे, बट वो वही है कि टशनबाजी में खेलेंगे।
3: अब सूरज तो जिद पर आ गया था, लेकिन ताई माँ के आगे सूरज और ईशा दोनों को ही हार माननी पड़ेगी और दोनों को ही साथ में डांडिया भी खेलना पड़ेगा। लेकिन सूरज अब भी ईशा के उस फैसले के खिलाफ है जो ईशा रिया और बंटी की किस्मत को लेकर लेना चाहती है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, जब सूरज अपनी बहन रिया के पास जाता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसे हमेशा खुश रहने की उम्मीद जताता है।
7: तो वादा कर, अपनी खुशी के लिए उठाए गए कदम पर ना तो तू कभी शर्मिंदा होगी और ना ही अपने आप को दोषी मानेगी। अरे खुश रहना हक है तेरा, और उसके लिए सर और नजर दोनों झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे?
5: मतलब हाँ, ऑफ कोर्स दिखने ही मिलेंगे, बट उससे पहले थोड़ा टशन में ही रोमांस चल रहा, बिकॉज इससे पहले भी ईशा को चोट लगी बट सूरज ने केयर तो करी। मतलब वो हस्बैंड वाइफ वाली चीज़ें है, बट एक पॉइंट ये है कि ईशा ने बात छुपाई और सूरज मान नहीं रहा है कि क्यों छुपाई। और दूसरी बात यह है कि रिया और बंटी को लेकर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग है, तो अब देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन आता है, मतलब सूरज की बात मानी जाती है या ईशा की बात।
6: कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सहमत रहेंगे मतलब कि सूरज से, और बहुत सारे लोग सहमत रहेंगे ईशा जी से, क्योंकि वहाँ पे दोनों अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें जीत है ऑफकोर्स प्यार करने वालों की होती है, तो शायद से बंटी और रिया की शादी हो जाए, बट ये भी हो सकता है कि उसके बीच में आकाश जो है कुछ गुलछर्रे उड़ाए, मतलब कि मस्ती मजाक करे आके, एंड पूरी शादी में मतलब हलचल मचा दे। तो अब देखने में ये मज़ा है कि बंटी रिया की जो शादी है उसमें सूरज ईशा दोनों ये आपस में मिलके शादी करवाते हैं या एक दूसरे के अपोज रह के शादी करवाते हैं, दैट्स ऑल।
3: फिलहाल तो रिया यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बंटी को भूल चुकी है, तो वहाँ ईशा बंटी से जानने की कोशिश कर रही है। क्या अब भी बंटी के दिल में रिया के लिए जगह है? जिसका जवाब बंटी बिना दिए ही वहाँ से चला जाता है। अब देखना होगा क्या रिया इस बात का पता लगा लेगी कि दोनों ही अपने दिल में दबे प्यार को मारने की कोशिश में लगे हैं।
8: माफ करना सूरज, अपने परिवार के लिए ये करना जरूरी है।
9: हे माता रानी, मेरी दोनों बहनों को हमेशा खुश रख।
3: मुंबई से कामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
10: उलझ जाए तो अपनों को कैसे बचाएंगे ईशा और सूरज?
11: सीरियल्स के सेट पर मचे हंगामों और पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरीज के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं पूरा होता है। लेकिन मनोरंजन का ये सिलसिला कल फिर जारी रहेगा और हम लेकर आएंगे कुछ और दिलचस्प और मसालेदार खबरें। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: इस बार भव्य होगा रामनगरी अयोध्या का दीपोत्सव। प्रमुख मार्गों से घाट तक दिखेगी रामायण की झलक। 7 नवंबर को 56 घाटों पर जलाए जाएंगे करीब 30 लाख दिए। देश भर में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज। दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। गरबा खेलने की भी की जा रही प्रैक्टिस। अंडमान निकोबार कमांड के 25 साल पूरे। श्री विजयपुरम में भव्य समुद्री स्वागत समारोह। विशाखापट्टनम से पहुंचा INSV नीलकंठ। 1965 से लेकर कारगिल का योद्धा। अब NIT कर्नाटक के बढ़ाएगा शोभा। कॉलेज कैंपस में पहुंचा रिटायर्ड फाइटर जेट MiG-21। वायुसेना के साथ रहा 6 दशक से ज्यादा लंबा सफर। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट। चंबा में हुई शानदार बर्फबारी। प्रशासन की सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
3: विजयदशमी से पहले प्रयागराज की सड़कों पर निकली रावण की भव्य शोभा यात्रा। निराले अंदाज में रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज। रावण की शोभा यात्रा में दिखे कई तरह के रावण। परंपरागत अंदाज में दिखे दशहरा की झलक। रावण की शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर फिर के लोग शोभा यात्रा देखने के लिए लगी लोगों की भारी भीड़। सैकड़ों साल पुरानी है प्रयागराज में रावण की शोभा यात्रा की परंपरा। सज धज कर रावण शोभा यात्रा में शामिल होते हैं कलाकार। प्रयागराज में होती है रावण की पूजा अर्चना। दशहरे पे कटरा रामलीला कमेटी नहीं करती रावण का वध, ना ही जलाया जाता है रावण का पुतला। प्रयागराज के ऐतिहासिक पजावा रामलीला में मुकुट पूजन। मुकुट की उतारे गए आरती। रामलीला मंचन के दौरान कलाकार पारंपरिक मुकुटों और आभूषणों को करेंगे धारण। पूजा से पहले मुकुटों की की, की साफ सफाई। 100 साल से अधिक पुराने हैं लाहौरी मुकुट। लाहौर के कारीगरों ने तैयार किया था।

झांसी की हुनरमंद बेटियां महिला सशक्तिकरण की बनी मिसाल, पढ़ाई के साथ साथ बना रही माँ दुर्गा समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं। चार बहनें पढ़ाई के साथ परिवार की 15 साल पुरानी मूर्ति निर्माण परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, करीब 150 प्रतिमाएं तैयार कर रही हैं। मिट्टी से लेकर रंगाई और सजावट तक खुद करती हैं सारा काम, एक प्रतिमा को तैयार करने में करीब 6 से 7 महीने का लगता है समय। काम के साथ साथ चारों बहनें कर रही हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सभी ग्रेजुएशन पूरे कर चुके हैं। अगरतला में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सख्त, कई इलाकों में चलाया वाहन जांच अभियान। पश्चिम बंगाल में जोर शोर से जारी है शक्ति पर्व की तैयारियां, पुरुलिया में बनाया जा रहा है विशाल पंडाल। भामूरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए तैयार किया गया है खास थीम, पाषाणी प्राण यानी पत्थरों में प्राण। इस थीम के जरिए पहाड़ के बीच मौजूद गुफा मंदिर में मां दुर्गा की आराधना और प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक पेश करने की कोशिश की जा रही है। पंडाल में सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा, उनके दाई और भगवान शिव और बाई और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। पंडाल के बीचों बीच पहाड़ के ऊपर एक गुफा मंदिर का स्वरूप तैयार किया गया है, इसी गुफा मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होंगी। पाली में गरबा को लेकर जोरदार तैयारी, बच्चों को दी जा रही है गरबा करने की ट्रेनिंग। बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी सीख रही हैं गरबा, भक्ति गीतों पे किया गरबा डांस। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां, रामनगर के 56 घाटों पे करीब 30 लाख दिए जलाए जाएंगे। रामायण थीम पे सजेगी अयोध्या, 20 सेल्फी पॉइंट्स और भव्य द्वारों की श्रृंखला बढ़ाए गए। अयोध्या में दिखेगा रामायण का भव्य संसार, पुष्पक विमान से फ्लोटस तक होंगे मुख्य आकर्षण। पुरी में महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, भगवान जगन्नाथ की उतारी गई मंगला आरती। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। केदारनाथ में खराब मौसम के बीच एयर एम्बुलेंस बनी संजीवनी, 50 से ज्यादा यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट। ऑक्सीजन की कमी के चलते बिगड़ी थी तीर्थयात्रियों की तबीयत, प्रशासन ने टीमें की तैनात। बीकानेर में विधायक रविंद्र भाटी का अनोखा स्वागत, 40 फुट लंबी मूछों की माला से किया गया स्वागत। उत्तर काशी में मुख्यमंत्री धामी ने काशी विश्वनाथ और श्री शक्ति माता मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। एलजीबी के सक्सेना ने लद्दाख पुलिस कर्मियों की विदाई और पासिंग आउट परेड में शिरकत की, लद्दाख को मिले 114 नए एसपीओस। उपराज्यपाल ने कर्मियों के आवास के लिए 24 2 बीएचके घरों का उद्घाटन किया, लद्दाख फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की आधिकारिक वेबसाइट का भी उद्घाटन हुआ। भदोही कारपेट एक्सपो में अनोखा कालीन पर उकेरी अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियां। कालीन में महान कवि हरिवंश राय बच्चन, अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की तस्वीर बनाई गई। गुवाहाटी पहुंचे एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन, एयरपोर्ट पे उनका हुआ भव्य स्वागत। भुवनेश्वर में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास और शिलानंद लाकड़ा का जोरदार स्वागत हुआ, लोगों ने फूलमाला पहनाकर जीत की बधाई दी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सल हिंसा के पीड़ितों के लिए मेगा कैंप का आयोजन हुआ, पीड़ितों को मुफ्त में दी गई कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण। असम के चूराचंदपुर में चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य की हुई जांच। कोयमा में कमजोर परिवारों के लिए अच्छी पहल, एनएसआरएलएफ और बीआरएसी इंटरनेशनल ने 4000 बेहद कमजोर परिवारों की मदद के लिए किया एमओयू पे साइन। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की गर्जना जारी, अमेरिका फ्रांस जर्मनी समेत कई देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वायुसेना की तरंग शक्ति की रफ्तार, आसमान में दिखा साझेदारी कदम। भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल, सुखोई मिराज 2000, तेजस जैगुआर और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमान आसमान में दिखाएंगे अपनी ताकत, 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज।

0: में पहली बार आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट 5.25 से 5.50 किया गया। होम से लेके कार लोन अब होंगे महंगे, बढ़ेगी आपकी ईएमआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 साल हुए पूरे, दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में उन्होंने की पूजा अर्चना, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सभी का कल्याण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिवलिंग की पूजा, जल चढ़ाया और नारियल पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प सभा में भी लिया हिस्सा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया उनका स्वागत। वडनगर से वाराणसी तक बीजेपी के खास आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर की गई महाआरती, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई, पूरी बीच पर बनाई 25 फीट लंबी सैंड आर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हुई, लोगों ने उतारी मां गंगा की आरती। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां गंगा का दूध से किया अभिषेक, घाटों पर साफ सफाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे होने के अवसर पर राजकोट में 1500 विद्यार्थियों ने बनाई भारत के नक्शे की मानव श्रृंखला, स्वच्छता एकता तथा स्वच्छ भारत का सशक्त का दिया संदेश। गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा का केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन, सीएम सैनी भी इस दौरान रहे मौजूद। गाजियाबाद में सेवा संकल्प अभियान का हुआ आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का महिलाओं बेटियों को मिल रहा है लाभ, जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक मिलने वाली 25,000 रुपए की राशि से मिल रही आर्थिक मदद। चमोली बद्रीनाथ में बदल गया मौसम, 6 से 11 अक्टूबर तक बारिश का पूर्वानुमान, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। अलवर के एक सरकारी स्कूल में 19 फीट ऊंचे बथुए का पौधा बना आकर्षण का केंद्र, 6 महीने में तैयार हुआ यह पौधा, दूर दूर से इसे देखने आ रहे लोग। कैप्टन स्मिथ मछार की तबीयत में तेजी से हो रहा है सुधार, कैप्टन के परिवार से संपर्क में भारतीय दूतावास, कैप्टन के लिए दुआ करने वाले सभी लोगों का किया शुक्रिया। अमेरिका में पायलट स्मिथ मछार को सम्मानित करने का प्रस्ताव किया गया पारित, कांग्रेस के प्रस्ताव में किसी व्यक्ति का नाम शामिल किया जाना काफी बड़ी बात है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इस बार भव्य होगा रामनगरी अयोध्या का दीपोत्सव, प्रमुख मार्गों से घाट तक दिखेगी रामायण की झलक। 7 नवंबर को 56 घाटों पर जलाए जाएंगे करीब 30 लाख दिए। देशभर में शक्ति उपासना की तैयारियां तेज, दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, गरबा खेलने की जा रही है प्रैक्टिस। अंडमान निकोबार कमान के 25 साल पूरे श्री विजयपुरम में भव्य समुद्री स्वागत समारोह, विशाखापट्टनम से पहुंचा INSV नीलकंठ। 1965 से लेकर कारगिल का युद्धा अब NIT कर्नाटक के बढ़ाएगा शोभा, कॉलेज कैंपस में पहुंचा रिटायर्ड फाइटर जेट, MiG-21 वायुसेना के साथ रहा 6 दशक से ज्यादा लंबा सफर। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट, चंबा में हुई शानदार बर्फबारी, प्रशासन की सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए, हम अपने इस खास शो में रोजाना कुछ ना कुछ रोचक और कल्याणकारी बातें आपको बताते हैं जिनका होता है आपसे सीधा संबंध। और इसी कड़ी में आज हम आपको सदियों से चली आ रही परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको परंपराओं के धार्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व भी बताएंगे। देखिये, माना जाता है कि भारत में सदियों से चली आ रही इन परंपराओं में मानव का कल्याण छिपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इन मान्यताओं को जो सनातन धर्म का आधार है।

0: भारत जिसके कण कण में आस्था का प्रवाह है, जहाँ प्रकृति के साथ ही जीव जंतु भी पूजनीय हैं, जहाँ नदियाँ पहाड़ वन और कंकर कंकर में शंकर का वास माना जाता है। भारत में तरह तरह के रीति रिवाज और परंपराएं हैं। ये परंपराएं सदियों पुरानी हैं और आस्था से जुड़ी हैं, जिनका न सिर्फ धार्मिक महत्व है बल्कि इन मान्यताओं में विज्ञान भी समाहित है। जानकार बताते हैं कि अगर आप इन परंपराओं का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने गहन अध्ययन और प्रामाणिकता के आधार पर ही इन रिवाजों को अपने जीवन शैली में स्थान दिया था, जो अनादिकाल से हमारी सनातनी परंपरा का वाहक बन गई हैं और हमारी मान्यताओं में अंदर तक रच बस गई हैं। जानकार बताते हैं कि ये परंपराएं ईश्वर के प्रति आस्था तो बढ़ाती ही हैं, बहुत सी बीमारियों और समस्याओं से भी बचाती हैं। इसे वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी ही परंपराओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं व्रत या उपवास की, जो हिंदू धर्म की आत्मा है।
1: व्रत हम अपने कर्म, अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए लेते हैं। हम जब भगवान की प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं या हम कोई कार्य संकल्प पूर्वक करते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, उसको ही हम व्रत कहते हैं।
0: हिंदू धर्म में व्रत रखने का बहुत महत्व है। लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। लोग सप्ताह में एक दिन या खास मौकों पर अपने इष्ट के लिए व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, कष्टों और परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
1: सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि व्रत का अर्थ है भोजन का त्याग करना, लेकिन भोजन का ही नहीं, जब हम व्रत लेते हैं या उपवास करते हैं तो भोजन के साथ साथ मानसिक कुंठाओं का भी त्याग करते हैं, तो शरीर की नाड़ियां स्वयं से सिद्ध होने लगती है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यक्ति 24 से 48 घंटे तक मात्र जल आदि या सात्विक भोजन पे रहे तो उसके शरीर के अंदर की अशुद्धियां अपने आप समाप्त होकर, और जब वो समाप्त हो जाती है तो ऐसा कहते हैं जैसे खाओ वैसा अन्न वैसा हो जाए मन, उसी प्रकार से उसकी मानसिक स्थितियों में भी सुधार आने लगता है।
0: सप्ताह में एक दिन व्रत रखना वैज्ञानिक दृष्टि से भी फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार व्रत रखने से पाचन क्रिया को आराम मिलता है, जिससे पाचन तंत्र ठीक रहता है, शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर और सेहत ठीक रहता है। भारतीय परंपरा में पैर छूना या चरण स्पर्श सबसे खास परंपराओं में शुमार है, तो आइए इस परंपरा के बारे में भी जान लेते हैं।
1: हमारे ये माना जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति के चरण छूते हैं तो हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो इसी प्रकार से गुरु और पिता के चरण हमेशा ऐसे दाएं हाथ से बाएं और बाएं हाथ से दाएं पांव को छू के अंगूठों के माध्यम से आशीर्वाद लेते हैं और उनके मुख से निकला हुआ वचन हमें तुरंत प्राप्त होता है।
0: बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनका आदर करने के लिए उनके पैर छूते हैं। पैर छूना या चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कारों का एक हिस्सा है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यही संस्कार बच्चों को भी सिखाए जाते हैं ताकि वे भी अपने बड़ों का आदर करें और सम्मान करें। पैर छूने से बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से भगवान भी प्रसन्न होते हैं।
1: चरण छूने में दो प्रकार से विधि बताई गई है। चरण छूने के लिए या तो उकड़ू बैठकर हम उनके चरणों में दोनों हाथ रख के उस पर सिर रखते हैं, या बिल्कुल साष्टांग जमीन पर धारण करके और फिर उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। साष्टांग करने वाला व्यक्ति तुरंत ऊर्जा को ग्रहण करता है और साथ में उस व्यक्ति के शरीर के होने वाले विकार तुरंत समाप्त होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति करते हैं तो शरीर के अंदर जो जितने भी वायु तत्व हैं जो अशुद्ध हो जाते हैं वो तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। कई महिलाओं को जो होने वाली परेशानियां हैं और पुरुषों को उनको उदर रोग है उसमें तुरंत से पहले उनका समाप्त हो जाते हैं।
0: इंसान के शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार होता है, जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी के पैर छूते हैं तब उस व्यक्ति के पैरों से होती हुई ऊर्जा हमारे शरीर में और हमारे हाथों से होते हुए उसके शरीर में पहुंचती है। जब वो व्यक्ति आशीर्वाद देते समय हमारे सिर पर हाथ रखता है तब वो ऊर्जा दोबारा उसके हाथों से होती हुई हमारे शरीर में आती है। इस तरह पैर छूने से हमें दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा मिलती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे मन को शांति मिलती है। सनातन संस्कृति में तिलक को माथे की शोभा माना जाता है। कहते हैं कि तिलक लगाने से हमारे मस्तक के बीचों बीच आज्ञा चक्र नियंत्रित होता है। माथे पर तिलक या चंदन लगाना भारतीय संस्कृति की अहम परंपरा है और ये रीति सदियों से चली आ रही है। हम इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: हमें बचपन से ही सदाचार और संस्कार का पाठ पढ़ाया जाता है। इनसे ना सिर्फ हमारी आस्था जुड़ी हुई है बल्कि इनके अंदर मानव के मूल्य समाहित है, जैसे हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करना, तिलक लगाना या फिर सूर्यदेव को अर्घ देना। इन सभी परंपराओं की एक वजह है। देखिए, आस्था से जुड़ी ये परंपराएं हमें ईश्वर के नजदीक ले जाती हैं और इनका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो आइए इन परंपराओं के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं।

0: भारत वो देश है जहां आस्था और धर्म की पावन गंगा बहती है। यहां की परंपराएं सदियों पुरानी हैं और लोगों को आकर्षित भी करती हैं। सनातनी परंपरा में ऐसे न जाने कितने अटूट बंधन हैं जो हमारी मान्यताओं में रचे बसे हैं, और ये सारी परंपराएं हमारे धर्म के साथ ही विशुद्ध विज्ञान के साथ जुड़ी हैं। हमारी खास पेशकश में आज हम आपको सनातनी परंपराओं से ही रूबरू करवा रहे हैं और उनसे जुड़े लाभ आपको बता रहे हैं, जैसे कलावा बांधना, जनेऊ धारण करना, कर्ण छेदन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान लगाना, योगाभ्यास करना। कई ऐसे कार्य हमारे संस्कार ही तो हैं। इसी तरह सनातनी परंपरा का हिस्सा है हाथ जोड़कर नमस्ते करना और दंडवत प्रणाम करना। इस परंपरा के पीछे भी वजह है, तो आइए जानते हैं हाथ जोड़कर नमस्ते करने का महत्व। किसी से मिलते समय या अभिवादन करते समय हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाता है। पूजा पाठ के समय हाथ जोड़े जाते हैं। दरअसल हाथ जोड़ना सम्मान का प्रतीक है।
1: हमारे हथेली हमारे जो है रिसेप्टर्स कहे जाते हैं, मतलब हमारी ऊर्जा के कक्ष हैं। जब हम विनम्रता पूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़ के किसी को प्रणाम करते हैं, तो हाथ जोड़ने के साथ साथ हम मस्तक भी रखते हैं, और हमारे मस्तक के हमारी जो प्रथम उंगलियां हैं उनका मस्तक का हमारा जो ऊर्जा क्षेत्र है दोनों भावों के बीच का, वो स्पर्श आता है। ऐसा करने वाले की तुरंत ही ऊर्जा सुरक्षित हो जाती है, उसको देवताओं का और उन पुण्य आत्माओं का लाभ और पुण्य तुरंत प्राप्त होने लगता है। आशीर्वाद में ही इतनी शक्ति है कि किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है।
0: हाथ जोड़ने पर हाथ की सभी उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे उन पर दबाव पड़ता है। ये दबाव एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार इसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। इसका असर आँख, कान और दिमाग पर पड़ता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसी तरह भारत की परंपराओं का एक हिस्सा है तिलक लगाने का। लोग अक्सर अपने और दूसरों के माथे पर तिलक लगाते हैं। तो आखिर क्या है तिलक का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, चलिए जानते हैं।
1: तिलक के विषय में स्पष्ट कहा गया है, चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जो व्यक्ति तिलक लगाता है सबसे पहले तो उसके पुण्य उदय हो जाते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी प्रकार की आपदा आने वाले व्यक्ति के ऊपर आपदा नहीं आती जिसके मस्तक पर चंदन स्थापित होता है, साथ में उस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी सदैव स्थापित रहती है।
0: धार्मिक अवसरों, शादी विवाह, त्योहार या पूजा पाठ के समय तिलक लगाते हैं। चंदन, कुमकुम या सिंदूर से माथे पर तिलक लगाया जाता है। माथे पर तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना गया है।
1: ऐसा माना जाता है कि हमारे चक्रों में हमारे जो बिल्कुल दोनों भावों के बीच में जो स्थान होता है ये आज्ञा चक्र है। ऐसा व्यक्ति का जिसको यहाँ तिलक लगा हो या चंदन लगा हो, वो हमारी नाड़ियों को शांत करता है। हमारे शरीर के अंदर जाने वाली जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो यहीं से एकदम आज्ञा लेते हैं। तो व्यक्ति के चंदन अथवा तिलक लगाते ही सार व्यक्ति के मन में शांति होने लगती है, और जिस व्यक्ति के आज्ञा चक्र शांत हो जाए उस व्यक्ति के मन में हमेशा पुण्य विचार आते हैं, नकारात्मकता समाप्त होने लगती है।
0: मानव शरीर में दोनों आंखों के बीच में एक चक्र होता है, इसी चक्र पर तिलक लगाया जाता है। इस चक्र पर एक नस होती है जिससे पूरे चेहरे पर रक्त का संचार होता है। जब माथे पर तिलक लगाया जाता है तो उस चक्र पर उंगली या अंगूठे से दबाव बनता है जिससे वो नस ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इससे पूरे चेहरे की मांसपेशियां बेहतर तरीके से रक्त संचार करती हैं। इससे ऊर्जा का संचार होता है और एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही चेहरे पर रौनक आती है। चलिए अब आपको सूर्य की साधना से जुड़ी महिमा बताते हैं। भारत में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य उपासना की परंपरा है। माना जाता है कि यह न सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य से भी संबंधित है।
1: ऐसा माना जाता है कि सूर्य से पड़ने वाली किरणों में से कुछ किरणें ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए विशेष हानिकारक होती हैं। तो जब हम अपने सिर से ऊपर तांबे के पात्र आदि पीतल के चांदी के जैसे पात्रों से या मिट्टी के पात्रों से जब हम जल अपने सिर से ऊपर उठाकर सूर्य को देते हैं, तो सूर्य की जल के बीच में से आने वाली सूर्य की रश्मियां जल के बीच में से आने वाली सूर्य की रश्मियां हमारे साक्षात शरीर पे पड़ती हैं, वो हानिकारक रेज को रोकती है और साक्षात बाकी ऊर्जाओं का हमारे शरीर की जितनी अलग अलग प्रकार की ऊर्जा उन सबको तुरंत से पहले सुधारती है और सुरक्षित करती है।
0: सूर्य को जल चढ़ाना भी भारतीय परंपरा का ही हिस्सा है, इसके धार्मिक और वैज्ञानिक वजह भी है, साथ ही सूर्य की कृपा पाने के लिए ये एक अचूक उपाय भी है। तो चलिए अब इस परंपरा को भी जान लेते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुराने समय से है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, मनुष्य पर सूर्य का प्रकोप नहीं होता, उसके राशि दोष खत्म हो जाते हैं।
1: धार्मिक महत्व ये कहता है क्योंकि सूर्य को जो जल ना दिया जाए तो सूर्य की क्षमता समाप्त होने लगती है, एक अंधकार स्वरूप रहने वाले राक्षस सूर्य को ग्रहण करने लगते हैं। जब हम जल देते हैं तो सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य की ऊर्जा से हमें लाभ होता है।
0: सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ज्यादा तेज नहीं होती, जो शरीर के लिए एक औषधि का काम करती है। उगते सूर्य को जल चढ़ाते वक्त जल की धार में सूर्य दिखाई देता है, सूर्य की किरणें जल में से छनकर आंखों और शरीर पर पड़ती हैं, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है। इससे पीलिया, क्षय रोग और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। सूर्य के किरणों से विटामिन डी भी प्राप्त होता है। सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है। हर परंपरा का अपना महत्व है और इनके लाभ भी हैं। धार्मिक नजरिए से जहां परंपराएं आस्था को मजबूती देती हैं, वहीं वैज्ञानिक नजरिए से भी इनका लाभ है। कुछ और परंपराओं के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: तो आज हम आपको परंपराओं का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बता रहे हैं। देखिए, तुलसी के पौधे की पूजा करना भी हमारे देश की परंपरा का ही अहम हिस्सा है, लेकिन इस परंपरा का भी धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। आइए आपको बताते हैं कि तुलसी पूजा के क्या लाभ और महत्व है।

0: भारत में जहाँ बरगद, पीपल और आंवले के वृक्ष को पूजा जाता है, उसके परिक्रमा की जाती है। माना जाता है कि इससे हमारी आयु में वृद्धि होती है। प्रकृति की उपासना को समर्पित हरियाली तीज और पट सावित्री का व्रत किया जाता है। भारत परंपराओं का अद्भुत देश है। यहाँ हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। नित्य संध्या को उसका पूजन किया जाता है। संध्या बाती की जाती है। भारत में तुलसी पूजन का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। तो आखिर तुलसी के पौधे का पूजन क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। आज भी ज्यादातर घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तुलसी पूजन से देवता प्रसन्न होते हैं। तुलसी को देवी की उपाधि दी गई है।
1: इसके अंदर ये माना जाता है कि पीपल के अतिरिक्त सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला इंडोर प्लांट तुलसी ही है। इसीलिए जिस व्यक्ति के घर का हमारा जो सबसे ज्यादा वायु तत्व आने वाला है, अर्थात पूर्व और उत्तर के कोने में इसको रखना चाहिए, ताकि वहां से आने वाली ऊर्जा हवा इसके माध्यम से होती हुई ऑक्सीजन लेवल को हमारे घर में फैलाती रहे और व्यक्ति के घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे।
0: तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर का वातावरण शुद्ध होता है। तुलसी मच्छरों और कीटाणुओं को दूर भगाता है, जिससे वायु शुद्ध होती है। इसके अलावा तुलसी में रोग प्रतिरोधी गुण होते हैं। इसकी पत्तियां खाने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। परंपराएं चाहे कोई भी हो, उनका प्रतिफल हमेशा मानव कल्याण करने वाला होता है। आस्था और मान्यताओं को समर्पित ये भूमि महान है। देश में ऐसी कई परंपराएं हैं जिनकी वजह से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आप इन परंपराओं को हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए, जिससे न सिर्फ आपका कल्याण होगा बल्कि ये आने वाली पीढ़ी को भी भारत की संस्कृति का बोध करवाएंगी, जिसके लिए ये महान देश जाना जाता है।
2: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: चंद दिनों बाद ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का महापर्व यानी शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होगा। इन 9 दिनों में हर तरफ उत्साह, उमंग और आस्था में डूबे श्रद्धालु माँ के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आने वाले हैं। देश भर में मूर्तिकार माँ की भव्य प्रतिमाओं को पूर्ण करने में जुटे हुए हैं तो कारीगर पंडालों के निर्माण में लगे हुए हैं।

0: माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। हर तरफ माँ के आगमन की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। माँ की मूर्ति का निर्माण और श्रृंगार कार्य अंतिम चरण में है। वहीं माँ का दरबार सजाने सवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है, जहाँ भारद्वाज पार्क में कोलकाता से आए मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सभी मूर्तियां गंगा की शुद्ध मिट्टी से बनाई जा रही हैं, जिन्हें प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल रंगों से इन्हें सजाया जा रहा है।
1: ये इको फ्रेंडली कलर है, ये कोई मूर्तियों में हाँ फूल नहीं है। मूर्तियां गंगा जी की मिट्टियों से बनी है और नवरात्र है तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रयागराज के जितने भी पंडाल की मूर्तियां हैं हमें बनाने को मिल रही है, उसका डिजाइन करने उसको कलर करने की प्रतिमाओं को मिल रहा है। पंडाल में हमने क्या नाम है कलर किए हैं, डिजाइन बनाए हैं, मूर्ति को सजाया है, साड़ी से लेकर बॉर्डर हर एक एक चीज, मतलब माता रानी को एकदम अच्छे से सजा दिया है कि वो बहुत सुंदर लगते हैं देखने के। मन ही नहीं करता कि इनको विसर्जन किया जाए।
0: कहीं माँ दुर्गा की आंखों में भाव उकेरे जा रहे हैं तो कहीं उनके मुकुट और आभूषणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रंगों की अंतिम परत के साथ प्रतिमाओं में मानव जीवन का संचार हो रहा है। यहाँ 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। 7 भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी गंगा की मिट्टी से ही बनाई जा रही है।
2: पूरे देश में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त भरद्वाज पार्क में हैं, जहाँ पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो बनाने का काम है वो चल रहा है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं और इन मूर्तियों को बनाया और संवारा जा रहा है। ये मूर्तियां 3 फीट से लेकर के 10 फीट तक हैं और तमाम ये बड़ी छोटी मूर्तियां यहां बनाई जाती हैं। तमाम कलाकार यहां पर इन रंग भरने का इन मूर्तियों में काम कर रहे हैं।
0: नवरात्र शुरू होते ही ये प्रतिमाएं शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में स्थापित की जाएगी। एक ओर जहां आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं आकार ले रही है, वहीं दूसरी ओर मां जगदम्बे को ही समर्पित भव्य पंडालों का निर्माण भी जोरों पर है। ये भव्य तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की है, जहां भव्य पंडालों का बनाने का काम शुरू हो गया है। पुरुलिया में प्रसिद्ध भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी हर साल खास थीम पर पंडाल बनाती है। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए खास थीम पाषाणे प्राण यानी पत्थरों में प्राण पर पंडाल निर्माण किया गया है। इस थीम के जरिए प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक को सामने लाने की कोशिश की गई है, यानी शानदार थीम और पारंपरिक भव्यता को किस तरीके से दर्शाया जाए इसको लेकर कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई व्यस्त है। पूजा आयोजकों और कलाकारों ने पुराने समय के उस धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को जीवंत करने का प्रयास किया है, जब पहाड़ों और गुफाओं के बीच मंदिरों में देवी देवताओं की आराधना की जाती थी।
3: हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा और हर साल के तरह इस साल भी भीड़ उमड़ पड़ेगा इधर।
0: यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा है। उनके दाईं ओर भगवान शिव और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। पंडाल के प्रत्येक पिलर और दीवार पर भारतीय संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं की विभिन्न आकृतियां पत्थर की नक्काशी की शैली में उकेरी गई है। ऐसी गुफा मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होगी और यही माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ पुरुलिया से सत्यजीत बैनर्जी, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
5: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: इस बार भव्य होगा रामनगरी अयोध्या का दीपोत्सव। प्रमुख मार्गों से घाट तक दिखेगी रामायण की झलक। 7 नवंबर को 56 घाटों पर जलाए जाएंगे करीब 30 लाख दिए। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर वाराणसी में भव्य कार्यक्रम। 500 बाइकर्स और 51 महिलाओं ने 10 पवित्र नदियों के जल से किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। अंडमान निकोबार कमांड के 25 साल पूरे श्री विजयपुरम में भव्य समुद्री स्वागत समारोह। विशाखापट्टनम से पहुंचा INSV नीलकंठ। उन्नीस से लेकर करगिल का योद्धा अब NIT कर्नाटक की बढ़ाएगा शोभा। कॉलेज कैंपस में पहुंचा रिटायर्ड फाइटर जेट MiG-21। वायुसेना के साथ रहा 6 दशक से ज्यादा लंबा सफर। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट। चंबा में हुई शानदार बर्फबारी। प्रशासन के सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील।

आपके साथ श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। डिजिटल नीम हकीम से सावधान, आज इसी पर होगी बात। दरअसल आईसीएमआर के बड़े डॉक्टरों ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी करते हुए

भारी पड़ रही है। इस डिजिटल युग में हॉस्पिटल की लंबी लाइनों और महंगी फीस से बचने के लिए देश के कई युवा और आम लोग असली डॉक्टरों से ज्यादा डिजिटली फर्जी नुस्खे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ICMR की रिपोर्ट, AI डॉक्टर पर अलर्ट, मेडिकल डिग्री पर क्यों भारी 30 सेकेंड की रील, क्यों युवाओं को भा रहे हैं AI डॉक्टर के नुस्खे और क्या है इससे खतरे, इसी पर आज होगी बात। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी रहेंगे मौजूद। और मेडिकल और सोशल मीडिया पर एक नई रिसर्च हुई है। आपको बता दें, इसमें एक बड़ा दावा किया गया है कि इंटरनेट पर स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रामक जानकारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। ये महत्वपूर्ण रिसर्च ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च गोरखपुर के पूर्व निदेशक डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव की अगुवाई में उनकी सहयोगी टीम ने की है। इस अध्ययन के अनुसार देश में आजकल कई लोग और युवा वर्ग अपनी सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारियां सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से ले रहे हैं। रिसर्च में सामने आया है कि इंटरनेट की भ्रामक जानकारी के प्रभाव में आकर मरीज अक्सर अपने इलाज को लेकर असली डॉक्टरों पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। इस पूरे शोध के लिए देश के 5 अलग अलग राज्यों के स्कूली शिक्षकों और छात्रों पर एक विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस विशेष रिसर्च प्रोजेक्ट में गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को शामिल किया गया था। अध्ययन के चौंकाने वाले आंकड़ों के मुताबिक 88.4% शिक्षकों और 77.7% छात्रों ने स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं खोजने के लिए मुख्य रूप से सोशल मीडिया का सहारा लिया। पूरी रिसर्च के दौरान इन 5 राज्यों के कुल 75 स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों से सीधा डेटा जुटाया गया है। इस सर्वे में 12 से 16 साल की उम्र के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कुल 2,331 छात्रों को शामिल किया गया था। इस शोध में शामिल कुल विद्यार्थियों में से 1,098 यानी कि 47.1% छात्र और 1,233 यानी कि 52.9% छात्राएं थी। छात्रों के साथ साथ इन स्कूलों में पढ़ाने वाले 373 शिक्षकों से भी स्वास्थ्य संबंधी आदतों की विस्तृत जानकारी जुटाई गई। डिजिटल पहुंच के मामले में ये बात सामने आई है कि 97.5% छात्रों और सर्वे में शामिल सभी शिक्षकों के पास इंटरनेट की पूरी सुविधा मौजूद थी। चिंता की बात ये रही कि 33.2% शिक्षक इंटरनेट पर मिली स्वास्थ्य जानकारी की सटीकता को लेकर खुद पूरी तरह निश्चित नहीं थे। इसके बावजूद सटीकता का पता ना होने पर भी 33.2% शिक्षकों में से लगभग 55% ने उस अधूरी जानकारी को आगे बढ़ा दिया। इन नतीजों को देखकर कहा जा रहा है कि आज आम जनता की सेहत पूरी तरह से इंटरनेट की गिरफ्त में आ चुकी है। चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ इस बिना जांचे परखे फैसले वाले डिजिटल ज्ञान को इस डिजिटल युग की सबसे बड़ी महामारी मान रहे हैं। ये वाकई बहुत बड़ा खतरा है। और आपको बता दें कि 5 राज्यों में यह सर्वे किया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया के प्रभाव में रोगी अक्सर भ्रामक और गलत सूचनाओं के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जब वो इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो कई बार इलाज या फिर इलाज के तरीके पर ही सवाल उठाने लगते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे मरीजों का इलाज एक बड़ी चुनौती है। इस रिसर्च के बाद कई अहम पॉइंट्स भी सामने आए हैं। मसलन, सोशल मीडिया पर किसी भी सूचना पर तब तक भरोसा ना करें जब तक उसके तथ्यों की पुष्टि ना हो जाए। AI डॉक्टर या इन्फ्लुएंसर आपके इलाज के लिए प्रशिक्षित नहीं है, लिहाजा किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें और सही जांच और चेकअप के बाद ही इलाज करवाएं। ये रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। सोशल मीडिया वाले डॉक्टर से कैसे बचें, एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है, बीमारी का लक्षण दिखने पर क्या करें क्या ना करें, इस रिपोर्ट के तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं।

चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें उनसे। डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, जो कि फॉर्मर एंड फाउंडर डायरेक्टर आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रवि मेहरोत्रा, जो कि फाउंडर सेंटर फॉर हेल्थ इनोवेशन एंड पॉलिसी निकेचिप इंडिया से हैं, फॉर्मर सीईओ इंडिया कैंसर रिसर्च कंसोर्टियम आईसीएमआर, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जतिन आहूजा, सीनियर कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड ट्रैवल।

0: हेल्थ स्पेशलिस्ट अपोलो हॉस्पिटल से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें जतिन आहूजा जी जुड़ चुके हैं, रवि मेहरोत्रा जी जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन फॉर्मरी एट एम्स न्यू दिल्ली। लेकिन सबसे पहले रजनीकांत जी, आपके पास आते हुए, अगर इस रिसर्च की पर्टिकुलरली हम बात करें, तो सबसे ज्यादा डरावनी बात इस रिसर्च की क्या निकलकर सामने आई?
1: जो सबसे डरावनी बात यह है कि सोशल मीडिया का यूज तो हमने देखा है कि मोर देन 70-80% लोग कर रहे हैं। इंटरनेट एक्सेस भी लोगों के पास है, 90% और 100% एक्सेस है। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि लोग उसके ऊपर जो बिलीव कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन इज कमिंग ऑन सोशल मीडिया। तो ये जो समझ में आ रहा है कि लोग सोशल मीडिया पे जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका जो है उनको ये नहीं पता है कि वो सही या गलत है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या जो है वो फेक इन्फॉर्मेशन है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो है अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो पहुंच रही है वो उनकी अपनी स्वास्थ्य के लिए और दूसरे के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। और लोगों को ये भी नहीं पता है वो इन्फॉर्मेशन जो सही आ रही है वो अगर इनकरेक्ट भी है तो उनको अगर पता नहीं होगा तो वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एक से जो है वो जिसको स्नोबॉल इफेक्ट करते हैं वो बढ़ती जाती है, इसलिए फेक न्यूज जो है बहुत तेजी से स्प्रेड कर जाती है। तो इसलिए लोगों ने ये रिसर्च में देखा है कि जो है जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनको डिजिटल लिटरेसी और सोशल मीडिया लिटरेसी के ऊपर जो है ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और एजुकेशन कॉरिकुलम में अगर जो है अगर इस प्रकार का एक मॉड्यूल बन जाए ताकि उनको सोशल मीडिया के बारे में जानकारी मिल जाए कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो गलत है या सही है, ऑथेंटिक सोर्स पता लगाना बहुत जरूरी है। उनको ये भी नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन कोई वेरीफाइड सोर्स, जैसे अगर ICMR से आ रही है, WHO से आ रही है, मिनिस्ट्री से आ रही है, जो हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो करेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर वो किसी अनवेरीफाइड सोर्स से आ रही है तो उसमें करेक्टनेस का जो है वो डाउटफुल हो जाता है। इसलिए जो है ये हम लोगों ने देखा है कि लोगों को ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि वट एवर इन्फॉर्मेशन इज कमिंग ऑन द सोशल मीडिया दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो ये बड़ी न्यूज निकल में आई है।
0: बिल्कुल। और वाकई चूंकि आपने जो शोध किया है, आपने जो रिसर्च किया है, आज उसी पर ये पूरी चर्चा हम रखे हुए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट आज के समय में हो गया है। डॉक्टर रवि हमारे साथ है। डॉक्टर रवि, आपसे मेरा सवाल है, जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है जिसको नकारा जा सकता है या कुछ परसेंट लोग, मुझे लगता है कि हमारे आसपास वर्क लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में भी हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है किसी भी चीज को लेकर तो सबसे पहले हम फोन उठाते हैं, हर किसी के हाथ में फोन है, हर कोई AI से मदद लेता है, ChatGPT से लेकर सोशल मीडिया तमाम, आप चाहिए YouTube पे चले जाइए, Instagram पे चले जाइए, हर जगह आपको सलाह देने वाले लोग मिल जाएंगे। आपके पास जो मरीज आ रहे हैं, क्या ऐसे मरीज आपके पास आ रहे हैं जो ऑलरेडी इन सारी चीजों से इन्फॉर्म्ड रहते हैं, लेस रहते हैं और उसके बाद आपके आपके पास आके क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं?
2: धन्यवाद हमको यहाँ पर लाने के लिए, और हमारे पुराने दोस्त डॉक्टर रजनीकांत भी आज साथ में हैं। और जो आपने बात कही कि ऐसे मरीज आते हैं, यस बिल्कुल आते हैं, डिपेंड करता है किस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के हैं, किस बैकग्राउंड के हैं। मोटे तौर पे देखा गया है कि 20-40% लोग जो हैं वो ऑलरेडी गूगल करके या आज की तारीख में जैसे कि आपने बताया जितने ये सोशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्स हैं उससे ऑलरेडी पूरा पूरा पुलिंदा लेके 30-40 पन्ने लेके आते हैं। साहब ये हमको 3 दिन से बुखार है या 1 हफ्ते से बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, क्या हमें कैंसर तो नहीं हो गया है? और मजेदार बात ये है पंजाबा जी की, इसमें से जो कई लोग से मैंने पूछा कि आपको कैसे ये अंदाज कहाँ से मिला, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि सब हम ये तरह तरह के जो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे रील देख रहे थे, उसमें एक इन्फ्लुएंसर था, उसने कहा कि साहब अगर आपका बुखार 1 हफ्ते से ज्यादा रह चुका है और नहीं ठीक हो रहा है इसका मतलब हो सकता है कि आपको TB या कैंसर हो गया, जो कि बात सही है मोटे तौर पे, पर बजाय 1 हफ्ते के अगर वो ज्यादा टाइम होता और इन्वेस्टिगेशन करे होते तो कुछ लोग बहुत ही भयभीत आते हैं। और उसका उल्टा भी होता है, कुछ लोग को लगता है कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, 1 महीने से बुखार चल रहा है, बोले नहीं नहीं तो उन्होंने कहा था जैसे जब तक पसीना ना आए तब तक ये कोई बीमारी गंभीर नहीं हो सकती है। तो ये एक दुधारी तलवार है और उससे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब जैसे हमारे मित्र डॉक्टर रजनीकांत ने कहा कि तकरीबन 90-95% जो स्कूल में बच्चे हैं उनके पास स्मार्टफोन फैसिलिटी है या खुद का नहीं तो घर में किसी का होगा या पड़ोस में होगा, और हर एक के पास रील्स आती हैं और 50-60% तक उनको अंदाज है ये कि फेक है, इसमें हमें चेक करना चाहिए। परंतु उसमें से आधे लोगों ने इस अध्ययन के हिसाब से ये बताया कि वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे कि ये बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल करा है डॉक्टर श्रीवास्तव ने, स्नोबॉल, मतलब एक बर्फ का गोला आया, उसने और बर्फ पकड़ी, फिर और बर्फ पकड़ी, धीमे धीमे करते करते वो विशाल काय पर्वत जैसा बन जाता है। तो ये मेरे समझ से दुधारी तलवार है, इससे बहुत नुकसान भी होता है और ऑफ कोर्स कुछ फायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आपको याद होगा जनाब जी की चाइना में उन्होंने बैन लगा दिया है कि कोई अगर मेडिकल या साइंटिफिक बैकग्राउंड से नहीं है तो उसको हेल्थ के ऊपर इन्फ्लुएंसर बनने की कोई इजाजत नहीं है।
0: बिल्कुल,
2: हम तो चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे ही,
0: बिल्कुल ये होना ही चाहिए। वैसे झोला छाप डॉक्टर हम ऑलरेडी बहुत पहले नीम हकीम इस तरह के देख चुके हैं, और अब एआई जो है वो इस तरह से ना दखल अंदाजी करे, कम से कम हेल्थ के मामले में बहुत खतरनाक हो सकता है, उसके परिणाम भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं आने वाले समय में। डॉक्टर जतिन हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर जतिन, इसी बात को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहूंगी कि खास करके जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होते हैं, जो बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं, उनमें इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिहाज से, खास करके एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो?
3: पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, आपके चैनल को, मेरे साथ बैठे पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को। इन्फेक्शियस डिजीज का जो प्रैक्टिस करना था वो अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है मैम
0: जी।
3: अगर बात करूं फीवर की, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है पेशेंट को हमारे पास आने का, फीवर के केस में जब भी कोई पेशेंट जिस किसी को भी होता है तो दे स्टार्ट सर्चिंग आइदर ऑन दी गूगल या फिर अपने चैट जीपीटी या जितने भी एआई टूल्स हैं सब में जाके वो सर्च करते हैं और हर सिम्टम में अपने अपने सिम्टम को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी सेल्फ डायग्नोसिस से स्टार्ट हुई चीज सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट तक आ जाती है एंड दे स्टार्टेड दी ट्रीटमेंट ऑल्सो। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अनडायग्नोस्ड केसेस में आपका अननेसेसरी एंटीबायोटिक जाती है, आपका अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स आता है और आपका जो डायग्नोसिस जो राइट टाइम पे बन जाना चाहिए था वो डिले हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे कल्चर की जरूरत है या फिर कुछ ऐसे टेस्ट की जरूरत है वो भी नहीं हो पाता, सीधा स्ट्रेट अवे एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी जाती है। इसका लेटर ऑन नुकसान इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डेवलपमेंट आती है।
0: बिल्कुल, डॉक्टर मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना जो कि कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन के। डॉक्टर मीना आपका स्वागत है इस चर्चा में। हमारी चर्चा ऑलरेडी शुरू हो गई है और आपको पता होगा कि आज जो चर्चा का विषय है, डॉक्टर रजनीकांत ने जो रिसर्च किया है, उनकी टीम ने जो रिसर्च किया है उसी बेसिस पर ये चर्चा हम कर रहे हैं कि किस तरह से एआई का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में भी। तो क्या आपके पास भी, एक तो पहला सवाल ये कि इस तरह के मरीज आ रहे हैं जो डॉक्टर गूगल पे ज्यादा विश्वास करते हैं बशर्ते आप लोगों पे, और दूसरा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लंबे समय से, मतलब जब ये एआई वगैरह नहीं भी था तब भी हम देखते थे ऐसे कई सारे लोग हैं भारत में खास करके, इस तरह से हमने देखा है कि सीधे केमिस्ट के पास गए और केमिस्ट को हमने बताया कि हमें ये सिम्टम्स हो रहे हैं और केमिस्ट निकाल करके दवाई दे दिया करता था, उससे लोग इलाज कर लिया करते हैं। और अब तो एआई के आ जाने के बाद से और ज्यादा ये हो गया है कि ट्रीटमेंट पहले घर में करके के उसमें भी अगर सुधार नहीं हुआ तब आप तक पहुंच रहा है मरीज, ऐसा है कि आपके पास कोई एग्जांपल?
4: जी मैम, हेलो, कैन यू हियर मी मैम?
0: यस यस यस, आई कैन हियर यू, प्लीज।
4: मैं सबसे पहले, मैं अभी सभी अपने सीनियर जो को पैनलिस्ट हैं, मैं गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर, वो मुझसे ज्यादा उनको तजुर्बा है तो मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए गुड इवनिंग टू ऑल योर व्यूअर्स, मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही कॉमन है खासतौर पे फिजिशियंस में, जैसे कि मैं एमडी मेडिसिन हूँ, सर लोग भी समझेंगे इस तरह की चीज, जो फिजिशियन होते हैं जिनको दवाई का काम ज्यादा है उनके साथ ज्यादा होता है। तो मैं देखता हूँ कि कोई पेशेंट शुगर का है या बीपी का है, खासतौर पर ऐसे पेशेंट, बीपी वाला पेशेंट का एक कॉमन सवाल होता है कि सर ये बीपी की दवाई जिंदगी भर खानी पड़ेगी, कि हमने तो एक जगह अब देखा था वहां पे बीपी की दवाई लगातार लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जिंदगी भर आदत पड़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमको काउंसलिंग करना पड़ता है और उसमें काउंसलिंग का, डॉक्टर की काउंसलिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल है मैं जो समझता हूँ, कि हम एज ए डॉक्टर हम दवाई भी दें लेकिन हम उनको ये भी समझाएं कि नहीं, आपको बीपी की दवाई क्यों जरूरी है खाना लाइफ टाइम, और इसका क्या महत्व है और इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे जिंदगी में हो सकते हैं जिनसे आप बच सकते हो। क्योंकि ये फैक्ट है कि सबके पास फोन है तो हर आदमी अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया साइट से लेता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन से ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं देखता हूँ। तो उससे बचने का तरीका यही है कि ये फैल रहा है, और आपने देखा होगा कि लेटेस्ट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डीओसीए ने, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस पे गाइडलाइंस भी कुछ जारी किए हैं कि कौन कौन, आप अगर आप कोई हेल्थ एडवाइस देते हो तो आपको अपनी डिग्री को, अपने सर्टिफाइड, आप क्या सर्टिफाइड हो, आपको ये डिस्प्ले करना पड़ेगा, जिससे किसी को ये पता चल पाए कि ये डॉक्टर हेल्थ एडवाइस दे रहा है या कोई इन्फ्लुएंसर हेल्थ एडवाइस दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हेल्थ एडवाइस एक्चुअली ओनली एक सर्टिफाइड डॉक्टर्स को या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ही देना चाहिए, ना कि आप एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर और आप
0: डॉक्टर। मेरा कोई कोई कोई केस स्टडी बताइए आपके पास, अगर कोई ऐसा आया हो कि ऑलरेडी मामला उसने खुद ही बहुत बिगाड़ लिया है, उसके बाद वो आया है और बाद में आपको पता चला कि सब सोशल मीडिया के को देख करके उसने खुद का इलाज किया है।
4: जैसा कि अभी जतिन सर बता रहे थे कि हर पेशेंट सबसे पहले अपने नियर बाई केमिस्ट पे जाता है और वहाँ 3 से 4 दिन का या 5 दिन का ट्रायल लेता है। जब वो ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर वो हमारे पास आता है। कई बार वो ये सोचता है कि मैं अपनी कंसल्टेशन फीस बचा लूं और केमिस्ट से ही ठीक हो जाऊं।
0: कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है इसलिए ये हो रहा है, हम खामखा एआई को दोष दे रहे हैं?
4: ऐसा नहीं है मैम, कंसल्टेशन में डिस्काउंट भी सारे मेरे सीनियर बैठे हैं वो भी देते होंगे, मैं भी देता हूँ। अगर किसी पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो वो दिखा सकता है, डिस्काउंट है जो भी है वो सब चलता है। लेकिन पेशेंट केमिस्ट पे कई बार कुछ ट्रस्ट करता है, वो सोचता है मैं ट्रायल लेता हूँ 3-4 दिन का। तो कभी भी अगर हम बात करें कुछ फीवर्स की, तो 3 दिन से पहले तो कई बार बहुत सारे टेस्ट पॉजिटिव भी नहीं आते रिपोर्टों में, तो वो डॉक्टर ही बता सकता है वार्निंग साइंस को लेके कि ये बुखार खतरनाक होगा या नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे बोलूं तो अभी ट्रॉपिकल फीवर्स चल रहे हैं, डेंगू होता है, तो अगर वार्निंग साइंस एक डॉक्टर ही बता सकता है कि इस बुखार के वार्निंग साइंस आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे खतरे के, वो केमिस्ट को कुछ नहीं पता चलेगा, वो कहेगा बुखार है तो डोलो ले लो और एंटीबायोटिक ले लो और ORS ले लो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा जनरली होता है। लेकिन डॉक्टर आपको क्लिनिकली देखेगा कि आपको खतरा हो सकता है, आपको तो दिखाना पड़ेगा और टेस्ट कराने पड़ेंगे और प्लेटलेट करानी पड़ेगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा,
0: वो इतने सारे टेस्ट सुन के इसलिए मरीज परेशान हो जाता है, डर जाता है, इसलिए वो केमिस्ट से पहले दवा लेकर के देख लेता है कि वो ठीक हो रहा है तो चलो यहीं पे निपट जाएगा मामला। रजनीकांत जी, आपके पास आते हुए जो आपकी रिसर्च है उसमें आपने कहा है कि 77.7% शिक्षक छात्र जो हैं वो सोशल मीडिया से मिली जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है उस पर भरोसा कर रहे हैं, और अगर शिक्षकों की बात करें तो 88.4% शिक्षक जो हैं वो इस पर विश्वास कर रहे हैं। तो ऐसे में एक तो ये आंकड़े अपने आप में बहुत चौंकाने वाले हैं डॉक्टर रजनीकांत, और साथ ही साथ ये भी समझना आपसे चाहूंगी कि क्या आज सोशल मीडिया लोगों के लिए डॉक्टरों की पहली पसंद बनता जा रहा है, जो कि साफ तौर पर यहां पर देखने को हमें मिल रहा है। इस पैटर्न को आप कैसे समझते हैं, आपके रिसर्च में किस तरह से आपने स्टडी की?
1: तो रिसर्च की स्टडी में ये तो क्लियर कट निकल के आ रहा है कि चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एजुकेटर्स हो, चाहे वो आम नागरिक हो, वो लोग सब जो है 99% इवन 90% डिपेंडिंग ऑन सोशल मीडिया है ही है। इन्फॉर्मेशन जब भी चाहिए व्हाट्सएप सबसे पहला,
0: इवन टीचर्स। यहाँ पे बड़ा सवाल तो ये है कि इवन टीचर्स जो है वो मतलब 77.8% और समथिंग, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है।
1: हाँ हाँ सही बात है ये कि टीचर्स भी जो है जो व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सोचते हैं ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो बच्चों को भी भेज रहे। जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा था, तो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन देवर रिसीविंग ऑन द सोशल मीडिया, उनको लगा ये ठीक है, उन्होंने इसको फॉरवर्ड भी कर दिया। उन्होंने ये चेक करने की कोशिश नहीं की ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये WHO की गाइडलाइंस है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको बोला है या ICMR ने बोला है। तो इसलिए ये हम लोगों ने देखा है कि जो टीचर्स हैं उनको भी जो है अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है टीचर्स में, इसीलिए इसका Phase 2 में हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए, मॉड्यूल बनाए, ये इसको नीड असेसमेंट करके जहां पता लगा कि इनमें क्या इश्यूज हैं, कहां पे गैप्स हैं, कहां चैलेंजेस हैं। तो अगर टीचर्स को और अगर स्टूडेंट्स को दोनों को हम लोग सोशल मीडिया में लिटरेट कर देते हैं, उनको अवेयरनेस हो जाता है, तो हो सकता है उनमें इंप्रूवमेंट आएगा। तो उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा था कि उसमें कम से कम 2 times या 3 times इम्प्रूवमेंट हो गया उनकी नॉलेज में, और उनको ये फेक न्यूज आइडेंटिफाई करने में, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने में। तो ये मानना है कि जो है स्कूल्स में सोशल मीडिया को हम लोग बंद तो नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके फायदे भी हैं, लेकिन ये जरूरत है कि हम जो है एक ऐसा मॉड्यूल बनाए, कोर्स बनाए, जहां पर सोशल मीडिया की ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाए। इवन वी कैन क्रिएट ए डिजिटल चैंपियंस, अगर ऐसी डिजिटल कमेटीज स्कूल में बन जाए, इंस्टीट्यूशन में बन जाए, जो ऑन रेगुलर बेसिस जो है ये चेकअप करते रहे और लोगों को अवेयरनेस करते रहे, तो हो सकता है कि फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उससे हम लोग बच पाएंगे।
0: डॉक्टर रजनीकांत, ये बात तो आपने एक महत्वपूर्ण आपने बात कही कि चलिए स्कूल में आप लोगों को बच्चों को पढ़ा देंगे या उनको जो आप एजुकेट कर देंगे। डॉक्टर रवि, आपसे यहां समझना चाहेंगे, इसको अगर आप मास लेवल पर देखना चाहें तो जो बाकी लोग हैं, जो घरों में बैठे हुए लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, खास करके जिनके पास उनके बच्चे तक वहां पर नहीं है क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, अकेले दोनों वाइफ हस्बैंड घर में रहते हैं, एज हो गई है, उनकी डिपेंडेंसी तो और ज्यादा बढ़ गई है सोशल मीडिया पर क्योंकि वो है। उनके लिए तो मतलब एक तरह से उनको लगता है कि वरदान है, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उनको एजुकेट कैसे करें? डॉक्टर रवि, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, अनम्यूट कर गया।
5: I'm sorry. श्वेता जी, जो आप कह रहे हैं कि ये अक्सर अगर बुजुर्ग दंपति हैं या अकेला कोई इंसान है और उसके पास सोर्स ऑफ और मोबिलिटी इश्यूज हैं, मान लो वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास एंटरटेनमेंट का साधन में एक तो सोशल मीडिया और टेलीविजन पहले हुआ करता था, अब सोशल मीडिया ऐड हो गया है. तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम है कि कैसे वो कन्फ्यूजन से या कैसे उनको ये अंदाज मिले कि जो वो सुन रहे हैं वो सही है कि नहीं है. तो देखिए उसका तो इंडिविजुअली तो जाके जरा मुश्किल है कि हम लोगों को बता पाए कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट अगेन सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल वही अगर वेपन या वही जो औजार है अगर हम लोग उल्टा भी यूज करें तो क्या बुरा है, नंबर वन. नंबर टू, अगर हम ये करें कि सबको इन्फॉर्मेशन गूगल हर एक के पास है, एआई भी सबके पास है और सब पे फैक्ट चेक की पॉसिबिलिटी होती है, कई वेबसाइट्स हैं, आप तो मीडिया में हैं आप जानते हैं इसी तरीके से कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि स्पेशलाइज करते हैं इसी काम में कि कैसे जो है कोई इन्फॉर्मेशन को फैक्ट चेक करें कि ये सही है या गलत है. तो मेरे ख्याल से इस बारे में जानकारी दी जाए लोगों को कि भाई आप इसको अपनी तरीके से देख लीजिए कि जो आपको समझ में आ रहा है कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू और इट इज टू बैड टू बिलीव, दोनों ही इसके अल्टरनेटिव हो सकते हैं, एक्सट्रीम हो सकते हैं. कि अगर आपको लगता है कि बहुत ही ये नायाब चीज है या बहुत ही खतरनाक चीज है तो आप अपने लेवल पे उसको चेक करें और तभी बात करें. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फोन पे अपने मित्र से, अपने फैमिली से, कोई ऐसे रिलायबल इंसान से कंफर्म करें. स्पेशली प्रॉब्लम तब आती है जब लोग जैसे कि हमारे मित्रों ने बताया कि दवा ले लेते हैं सिर्फ क्योंकि व्हाट्सएप पे बताया हुआ है या फार्मेसी वाले कहा या बगल में नीम हकीम ने कह दिया कि भैया तुम ले लो ठीक हो जाओगे. तो ये अगर एक वेरीफाइड सोर्स से मालूम कर ले, आपका कोई तो फिजिशियन होगा जो कि आपको बता पाएगा, और जो हमारे बात हुई कि जैसे WHO की वेबसाइट है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसने ये स्पॉन्सर करी थी पूरी रिसर्च उसकी वेबसाइट है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च उसकी साइट है, या जो विदेशों से अच्छे जाने माने इंस्टीट्यूट है वहां पर आ रहा है, तो उससे कंफर्म करके ही कोई ऐसा कदम उठाएं, खासतौर से दवा लेने के मामले में और कोई ऐसी मेडिकल चीज जो है जो कि आगे जाके उनको नुकसान कर सकती है उसको बिना कंफर्म करें ना लें. और मैं तो सोचता हूं कि ये आपका जो चैनल है उसमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन है, आपके बहुत लोग सुनते होंगे, कई बुजुर्ग भी होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिनके माँ बाप अकेले रहते हैं या उनके भाई भतीजे उनको उनको हेल्प कर सकते हैं, तो उनको ये हमेशा रखें. जैसे आज की तारीख में डिजिटल अरेस्ट और तरह तरह के स्कैम्स की बात हो रही है, तो अब इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है, इवन टेलीफोन पे वो जो आपके पास मैसेज आती है कि भाई ये स्कैम हो सकता है इससे बच के रहिए. मैं तो सोचता हूँ कि SMS और फोन का जो ये सिस्टम होता है ऑटोमेटेड सर्विसेज का उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग शायद कुछ इनसे बच पाए.
0: बिल्कुल डॉक्टर जतिन, इसी बात को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे समझना चाहूंगी कि कई बार चूंकि बुजुर्गों की बात हो रही है और कई ऐसे बुजुर्ग वाकई हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, ऐसे में वो खुद से ही अपने सिम्टम्स गूगल पर सर्च कर लेते हैं, क्योंकि देखिए वही मूव करना बड़ा मुश्किल होता है, कई बार कई लोगों को चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो उनको लगता है कोई परेशानी कोई सिम्टम आ रहा है तो चलो गूगल करके पता करते हैं है क्या. तो आपको नहीं लगता है कि कई बार अपने सिम्टम्स ही गूगल कर लेना, उसके बारे में पता कर लेना, उनके अंदर एंग्जाइटी लेवल और ज्यादा बढ़ा देता है?
3: देखिए बेड बाउंड या एल्डरली पॉपुलेशन जो भी होती है, जो घर पे रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसके अंदर सबसे बड़ा कॉमनली होता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर जाके एक्सपोजर करना या बाहर जाके संपर्क करना, ये हमेशा एक मुश्किल टास्क होता है. कई लोग इसमें या तो साथ में कलीग्स होते हैं वो गाइड कर देते हैं, या आजकल तो बंदा खुद भी करता है AI टूल को यूज करके कहीं ना कहीं अपने सिम्टम को डाल के अपने ट्रीटमेंट पार्ट को लाइन करना चाहता है, स्ट्रीमलाइन करना चाहता है. ऐसे में अक्सर गलती होती है, बिकॉज जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है उनका कहीं ना कहीं किडनी पैरामीटर लिवर पैरामीटर डिस्टर्ब रहते ही हैं, वो उस चीज को ना देखते हुए एक डोज को पढ़ के और एक अपने एंटीबायोटिक को पढ़ के या किसी भी मेडिसिन को पढ़ के उस स्टैंडर्ड डोज में स्टार्ट कर लेते हैं, जिनका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है. कहीं ना कहीं उसका सिम्टम आना, साइड इफेक्ट्स आना, ये सारी चीजें आपको आगे जाके पता लगती हैं. तो बेटर ये होता है कि आप AI टूल को एज ए गाइडिंग टूल यूज करें कि किस डॉक्टर को मुझे सलाह करनी है, चाहे वो इन्फेक्शन डॉक्टर हो, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, वहां जाएं उनसे डिस्कस करें और उसके बाद ही दवा का सेवन शुरू करें.
0: बिल्कुल डॉक्टर मीना, यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि जाहिर सी बात है आप भी कई सारे पेशेंट आते होंगे आपके पास, आप इलाज करते होंगे, हम भी कई बार जाते हैं और हमने खुद भी पर्सनली देखा है कि लिटरली आर्ग्यूमेंट में थोड़ी देर में तब्दील हो जाती है कई लोगों की बातचीत डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, क्योंकि पेशेंट जो है वो ऑलरेडी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया है एआई से, और जब डॉक्टर कुछ बता रहे होते हैं तो उस पर कई बार पेशेंट सवाल भी उठा देता है, और उसके बाद थोड़ी देर में वो डिस्कशन, मतलब वो अच्छी हेल्दी बातचीत, वो फिर आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कभी? मतलब वो विश्वास ही नहीं करते हैं डॉक्टर की बात पे।
4: जैसे कि ये थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे पेशेंट अपने आप को थोड़ा फ्री फील करता है और थोड़ा वो असर्टिव हो जाता है डॉक्टर्स के ऊपर। मैं अगर
0: डॉक्टर मीना से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आप में से डॉक्टर रवि आप इसका अगर जवाब देना चाहें तो।
5: जैसे कि हमारे मित्र डॉक्टर मीना जी बता रहे थे कि कुछ लोग जरूर इस तरीके की चीजों में ज्यादा आगे होते हैं कि हम सही हैं और एआई ने कह दिया है, कंप्यूटर बाबा ने कह दिया है, तो वो तो सही हो नहीं होना है, और डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो तो पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं। देखिए ये ज्यादातर सही नहीं होता है, कोई भी डॉक्टर जान के गलत एडवाइस नहीं करता है मरीज को, क्योंकि उसको अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल होता है, उसको अपने मरीज को सही भी करना होता है, और वो चंद पैसे के फायदे में होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब नहीं है, पर अधिकांश आई वुड से 95% से ज्यादा लोग जो होंगे वो मरीज के हित में बात करते हैं। तो आपने कहा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम असर्शन करें, हम आपसे आर्ग्यूमेंट करें, देखिए ये तो आगे जाके बढ़ेगा ही, और हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये हो रहा है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब कई बीमारियों का जो इलाज होता है जो हम लोग मरीज के साथ करते हैं उसको बोलते हैं शेयर डिसीशन मेकिंग, यानी कि देखिए कभी कभी जो गाइडलाइंस होती हैं वो 100% ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती हैं, बोले अगर मरीज चाहता है, जैसे कि मान लो 60 या 65 साल की उम्र आपके बाद आपको प्रोस्टेट कैंसर का इंजाज करानी है, PSA टेस्ट या प्रोस्टेट स्पेसिफिक टेस्ट एंटीजन होता है, वो कहते हैं साहब शेयर्ड डिसीजन होना चाहिए, परंतु ये तब होता है जब मरीज भी थोड़ा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और सुनने को तैयार हो। हमारे देश में हर तरीके के मरीज मिलते हैं, अब कई लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कई डॉक्टर्स के आसानी से तर्क पे वितर्क कर सकते हैं, और अधिकांश लोग जो होते हैं वो जो डॉक्टर कहता है उसको मान जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके कि पेशेंट की एजुकेशनल स्टेटस देख के, पेशेंट का रवैया देख के, और जिस सेटिंग में आप काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सेटअप है, प्राइवेट सेटअप है, और इस तरीके का सेटअप है जहां पर आप उनको समझा सकते हैं। अमूमन क्या होता है सरकारी सेटअप में, हमने तो जिंदगी भर काम करा
0: जी।
5: आप मुश्किल से 2-4-5 मिनट ही बात कर पाते हैं, वही आप अगर किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए जहां पर मरीज रिलेटिवली कम है और आपके पास टाइम है, आप 10-15 मिनट आधे घंटे का समय भी
0: बातचीत
5: पहली मुलाकात में दे सकते।
0: बिल्कुल,
5: और बिल्कुल डिपेंड करता है किस सिचुएशन।
0: बिल्कुल, और चूंकि बाहर आपके इलाज कराने के लिए भी कई सारे ना, एक तो एलोपैथ हो गया तरीका, दूसरा आपके पास नेचुरोपैथ है, आपके पास आयुर्वेद है, आपके पास होम्योपैथी है, तो कई तरह के डिविजन भी हैं, ब्रांचेस भी है जहां पर आपको विश्वास हर जगह मिलता है कि नहीं आप हमसे इलाज कराएंगे तो आप बेहतर तरीके से जल्दी और कम कीमत पे भी, मतलब पैसे भी आपको कम लगेंगे और हम आपको ठीक कर देंगे, तो इस तरह की भी चीजें हैं। तो कई तरह के सवाल हैं, अभी कुछ और सवालों के जवाब आप लोगों से लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: तो चलिए आज बात हो रही है डिजिटल नीम हकीम से सावधान रहने की। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप लोगों से जितने भी हमारे मेहमान हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं उनको एक एक एक कहानी, एक छोटी सी कहानी यहां पर मैं सुनाना चाहूंगी। देखिए केस ये दरअसल आया है, आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा कि ये केस एक ऐसा है कि एक जमाने में डॉक्टर से एक पेशेंट ने दिखाया था एक समय में, और पेशेंट का बेटा बेंगलुरु में इंजीनियरिंग करके नौकरी कर रहा था। उसने अपने पिताजी से प्रिस्क्रिप्शन मंगवाया और सारी दवाइयों के बारे में गूगल से जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद जो इंजीनियर बेटा था उसने डॉक्टर साहब को फोन लगाया और दवाइयों के कॉम्पोजिशन और जो सॉल्ट नेम है वो बताने लगा। वो उन्होंने बताया कि भाई सर दर्द की दवा अगर मेरे पापा लेंगे तो उन्हें फलना दिक्कत हो जाएगी, बीपी बढ़ने का खतरा है, डिजीनेस ज़्यादा होने लगेगा, लिवर किडनी पर साइड इफेक्ट का खतरा है। उसने इतना फोन किया कि डॉक्टर जो है वो आखिरकार परेशान हो गए और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि बेटा तुमने गलत कोर्स कर लिया है, तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं तुम्हें मेडिकल फील्ड में आना चाहिए था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों के साथ भी मतलब ऐसा कुछ हुआ है डॉक्टर रवि, डॉक्टर जतिन या फिर डॉक्टर रजनीकांत, आप भी अपनी अपनी बात कह सकते हैं। डॉक्टर जतिन आपसे शुरू करूंगी। इसमें यह है कि एक इंजीनियर बेटा है, वो अपने उसको पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन वो उनसे मंगवाता है, वो बेंगलुरु में काम कर रहा है और सारे वो कॉम्पोजिशन सॉल्ट नेम सब गूगल से और बाकी जगहों से इकट्ठा करके डॉक्टर साहब को फोन करता है और कहता है कि ये दवाइयां उनको आपने शायद प्रिस्क्राइब की हैं लेकिन अगर वो ये दवाई मेरे पिताजी खाएंगे तो उनको डिजीनेस होगा, उनका बीपी बढ़ सकता है, उनको दिक्कत हो सकती है, और सॉल्ट नेम के साथ वो सब कुछ डिटेल बता रहा था। तो थोड़ी देर में डॉक्टर साहब ने बोला कि बेटा आपने गलत पढ़ाई कर ली है, आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपने इंजीनियरिंग पढ़ लिया है। तो मतलब इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ भी कभी हुई है क्या?
1: बिल्कुल, तो ऐसा आज तक कोई इंजन भी नहीं बना है जिसकी एफिकेसी 100% हो। तो इस तरीके से सिमिलर कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं है जिसका 100% एफिकेसी हो और साइड इफेक्ट ना हो। सो हर मेडिसिन का हमारे को इफेक्ट भी देखना होता है, पैरेलली साइड इफेक्ट भी मॉनिटरिंग करना होता है। सो हमेशा वी वांट कि इफेक्ट मैक्सिमम हो और साइड इफेक्ट मिनिमम हो। जैसे कि हम इंजन में देखते हैं कि किसी भी गाड़ी की एवरेज अच्छी हो और पोल्यूशन कम से कम हो और पेट्रोल कम से कम लगे, सेम अप्लाइज टू द अवर ह्यूमन बॉडी आल्सो। इफेक्ट ज्यादा चाहिए और साइड इफेक्ट
0: मैं तो ये जानना चाह रही थी कि इस तरह की कोई केस स्टडी आई आपके पास कभी किसी ने ऐसे
1: डेली बेसिस
0: क्या बात है। मतलब मुझे तो ये बोला आप लोगों की तारीफ करनी चाहिए यहाँ पे और ज्यादा कि आप लोग डील कैसे कर पा रहे हैं क्योंकि इतने सालों की मेहनत आप लोगों की, पढ़ाई आप लोगों ने किया है, इतना समय दिया है और उसके बाद कोई आकर के आपको बताने लगे कि ये दवाई है और ये सॉल्ट है और आप ऐसे ट्रीटमेंट करें।
1: पेशेंट हैज टू बी ट्रीटेड विद द पेशेंस ओनली। सो AI टूल तो आ चुका है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बट ओनली थिंग इज कि वी हैव टू लिसन देम, वी हैव टू सॉल्व देयर क्वेरीज एंड डेफिनेटली मेनी पेशेंट्स कम विद द।
0: डॉक्टर रवि आपको लगता है चुनौतियां और ज्यादा आप लोगों की बढ़ गई हैं एज ए डॉक्टर?
2: देखिए दिन पर दिन ये बढ़ती चली जाएंगी।
0: आप लोगों को काउंसलर भी, मतलब डॉक्टर के साथ साथ आप लोगों को काउंसलर भी होना पड़ रहा है?
2: बिल्कुल 100% कह रहे हैं, उसमें टाइम भी लगता है, पर देखिए उसका आप जो ऑपोजिट व्यू है वो देखिए, कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आ रहे हैं भाई इसका साइड इफेक्ट होगा, बात सही है, परंतु जैसे अभी बात हुई कि भाई इफेक्ट होगा तो साइड इफेक्ट तो ज्यादातर होता ही है, पर इफेक्ट जो है वो एडवांटेज के लिए 100% तो नहीं है, 90% होगा। अगर साइड इफेक्ट 10% है तो वो चलता है, ये तो पहली बात है माननी पड़ेगी। अभी आप श्वेता जी आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक मुहिम शुरू करी है कि शायद टीन एज से पहले उनको ये सोशल मीडिया
0: अलाउड नहीं है,
2: अलाउड नहीं है, और मेरे ख्याल से और भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी ये शुरू हो रहा है,
0: कई कंट्रीज। हाँ बिल्कुल
2: जी, तो एक तो वो कम उम्र वाली बात हो गई, नाबालिग बच्चों की बात हो गई, पर हमारे प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, PhD कर ली, वो बात ऐसे करते हैं कि साहब इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, और फिर आप जाएंगे बाहर बैठे आप अगर वो किसी के इंतजार कर रहे होंगे तो गुटखा भी खा रहे होंगे, तब कोई नहीं पूछता कि इसका साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ये जैसे कि बात हुई कि पेशेंट्स के साथ पेशेंस तो रखनी पड़ती है और एम्पैथी भी रखनी पड़ती है, और दूसरी बात देखिए एक और है कि कोई मरीज जब आता है डॉक्टर के पास वो खुश नहीं आता है, एक्सेप्ट मे बी प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी वाला मामला है
0: वो
2: तो पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और बच्चा होने जा रहा है वो खुश आते हैं, उसके अलावा 99% लोग जो है दुखी होके आते हैं।
0: बिल्कुल,
2: तो थोड़ा सा वो वैसे भी परेशान होते हैं क्योंकि एक तो पैसे देने पड़ रहे हैं या लाइन में खड़े होना पड़ रहा है, टाइम 8 बजे का था वो 8:30 हो गया, वगैरह वगैरह हर तरीके के इश्यूज होते हैं। और उसके साथ आप अगर आप आधी बिच की जो कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, हमारे हमारे गांव में ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस बट मोर नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। अगर आप ज्यादा ही इंफॉर्मेशन लेके आएंगे जो कि आपके बीमारी के लिए या आपके सिचुएशन के लिए मौजूद नहीं है वो भी खतरनाक होता है। तो दोनों ही तरीके से आपको बच के रहना पड़ता है। पर आप ये मान के चले कि अब वो जो इंडिविजुअल सामने बैठा है या उसका रिश्तेदार जैसे आपने कहा कि बैंगलोर में लड़का बैठा है AI से देख रहा है, उनको समझाना पड़ता है कि बेटे जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, परंतु इस सिचुएशन में मैं ये सोचता हूँ ये दवा अगर होगी ये टेस्ट का ये रिजल्ट आएगा तो आपका फायदे ज्यादा है और हानि कम है।
0: बिल्कुल डॉक्टर रजनीकांत, यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी स्टडी की है आप लोगों ने, टाइम लगाया है और उसके बाद ये पूरा रिसर्च पेपर आप लोगों ने पब्लिश किया है, सामने लाए हैं। तो इसमें देखिए आप में से यहाँ पर जितने भी पैनल में डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप में से किसी ने भी आउटराइटली ये रिजेक्ट नहीं किया या ये नहीं कहा है कि जितने भी इन्फॉर्मेशन AI के द्वारा हमें मिल रहे हैं इंस्टा पे या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सारे गलत होते हैं, ये भी आप लोगों ने नहीं कहा है आउटराइटली। तो इसमें मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपका रिसर्च कंक्लूजन क्या देता है, क्या बता रहा है कि अगर मान लीजिए एक तरफ AI जो है उसके थ्रू कोई अगर रिसर्च कर रहा है हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड और दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैं, इन दोनों को अगर हम वर्सेस कर दें तो लोगों को विश्वास किस पर ज्यादा करना चाहिए?
3: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और जो हम लोगों ने भी रिसर्च किया और कोविड के टाइम में भी हम सबने देखा था कि जो है ना, और डॉक्टर रवि ने भी जैसे बताया कि जो है कि ह्यूज इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास डेट इज आल्सो डेंजरस, और WHO ने इसको शब्द दिया था इन्फोडेमिक, कि जो हम आउटब्रेक एपिडेमिक की बात करते हैं उसके साइड बाई साइड जो इन्फॉर्मेशन से जो बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज उसको उन्होंने बोला था इन्फोडेमिक। अब इन्फोडेमिक का मतलब होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आज के दिन में हमारे पास है, सबके पास है, AI के थ्रू आ रही है, गूगल के थ्रू आ रही है, सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है, और उसकी वजह से क्या होता है कि मोर चॉइसेस मोर कंफ्यूजन, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि लोग इतने कंफ्यूज हैं उनको ये नहीं पता है कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। तो सबसे पहला बात तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको आपको ये देखना है कि उसकी फैक्ट चेकिंग करनी है, उसको ट्रस्टवर्दी सोर्स पता लगाना है कि किस सोर्स से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, इन्फॉर्मेशन में कुछ फैक्ट्स हैं कि नहीं है, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आपको जो है आगे बढ़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है इस रिसर्च के बाद भी जो पता लग रहा है कि एक हमें डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि एक एक फ्रूटफुल और एक इको फ्रेंडली जिसको हम बोलते हैं एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार हो जहां पे इंफॉर्मेशन तो है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत है उसके बारे में हम लोग अपने आप डिसीजन ले पाएं और उसके हिसाब से हम जो है आगे अपने को बढ़ाएं, चाहे उसमें हमें पेशेंट केयर की बात हो, चाहे उसमें हमें सेल्फ ट्रीटमेंट करने की बात हो, या आगे उसको हमें किसी को फॉरवर्ड करना हो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि लोग जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको फॉरवर्ड कर देते बिना ये चेक किए कि वो सही है या गलत है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो
0: हमारा ये फैक्ट चेक, आप कह रहे हैं कि फैक्ट चेक जरूरी है खुद अपने यूज के लिए भी, और इनफैक्ट अगर आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उससे भी पहले आपको पहले जांच लेना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। डॉक्टर जतिन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे यहां समझना चाहूंगी, देखिए जैसे एक ही आपको सिम्टम है जिसमें आपको हेडेक हो रहा है, आपको फटीग हो रहा है या फिर आपको फीवर हो रहा है, लेकिन ये कई सारी बीमारियों में हो सकता है, सिम्टम सही है लेकिन कई सारी बीमारियों में हो सकता है, तो ऐसे में सोशल मीडिया जो है इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे सिंप्लीफाई करता है या कर सकता है?
1: देखिए अगर आप सीरियल वाइज फ्रॉम द ऑनसेट अगर आप अपने सिम्टम्स AI टूल को देंगे तो वो एक नंबर ऑफ जो आपके सिम्टम्स के हिसाब से नंबर ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनते हैं वो आपको दे देगा कि इट कुड बी माइग्रेन, इट कुड बी आपका इंफेक्शन इन द ब्रेन, इट कुड बी हाइपरटेंशन विच इज कॉजिंग दी आपका हेडेक इन द ब्रेन, तो ये सारी चीजें आपको डिफरेंशियल दे सकता है। पर आउट ऑफ ऑल दिस 8 to 10 डिफरेंशियल ये तो एक डॉक्टर का काम है कि उस 10 को रूल आउट करना और उन 10 में से कौन सा ऐसा डायग्नोसिस है जिसकी वजह से मेरे पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं। या फिर ये दिक्कत हो रही है, इट कैन ओनली टेल कि ये 10 में से प्रॉब्लम हो सकती है, इट कैन नॉट टेल कि यही प्रॉब्लम होगी।
0: बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर रवि आपसे ये समझना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया आज के समय में एक कह ले कि बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो गया है हर किसी के जीवन में। मुझे नहीं पता आप कितना यूज करते हैं सोशल मीडिया का, लेकिन आप भी देखते होंगे, मतलब स्क्रोलिंग तो चलती ही रहती है, कहीं भी अगर कोई फ्री है थोड़ी देर भी तो वो स्क्रोल करता रहता है सोशल मीडिया। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर या फिर डॉक्टर, इन दोनों के जो भी व्यूज हैं या इन दोनों की जो भी राय है अगर सोशल मीडिया पर भी आ रही है तो दोनों को इस तरह से दिखाना चाहिए अलग अलग तरीके से ताकि लोग भी समझ पाए कि भाई ये वेरीफाइड डॉक्टर है, भाई डिग्री लेकर के कोई मुझे कुछ बता रहा है तो ये सही ही बता रहा होगा और ये एक मात्र इन्फ्लुएंसर है, तो इसकी बातें हम इस हद तक या इतने कुछ ही हिसाब से हम उसको इंप्लीमेंट करें, वेरीफाई करके ही इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में।
2: श्वेता जी, ये आपने बहुत ही अहम सवाल फेस करा है, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी चाइना में तो बैन हो गया है, हमारे देश में क्यों नहीं होना चाहिए। फिर अभी बात हुई कि अभी नया रूल्स आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के, अगर कोई दे रहा है तो उसको अपनी डिग्री, अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखिए मेरी डिग्री लगी हुई है पीछे, तो इत्तेफाक की बात है मैं वो नहीं लगाता हूँ और ना ही मेरा कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की तमन्ना है, परंतु मुझे लगता है कि मेडिकल कम्युनिकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी डॉक्टर्स। जैसे यहाँ पर चार लोगों आपके साथ हैं जो कि अपने अपने शेड्यूल में पेशेंट्स को छोड़ के और काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग इसीलिए आए हैं कि भाई कम से कम ये आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाए कि ये प्रॉब्लम है तो उसका ये समाधान हो सकता है। मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड आगे जाके हमें एक पहली बात तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देनी चाहिए मल्टी स्टेक होल्डर यानी कि अलग अलग ग्रुप्स को, गवर्नमेंट है, स्कूल्स हैं, WHO है, टू बिल्ड अ सेफर डिजिटल इकोसिस्टम। जैसे आपने देखा व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप हमारे यहाँ सबसे कॉमन मैसेजिंग सिस्टम है, उन्होंने ये रूल लगा दिया कि साहब एक एक मैसेज जो है आप कई ग्रुप्स को एक साथ नहीं भेज सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई पेंडेमिक चल रहा है, कोविड के टाइम पे है, तो उन्होंने कहा देखिए इससे बच के रहिए। इस तरीके की इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से सरकार लगा रही है और मेरे समझ से हमें बिल्कुल चाइना को फॉलो करना चाहिए, बाकी हम चाइना के बहुत प्रेमी नहीं है, पर कुछ चीजें जो अच्छी हैं मेरे समझ से करना चाहिए। ये कम से कम हेल्थ और देखिए फाइनेंस में भी आपने देखा होगा फिन इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड पर्सन।
0: बिल्कुल,
2: उसी तरीके से अगर हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया
0: बिल्कुल
2: अगर हम रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी कर दें तो ये हमारी प्रॉब्लम आधी हो जाए।
0: बिल्कुल,
2: तो मेरे समझ से ये हमको हमारी सरकार को भी और हमारे पब्लिक को भी ये मांगना चाहिए कि अगर हम इस तरीके की
0: जो रजिस्टर्ड हैं, जो वेरीफाइड हैं, जिन पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, उनकी सुनना सबसे पहले जरूरी है। वक्त की कमी है लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको इससे बहुत लाभ हुआ होगा और आगे चूंकि ये हेल्थ से जुड़ा मामला है इसलिए सतर्क तो रहना ही है और सावधान भी रहना है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।
4: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: शहर दर शहर वातावरण में भक्ति उमंग और उत्सव के रंग घुलने के लिए तैयार हैं। मां दुर्गा के आगमन के लिए भव्य पंडाल सजाने की बेला चल रही है। कई पंडालों की कलात्मक सजावट मन मोह रही है तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी और अनूठी थीम लोगों को अपनी ओर खींच रही है। खासतौर से सीआर पार्क में बनाए जा रहे हैं मां भवानी के पंडाल, वही सीआर पार्क जिसकी गलियों में दुर्गा पूजा की रौनक के साथ स्वादिष्ट बंगाली पकवानों की महक और अपनों से मिलने की अपार खुशी दिल को खुश कर देती है।
2: हर बरस दुर्गा पूजा के रंग दिल्ली के चितरंजन पार्क में भी खूब बिखरते हैं। शक्ति का पर्व यहाँ सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि बंगाल की संस्कृति, परंपरा और अपनेपन से सजा एक खूबसूरत एहसास रहा है, जिसमें ढाक की गूंज, धुनुची की खुशबू और रंग बिरंगी रोशनी में माँ के भव्य पंडाल सीआर पार्क का हर कोना ही मानो इस दौरान उत्सव के रंग में रंगा नजर आता है। चितरंजन पार्क का हर पंडाल अपने सामने वाले पंडाल से कुछ अलग कहानी बयां करता है। हर साल सबसे बेहतरीन, अर्थपूर्ण और खूबसूरत पंडाल किसका बना है, किसकी थीम दर्शकों के दिल में जगह बनाएगी, इसको लेकर मानो होड़ सी रहती है। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए चितरंजन पार्क के काली मंदिर में इस बार बांस, कपड़ा, लकड़ी और फोम के इस्तेमाल से भव्य और पर्यावरण अनुकूल दुर्गा पंडाल बनाने की तैयारियां हो रही हैं।
3: हम आपको यहाँ की तैयारियों की तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। भव्य पंडाल बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर पंडाल बनाने का कार्य जो है वो चलता हुआ आपको नजर आएगा।
2: इस बार सीआर पार्क के इस पंडाल का 54वां साल है। इस मौके पर उत्सव की थीम मातृ शक्ति रखी गई है तो वही पंडाल और माँ की प्रतिमा को पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है।
4: हमारे मंदिर में मूर्ति बनता है और उसका जो टोटल चीज है वो इको फ्रेंडली है। जैसे उसका पेंट है, वैसे तो मिट्टी और भूसा से बनता है और उसका जो पेंट होता है मूर्ति के ऊपर वो भी इको फ्रेंडली है। कोई ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल पेंट हम यूज नहीं किया, ऑर्गेनिक पेंट यूज किए हैं। उसका जो फैब्रिक होता है, जो कपड़े जो पहनाया जाता है माँ को, वो भी इको फ्रेंडली कपड़े पहनाया जा रहा है।
2: वैसे दुर्गा पूजा की चमक, इस उत्सव की रौनक बिहार के मुंगेर में भी हर साल खूब बिखरती है। यहाँ कल्याणपुर में बन रहा बड़ी दुर्गा महारानी पंडाल एक बार फिर सुर्खियां बटोरने के लिए तैयार है। दरअसल यहाँ पिछले कई सालों से किसी अनूठी थीम पर ही पंडाल को बनाए जाने की परंपरा रही है। ऐसे में इस बार यहाँ 170 फीट ऊंचा मलेशिया का प्रसिद्ध पेट्रोनस ट्विन टावर जैसा मुख्य पंडाल खड़ा किया जा रहा है, जो कल्याणपुर के लोगों को यहीं से ही ट्विन टावर की अनुभूति दे रहा है।
5: ट्विन टावर अपने आखिरी पड़ाव में है और लगभग जो ट्विन टावर का काम है वो हो चुका है और कुछ ही दिनों के बाद इसे जो इसका कवर है वो पूरा कवर किया जाएगा और इसे जो शानदार लाइटिंग है उससे सुसज्जित किया जाएगा।
2: ट्विन टावर पर आधारित इस पंडाल को बनाने में 50,000 से ज्यादा बांस, सैकड़ों थान कपड़ा, रस्सी और कांटी का इस्तेमाल हो रहा है। बांस के मजबूत स्ट्रक्चर पर कपड़े और थर्माकोल से टावर का डिजाइन और बीच का स्काई ब्रिज तैयार किया जा रहा है।
6: अभी हम लोगों ने ब्रिटेन में कार्यक्रम किया था वर्ल्ड होम्योपैथिक समिट, तो वहीं से दिमाग में आया कि इस तरह का आयोजन की यहाँ किया जाए और बनाया जाए। कहीं भी बाहर जाते हैं, जैसे पिछले बार बुर्ज अल अरब में कार्यक्रम हम लोगों ने किया था तो बुर्ज खलीफा यहाँ बनाया था।
2: इस अनूठे पंडाल की सोच को आकार दे रहे हैं झारखंड से आए 75 मुस्लिम कारीगर। भले ही इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की लेकिन बीते 2.5 महीने से पूरे निष्ठा और लगन के साथ जिस तरह दुर्गा पूजा का ये संतुलित थीम पंडाल खड़ा किया है वो अपने आप में बेहतरीन कला और डिजाइन की मिसाल है। बता दें कि मुंगेर के कल्याणपुर में इस साल ट्विन टावर और ब्रिटिश संसद पर आधारित पंडाल की ये 22वीं अंतर्राष्ट्रीय थीम है, जिसे कल्याणपुर पूजा समिति दुर्गा पंडाल के माध्यम से उतारने की कोशिश कर रही है। वहीं दुर्गा पूजा में पंडाल सजावट की थीम झरना और घंटी रखी गई है, जिसकी आवाज पूरे वातावरण को गुंजायमान करेगी। बिहार के मुंगेर से गोविंद कुमार और दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में, और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। हमने वादा किया था कल 5 बजे मिलने का, हम मिले हैं। हाँ, आज चाय और चाय के साथ दीपिका क्या है, आप बता रही
3: हैं। इडली बहुत ही टेस्टी है, मतलब मैं जब आई थी तो खुशबू से ही मेरे से रुका नहीं जा रहा था।
2: मतलब ये था कि पहले माइक वाइक लगाने से पहले,
3: लेकिन मैंने आपसे सर्टिफिकेट भी लिया है कि अच्छी बनी है या नहीं।
2: मेरा नाम मत लगाइए, इनके डिसीजन पे इनको खुद ही बहुत संदेह रहता है, तो इसलिए बार बार मेरा नाम लगा देती है। लेकिन आज वाकई बहुत अच्छी इडली बनी है, इसके बारे में हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन फिलहाल आज जो चर्चा होने वाली है, आप देख ही रहे होंगे, देखिए दुर्गा पूजा जो है उसको लेकर आस्था के रंग हर जगह देखने को मिल रहे हैं। इंतजार है बस माँ के आगमन का, थीम पंडाल और माँ की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं आकार ले रही हैं, और आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे दुर्गा पूजा का हर रंग क्या कह रहा है। आस्था के इस उत्सव में गरबा इंडिया का क्रेज किस कदर छाया हुआ है, और यानी ट्रेडिशनल के साथ साथ ट्रेंडिंग गरबा रास परिधानों की भी हम बात करेंगे।
3: बिल्कुल, देखिए नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली के कैंची धाम के अंदर पहुंचने का क्या है नया एंट्री प्लान, इसके बारे में भी बात होगी, इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ चार धाम यात्रा के उत्साह और बाबा केदार दर्शन के ताजा रिकॉर्ड की भी विस्तार से बात होगी।
4: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की फिजा भी बदल रही है इस वक्त। दोनों राज्यों में मौसम के क्या है सूरत हाल और आने वाले समय में कैसी रहने वाली है स्थिति, यहां आने का अगर आपका प्लान बन रहा है तो कैसी एहतियात आपको बरतनी है, सब कुछ आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
5: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: पहाड़ों में बदल रहा मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ सतोपंत में भारी बर्फबारी, रास्ते में 2 फीट से ज्यादा बर्फ, चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी, सावधानी की अपील। इस बार भव्य होगा रामनगरी अयोध्या का दीपोत्सव, प्रमुख मार्गों से घाट तक दिखेगी रामायण की झलक। 7 नवंबर को 56 घाटों पर जलाए जाएंगे करीब 30 लाख दिए। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर वाराणसी में भव्य कार्यक्रम, 500 बाइकर्स और 51 महिलाओं ने 10 पवित्र नदियों के जल से किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। अंडमान निकोबार कमान के 25 साल पूरे, श्री विजयपुरम में भव्य समुद्री स्वागत समारोह, विशाखापत्तनम से पहुंचा INSV नीलकंठ। 1965 से लेकर कारगिल का योद्धा, अब NIT कर्नाटक की बढ़ाएगा शोभा, कॉलेज कैंपस में पहुंचा रिटायर्ड फाइटर जेट MiG-21, वायुसेना के साथ रहा 6 दशक से ज्यादा लंबा सफर।

0: और बड़ी हैरान करने वाली बात थी, और मुझे याद है अभी 4-5 साल पहले की बात है, मैं सीआर पार्क गई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. बहुत ही सुंदर पंडाल थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी ना कि दोबारा जाने का मन तो है लेकिन हिम्मत नहीं है.
1: देखिए आप ना कॉलेज डेज की याद करें, आप थोड़ा जल्दी याद कर पाएंगी, हमें वक्त हो गया थोड़ा, लेकिन उस समय ना उतनी भीड़ में भी हमारा क्रेज बहुत ज्यादा हुआ करता था. और एक्चुअली देखिए अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो देखिए लोगों से मेल मिलाप, मिलना जुलना, इतने सारे लोग आपको मिलते हैं. और खास करके शुरुआत में मुझे जो याद है कि आप जब शुरुआत करते हैं तो 2-3 दोस्तों के साथ ही आप जाते हैं, कोई ना कोई किसी का जानने वाला आपको मिल जाता है और फिर वो क्राउड बड़ा होता जाता है.
2: और अगर आप गरबे में गए हैं या पंडाल हॉपिंग कर रहे हैं, जब तक भीड़ ही नहीं है तो मजा ही नहीं है. आप उस भीड़ में जब तक डांस नहीं कर रहे हैं, आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप साथ में खा नहीं रहे, तो मजा मतलब भारत में तो इसी का
1: भाई. गुजरात में स्पेशली नवरात्र में लोग जाते हैं और नए दोस्त बनते हैं वहां पे, नए नए दोस्त बनते हैं और आपका ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है शाम से लेके सुबह तक, क्योंकि वहां कई ऐसी नवरात्रि. एक तो एक नवरात्रि में अभी रिसर्च ही कर रही थी क्योंकि जाना है मुझे, उसका नाम ही है 11:56 PM.
0: अच्छा, 11:56
1: से शुरू होता है, वो शुरू होता है और सुबह 6 बजे तक वहां डांडिया चलता है. जस्ट इमेजिन कि क्या माहौल होता होगा.
0: अच्छा, आपको दुर्गा पूजा के पंडाल में जाने का मन है या फिर डांडिया खेलने का मन है? मतलब मुझे लगता है कि रंग है ना नवरात्रि के.
1: बिल्कुल, डांडिया बिल्कुल अलग चीज है, राइट?
2: डांडिया तो आप एक तरह से उसको एंजॉय कर रहे हो और दुर्गा पूजा तो एक अलग ही फेस्टिव मूड हो जाता है. आप आराधना कर रहे हो,
1: आध्यात्मिक, मतलब वो आध्यात्म, दोनों आध्यात्म है. वैसे आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ये समझते होंगे कि डांडिया का मतलब सिर्फ डांस करना होता है, ऐसा नहीं है. वो एक माध्यम है, एक तरीका है माँ को प्रसन्न करने का डांस के माध्यम से, मतलब वो झूमना, वो गाना. और खास करके गुजरात, वडोदरा वगैरह अगर ले लीजिए, वहां सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल यानी कि भक्ति गीतों पे ही डांडिया होता है, वहां बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं बजते.
0: अच्छा, इसीलिए आपने बोला एक आध्यात्मिक महत्व भी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं. तो देखिये, शारदीय नवरात्रि की अलग ही रौनक जो है वो देखने को मिलने वाली है. और आपको बता दें कि कहीं नवरात्रि पर भक्ति साधना तो साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक भी आस्था के रंगों के साथ बिखरने वाली है, लेकिन आज वो दौर भी है जब माँ की भक्ति के साथ प्रकृति की चिंता भी शामिल है. शायद यही वजह है, यही कारण है कि शहर हो या गांव, इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की मांग जोर पकड़ रही है.
2: बिल्कुल, देखिए यानी कुछ सालों से माँ की प्रतिमा में आस्था के रंग तो होते ही है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की सोच भी साफ दिखाई दे रही है. और यही वजह है कि छोटे बड़े शहरों में पर्यावरण की रक्षा सर्वोपरि है और श्रद्धालु का रुझान इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
3: हर साल माँ आएंगी, आस्था सजेगी और प्रकृति भी मुस्कुराएगी. ऐसे में दुर्गा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं माँ की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का अनुपम श्रृंगार हो रहा है. कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि माँ के दरबार को भव्य और दिव्य रूप दिया जा सके. आज देश के हर छोटे बड़े शहर में माँ की ऐसी प्रतिमाएं आकार ले रही हैं जिनको पिछले कुछ सालों से इको फ्रेंडली रूप दिया जा रहा है. ऐसे में राजस्थान के सीकर में बंगाल की खास मिट्टी से 100 से ज्यादा इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, जिनको आकार देने के लिए, उनमें रंग भरने के लिए जुटे कारीगर रोज 18 से 20 घंटे तक काम कर रहे हैं.
4: मैं 4 महीना से बना रहा हूँ मूर्ति का, मिट्टी का बनता है और यहाँ जो कारीगर है 10 कारीगर लेके लगातार बना रहा हूँ और मूर्ति का फिनिशिंग जो आपका है पूरा मिट्टी का है.
3: शहर के श्री शीतला सांस्कृतिक समिति की ओर से यहाँ 31वीं दुर्गा पूजा आयोजित करने की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं. यही वजह है कि यहाँ के प्राचीन शीतला माता मंदिर के पास इन दिनों काफी हलचल है. प्रकृति को बचाने का यही सुंदर संदेश झांसी की 4 बहनें भी दे रही हैं. साथ ही महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करते हुए ये बहनें माँ की मनमोहक मूर्तियां बना रही हैं. अपने हुनर के दम पर ये बहनें अपने बड़े भाई के साथ परिवार की करीब 15 साल पुरानी मूर्ति निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं. यहाँ बंगाली पैटर्न में माँ की मनमोहक मूर्तियाँ देखने लायक हैं. फिलहाल माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है. प्रतिमाओं की रंगाई, सजावट और बारीक काम में ये चारों बहनें जुटी हुई हैं.
5: मूर्ति के लिए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कलर पेंट और घास, ये सारी चीजें यूज की गई हैं. इसमें पेंट जो है वो कच्चा यूज करते हैं, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे.
6: हमारे भैया सीखने जाते थे एक जगह, तो वहीं से उनको थोड़ी मतलब बनाने की इच्छा हुई और फिर उनको उसमें रुचि बढ़ने लगी.

0: सीखा, 2 साल सीखा और फिर उसके बाद उन्होंने फिर अपना खुद का बाड़ा डाल लिया।
1: इन प्रतिमाओं को बनाने, उन्हें सजाने, सवारने के लिए सारा सामान कोलकाता से मंगाया जाता है। तब ये बहनें अपने हुनर के दम पर भाई संग 150 से ज्यादा माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को आकार दे रही हैं, जिनकी डिमांड झांसी से बाहर भी खूब है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, संगम नगरी प्रयागराज के भारद्वाज पार्क में कोलकाता से आए मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहाँ भी मूर्तियाँ गंगा की शुद्ध मिट्टी से बनाई जा रही हैं। माँ दुर्गा की आंखों के भाव, उनके मुकुट और आभूषणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिर मूर्ति को प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल रंगों से सजा संवार कर जीवंत रूप दिए जाने की कोशिश है।
2: ये इको फ्रेंडली कलर है, ये कोई मूर्तियों में हार्मफुल नहीं है। मूर्तियां गंगा जी की मिट्टियों से बनी है और नवरात्र है तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रयागराज के जितने भी पंडाल की मूर्तियां हैं हमें बनाने को मिल रही है, उसका डिजाइन करने, उसको कलर करने की प्रतिमाओं को मिल रहा है।
1: यहाँ भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान कार्तिकेय और दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को गंगा की मिट्टी से आकार दिया जा रहा है।
3: पूरे देश में नवरात्र की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त भरद्वाज पार्क में हैं जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो बनाने का काम है वो चल रहा है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं और इन मूर्तियों को बनाया और संवारा जा रहा है। 3 फीट से लेकर के 10 फीट तक है और तमाम ये बड़ी छोटी मूर्तियां यहाँ बनाई जाती हैं। तमाम कलाकार यहाँ पर इन रंग भरने का इन मूर्तियों में काम कर रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी भव्य दुर्गा पंडालों को बनाने का काम जारी है। यहाँ की प्रसिद्ध भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी हर साल खास थीम पर पंडाल बनाती है, इसलिए इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए खास थीम पाषाण प्राण यानी पत्थरों में प्राण की थीम पर पंडाल बनाया गया है।
4: हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा।
1: पंडाल में पहुंचते ही सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा दिखेगी। उनके दाईं तरफ भोले बाबा और बाईं तरफ बप्पा की प्रतिमा स्थापित हैं। हर पिलर और दीवार पर भारतीय संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं की कई आकृतियां पत्थर की नक्काशी की शैली में उकेरी गई हैं। तो वहीं गुफा मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजेगी, यानी भक्ति ऐसी जो प्रकृति को भी नुकसान न पहुंचाए, इसी सोच के साथ इको फ्रेंडली माँ की प्रतिमाएं आज देश भर में लोगों की पहली पसंद बन रही हैं। झांसी से अजय झा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और पुरुलिया से सत्यजीत बनर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो ये जो बारीकी आप लोगों ने देखी ना पंडाल की, पुरुलिया की ये स्टोरी थी, तो ये नक्काशी, ये बारीकी आपको वेस्ट बंगाल और जो उड़ीसा के कारीगर हैं, जो कलाकार हैं, वही कर सकते हैं। इसीलिए जो विशेष करके पंडाल बनाने के लिए लोगों को बुलाया जाता है कारीगरों को, तो वो कोलकाता के कारीगरों को ही चुना जाता है। तो ये तो एक खूबसूरत तस्वीर हमने आपको पंडालों की दिखाई, लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी की, जहां पर आपको बता दें कि आसू नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश भर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र के 68 भक्तों की भक्ति यात्रा इन दिनों खास चर्चा में है।
6: उधर विदर्भ की कुलस्वामिनी अमरावती की मां अंबा और इकवीरा माता मंदिर में भी शारदीय नवरात्र की तैयारियां जो है उसने जोर पकड़ लिया है। मंदिर में देवी के सोने चांदी के आभूषणों की खास सफाई की जा रही है। इस सेवा की परंपरा भी बेहद खास है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
7: नवरात्र के शुभ दिनों का शुभारंभ होने वाला है और गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में मां के दरबार में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। आस्था ऐसी है कि दूर दूर से भक्त अपने अपने तरीके से मां के दरबार तक पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के संगोला तहसील के जुनोनी गांव से करीब 68 लोगों का एक समूह अंबाजी पहुँच गया है, लेकिन इनकी यात्रा कुछ अलग है।
8: हम जुनोनी नवरात्र फेस्टिवल तालुका संगोला जिला सोलापुर स्टेट महाराष्ट्र से निकले हैं। तो इधर अंबाजी माता का दर्शन लेने के लिए इधर से आए थे, अभी जोत लेके जा रहे हैं। उधर से हमारे गांव से इधर आने का 1170 किमी का अंतर होता है, और हमें आते टाइम गाड़ी से आते, जाते टाइम पैदल से जोत लेके जाते हैं।
7: माँ के स्वागत का उत्साह कैसा है, अब जरा इसकी एक और तस्वीर देख लीजिए। ये हैं विदर्भ की कुल स्वामिनी अमरावती की माँ अम्बा का दरबार। शारदीय नवरात्र करीब है और माँ के दरबार को सजाने संवारने का काम शुरू हो चुका है। माँ के सोने चांदी के आभूषण निकाले गए हैं, इनकी खास सफाई की जा रही है ताकि नवरात्र में जब माँ का श्रृंगार हो तो उनका दरबार और दिव्य नजर आए। लेकिन आभूषणों की ये सफाई महज एक तैयारी नहीं है, इसके पीछे है सेवा और परंपरा की लंबी कहानी। अमरावती का सुवर्णकार समाज पिछले करीब 60 साल से माँ के आभूषणों की सफाई और देखभाल की सेवा करता आ रहा है। जाहिर है चाहे वो अंबाजी में भक्तों की अनोखी यात्रा हो या फिर अमरावती में माँ के आभूषणों की 60 साल पुरानी सेवा, नवरात्र के आने के साथ देश भर के माँ के दरबार सजने लगे हैं। कहीं भक्त माँ के दरबार तक अपनी आस्था और मनोकामना लेकर पहुँच रहे हैं, तो कहीं पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं माँ की सेवा में जुट गई हैं। अमरावती से धनंजय साबले के साथ अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए देश भर में नवरात्र की तैयारियां खूब हो रही हैं, पंडालों से लेकर बाजारों तक रौनक छाई हुई है। खासकर की गरबा डांडिया के लिए तो महिलाओं का क्रेज साफ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको लेकर चलते हैं मुंबई, यहां के बोरीवली में चनिया चोली का बाजार पूरी तरह से सजा हुआ है। ट्रेडिशनल के साथ साथ ट्रेडिंग गरबा रास के परिधान डिमांड में है।
9: बिल्कुल, आपको बता दें कि वहीं राजस्थान के पाली में मां अंबे को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले गरबा रास को लेकर भी उत्साह काफी है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर लड़कियां और महिलाएं पूरे जोश और उमंग के साथ गरबा सीखने में जुटी हैं।

0: कहीं सज गए हैं नवरात्र पर बाजार, तो कहीं हो रही गरबा रास की तैयारी। गुजरात की गलियों से निकलकर गरबा और डांडिया का चलन पूरे देश में छा गया है। चनिया चोली और केडिया के पारंपरिक परिधानों से देश भर के बाजार सज चुके हैं। राजस्थान से मुंबई तक मांबे के स्वागत की तैयारी जोरों पर है। मुंबई के बोरीवली में रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान चनिया चोली से फैशन बाजार सजा हुआ है। ट्रेडिशनल के साथ साथ ट्रेंडिंग डिजाइन के साथ डांडिया रास खेलने वाले परिधान लोगों को खूब लुभा रहे हैं।
1: नवरात्रि में गरबा राज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब बात मुंबई की हो तो बात ही अलग है। मुंबई के बोरीवली इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 80% गुजराती समाज रहता है, और देखिए यहाँ का बाजार किस तरीके से चनिया चोली और केडी से सज चुका है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग डिमांडिंग चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं फैशन हब के नाम के एक शॉप में एंट्री कर रहा हूँ, और खरीदारी बहुत ही ज्यादा जोरों पर है। महिलाएं और स्पेशली जो जेंजेस हैं और युवती हैं, वो देखिए अपने अपने पसंद के चनिया चोली और केडिया यहाँ पर खरीद रहे हैं।
0: इस बार जो चनिया चोली डिमांडिंग और ट्रेंडिंग में है, उनमें बैकलेस, लटकन, सिंगल स्ट्रिप, मल्टी रोल, राजस्थानी लुक्स शामिल है। तो वही पुरुषों के लिए केडिया, धोती, यूनिसेक्स धोती, नवरात्र स्पेशल कुर्ते शामिल है।
1: मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तक आपको कुछ पसंद नहीं आया?
2: मतलब मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लूँ और क्या नहीं।
1: क्या सोच करके आए थे, क्या लेना है?
2: मतलब मुझे पर्टिकुलर, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मतलब घाघरास है जो लोअर पहनते हैं, और ब्लाउजेस की यहाँ पे वैरायटीज है, तो उसी से रिलेटेड कुछ सोच रहा हूँ।
1: अच्छा, ये 9 दिन अलग अलग थीम पर ही काम करने वाले हो ना?
2: मतलब कलर्स रहते हैं, और उसके हिसाब से हम लाइक एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ।
0: मुंबई में लोग पारंपरिक गरबा परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं, तो पाली में गरबा खेलने की तैयारियों में जुटे हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले गरबा रास को लेकर जोरदार तैयारी चल रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर लड़कियां और महिलाएं जी जान से गरबा सीखने में जुटी हैं। ट्रेडिशनल से लेकर ट्रेंडिंग गरबा स्टेप सीख रही है।
3: नृत्य एक ऐसा फॉर्म है जिसमें लाइक हम सब कुछ भूल के सिर्फ डांस के थ्रू माँ से कनेक्ट हो सकते हैं।
4: गरबा में बेसिकली तो 2 ताली, 3 ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं। बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन ज़ी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डाल दे, तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते हैं तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
0: गरबा रास शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माँ की आराधना, भक्ति और जीवन के उत्सव को मनाने के लिए किया जाता है। मूल रूप से गुजरात से शुरू हुआ ये पारंपरिक लोक नृत्य अब पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, दशहरा पास आते ही देश भर में रामलीला और रावण दहन की तैयारियां तेज हो जाती हैं, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में विजयदशमी से जुड़े आयोजन का रंग थोड़ा अलग नजर आता है। यहां दशहरा उत्सव की शुरुआत ही लंकाधिपति रावण के सम्मान और उनकी भव्य सवारी से होती है।
6: देखिए, सड़कों पर निकलने वाली शोभा यात्रा में परंपरा, भव्यता और लोक संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। रावण के विशाल स्वरूप के साथ रामायण के किरदार भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, और बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच पूरा शहर उत्सव के रंग में रंगा नजर आता है।

0: दशानन की वो हंसी जिसकी गूंज से दशों दिशाएं कांप उठे, सिर पर मुकुट, हाथ में शस्त्र और चेहरे पर लंकापति वाला रौब। जब रावण का रथ सड़कों पर निकलता है तो निगाहें खुद ब खुद उसी पर ठहर जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में कुछ ऐसा ही भव्य नजारा देखने को मिला, जहां लंकापति रावण की शोभा यात्रा निकली।
1: रावण की पत्नी मंदोदरी बनी हूँ आज, और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ भ्रमण के लिए निकले हैं। हमारे परिवार में मेघनाथ, कुंभकर्ण और विभीषण और उनके दास लोग हैं हम लोग के साथ, और हम लोग अपने नाना के ननिहाल आए हुए हैं।
0: रावण की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सड़कों पर अपार जनसैलाब उमड़ा। ऐसे में रावण के विशाल स्वरूप ने पूरे माहौल को रामायण काल की यादों से भर दिया।
2: चौकियों में रावण की भव्यता, उनके आकर्षण, उनका व्यक्तित्व, तो उनके ज्ञान और उनके दर्शन को दर्शाते हुए जटाराम मेला कमेटी उनकी शोभा यात्रा का शुभारम्भ करती है।
0: बैंड बाजों की धुन और जय घोष के बीच भव्य शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में लंकापति रावण का विशाल स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहा, तो वहीं राम और लक्ष्मण के रूप में सजे कलाकार भी लोगों का ध्यान खींचते नजर आए। शोभा यात्रा के साथ बैंड की शानदार परफॉर्मेंस ने माहौल में और रंग भर दिया। कहीं ढोल की थाप गूंजती दिखी तो कहीं अलग अलग तरह के ढोल की आवाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रयागराज में दशहरा उत्सव की शुरुआत भी कुछ अलग अंदाज में होती है। यहां तीनों लोकों के विजेता कहे जाने वाले लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का आगाज होता है। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जब लंकापति रावण अपने पूरे शाही अंदाज में शहर की सड़कों पर निकलता है। रावण की ये भव्य सवारी हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज की सड़कों पर अपनी अलग छाप छोड़ गई, मगर इस भव्यता के पीछे एक संदेश भी छिपा है। अहंकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, विजय हमेशा सत्य की ही होती है। इस संदेश के साथ प्रयागराज में दशहरे की तैयारियां अपने पूरे रंग में नजर आ रही हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: राजस्थान का कोटा शहर भी इस बार दशहरा की रौनक देखने लायक है। वहां पर तैयारियां चल रही हैं। इस बार यहां पर 105 फीट ऊंचे रावण के पुतले ने लोगों का ध्यान खींचा है। विशालकाय रावण का ये भव्य स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
4: बिल्कुल, देखिए रावण के इस विशाल पुतले को तैयार करने के लिए दिल्ली NCR से कारीगरों को खास तौर पर कोटा बुलाया गया है। तो रावण के इस बड़े से पुतले की और क्या कुछ खासियतें हैं, और क्यों ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ही नहीं बल्कि कोटा की दशहरा परंपरा और भव्य आयोजन की पहचान बन चुका है, चलिए आपको दिखाते हैं।

0: पूरी तरह तैयार होने से पहले ही कोटा का ये रावण सुर्खियां बटोरने लगा है। लकड़ी के इस फ्रेम के आकार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ रावण की काया कितनी विशाल होने वाली है। पूरा बनकर तैयार होने पर जब ये रावण खड़ा होगा तो इसका दीदार काफी दूर से ही हो जाएगा, क्योंकि इस रावण की ऊंचाई 105 फीट से भी ज्यादा होगी। लेकिन इस रावण की खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है, इस दशानन का दहन भी बेहद रोचक होने वाला है। इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि दहन से पहले ही ये रावण अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमाता नजर आएगा। अपनी विशाल भुजाओं से ये रावण तलवार चलाएगा, मूछें हिलाएगा और अपनी पलकें भी झपकेगा।
1: विशेषता रावण में, कोटा के रावण में खुद ही विशेष है, सारी चीजें इसमें होती है, जिससे गर्दन घुमाता है, पलके चलाता है, तलवार भी चलाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वो अब आने वाले टाइम में हमारा काम भी इस टाइम 90% हो चुका है, 10% रह रहा, उसमें देखेंगे क्या नया दिखा सकते हैं कोटा के।
0: रावण के इस विशाल पुतले को तैयार करने के लिए दिल्ली NCR से कारीगरों को खास तौर पर कोटा बुलाया गया है। इस रावण के निर्माण में 5 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। बांस के 500 से ज्यादा टुकड़ों से पुतले को आकार दिया गया है। करीब 1500 मीटर वेलवेट से रावण के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी से रावण के पुतले को बांधा जा रहा है। कागज को चिपकाने के लिए करीब 2 क्विंटल गोंद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रावण की ऊंचाई पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम रखी गई है, लेकिन बनावट की तकनीक के लिहाज से ये पुतला बेहद खास है। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये दोनों पुतले 70 फीट के बनाए जा रहे हैं। कारीगरों का दावा है कि 11 अक्टूबर तक रावण का पुतला पूरी तरह तैयार हो जाएगा और इस रावण का दहन भी दर्शकों के लिए यादगार बन जाएगा। कोटा से चेतन गुर्जर, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए, हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, बदलने जा रहे कैची धाम में अब रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: पहाड़ों में बदल रहा मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ सतुपंथ में भारी बर्फबारी, रास्ते में 2 फीट से ज्यादा बर्फ, चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी, सावधानी की अपील। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्रि की भव्य तैयारियां, जगह जगह बनाए जा रहे हैं पूजा पंडाल। चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में 51 वर्षों से हो रही है मां की पूजा। इस बार भव्य होगा रामनगरी अयोध्या का दीपोत्सव, प्रमुख मार्गों से घाट तक दिखेगी रामायण की झलक। 7 नवंबर को 56 घाटों पर जलाए जाएंगे करीब 30 लाख दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर वाराणसी में भव्य कार्यक्रम, 500 बाइकर्स और 51 महिलाओं ने 10 पवित्र नदियों के जल से किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। ₹1965 से लेके करगिल का योद्धा, एनआईटी कर्नाटक की बढ़ाएगा शोभा। कॉलेज कैंपस में पहुंचा रिटायर्ड फाइटर जेट MiG-21, वायुसेना के साथ रहा 6 दशक से ज्यादा लंबा सफर।
6: तो चलिए अब आपको उत्तराखंड नीर चलते हैं, जहां पर नैनीताल में बसा कैंची धाम इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि ये धाम देश दुनिया के खास धार्मिक स्थलों में शामिल है। लेकिन अभी हाल ही में जो देखा, जो लॉन्ग वीकेंड गुजरा था, उसमें कितनी ज्यादा भीड़ थी, लोगों के लिए काफी परेशानी हुई थी, लोग फंस चुके थे वहां पे। तो अब इसको लेकर काफी ज्यादा चेंजेस करने के लिए प्लान किए जा रहे हैं कि जो भीड़ है वो थोड़ी कम पहुंचे, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा थॉट है।
9: बिल्कुल होना ही चाहिए। आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर ये जल्द से जल्द उठाया गया कदम, क्योंकि खास करके हमने देखा कि हनुमान अंश आने के बाद से और ज्यादा भीड़ हो गई है। 2-2 घंटे एक ही जगह पे, मान लीजिए पूरा परिवार है जिसमें महिला है, बच्चा है या फिर बुजुर्ग है, तो कितनी दिक्कत होती होगी।
8: और हम कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे और मैंने बताया था कि मैं बहुत पहले वहां पर गई थी, तब भी इतनी ज्यादा भीड़ थी और मुझे नहीं पता कि फिल्म को थैंक्स बोलना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं ना फिल्म में आने के बाद, जहां पर कोई नहीं होता, खैर कैंची धाम तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध पहले से ही था, लेकिन वहां पर लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं। अब जीवन में दुख इतने हैं कि इंसान सोचता है कि कहां हम जाएं कि हमें आध्यात्मिक शुद्धि हो, है ना, आध्यात्मिक अनुभूति हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कैंपिंग की तो बहुत ज्यादा जरूरत थी ही कि हर कोई निकल पड़ा है कि चलो कैंची धाम चलते हैं, तो कितना मुश्किल होगा हर किसी को मैनेज करना, व्यवस्था बनाए रखना। तो फिर दीपिका खबर क्या है?
6: बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से बाबा नीम करौली के दर्शन को लेकर श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में उस जगह पहुंच रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए कैंची धाम में एक नया एंट्री प्लान बनाया गया है।
8: बिल्कुल नया एंट्री प्लान बनाया गया है, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे कि कैंपिंग होगी। और खासकर आपको बता दें कि बाबा नीम करौली महाराज के प्रति ये बार श्रद्धा खास मौकों और छुट्टियों के दौरान काफी ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों की भीड़ भी। ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो इसके लिए नया एक्शन प्लान तैयार कर दिया गया है। क्या है ये नया एक्शन प्लान? मंदिर परिसर में भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए क्या कुछ खास तैयारी की जा रही है, ये आपको दिखाते हैं।

0: ये आस्था का वो बड़ा धाम है जहां हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। बाबा नीम करौली के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बीते दिनों तो कैची धाम में आस्था का ऐसा समंदर उमड़ा कि सड़कों से लेकर मंदिर परिसर तक हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए। बढ़ती आस्था के साथ बढ़ती भीड़ ने प्रशासन के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी। ऐसे में अब प्रशासन ने व्यवस्था को और बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आला अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।
1: जैसे आपने देखा पिछले वीकेंड में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि वहाँ पे श्रद्धालु का है, उनकी संख्या में देखी गई। इनफैक्ट जो डिटेल्स पुलिस ने मुझे बताए हैं 50,000 को भी एक दिन में वो क्रॉस कर गया। और उस कैपेसिटी के लिए जहाँ पे जो मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं बना है और अन्य भी नहीं बना है। तो आज सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक थी, इसमें पुलिस प्रशासन आरटीओ के अलावा लोकल्स के भी जितने स्टेक होल्डर्स थे, उसमें मीडिया खुद थी, बाहर के लोग थे, होटल हमारा जो एसोसिएशन है उनके लोग थे, केमो के थे, टैक्सी यूनियंस थी।
0: यानी आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और व्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर रहेगा ताकि बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों को सुविधाजनक माहौल मिल सके।
1: आप सभी से बातचीत करने पे ये कंसेंसस बना है कि एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को यही नहीं पता कि कितने लोग आएंगे या कितने आ सकते हैं तो आगे कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। तो एक तो इसमें डीएम और एसएसपी जॉइंटली एक रिकमेंडेशन अपनी शासन को देंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
0: इसी के तहत मंदिर परिसर में भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए भी खास तैयारी की जा रही है।
1: तो ये भी फैसला हुआ है कि जो मंदिर में एंट्री और एग्जिट है इसको सेपरेट ही रखा जाए, क्योंकि जहाँ पे दो लोग ऐसे क्लैश करते हैं, दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे खतरे की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
0: सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं, कैची धाम तक पहुंचने वाले रास्तों पर भी व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों की आवाजाही भी सुचारू बनी रहे।
1: हमारी जो हाईवे है वो बंद नहीं होनी चाहिए। जो हमारे लोग लोकल सलमोड़ा जा रहे हैं, बागेश्वर जा रहे हैं, पिथौरागढ़ जा रहे हैं, उनका मूवमेंट आसानी से होना चाहिए। इन सबको लेके ये सहमति बनी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
0: खास मौकों पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए पहले से तैयारियां करने पर जोर दिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को मौके पर किसी तरह की असुविधा ना हो।
1: हर वीकेंड से पहले या जब भी कोई विशेष पर्व हो तो बिना किसी के बोले ही ऑटोमेटिकली एसडीएम सीओ एआरटीओ अनिवार्य रूप से बैठक करेंगे और उसमें जो जो इंतजाम होने हैं विशेषकर शटल के, क्योंकि जब भी भीड़ ज्यादा होती है तो हम भीमताल से और अन्य जगहों से शटल चलाते हैं, तो केमो भी यहाँ पे मौजूद थी, आरटीओ भी थे, वो एक तरह से परमानेंट व्यवस्था रहेगी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब विशेष पर्व हो तब उसे करते हैं, लेकिन आजकल हमने देखा है कि बहुत छोटे नोटिस पे भी ज्यादा लोग आ जा रहे हैं।
0: आस्था के इस धाम में आने वाले श्रद्धालुओं से भी प्रशासन ने सहयोग की अपील की है, क्योंकि बाबा के दरबार में आने का मकसद सिर्फ पहुंचना नहीं, श्रद्धा के साथ दर्शन करना और उस पवित्र माहौल को बनाए रखना भी है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई है। आपको बता दें कि केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है।
3: बिल्कुल, देखिए केदारनाथ धाम में अब तक 16.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी मौसम के करवट लेने के बाद भले ही सर्दी ने दस्तक दी है लेकिन भक्तों का गर्म जोश से धाम आना अभी भी जारी है।
4: हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रही है पूरी केदार घाटी। बाबा केदार के दरबार में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि हर रास्ता श्रद्धालुओं से भरा नजर आ रहा है। कड़ी चढ़ाई, बदलता मौसम, लंबा सफर और तमाम चुनौतियां, लेकिन महादेव के भक्तों का उत्साह हर मुश्किल पर भारी पड़ रहा है। हर साल केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक द्वितीय चरण की केदार यात्रा में 15 सितंबर के बाद अब तक 1.5 लाख यात्री धाम पहुंचे हैं। हर दिन 15,000 से अधिक भक्त दर्शन कर रहे हैं। यात्रा शुरू होने से अब तक करीब 16,50,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है।
5: बीते 20 दिनों में 1.5 लाख भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि अभी तक कुल 16.5 लाख से अधिक भक्त रिकॉर्ड संख्या में बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अभी एक माह की यात्रा शेष बची हुई है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यात्रा के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और इस बार की केदारनाथ यात्रा नया कीर्तिमान रचेगी।
4: भारी भीड़ के चलते कई जगह लंबी कतार और जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, लेकिन बाबा के दर्शन की आस में भक्त पूरे धैर्य और उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन यात्रा को व्यवस्थित रखने में जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं को बाबा केदार के सुगम दर्शन हो, इसका इंतजाम किया गया है।
6: श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में 2026 में अभी तक करीब 16,54,000 लोग यहाँ पे सुगम दर्शन कर चुके हैं। मानसून के खत्म होने के बाद से सितंबर माह के अंत से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। उसके दृष्टिगत जो हमारा पुलिस का व्यवस्थापन है उसको भी बढ़ाया गया है, साथ ही साथ जो हमारी प्रशासन की तैयारियां और प्रशासन की विभिन्न टीमें हैं उनको भी तैनात किया गया है, ताकि इस बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा कराई जा सके।
4: श्रद्धालुओं का कहना है कि केदारनाथ पहुंचते ही सारी थकान और परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंदिर परिसर में गूंजता हर हर महादेव का जयघोष, बर्फ से ढकी चोटियां और शिव भक्ति में डूबा वातावरण हर किसी को एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो भगवान बद्री विशाल का ये धाम भी श्रद्धालुओं से गुलजार है। कपाट खुलने के बाद से अब तक लाखों श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में यात्रा सीजन के पीक दौर में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने चार धाम यात्रियों को यात्रा मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे।
7: तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पहाड़ों पर ठंड की दस्तक।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: तो देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में तो मौसम का जो मिजाज है काफी ज्यादा सर्द होना भी शुरू हो गया है। आसमान पर बादलों का डेरा है और कई जगहों की अगर हम बात करें कई जगहों पर ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी शुरू हो गई है।
3: तो वहीं देखिए उत्तराखंड में भी मौसम के बदले मिजाज ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों की फिजा बदल दी है। खासकर बद्रीनाथ केदारनाथ वाले इलाकों में बदलता मौसम एहतियात बरतकर ही आने के संकेत दे रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हिमाचल और उत्तराखंड में इस वक्त मौसम के क्या है हालात और आने वाले दिनों में कैसी रहने वाली है पूरी सिचुएशन।

0: मौसम ने कुछ यूं करवट ली कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके सर्द हवाओं के आगोश में समा गए। पिछले दो दिनों से हिमाचल के तमाम इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में तो बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। धर्मशाला और मैकलोडगंज में तो बारिश और ओले गिरने के बाद पारा गोते लगाने लगा। त्रियुंड ट्रैक पर जाने वाले सैलानियों को भी ठंड से बचने की खास तैयारी करनी पड़ी। मौसम विभाग की माने तो 9 अक्टूबर तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। धर्मशाला मैकलोडगंज के साथ साथ ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला में भी सर्द हवाएं अपने तेवर दिखाएंगी। एहतियात के तौर पर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 4 दिनों का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है।
1: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हमारे जो स्पेशली क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ये लगभग 9 अक्टूबर तक प्रदेश के जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट है, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मध्य बारिश का दौर है वो देखने को मिलेगा।
0: मौसम का ये मजाज सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं देश के दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी दिख रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भी मौसम करवट ले चुका है और सुबह और शाम अच्छी ठंड का एहसास हो रहा है। बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के दौरान ठंड से बचने की हिदायत दी गई है।
2: पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम विभाग के अलर्ट के साथ ही पहाड़ों में मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। 11 अक्टूबर तक पहाड़ों में येलो ऑरेंज जारी किया है। ऐसे में 4200 मीटर की ऊंचाई और 3800 मीटर की ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है, तो वहीं निचली जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। बद्रीनाथ धाम की बात करें या फिर पूरे चमोली जनपद की बात करें, हर तरफ एक बार फिर से मौसम के करवट बदलने के साथ ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में जहां इस समय लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं से बद्रीनाथ धाम खचाखच दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब मौसम के करवट बदलने के साथ ही जबरदस्त ठंड का एहसास देखने को मिल सकता है।
0: उत्तराखंड के मौसम विभाग के मुताबिक 11 अक्टूबर तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने के भी आसार हैं। पहाड़ों में अचानक बदले मौसम का असर केदारनाथ में भी दिखा। यहां बारिश और बर्फबारी की वजह से कुछ श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में SDRF और पुलिस ने मिलकर फौरन एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया।
3: श्री केदारनाथ धाम में किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर तबीयत खराब हो तो उन्हें त्वरित हमारे अस्पताल में सहायता प्रदान की जाती है। हमारे विभिन्न चिकित्सक वहां पर ड्यूटी पर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी श्रद्धालु को एयरलिफ्ट या हेलीलिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। SDRF, DDRF की टीम द्वारा उन्हें रेस्क्यू किया जाता है और हेली से लिफ्ट करके उन्हें विभिन्न चिकित्सालयों में, चाहे वो जनपद मुख्यालय के हों, चाहे वो एम्स ऋषिकेश के हों, वहाँ पर चिकित्सा के लिए भेजा जाता है।
0: अक्टूबर का महीना शुरू होते ही पहाड़ों में मौसम बदलने लगा है। ऐसे में सैलानियों के लिए बेहद जरूरी है कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही पहाड़ों का रुख करें। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नैन और शिमला से विकास शर्मा के साथ धर्मशाला से पूजा शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
4: यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
1: और दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में मौजूद एक पान की दुकान इन दिनों खूब चर्चा में है। ये कोई आम पान की दुकान नहीं है, बल्कि करीब सालों साल पुरानी पांडे पान दुकान है। इस दुकान की खासियत है कि यहां मिलने वाले करीब 150 तरह के पान हैं, और इस दुकान के पान को डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बराक ओबामा तक चख चुके हैं। तो आखिर क्या है इस पान की दुकान का राज, चलिए आपको बताते हैं।
3: अकबर इलाहाबादी का मशहूर शेर है कि लगावट की अदा से उनका कहना पान हाजिर है, कयामत है सितम है, दिल फिदा है जान हाजिर है। समझ लीजिए इस दुकान की बरकत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ के पान केवल महकते नहीं हैं, मुंह में घुलते भी हैं और हमेशा के लिए जहन में उतरते भी हैं।
6: दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में है हम, और मेरे पीछे आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई पड़ रहा है। आज आपको एक ऐसी पान की दुकान में लेकर जाऊंगा जो इस राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब है। खास बात क्या है कि आजादी के बाद से लगातार इस पान की दुकान से राष्ट्रपति भवन में पान जाते रहे हैं, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि देश के हर राष्ट्रपति ने इस दुकान का पान खाया है।
3: इस दुकान में केवल पान का हर पत्ता ही खास नहीं है, बल्कि इस दुकान का पता भी खास है। यहाँ दीवारों पर देश के कई राष्ट्रपतियों की तस्वीरें हैं, और दावा तो यहाँ तक है कि बराक ओबामा और ट्रंप जैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भी यहाँ का पान चखा है।
6: देवी प्रसाद पांडे जी मेरे साथ में हैं, इस दुकान की तीसरी पीढ़ी है। बाबूजी, जब से शुरू हुआ था तब से आज तक बदलाव क्या आया, पहले ये बताइए मुझे।
7: बदलाव ये आया कि तम्बाकू खाने वालों की बहुत कमी हो गई। अब जो यंग जनरेशन है वो मीठा और सादा पान पे ही ध्यान देते हैं, तो तम्बाकू ना के बराबर रह गए। जो पुराने लोग हैं वही खाते हैं, बाकी हम नए जो बच्चे हैं, मुँह लाल ना हो ये ना हो, इसका हमने खास ध्यान रखा है। मीठा पान अब हमारा 20 खाले मुँह लाल नहीं होगा।
3: इस दुकान की कहानी आज की नहीं है। साल 1943 में शिवनारायण पांडे ने महज 8 पैसे से इस कारोबार की शुरुआत की थी, और आज यही दुकान दिल्ली के सबसे चर्चित पान ठिकानों में शामिल है। साल 1948 से राष्ट्रपति भवन को यहां से पान की सप्लाई शुरू हुई, जो बदस्तूर जारी है। पांडे पान की पहुंच सिर्फ हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन तक नहीं रही। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आए थे तो उन्हें भी पांडे पान का खास पान खिलाया गया था। पांडे पान के पते पर पान की किस्मों की कोई कमी नहीं है। आपको यहाँ एक से बढ़कर एक फ्लेवर मिल जाएंगे, लेकिन जिस पान का किस्सा और स्वाद आपके मुंह में घुल जाएगा वो है माधुरी दीक्षित के नाम का स्पेशल पान।
7: देखिए माधुरी जी के नाम से पान है वो तो एक डिफरेंट केस ही हो गया।
6: क्या क्या किस्सा है वो?
7: कि हुसैन साहब इनको खिलाते थे
6: एमएफ हसन साहब,
7: और बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनके नाम से पान लॉन्च करो जो फार्मूला इन्हें पसंद है। तो हमने कहा ठीक है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पेंटिंग दी, और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये पेंटिंग यहाँ लगाओ और माधुरी के नाम से। तो माधुरी का मेनू में नाम लिख दिया, मेनू में माधुरी का नाम लिखा लेकिन स्टिकर नहीं लगाया उस पर।
6: क्यों नहीं लगाया?
7: नहीं लगा, नाम का स्टिकर नहीं लगा। हमने और बटर स्कॉच वगैरह चॉकलेट वगैरह इनके स्टिकर लगाए हैं, किसी का नाम का स्टिकर नहीं।
6: और आप देखिए कि ये उस पेंटिंग की बात कर रहे हैं जो आप हनुमान जी देख रहे हैं, वो पेंटिंग एम एफ हुसैन जी ने खुद इन्हें गिफ्ट की थी। उसके नीचे आप हुसैन साहब का फोटो भी देख पा रहे हैं।
7: खास बात यह है कि जो पहाड़ उठाए हनुमान जी उस पे पान का पत्ता है।
6: हाँ, ये हमने भी नोटिस किया
7: कि सजीवन बूटी पान का पत्ता ही था।
3: कहते हैं हिंदुस्तानी शहरों के तमाम किस्से पान की दुकानों के हवाले होते हैं, लेकिन दिल्ली के दिल में बसा पान का ये वो ठिकाना है जिसका ठिकाना न जाने कितनों के किस्सों के हिस्सों में शामिल है।
6: बड़ी बात ये है कि कभी भी आपको यहाँ पर कोई ऐसी चीज, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी दिखाई नहीं पड़ेगी कि कोई बड़ा एक्टर आया तो फोटो खिंचाई और टांग दी, या सोशल मीडिया पे डाल दिया, कोई बड़ा क्रिकेटर आया तो फोटो खिंचाई डाल दी। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अपने पान को अहमियत देते हैं। और कहते हैं जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक आप पहुंच गए हैं तो उसके बाद किसी और तक क्या पहुंचना है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
4: सैन फ्रांसिस्को के येरबा बुएना गार्डन्स में इन दिनों घास पर आपस में जुड़े हाथों की स्केचिंग लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। दरअसल ये विशाल आर्ट दुनिया भर में मशहूर स्विस लैंड आर्टिस्ट सेपे का प्रसिद्ध वैश्विक कला प्रोजेक्ट बियॉन्ड वॉल्स का एक हिस्सा है। इसमें दो विशाल हाथों को एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाया गया है जो एकजुटता और मानवीय जुड़ाव का प्रतीक है।
8: देखिए ये कलाकृति पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, जिसे चाक और कोयले जैसे प्राकृतिक पिगमेंट से विशेष तौर पर बनाया गया है। सेपे का ये बियॉन्ड वॉल्स प्रोजेक्ट साल 2019 में पेरिस में आईफिल टावर के सामने शुरू हुआ था, जिसके बाद कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए सेपे अपने प्रोजेक्ट के साथ 23वें शहर यानी कि सैन फ्रांसिस्को पहुंचे हैं।
4: चलिए अब आपको आखिर में दिखाते हैं घने जंगल और पहाड़ की वो मन मोह लेने वाली खूबसूरती जब इस पहाड़ों को बादलों ने पूरी तरह से ढक लिया। पूर्वी चीन का शिताई काउंटी, जहां बसे दक्षिणी अनहुई प्रांत से सामने आई ये तस्वीरें किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं। यहां शियान्यू पहाड़ पर छाया बादलों का समंदर और उसके बीच जंगलों से ढकी चोटियां, नजारा ऐसा कि हर कोई कैमरे में कैद करने को मजबूर हो जाए। शिताई काउंटी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे, जहां बादल जंगलों, बोर्डवॉक और पहाड़ी पवेलियन के आसपास तैरते नजर आए। एरियल तस्वीरों में धुंध के बीच घुमावदार सड़कें और सीढ़ीदार खेत बेहद शानदार दिखाई दे रहे हैं। वांगशांग पर्वत श्रृंखला का हिस्सा शियान्यू पहाड़ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ तांग राजवंश के प्राचीन रास्ते के लिए जाना जाता है, यानी कि पहाड़, बादल और धुंध, कुदरत ने यहां ऐसा नजारा रचा कि नजरें ठहर गई। चलिए इसी के साथ आज चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी खबरों के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
11: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
12: पहाड़ों में बदल रहा है मौसम, का मिजाज बद्रीनाथ संत तो पंथ में भारी बर्फबारी, रास्ते में 2 फीट से ज्यादा बर्फ, चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी, सावधानी के बीच। दिल्ली में चितरंजन पार्क में नवरात्र की भव्य तैयारियां, जगह जगह बनाए जा रहे हैं पूजा पंडाल। चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में 51 वर्षों से हो रही है मां की पूजा। इस बार भव्य होगा रामनगरी अयोध्या का दीपोत्सव, प्रमुख मार्गों से घाट तक दिखेगी रामायण की झलक। 7 नवंबर को 56 घाटों पर जलाए जाएंगे करीब 30 लाख दीप। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर वाराणसी में भव्य कार्यक्रम। 500 बाइकर्स और 51 महिलाओं ने 10 पवित्र नदियों के जल से किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। एशियन पैरा गेम्स के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटले होंगे भारत के ध्वजवाहक। 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के नागोया में आयोजन।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में बात करने जा रहे हैं द ग्रेट इंडिया फेस्टिवल की, जिसकी शुरुआत जो है अब से 3 दिन बाद होने वाली है। 11 अक्टूबर रविवार को नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही देश में फेस्टिवल सीजन का एक बार फिर से आगाज हो जाएगा, जो नवरात्र, दशहरा, दिवाली और फिर छठ तक यूं ही जारी रहने वाला है। ऐसे में देश में त्योहारों की तैयारियां तमाम चल रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इसके साथ शहर शहर गरबे का रंग जमने लगा है। कभी जो उत्सव गुजरात के शहरों तक सिमटा था, अब वो भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंच चुका है। अब देश भर के शहरों में नवरात्र के दौरान गरबे का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अब शहर शहर गरबा की तैयारियां दिख रही हैं। बाजारों में गरबा की पोशाकों की बहार है। इसी तरीके से तैयारियों में माँ दुर्गा के पंडालों के लिए भी दिख रही हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक माँ भवानी के स्वागत की तैयारियां तमाम चल रही हैं। कलाकार देवी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। पंडालों का निर्माण आखिरी दौर में नजर आ रहा है, तो वहीं पर देश भर में रामलीला के मंचन की तमाम तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अलग अलग कमेटियां रामलीला के आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। मंच सज रहे हैं, रिहर्सल चल रहा है और शहर शहर रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रावण की भव्य शोभा यात्रा के साथ दशहरा उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। प्रयाग दुनिया का वो अकेला शहर है जहां पर रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। आखिर प्रयाग में क्यों निभाई जाती है परंपरा, चलिए आपको पहले यह बताते हैं।

0: था,
1: रावण
0: संगीत का पुजारी था, देवों का उपासक था, कुशल प्रशासक था, लेकिन फिर भी उसका नाम बुराई का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान होने की वजह से इन दोनों के गुणों के साथ जन्मा था वो, और शायद यही वजह थी कि अच्छाई और बुराई दोनों के भाव हमेशा उसके अंतर मन को मचते रहे। वक्त के साथ बुराई उसकी अच्छाइयों पर हावी होती चली गई और रावण अधर्म का चेहरा बन गया। और शायद यही वजह रही कि त्रेता युग और आने वाले हर युग के लिए रावण की पराजय दुनिया में विजय का उत्सव बन गई और उसका दहन बुराई के अंत का त्योहार बन गया। बावजूद इसके कहना गलत नहीं होगा कि भले ही रामायण हर तरह से भगवान राम की कथा है, लेकिन ये भी सच है कि बिना रावण के ये कहानी अधूरी है। श्री राम का पक्ष उजला है तो रावण का पक्ष काला था। लेकिन दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जहाँ न केवल रावण की कहानी का उजला पक्ष

0: पहले धूमधाम से रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। श्री कटरा रामलीला कमेटी इस शोभा यात्रा का आयोजन हर साल पूरी भव्यता के साथ करती है। इसी शोभा यात्रा के साथ प्रयागराज में हर साल दशहरा उत्सव की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में होती है। यह तीनों लोगों के विजेता कहे जाने वाले लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का श्री गणेश होता है। संगम नगरी में रावण की ये शोभा यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें झांकियां निकलती हैं, अलग अलग कलाकार रावण, मंदोदरी, मेघनाद, कुंभकर्ण और विभीषण का किरदार निभाते हैं।
1: मैं रावण की पत्नी मंदोदरी बनी हूँ आज, और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ भ्रमण के लिए निकले हैं। हमारे परिवार मेघनाद, कुंभकर्ण और विभीषण और उनके दास लोग हैं हम लोग के साथ, और हम लोग अपने नाना के ननिहाल आए हुए हैं।
2: कितना बड़ा इतिहास है ये आपके इतिहास का?
1: बहुत बड़ा इतिहास है, 6000 साल पुरानी है इतिहास।
0: आपको बता दें कि प्रयागराज का कटरा क्षेत्र भरद्वाज मुनि के आश्रम क्षेत्र में आता है और इस स्थान को रावण का ननिहाल माना जाता है। दरअसल रावण के पिता महर्षि विश्रवा प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य के बेटे थे, जबकि महर्षि भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति के पुत्र ऋषि अंगिरा के वंशज थे। पौराणिक इतिहास और ऋषि कुलों के आपसी संबंधों के आधार पर रावण को महर्षि भारद्वाज के ही कुल का वंशज यानी उनका प्रपौत्र माना जाता है। इसी वजह से प्रयागराज को रावण का ननिहाल भी कहते हैं। और रावण के ननिहाल प्रयाग के कटरा इलाके में ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। पहले मुगलों के शासन और फिर अंग्रेजों के काल में भी इस परंपरा को यूं ही निभाया जाता रहा। दरअसल प्रयागराज के कटरा इलाके में रावण को बुराई का प्रतीक माना ही नहीं जाता, बल्कि उसकी पहचान यहाँ एक विद्वान और शिव भक्त के रूप में है। और इस परंपरा और मान्यता का आधार रामायण का वो प्रसंग है जो श्री राम की लंका विजय के बाद घटा था। मान्यता के मुताबिक जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते समय संगम पर महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे तो मुनि भारद्वाज ने उनसे सीधे मिलने से संकोच किया। इसके बाद महर्षि भारद्वाज के ही निर्देश पर भगवान राम ने प्रयाग की पावन भूमि पर कोटि तीर्थ की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की ताकि वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सके। यही कारण है कि प्रयागराज में रावण की विद्वता, शिव भक्ति और ऋषि कुल से उसके संबंध का सम्मान करते हुए उसे एक राक्षस मानकर तिरस्कृत नहीं किया जाता, बल्कि नवरात्र से पहले सम्मान के प्रतीक के रूप में उसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है।
3: श्री कटरा रामलीला कमेटी महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र में स्थापित है। अनेकों वर्षों से, 100-150 वर्षों से तो हमने ही अपने पूर्वजों से इसके बारे में सुनते चले आ रहे हैं। हजारों वर्षों का पुराना इतिहास है जी। रावण की शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। रावण का ननिहाल महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र में, महर्षि भारद्वाज मुनि नाना लगते थे, इसलिए हम लोग सम्मान देने के नाते रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान श्री राम की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन सम्मान देने के नाते रावण की भी शोभा यात्रा हम लोग रामलीला मंचन के पहले निकालते हैं। इस जो परंपरा ऐतिहासिक बहुत दिनों से चली आ रही है, रावण अपने पूर्व सज्जस के साथ, अपने भाइयों, अपने रानियों, अपने पुत्रों के साथ यहाँ पर सज्जस के साथ निकलता है और अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए श्री कटरा रामलीला कमेटी का निर्धारित मार्ग से होते हुए लगभग 6 किलोमीटर का मार्ग होते हुए या कर्नलगंज और कटरा के क्षेत्रों से भ्रमण करता हुआ यहाँ पर लोग बीच बीच में अलग अनेकों जगह आरती और पूजन करते हुए रावण की शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं।
0: ये उत्तर भारत की एकमात्र परंपरा है जहाँ दशहरा रावण दहन से नहीं बल्कि रावण वंदना के साथ मनाया जाता है। वास्तव में प्रयागराज की ये परंपरा उस संतुलन का भी प्रतीक है जहाँ बुराई में भी अच्छाई देखने की दृष्टि है और जहाँ इतिहास, धर्म, परंपरा और संस्कृति एक साथ चलते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

रावण की अनोखी परंपरा, जहां पर प्रयागराज में देखी तो वहीं पर कोटा में दशहरा से पहले महारावण तैयार किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कोटा में अब की बार विजयादशमी के उत्सव के लिए 105 फीट का विशालकाय रावण तैयार किया जा रहा है। लकड़ी के इस फ्रेम के आकार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां रावण की ये कितना विशाल स्वरूप देखने को मिल रहा है। इस रावण के निर्माण में 5 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। बांस के 500 से ज्यादा टुकड़ों से पुतले को आकार दिया गया है। करीब 1500 मीटर वेलवेट से रावण के वस्त्रों को तैयार किया जा रहा है। करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी से रावण के पुतले को बांधा जा रहा है। कागज को चिपकाने के लिए करीब 2 क्विंटल गोंद का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, पूरा बनकर तैयार होने पर जब ये रावण खड़ा हो जाएगा तो इसका दीदार काफी दूर तक आपको नजर आएगा। लेकिन इस रावण की खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है, इस रावण का दहन भी बहुत रोचक होने वाला है। इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि दहन से पहले ये रावण अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमाता हुआ आपको नजर आएगा। अपनी विशाल भुजाओं से ये रावण तलवार भी चलाता हुआ नजर आएगा, मूंछ लाएगा और अपनी पलकें भी झपकाएगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल जीवंत है। रावण के इस विशाल पुतले को तैयार करने के लिए दिल्ली NCR से कारीगरों को खास तौर पर कोटा बुलाया गया है। तस्वीरें देखिए।

0: माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। हर तरफ माँ के आगमन की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। माँ की मूर्ति का निर्माण और श्रृंगार कार्य अंतिम चरण में है। वहीं माँ का दरबार सजाने सवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है, जहाँ भारद्वाज पार्क में कोलकाता से आए मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सभी मूर्तियां गंगा की शुद्ध मिट्टी से बनाई जा रही हैं, जिन्हें प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल रंगों से इन्हें सजाया जा रहा है।
1: ये इको फ्रेंडली कलर है, ये कोई मूर्तियों में हाथ फूल नहीं है। मूर्तियां गंगा जी की मिट्टियों से बनी है और नवरात्र है तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रयागराज के जितने भी पंडाल की मूर्तियां हैं हमें बनाने को मिल रही है, उसका डिजाइन करने उसको कलर करने की प्रतिमाओं को मिल रहा है। पंडाल में हमने क्या नाम है कलर किए हैं, डिजाइन बनाई है, मूर्तियों को सजाया है, साड़ी से लेकर बॉर्डर हर एक एक चीज, मतलब माता रानी को एकदम अच्छे से सजा दिया है कि वो बहुत सुंदर लगती है देखने के, मन ही नहीं करता कि इनको विसर्जन किया जाए।
0: कहीं माँ दुर्गा की आंखों में भाव उकेरे जा रहे हैं तो कहीं उनके मुकुट और आभूषणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रंगों की अंतिम परत के साथ प्रतिमाओं में मानव जीवन का संचार हो रहा है। यहाँ 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। साथ भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी गंगा की मिट्टी से ही बनाई जा रही है।
2: पूरे देश में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त भरद्वाज पार्क में हैं, जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो बनाने का काम है वो चल रहा है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं और इन मूर्तियों को बनाया और संवारा जा रहा है। ये मूर्तियां 3 फीट से लेकर के 10 फीट तक हैं और तमाम ये बड़ी छोटी मूर्तियां यहां बनाई जाती हैं। तमाम कलाकार यहां पर इन रंग भरने का इन मूर्तियों में काम कर रहे हैं।
0: नवरात्र शुरू होते ही ये प्रतिमाएं शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में स्थापित की जाएगी। एक ओर जहां आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं आकार ले रही है, वहीं दूसरी ओर मां जगदम्बे को ही समर्पित भव्य पंडालों का निर्माण भी जोरों पर है। ये भव्य तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की है, जहां भव्य पंडालों का बनाने का काम शुरू हो गया है। पुरुलिया में प्रसिद्ध भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी हर साल खास थीम पर पंडाल बनाती है। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए खास थीम पाषाणे प्राण यानी पत्थरों में प्राण पर पंडाल निर्माण किया गया है। इस थीम के जरिए प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक को सामने लाने की कोशिश की गई है, यानी शानदार थीम और पारंपरिक भव्यता को किस तरीके से दर्शाया जाए इसको लेकर कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई व्यस्त है। पूजा आयोजकों और कलाकारों ने पुराने समय के उस धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को जीवंत करने का प्रयास किया है, जब पहाड़ों और गुफाओं के बीच मंदिरों में देवी देवताओं की आराधना की जाती थी।
3: हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा और हर साल के तरह इस साल भी भीड़ उमड़ पड़ेगा इधर।
0: यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा है, उनके दाईं ओर भगवान शिव और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। पंडाल के प्रत्येक पिलर और दीवार पर भारतीय संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं की विभिन्न आकृतियां पत्थर की नक्काशी की शैली में उकेरी गई है। ऐसी गुफा मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होगी और यही माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ पुरुलिया से सत्यजीत बैनर्जी, गुड न्यूज टुडे।
4: फेस्टिवल सीजन का ही एक और रंग है गरबे का। नवरात्र के दौरान देश भर में शहर शहर गरबा आयोजन होते हैं। पूरे 9 दिन गरबे का उत्सव नजर आता है। नवरात्रि के समय हर कोई गरबा करने के लिए उत्सुक नजर आता है। कभी जो गरबा केवल गुजरात की शान था, आज लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में बहुत उत्साह के साथ खेला जाता है। रविवार से गरबा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं देश में कैसी चल रही है गरबा की तैयारियां।

0: ये तैयारी है माँ दुर्गा के महापर्व पर गरबा खेलने की, और सबसे बढ़कर ये तैयारी है साल भर की बीती बातों, किस्सों और वाकयों को पीछे छोड़ त्योहार की खुशियों में डूबकर धूम मचाने की। माँ के आगमन का उत्सव है, सो देश भर में शहर शहर गरबा प्रेमी पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हैं। रंग बिरंगी परंपरागत पोशाकों से लेकर सजे धजे डांडिया तक हर तैयारी पूरे मन और लगन से की जा रही है। चनिया चोली केड़िया सब तैयार है। जरा सोचिए, जब तैयारी ऐसी जानदार है तो उत्सव कितना शानदार होगा। वैसे तो गरबा और डांडिया नृत्य मूल रूप से गुजरात की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन अब नवरात्र के दौरान देश भर के शहरों पर गुजरात का ये रंग चढ़ा नजर आता है। शहर शहर अलग अलग क्लब्स और डांस ग्रुप्स विशेष गरबा नाइट्स का आयोजन करते हैं, जिसमें पूरी तैयारी और सज धज के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। अब की बार भी तैयारी जोरों पर है। चनिया चोली और केड़िया के पारंपरिक परिधानों से देश भर के बाजार सज चुके हैं। ये तस्वीरें मुंबई के बोरीवली की हैं, जहां गरबा डांडिया के लिए पोशाकों से बाजार सज गया है।
1: नवरात्रि में गरबा राज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब बात मुंबई की हो तो बात ही अलग है। मुंबई के बोरीवली इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 80% गुजराती समाज रहता है, और देखिए यहाँ का बाजार किस तरीके से चन्या चोली और केड़ी से सज चुका है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग डिमांडिंग चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं फैशन हब के नाम के एक शॉप में एंट्री कर रहा हूँ, और खरीदारी बहुत ही ज्यादा जोरों पर है। महिलाएं और स्पेशली जो जेंजेस हैं और युवती हैं, वो देखिए अपने अपने पसंद के चन्या चोली और केडिया यहाँ पर खरीद रहे।
0: ट्रेडिशनल पोशाक भी खूब हैं, तो ट्रेंडिंग डिजाइन की भी कमी नहीं। जिसे जो भा रहा है वही ले जा रहा है। प्रैक्टिस अपनी जगह है, लेकिन गरबा खेलने के लिए लुक कम्प्लीट होना भी जरूरी है।
1: अमृता, मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तक आपको कुछ पसंद नहीं आया?
2: मतलब मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लूँ और क्या नहीं।
1: क्या सोच करके आए थे, क्या लेना है?
2: मतलब मुझे पर्टिकुलर, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मतलब घाघरा है जो लोअर पहनते और ब्लाउजेस की यहाँ पे वेराइटीज है, तो वो उसी से रिलेटेड कुछ सोच रहा हूँ।
1: अच्छा, ये 9 दिन अलग अलग थीम पर ही काम करने वाले हो ना?
2: सॉरी, मतलब कलर्स रहते हैं और उसके हिसाब से हम लाइक एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ। और वैसे हम जनरली तो हम क्या कहते हैं, एवरी ईयर एक एक लेते हैं और फिर वो कलेक्ट हो जाता है ओवर द टाइम।
1: अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या सोच कर आए, क्या ट्रेंड में है, क्या डिमांड में, आपको क्या लगता है, या फिर ऑर्डर भी देते हैं?
2: हाँ, मतलब कस्टम मेड भी होता है, और अभी मार्केट में बहुत सारी हर एक नए नए डिजाइन भी आते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि कैसा है क्या।
0: और ये तस्वीरें आई हैं गुजरात के सुरेंद्र नगर से, जहां इन दिनों गरबा डांडिया से जुड़ी पोशाकों की डिमांड बढ़ गई है। यहां अलग अलग डिजाइन और अलग अलग रंगों की पारंपरिक चनिया चोली तैयार की जा रही हैं, जिनकी डिमांड यूपी एमपी दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक है।
3: चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली, केड़िया सेट, जिमी सेट सब हम यहाँ बनाते हैं। हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है, और हम बनाते हैं सब बाहर गांव जाते हैं बॉम्बे साइड, उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, और आरी वर्क होता है, और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है।
0: गुजरात में लोग पारंपरिक गरबा परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं, तो राजस्थान के पाली में भी गरबा खेलने की तैयारियां जोरों पर है। माँ को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले गरबा रास को लेकर जोरदार प्रैक्टिस चालू है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी दिल लगाकर गरबा सीखने में जुटे हैं।
4: नृत्य एक ऐसा फॉर्म है जिसमें लाइक हम सब कुछ भूल के सिर्फ डांस के थ्रू माँ से कनेक्ट हो सकते हैं।
5: गरबा में बेसिकली तो 2 ताली, 3 ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं, बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन ज़ी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डाल दे, तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
0: गीतों की थाप पर झूमती थिरकती महिलाओं की ऐसी ही तस्वीरें झांसी से भी आई। ये नजारा झांसी के ऐतिहासिक किले के छांव पार्क का है, जहां सैकड़ों महिलाएं और युवतियां डांडिया की ट्रेनिंग ले रही हैं।
6: नहीं कितने लोग हैं, बट लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि हाँ सब गरबा के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और इनको देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जब पब्लिक आपकी जोश में होती है तो अपने आप अंदर से जोश आ जाता है। और डेफिनेटली ये माता रानी के लिए सभी की भक्ति है, और मैं भी बस इस भक्ति में झूमते हुए सबको नृत्य सिखा रही हूँ, डांडिया सिखा रही हूँ।
0: ट्रेडिशनल के साथ टेम्पररी ताल का धमाल अब की बार डांडिया उत्सव का उत्साह और बढ़ा रहा है, जिसकी तान पर गरबा के स्टेप सीखती महिलाओं का उत्साह देखने लायक है।
7: तो पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये आज के लिए जो डांस जुम्बा क्लासेस हुआ है। रितु मैम ने हम लोगों को जो डांस सिखाया है बहुत अच्छी इन डांसर सिखाती हैं हम लोगों को, और जो 12th October को हो रहा है डांडिया नाइट, हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं।
8: नवरात्रि के लिए तो बहुत एक्साइटेड है, 12th October को हम सब लोग मिल के जाने वाले हैं, हमारे सारे बच्चे भी जाएंगे साथ में।
0: वास्तव में गरबा नृत्य शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, मातृ शक्ति की महिमा और जीवन के उत्सव को मनाने के लिए किया जाता है। मूल रूप से गुजरात से शुरू हुआ ये पारंपरिक लोक नृत्य अब पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है, और इसी लोकप्रियता के बीच पोशाक तैयार है और प्रैक्टिस भी जोरदार है। अब तो बस इंतजार है उस उत्सव का, जिसके शुभारम्भ के साथ ही देश गरबा और डांडिया के रंग और उमंग में डूब जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, झांसी से अजय झा और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: खास कार्यक्रम में नहीं, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केन्सो सुई को मिला नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस के खोज के लिए सम्मान। पहाड़ों में बदल रहा है मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ सतोपंथ में भारी बर्फबारी, रास्ते में 2 फीट से ज्यादा बर्फ, चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी, सावधानी की अपील। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ देखी बर्फ की मोटी चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्तों की भीड़। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्र की भव्य तैयारियां, जगह जगह बनाए जा रहे हैं पूजा पंडाल। चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में 51 वर्षों से हो रही है मां की पूजा।
9: प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने पर वाराणसी में भव्य कार्यक्रम। 500 बाइकर्स और 51 महिलाओं ने 10 पवित्र नदियों के जल से किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। एशियन पैरा गेम्स के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना होंगे भारत के ध्वजवाहक। 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के नागोया में आयोजन।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: विजयदशमी से पहले प्रयागराज की सड़कों पर निकली रावण की भव्य शोभा यात्रा, निराले अंदाज में रावण की पूजा अर्चना। रावण की शोभा यात्रा में दिखे कई तरह के रावण, परंपरागत अंदाज में दशहरा की झलक। रावण की शोभा यात्रा में ढोल लगाड़ों की धूम पर जमकर थिरके लोग का शोभा यात्रा देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। सैकड़ों साल पुरानी है प्रयागराज की रावण की शोभा यात्रा की परंपरा, सज धज कर रावण शोभा यात्रा में शामिल होते हैं कलाकार। प्रयागराज में होती है रावण की पूजा, दशहरा पर कटरा रामलीला कमेटी नहीं करती रावण का वध। प्रयागराज की ऐतिहासिक पजावा रामलीला में मुकुट पूजन, मुकुट की उतारी गई आरती। रामलीला मंचन के दौरान कलाकार पारंपरिक मुकुटों और आभूषण को करेंगे धारण। 100 साल से ज्यादा पुराने हैं लाहौरी मुकुट, लाहौर के कारीगरों ने तैयार किया था सोने चांदी का मुकुट। रायपुर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां तेज, मां की प्रतिमा बनाने में जुटे कारीगर। दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही हैं मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं, सजाने और सवारने में जुटे कारीगर। झांसी की हुनरमंद बेटियां महिला सशक्तिकरण की बन रही है मिसाल, पढ़ाई के साथ साथ बना रही मां दुर्गा समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमा। चार बहनें पढ़ाई के साथ साथ परिवार की 15 साल पुरानी मूर्ति निर्माण परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। मिट्टी से लेकर रंगाई और सजावट तक खुद करती हैं काम। काम के साथ साथ चारों बहनें कर रही हैं प्रतिमाओं की साथ साथ परीक्षाओं की भी तैयारी। अगरतला में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन सख्त, कई इलाकों में चला जा रहा है जांच अभियान। पाली में गरबा को लेकर जोरदार तैयारियां, बच्चों को दी जा रही है गरबा ट्रेनिंग। बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी सीख रही है गरबा, भक्ति गीतों पर गरबा डांस। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां, राम नगरी के 56 घाटों पर करीब 30 लाख दिए जलाए जाएंगे। रामायण थीम पर सजी की अयोध्या, 20 सेल्फी पॉइंट्स और भव्य द्वारों के जरिए श्रृंखला बढ़ाएंगे आकर्षण। अयोध्या में दिखेगा रामायण का भव्य संसार, पुष्पक विमान से फ्लूटस तक होंगे मुख्य आकर्षण। पूर्वी महाप्रभु भगवान जगन्नाथ मंदिर में बड़ा आस्था का जनसैलाब। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारों की गूंज, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। केदारनाथ में खराब मौसम के बीच एयर एम्बुलेंस बनी है संजीवनी, 50 से ज्यादा यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट। ऑक्सीजन की कमी के चलते बिगड़ी थी तीर्थयात्रियों की तबीयत। बीकानेर में विधायक रविंद्र भाटी का अनोखा स्वागत। उत्तरकाशी मुख्यमंत्री धामी ने काशी विश्वनाथ और श्री शक्ति माता मंदिर में पूजा अर्चना की। एलजी वीके सक्सेना ने लद्दाख पुलिस कर्मियों की विदाई और पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। उपराज्यपाल ने कर्मियों के आवास के लिए 24-2 बीएचके घरों का उद्घाटन किया। भदोही कारपेट एक्सो में अनोखा कालीन पर उकेरी अमिताभ बच्चन की 3 पीढ़ियां। कालीन में महान कवि हरिवंश राय बच्चन, अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना एशियन पैरा गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक होंगे। जापान के नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक एशियन पैरा गेम्स। पैरा बैडमिंटन स्टार प्रमोद भगत ने एशियन पैरा गेम्स में अब तक 6 पदक अपने नाम किए हैं। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना एशियन पैरा।

गुवाहाटी पहुंची एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। भुवनेश्वर में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हॉकी खिलाड़ी अमित और शिलानंद का जबरदस्त स्वागत। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सल हिंसा की पीड़ितों के लिए मेगा कैंप का आयोजन। असम के चूरा चंदपुर में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई। कोयमा में कमजोर परिवारों के लिए अच्छी पहल, एनएसआरएलएम और पीआरएसीए ट्रैशल ने 4,000 बहुत कमजोर परिवारों की मदद के लिए एमओयू पर साइन किए। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की गर्जना जारी। वायुसेना की तरंग शक्ति की रफ्तार, आसमान में देखा साझेदारी कदम। भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल, सुखोई, मिराज 2000, तेजस, जगुआर और मिग 29। 4 साल में पहली बार आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट 5.05 किया। होम से लेकर कार लोन होंगे महंगे, बढ़ेगी ईएमआई। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसेवा के 25 साल हो गए पूरे। दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की, बोले विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण। प्रधानमंत्री मोदी की शिवलिंग की उन्होंने पूजा अर्चना की, जल चढ़ाया, नारियल भी चढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प सभा में लिया हिस्सा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वागत किया। वडनगर से वाराणसी तक बीजेपी के खास आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर की गई महाआरती। सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, पूरी बीच पर बनाई 25 फीट लंबी सैंड आर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे होने के मौके पर सेगा संकल्प अभियान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां गंगा का दूध से किया अभिषेक, घाटों पर साफ सफाई। प्रधानमंत्री मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे होने के मौके पर राजकोट में 1500 विद्यार्थियों ने बनाई भारत के नक्शे की मानव श्रृंखला। गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा का केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। गाजियाबाद में सेवा संकल्प अभियान का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। चंबा के साच पास में ताजा बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर में ढक गए। बर्फ जमने से बैरागढ़ साच पास किलाड़ मार्ग पर यातायात प्रभावित। साच पास में इस सीजन में अब तक तीसरी बार बर्फबारी। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें। ताजा हिमपात के बाद साच पास की चोटियों से बर्फ की चमक रही है तस्वीरें। फिल्म रामायण से राजा दशरथ का नया पोस्टर हुआ जारी, दशरथ के किरदार में नजर आएंगे अरुण गोविल। जैक श्रॉफ और शरद किलकर की फिल्म काली खेती की बदली रिलीज डेट, अब 20 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म धूर का ट्रेलर हुआ रिलीज, साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी है। दूसरी बार पेरेंट्स बनेंगे कियारा सिद्धार्थ, सोशल मीडिया पर जानकारी दी। राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, तत्काल 1.15 करोड़ का ड्राफ्ट जमा कराया। दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, 300 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ। अविनाश मिश्रा ने किया ईशा से प्यार का इजहार, खतरों के खिलाड़ी 15 के विनर ने पार्टी में खुलेआम बोला आई लव यू। रजनीकांत की जेलर 2 का प्रमोशन होगा जरा हटके। जल्द शुरू होगा करीना कपूर के टॉक शो वाइट विमेन वांट सीजन का 6th। 15 साल बाद फिर से साथ देखेंगे शाहरुख खान और करीना कपूर, किंग में हुई करीना की एंट्री। करण जौहर और अभिषेक बर्मन ने अपनी नई फिल्म गदाधारी भीम का ऐलान किया। कॉफी विद करण के नए सीजन में आलिया भट्ट और उनकी बहन शाहीन भट्ट नजर आएंगी।
आर्मा गंदोई में नए बिजनेस रियलिटी शो द गेम चेंजर्स की करेंगे मेजबानी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्टिंग लाइव और मंदाड़ी समेत 8 नई फिल्में और सीरीज दस्तक दे रही। जानवी कपूर ने शेखर पहाड़िया से किया प्यार का इजहार। इंडोनेशिया में लगी जंगल की आग से सिंगापुर में प्रदूषण बढ़ गया। बुधवार को एयर क्वालिटी 175 यानी अनहेल्दी। सिंगापुर में इस वीकेंड होने वाली फॉर्मूला 1 रेस पर धुंध का असर दिख सकता है। इंडोनेशिया में एक दशक से ज्यादा समय की सबसे तेज जंगल की आग लगी है। F1 देखने के लिए पहुंची एक महिला ने कहा कि धुंध उनका रोमांच खराब नहीं करेगी। बुधवार शाम सिंगापुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 175। चीन का चोंगकिंग के आसमान में हजारों ड्रोन ने हॉटस्पॉट बना नूडल्स और मिर्च की तस्वीरें बनाई। ड्रोन ने 9 हिस्सों वाला मशहूर चोंगकिंग हॉटस्पॉट बनाया। ड्रोन शो में चोंगकिंग नूडल्स और स्पाइसी डिश की तस्वीरें। हजारों ड्रोन ने आसमान में यह संदेश लिखा कि इसके साथ ही दिस इज चोंगकिंग। ड्रोन से चिली पेपर और फिंगर हार्ट का भी शेप नजर आया। 130 मीटर ऊंची शंघाई टेलीकॉम बिल्डिंग पर गेम खेले गए और छठी मंजिल से लोग पड़े स्क्रीन पर गेमिंग करते हुए नजर आए। शंघाई इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल में खास इंतजाम किए गए। गेमिंग सेशन करीब 2 मिनट तक रखा गया। लोग अकेले केवल पार्क कर सकते थे और दोस्त के साथ मुकाबला कर सकते थे। इस खास गेमिंग अनुभव के लिए पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया था। हांगकांग प्लाजा नॉर्थ टावर की छठी मंजिल से गेम खेले गए। सामने की 130 मीटर ऊंची इमारत बनी गेमर्स की विशाल स्क्रीन। चीन के शांक्सी प्रांत के एक चिड़ियाघर में विशाल पांडा घास पर लौटते और धूप सेकते हुए नजर आया। पांडा ने पूल के किनारे बैठकर सुकून के पल जिए, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। पांडा फुल मस्ती में नजर आया, फिर अपने बाड़े में घूमने लगा। पांडा की प्यारी हरकतों ने चिड़ियाघर आए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पांडा ने खुले में बैठकर जमकर धूप का आनंद भी लिया और आराम फरमाया। पेरिस में लुई विटों ने स्प्रिंग समर 2027 शो हल्के और ढीले कपड़े नजर आए। के मॉडल्स ब्रांडेड कारों के बीच हाईवे जैसे सेट पर रैंप वॉक करते हुए नजर आएंगे।

0: हल्के कपड़ों की इंजीनियरिंग बनी चुनौती, कपड़ों को हल्का और शरीर के लिए ज्यादा आरामदायक बनाने पर जोर। लियोनेल मेसी ने जीत के साथ ही इंटरनेशनल फुटबॉल से विदाई। अगस्त 2005 को अर्जेंटीना के लिए खेला था पहला मैच। लियोनेल मेसी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल फुटबॉल में अर्जेंटीना को जिताया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
0: पहाड़ों पर तेजी से मौसम करवट बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। आसमान पर बादलों का डेरा है और कई जगहों पर ठंडी हवाओं के साथ साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है।
7: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते पहाड़ कूल कूल हो गए। आसमान पर बादल छाए, ठंडी हवाओं ने दस्तक दी और फिर शुरू हुई झमाझम बारिश। धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, यानी मौसम ने पल भर में गर्मी से राहत का ऐसा इंतजाम किया कि पहाड़ों की फिजा ही बदल गई। इस बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए धर्मशाला और मैकलोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंडी हवाओं, बारिश और पहाड़ों की हसीन फिजाओं ने सैलानियों का मजा दोगुना कर दिया है। बारिश और ओलावृष्टि के बीच भी त्रिवेणी ट्रैक को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों की खूबसूरती और बदलते मौसम का मजा लेने त्रिवेणी का रुख कर रहे हैं। असल में मौसम के इस बदलते मिजाज का अंदेशा मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था। विभाग ने आने वाले दिनों में भी पहाड़ों पर मौसम के ऐसे ही तेवर बनने के अनुमान जताए हैं।
8: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हमारे जो स्पेशली क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगभग 9 अक्टूबर तक प्रदेश के जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मध्य बारिश का दौर है वो देखने को मिलेगा।
7: इसी के साथ पहाड़ों पर मौसम का अगला रंग बर्फबारी का हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरने के साथ बर्फ गिरने की संभावना है। इसी को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है।
8: इसके प्रभाव से जो हमारे जो क्षेत्र है जिसमें कांगड़ा है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हाँ संभावना है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। देखिए अलर्ट मुख्यतः जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और शिमला, यहाँ पे आफ्टरनून और लेट इवनिंग में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया गया आगामी 4 दिनों के लिए येलो कैटेगरी में।
7: मौसम के बदले मिजाज ने पहाड़ों की फिजा के साथ साथ पर्यटन का रंग भी बदल दिया है। अब सबकी नजरें मौसम के अगले करवट पर है, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम अपने साथ खूबसूरती के नए रंग भी लेकर आता है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केंसो सोई को मिला नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान ऑटो कैटलिसिस की खोज के लिए सम्मान। आठ अक्टूबर को भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। पहाड़ों में बदल रहा मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ सतोपंथ में भारी बर्फबारी, रास्ते में 2 फीट से ज्यादा बर्फ, चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी, सावधानी की अपील। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों की भीड़। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्रि की भव्य तैयारियां, जगह जगह बनाए जा रहे हैं पूजा पंडाल, चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में 51 वर्षों से हो रही मां की पूजा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। नवरात्र उत्सव की तैयारियां जोरों पर है, दिल्ली से लेकर काशी तक और अमरावती से लेकर प्रयागराज तक माँ दुर्गा के स्वागत के भव्य इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं विशाल पंडाल सज रहा है तो कहीं माँ दुर्गा के मंदिरों में माँ के गहनों की साफ सफाई चल रही है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है माँ दुर्गा के लिए तैयार हो रहे भव्य पंडाल। देश भर में मां के भव्य स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कहीं दुर्गा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं मां की प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जा रहा है।
4: मां दुर्गा के स्वागत के लिए देश भर में भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली से लेकर काशी तक और अमरावती से लेकर प्रयागराज तक हर तरफ भक्ति आस्था और उल्लास के रंग बिखरे हुए हैं। कहीं विशाल और आकर्षक दुर्गा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, कहीं माँ दुर्गा के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और सजावट की तैयारियां जोरों पर हैं। माँ के श्रृंगार के लिए गहनों की साफ सफाई से लेकर मंदिरों की भव्य सजावट तक हर काम को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ पूरा किया जा रहा है। झांसी में मां के स्वागत में कोई कसर न रह जाए इसके लिए कलाकार दिन रात पंडालों को आकार देने में जुटे हैं। कहीं भव्य थीम पर पंडाल तैयार हो रहे हैं, कहीं मां दुर्गा की प्रतिमा और दरबार को आकर्षक रूप देने का काम चल रहा है। झांसी की 4 बहनें इस शक्ति उत्सव में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही है। पढ़ाई के साथ साथ ये बहनें अपने परिवार की करीब 15 साल पुरानी मूर्ति निर्माण की परंपरा को भी आगे बढ़ा रही हैं। साधना वर्मा, किरण वर्मा, ज्योति वर्मा और दीपिका वर्मा अपने भाई रोहित के साथ मिलकर मिट्टी और रंगों से मां दुर्गा समेत अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाओं को आकार दे रही हैं।
5: हम चारों बहनें मिलकर बनाते हैं।
6: कहाँ से प्रेरणा मिलती
5: है? हमें ये प्रेरणा मिलती है सरकार की तरफ से, जो महिला को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं वो, और सपोर्ट करते हैं उनको।
6: अच्छा, कितना समय लग गया आपको?
5: करीबन 6 से 7 महीने लग चुके हैं।
4: प्रयागराज में भी माँ के भव्य स्वरूप को सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। प्रयागराज के भारद्वाज पार्क में कोलकाता से आए मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। और यहाँ की विशेषता ये है कि मूर्तियाँ गंगा की शुद्ध मिट्टी से तैयार की जा रही हैं। माँ दुर्गा की आंखों के भाव हों, उनके मुकुट और आभूषणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
7: ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इसमें गंगा जी की मिट्टी का प्रयोग किया गया है, लकड़ी है और पैरे का प्रयोग करके इन दुर्गा प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। इन मूर्तियों में कलर भरे जा रहे हैं और वो भी कलर पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं और इन मूर्तियों को बनाया और संवारा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब नवरात्र की शुरुआत होती है तमाम जगहों पर दुर्गा प्रतिमाओं को रखा जाता है और इसके बाद ये कलाकार यहाँ पर इनमें रंग भरने का काम कर रहे हैं।
4: माँ दुर्गा सहित भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमाओं को गंगा की मिट्टी से आकार दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी भव्य दुर्गा पंडालों को बनाने का काम चल रहा है। यहाँ की प्रसिद्ध भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी हर साल एक खास थीम पर पंडाल बनाती है। इस साल दुर्गा पूजा के लिए पाषाण प्राण यानी पत्थरों में प्राण की थीम पर पंडाल तैयार हो रहा है।
8: हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा।
4: विदर्भ की कुल स्वामिनी अमरावती की आराध्य माँ अम्बा का दरबार भी सजाया जा रहा है और इसी के लिए माँ के सोने चांदी के आभूषणों को बाहर निकाला गया है और इन आभूषणों की सफाई की जा रही है, जिससे नवरात्र में माँ अम्बा का श्रृंगार हो और उनका

और देशभर में नवरात्र की तैयारियां खूब हो रही है। पंडालों से लेकर बाजारों तक रौनक छाई हुई है। खास करके गरबा डांडिया के लिए तो महिलाओं का क्रेज साफ नजर आ रहा है। मुंबई के बोरीवली में चनिया चोली का बाजार सजा है। ट्रेडिशनल के साथ ट्रेंडिंग गरबा रास के परिधान डिमांड में है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है गरबा की तैयारी का जोश हाय। जी हाँ, राजस्थान के पाली में भी माँ अंबे को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले गरबा रास को लेकर भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर लड़कियां और महिलाएं पूरे जोश और उमंग के साथ गरबा सीखने में जुटे हैं।

0: कहीं सज गए हैं नवरात्र पर बाजार, तो कहीं हो रही गरबा रास की तैयारी। गुजरात की गलियों से निकलकर गरबा और डांडिया का चलन पूरे देश में छा गया है। चनिया चोली और केडिया के पारंपरिक परिधानों से देश भर के बाजार सज चुके हैं। राजस्थान से मुंबई तक मांबे के स्वागत की तैयारी जोरों पर है। मुंबई के बोरीवली में रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान चनिया चोली से फैशन बाजार सजा हुआ है। ट्रेडिशनल के साथ साथ ट्रेंडिंग डिजाइन के साथ डांडिया रास खेलने वाले परिधान लोगों को खूब लुभा रहे हैं।
1: नवरात्रि में गरबा राज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब बात मुंबई की हो तो बात ही अलग है। मुंबई के बोरीवली इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 80% गुजराती समाज रहता है, और देखिए यहाँ का बाजार किस तरीके से चनिया चोली और केडी से सज चुका है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग डिमांडिंग चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं फैशन हब के नाम के एक शॉप में एंट्री कर रहा हूँ, और खरीदारी बहुत ही ज्यादा जोरों पर है। महिलाएं और स्पेशली जो जेंजेस हैं और युवती हैं, वो देखिए अपने अपने पसंद के चनिया चोली और केडिया यहाँ पर खरीद रहे हैं।
0: इस बार जो चनिया चोली डिमांडिंग और ट्रेंडिंग में है, उनमें बैकलेस, लटकन, सिंगल स्ट्रिप, मल्टी रोल, राजस्थानी लुक्स शामिल है। तो वही पुरुषों के लिए केडिया, धोती, यूनिसेक्स धोती, नवरात्र स्पेशल कुर्ते शामिल है।
1: मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तक आपको कुछ पसंद नहीं है?
2: मतलब मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लूँ और क्या नहीं।
1: क्या सोच करके आए थे, क्या लेना है?
2: मतलब मुझे पर्टिकुलर, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मतलब घाघरास है जो लोअर पहनते हैं, और ब्लाउजेस की यहाँ पे वैरायटीज है, तो वो उसी से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं।
1: अच्छा, ये 9 दिन अलग अलग थीम पर ही काम करने वाले हो ना?
2: सॉरी, मतलब कलर्स रहते हैं और उसके हिसाब से हम लाइक एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ।
0: मुंबई में लोग पारंपरिक गरबा परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं, तो पाली में गरबा खेलने की तैयारियों में जुटे हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले गरबा रास को लेकर जोरदार तैयारी चल रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर लड़कियां और महिलाएं जी जान से गरबा सीखने में जुटी हैं। ट्रेडिशनल से लेकर ट्रेंडिंग गरबा स्टेप सीख रही है।
3: नृत्य एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम सब कुछ भूल के सिर्फ डांस के थ्रू माँ से कनेक्ट हो सकते हैं।
4: गरबा में बेसिकली तो 2 ताली, 3 ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं। बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन जी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डाल दे, तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
0: गरबा रास शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माँ की आराधना, भक्ति और जीवन के उत्सव को मनाने के लिए किया जाता है। मूल रूप से गुजरात से शुरू हुआ ये पारंपरिक लोक नृत्य अब पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और रामायण में रावण एक ऐसा किरदार है जिसके संहार के साथ रामलीला का समापन होता है। ऐसे में रामलीला के मौके पर कोटा में भव्य और विशाल रावण बनाया जा रहा है। इस विशाल रावण की लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा है और इसे कोटा में तैयार किया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है 360 डिग्री घूमने वाला 105 फीट लंबा रावण। जी हां, आपको बता दें कि रावण के इस विशाल पुतले को तैयार करने के लिए दिल्ली NCR से कारीगरों को खास तौर पर कोटा बुलाया गया है।

0: कोटा में एक अनोखा रावण तैयार किया जा रहा है। यहाँ दहन के लिए विशाल रावण बनकर तैयार हो रहा है। पूरा बनकर तैयार होने पर ये जब रावण खड़ा होगा तो इसे काफी दूर से देखा जा सकेगा, क्योंकि इस रावण की ऊंचाई 105 फीट से भी ज्यादा होगी। लेकिन इस रावण की खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई तक सीमित नहीं है। इस दशानन का दहन भी बेहद रोचक होने वाला है। इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि दहन से पहले ये रावण अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकेगा। अपनी विशाल भुजाओं से ये रावण तलवार चलाएगा, मूछें हिलाएगा और अपनी पलकें भी झपक सकेगा।
1: कोटा का रावण में खुद ही विशेष है, सारी चीजें इसमें होती है, जिससे गर्दन घुमाता है, पलके चलाता है, तलवार भी चलाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो। अब आने वाले टाइम में हमारा काम भी इस टाइम 90% हो चुका है, 10% रह रहा, उसमें देखेंगे क्या नया दिखा सकते हैं कोटक।
0: रावण के इस विशाल पुतले को तैयार करने के लिए दिल्ली एनसीआर से कारीगरों को खास तौर पर कोटा बुलाया गया है। इस रावण की ऊंचाई पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम रखी गई है, लेकिन बनावट की तकनीक के लिहाज से ये पुतले बेहद खास हैं। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये दोनों ही पुतले 70 फीट के बनाए जा रहे हैं। पूरे देश में दशहरे पर भले ही जगह जगह रावण के पुतले जलाए जाने की परंपरा हो, लेकिन प्रयागराज में दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है तीनों लोकों के विजेता लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना और भव्य शोभा यात्रा के साथ। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में कुछ ऐसा ही भव्य नजारा देखने को मिला, जहां लंकापति रावण की शोभा यात्रा निकली।
2: मैं रावण की पत्नी मंदोदरी बनी हूँ आज, और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ भ्रमण के लिए निकले हैं। हमारे प्रधान मेघनाथ, कुंभकर्ण और विभीषण और उनके दास लोग हैं हम लोग के साथ, और हम लोग अपने नाना के नलियाल आए हुए हैं।
0: रावण की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए सड़कों पर जनसैलाब सा उमड़ गया। बैंड बाजों की धुन और जयघोष के बीच भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में लंकापति रावण का विशाल स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहा, तो वहीं राम और लक्ष्मण के रूप में सजे कलाकार भी लोगों का ध्यान खींच रहे थे। प्रयागराज भी दशहरा उत्सव का आगाज लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना के साथ होता है। इस दौरान लंकापति रावण अपने पूरे शाही अंदाज में शहर की सड़कों पर निकलते हैं। रावण की भव्य सवारी हर साल की तरह इस बार भी प्रयागराज की सड़कों पर अपनी अलग छाप छोड़ गई, मगर इस भव्यता के पीछे एक संदेश भी छिपा है। अहंकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, विजय हमेशा सत्य की होती है। प्रयागराज से आनंद राज और कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: आस्था जब दिल में हो तो मंजिल, कहते हैं, कितनी भी दूर क्यों ना हो कदम रुकते नहीं। अब आपको महाराष्ट्र के जुनूनी भक्तों से मिलवाते हैं, जो कई किलोमीटर पैदल यात्रा कर गुजरात के अंबाजी से महाराष्ट्र में अपने गांव तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली, यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है, वो है अंबाजी के दरबार से पैदल यात्रा पर श्रद्धालु। जी हाँ, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की सांगोला तहसील के जुनूनी गांव के 68 सदस्य गुजरात के अंबाजी पहुंचे हैं और अब मां के दर्शन के बाद वापस अपने गांव की ओर पैदल रवाना हो रहे हैं। करीब 1170 किलोमीटर से ज्यादा की इस यात्रा में आस्था का अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है।
4: हाथों में आस्था की जोत, दिल में मां का नाम और हर कदम पर गूंजता जय माता दी का जय घोष। ये तस्वीरें हैं गुजरात के अंबाजी की, जहां महाराष्ट्र से अंबाजी के दर्शन और ज्योत को लेने के लिए भक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये भक्त अंबाजी से वापस महाराष्ट्र जा रहे हैं। महाराष्ट्र के ये श्रद्धालु अपने गांव से गाड़ी के जरिए अंबाजी पहुंचे, लेकिन मां अंबा के दर्शन के बाद वापसी का सफर पैदल तय करते हैं, वो भी नंगे पैर। इन भक्तों का कहना है कि पिछले करीब 25 वर्षों से वो इसी तरह तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। हर साल अपने राज्य से बाहर किसी न किसी तीर्थ की यात्रा का संकल्प लेते हैं। इस बार इनका इरादा नेपाल जाने का था, लेकिन वहां के हालात की वजह से यात्रा संभव नहीं हो सकी। इसके बाद भक्तों ने अंबाजी को अपनी मंजिल बनाया। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सांगोला तहसील के जुनोनी गाँव से करीब 68 लोगों का एक समूह अंबाजी के लिए निकला।
5: हम जुनोनी नवरात्र फेस्टिवल तालुका सांगोला जिला सोलापुर स्टेट महाराष्ट्र से निकले हैं, तो इधर अंबाजी माता का दर्शन लेने के लिए इधर से आए थे। अभी जोत लेके जा रहे हैं। उधर से हमारे गांव से इधर आने का 1170 किमी का अंतर होता है, और हमें आते टाइम गाड़ी से आते जाते टाइम पैदल से जोत लेके जाते।
4: गर्मी हो या लंबा रास्ता हो या पैरों में छाले पड़े या थकान हावी हो, इन भक्तों का उत्साह कम नहीं होता। उनके लिए ये यात्रा शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि माँ के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति की परीक्षा है।
6: जब निकले थे तभी बिगर चप्पल के निकले थे और 68 लोग है पूरा टीम में, और इधर आने के लिए 4 दिन लग गए। अभी जाते टाइम 4 दिन लगेगा, मतलब 2 तारीख को निकले थे, 11 तारीख को उधर पहुंचेंगे। दशहरा खत्म होने के बाद ही चप्पल पहनेंगे।
4: इन भक्तों के हौसले और आस्था के आगे हर मुश्किल छोटी है। नंगे पांव तपती राहों पर चलते ये श्रद्धालु सिर्फ अपने गांव की ओर नहीं लौट रहे बल्कि अपने साथ माँ अम्बा की जोत और आशीर्वाद भी लेकर जा रहे हैं। इनके लिए ये यात्रा मंजिल तक पहुँचने का रास्ता भर नहीं माँ के प्रति 25 साल पुराने विश्वास को निभाने का संकल्प है। अम्बाजी से शक्ति सिंह राजपूत, गुड न्यूज टुडे।
3: और उत्तराखंड के नैनीताल में मौजूद कैंची धाम देश दुनिया के खास धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहां बाबा नीब करौरी महाराज के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इससे यहां पर ट्रैफिक जाम होने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यहां पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि 5वीं गुड न्यूज है, और वो है बेकाबू भीड़ से कैंची धाम को बचाने का प्लान। जी, आपको बता दें कि नैनीताल में स्थित इस मंदिर परिसर में भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए खास तैयारी की जा रही है। अब यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

0: ये आस्था का वो बड़ा धाम है जहां हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। बाबा नीम करौली के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बीते दिनों तो कैची धाम में आस्था का ऐसा समंदर उमड़ा कि सड़कों से लेकर मंदिर परिसर तक हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए। बढ़ती आस्था के साथ बढ़ती भीड़ ने प्रशासन के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी। ऐसे में अब प्रशासन ने व्यवस्था को और बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आला अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।
1: जैसे आपने देखा पिछले वीकेंड में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि वहाँ पर श्रद्धालु का है, उनकी संख्या में देखी गई। इनफैक्ट जो डिटेल्स पुलिस ने मुझे बताए हैं 50,000 को भी एक दिन में वो क्रॉस कर गया। और उस कैपेसिटी के लिए जहाँ पे जो मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं बना है और अन्य भी नहीं बना है। तो आज सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक थी, इसमें पुलिस प्रशासन आरटीओ के अलावा लोकल्स के भी जितने स्टेक होल्डर्स थे उसमें मीडिया खुद थी, बाहर के लोग थे, होटल हमारा जो एसोसिएशन है उनके लोग थे, केमो के थे, टैक्सी यूनियंस थी।
0: यानी आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और व्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर रहेगा ताकि बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों को सुविधाजनक माहौल मिल सके। इसी के तहत मंदिर परिसर में भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए भी खास तैयारी की जा रही है। सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं, कैची धाम तक पहुंचने वाले रास्तों पर भी व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों की आवाजाही भी सुचारू बनी रहे।
1: हमारी जो हाईवे है वो बंद नहीं होनी चाहिए। जो हमारे लोग लोकल अल्मोड़ा जा रहे हैं, बागेश्वर जा रहे हैं, पिथौरागढ़ जा रहे हैं, उनका मूवमेंट आसानी से होना चाहिए। इन सबको लेके ये सहमति बनी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
0: खास मौकों पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए पहले से तैयारियां करने पर जोर दिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को मौके पर किसी तरह की असुविधा ना हो। आस्था के इस धाम में आने वाले श्रद्धालुओं से भी प्रशासन ने सहयोग की अपील की है क्योंकि बाबा के दरबार में आने का मकसद सिर्फ पहुंचना नहीं, श्रद्धा के साथ दर्शन करना और उस पवित्र माहौल को बनाए रखना भी है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: झारखंड के रामगढ़ जिले में आगामी 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होने वाली होमगार्ड बहाली को लेकर युवाओं और महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। कुल 284 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस बहाली प्रक्रिया से पहले 1600 मीटर दौड़ का ट्रायल रन आयोजित किया गया। इस ट्रायल में सबसे खास बात यह रही कि कई महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनकर ही मैदान में उतर पड़ी और पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ पूरी की। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है होमगार्ड बहाली के लिए ट्रायल रन में महिलाओं का दम। जी हां, आपको बता दें कि रामगढ़ में होमगार्ड की बहाली होने वाली है और इस बहाली में आधी आबादी का बड़ा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। इनमें से कुल सीटों में से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं जबकि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए अलग से 5% अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। ऐसे में इस बहाली के लिए आयोजित ट्रायल रन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैदान में दौड़ती इन महिलाओं ने साबित कर दिया कि घरेलू परिधान उनकी लगन के आगे बाधा नहीं बन सकते, लिहाजा 1600 मीटर की दौड़ में महिलाओं ने साड़ी पहनकर हिस्सा लिया। ट्रायल रन में इन महिलाओं का हौसला देख मैदान में मौजूद हर कोई दंग रह गया। रामगढ़ में होने वाली होमगार्ड बहाली को लेकर ग्रामीण और शहरी इलाकों की महिलाएं दिन रात ट्रैक पर पसीना बहा रही हैं। यहां सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं खाकी पहनने का अपना सपना पूरा करने में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुखिया के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और उसके बाद वर्ष 2014 से वो लगातार अभी तक प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री आज श्री विनायक मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। जन सेवा के 25 साल पर मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे। इस खास दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना और आशीर्वाद से किया। ये मंदिर सरोजनी नगर के विनायक मंदिर मार्ग पर स्थित है और दिल्ली के दक्षिण भारतीय समुदाय से लंबे समय से जुड़ा है। इस मौके पर वाराणसी में भी खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 25 वर्षों की प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा, राष्ट्र कल्याण और उनके यशस्वी कार्यकाल की कामना के लिए बाबा श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा से जुड़े लोगों ने तिरंगा और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर काशी की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के अनुरूप मंत्रोच्चार के बीच उनके 25 वर्षों के सेवा कार्यों का अभिनंदन किया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज एक अहम दिन है। आज उन्होंने अपने 25 साल हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के मुखिया के तौर पर पूरे किए हैं। ये जर्नी, ये पूरा उनका दौर शुरू हुआ जब 2001 में 7 अक्टूबर को वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने शपथ ली। फिर उन्होंने उस पोजीशन पे लगभग 12 साल तक काम किया है और फिर 2014 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली और अब वो अपने लगातार तीसरे टर्म पे काम कर रहे हैं। हम इस समय श्री विनायक टेम्पल में मौजूद हैं और यहाँ पे आज सुबह प्रधानमंत्री आए थे। उन्होंने गणेश भगवान के सामने पूजा अर्चना की और उन्होंने अपने देशवासियों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, अपने देश की लगातार उन्नति के लिए प्रार्थना की।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके को भीड़ ने क्यों घेरा? मुंबई में प्रदर्शन के दौरान दीपके पर हमला, ऐसे हुई थी फ्लाई दुबई फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। टिकट चेक करने आए टीटी ने छीन ली टैबलेट। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव राज शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केंसो साई को मिला नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान, ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीर का शौर्य और पराक्रम। पहाड़ों में बदल रहा है मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ सतोपंत में भारी बर्फबारी, रास्ते में 2 फीट से ज्यादा बर्फ, चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी, सावधानी की अपील। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ देखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही है भक्तों की भीड़। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्र की भव्य तैयारियां, जगह जगह बनाए जा रहे हैं पूजा पंडाल, चितरंजन पार्क में मेला ग्राउंड में 51 वर्षों से हो रही है मां की पूजा। एशियन पैरा गेम्स के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटले होंगे भारत के ध्वजवाहक, 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के नागोया में आयोजन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
8: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैल जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांच परख के इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर करते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम करते हैं बेनकाब। चलिए आज की कुछ खबरों पर ध्यान देंगे। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा किया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन के दौरान CJP ने उनके जो फाउंडर है अभिजीत दीप के, उनको थप्पड़ मारा गया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह दुबई में फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 की लैंडिंग के वक्त का वीडियो है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के से जुड़ी हुई उस खबर की जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि अभिजीत दीप के पर लोगों ने हमला कर दिया। 2 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दीप के को थप्पड़ मारा गया। यह खबर जब तेजी से वायरल होने लगी तब हमने इसकी पड़ताल की। देखिए
9: जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसे लेकर 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में CJP ने विरोध प्रदर्शन किया। SIR अभियान के दौरान कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची में फेरबदल के विरोध में किए गए इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए थे। अब इसी प्रदर्शन से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। वीडियो में भीड़ के बीच कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कुछ लोग थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मुंबई के शिवाजी पार्क का है जहां 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर प्रदर्शन के दौरान दीपके पर हमला हो गया। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, मुंबई में गांधी जयंती के शुभ मुहूर्त में कॉकरोच दीपके को दे थप्पड़। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही ये चर्चा में आ गया, लोग धड़ाधड़ इसे शेयर करने लगे।
8: भारतीय चुनाव आयोग अपनी कार्यशैली और आयुक्तों में अंदरूनी मतभेदों को लेकर इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है। आयोग पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को ठीक से लागू न करने की आरोप लगातार लग रहे हैं। इसी मुद्दे पर मुंबई में कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। अब उसी प्रदर्शन से जोड़कर दीपके का ये वीडियो जो है इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है कि शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपके को थप्पड़ मारा गया। ये वीडियो हमारे सामने भी निकल कर आया, हमने इसकी जांच शुरू की क्योंकि इसके जरिए खास नैरेटिव फैलाया जा रहा था। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था। वीडियो को ध्यान से देखने पर यह नजर आया कि यह शख्स दीपके को अपने कंधे पर बैठाया हुआ है, इस दौरान उन्हें थप्पड़ मारा जाता है। इस दौरान एक गौर करने वाली बात यह नजर आई कि वीडियो का हर फ्रेम तेजी से बदल रहा है। मतलब यह हुआ कि खास हिस्से को बार बार रिपीट करके वायरल किया गया है। इसके बाद हमने वीडियो के बैकग्राउंड पर नजर दौड़ाई, जब हमने इसे ध्यान से देखा तो यह सामने आया कि मुंबई का शिवाजी पार्क यह नहीं है। इससे हमें दावे पर शक हुआ। हमें 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में CJP के हुए प्रदर्शन के वीडियो को देखा और इससे हमने वायरल वीडियो का मिलान भी किया। इस दौरान यह निकलकर सामने आया कि शिवाजी पार्क में अभिजीत दीपके सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, जबकि वायरल वीडियो में दीपके सफेद शर्ट में नजर आ रहे हैं। इससे दावे पर शक हुआ और देखिए 2 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में अभिजीत दीपके पर हमला किया गया। लेकिन यह मुद्दा गरमाया ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसे में हमारा पहला सवाल ये खड़ा होता है, जाहिर सी बात है कि अगर वाकई में अभिजीत दीपके पर हमला किया गया होता तो इस मुद्दे को सीजेपी समर्थकों ने जोर शोर से क्यों नहीं उठाया? अभिजीत दीपके पर हमला हुआ, उन्हें थप्पड़ मारा गया, मुंबई से जोड़कर यह खबर सिर्फ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ही वायरल हुई। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल जाहिर तौर पर यह उठता है कि हमले की यह खबर मेनस्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं देखने को मिली? तीसरा सवाल ये कि कहीं पुराने वीडियो को जानबूझकर वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
9: इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोग पक्ष और विरोध में एक खास नैरेटिव फैलाने लगे। वीडियो के पीछे असली कहानी क्या है ये जानने के बजाय इसे लगातार शेयर करने लगे। ऐसे में ये वीडियो हमारे सामने भी आया, हम इसकी जांच में जुटे। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान ये हमें कई न्यूज चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स पर 15 जून 2026 को अपलोड किया हुआ मिला। सर्च के दौरान हमें 15 जून को प्रकाशित न्यूज़पेपर में छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो वाले दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर के शहीद स्मारक पर सीजेपी की ओर से नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान भीड़ में से दो युवक निकले और अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने लगे। बाद में सीजेपी समर्थकों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी की। पड़ताल के दौरान हमें एक वेबसाइट पर 15 जून 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया था कि जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में आरोपी दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस रिपोर्ट में भी वायरल क्लिप वाले दृश्य मौजूद थे। बता दें 2 अक्टूबर को प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके को मुंबई पुलिस ने मरीन ड्राइव के पास हिरासत में लिया था और बाद में रिहा कर दिया था। सर्च के दौरान हमें मुंबई में प्रदर्शन के दौरान दीपके को थप्पड़ मारने की कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मुंबई में अभिजीत दीपके पर हमला होने के दावे से वायरल हुआ ये पुराना वीडियो राजस्थान के जयपुर का है जहां प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके पर हमला हुआ था। अब ये वीडियो मुंबई का बताकर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
8: अब बात करेंगे वायरल हो रही उस दूसरी खबर की। फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 में भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छार पर हमला करने वाले को पायलट को लेकर जांच जारी है। इस हमले में घायल कैप्टन स्मिथ की हालत में अब सुधार भी हो रहा है। इसी घटना से जोड़ते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि ये दुबई की फ्लाइट FZ1073 की लैंडिंग के वक्त का वीडियो है। हमने इस खबर की जाँच की, देखिये।

0: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अमानी को पायलट हमाम अल हमामी ने भारतीय कैप्टन स्मिथ मचार पर हमला बोल दिया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मचार ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया था, जिससे यात्रियों को अंदर आने का मौका मिल गया। को पायलट को काबू में करने के बाद प्लेन की सऊदी के तबुक में आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई थी। घायल कैप्टन स्मिथ मचार खतरे से बाहर हैं। संयुक्त अरब अमीरात का फेडरल अभियोजन और इजरायली सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की जांच कर रही हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हमलावर ने अकेले इस घटना को अंजाम दिया था। अब इस घटना से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक विमान की इमरजेंसी स्लाइड से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो दुबई में फ्लाई दुबई फ्लाइट की लैंडिंग के वक्त का है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो सामने आया, वैसे ही कुछ लोग इसे सच मानकर धड़ल्ले से शेयर करने लगे। वीडियो के पीछे असली कहानी क्या है, ये जाने बगैर लोग इसे वायरल करने लगे।
1: दुबई से टेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 को जो कॉकपिट में अगर हम देखें तो उस विवाद और हमले के बाद सऊदी अरब के तबुक में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। आपको याद होगा इसी घटना से जोड़ते हुए ये वीडियो जो है इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 की लैंडिंग के वक्त का ये वीडियो है। ये वीडियो जो है हमारे सामने भी आया, हमने इसकी तहकीकात शुरू कर दी और देखिए वीडियो में दो बातें देखने को मिली। प्लेन में धुआं निकल रहा है और इस दौरान लोग विमान की इमरजेंसी स्लाइड से बाहर निकलते हुए भी नजर आए। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि लैंडिंग के वक्त या फिर टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ है। वीडियो को ध्यान से देखने पर यह सामने आया कि प्लेन पर अमेरिकन एयरलाइंस लिखा हुआ है, जबकि 30 जुलाई को फ्लाई दुबई की फ्लाइट में कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इससे हमें दावे पर शक हुआ। तो देखिए फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ1073 की दुबई में ही नहीं बल्कि तबुक में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई थी। इस दौरान कहीं से यह जानकारी सामने नहीं आई कि लैंडिंग के वक्त विमान हादसे का शिकार हो गया था और स्लाइड के जरिए यात्रियों को बाहर निकाला गया। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही खड़ा होता है कि अगर दावा सच है तो आधिकारिक स्रोतों से इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं निकलकर सामने आई। हमारा दूसरा सवाल यह है कि कहीं प्लेन हादसे के पुराने वीडियो को जानबूझकर फ्लाई दुबई फ्लाइट की घटना से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम दावे की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। हमें एक अमेरिकी न्यूज चैनल के 27 जुलाई 2025 के एक्स पोस्ट में मिला। यानी साफ है कि ये पुराना वीडियो है और हाल ही में हुई फ्लाई दुबई वाली घटना से संबंधित नहीं है। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो अमेरिका के डेनवर का है, जहां अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट का टेक ऑफ रद्द करना पड़ा था और इसके बाद इमरजेंसी स्लाइड के जरिए यात्रियों को सीधे रनवे पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। सर्च के दौरान हमें एक और रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन एयरलाइंस के एक जेट का लैंडिंग गियर आग की चपेट में आ गया था, जिससे काला धुआं उठने लगा था। इसके बाद टेक ऑफ रोक कर इमरजेंसी स्लाइड के जरिए यात्रियों को प्लेन से बाहर निकाला गया था। ये प्लेन डेनवर से मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था। विमान में कुल 173 यात्री सवार थे। इमरजेंसी एग्जिट के दौरान एक यात्री मामूली रूप से घायल हो गया था, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये वीडियो जुलाई 2025 का है, जब अमेरिका के डेनवर में एक इमरजेंसी के चलते विमान के टेक ऑफ को रोका गया और यात्रियों को बाहर निकाला गया। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
1: के कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
6: इस छोटे से बच्चे ने अपने कलाबाजी और जबरदस्त जगलिंग स्किल से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे ने अपने हाथ पीछे की ओर बांधे हुए हैं। इस स्थिति में जहां आम लोगों के लिए संतुलन बनाना भी मुश्किल होता है, वहीं ये नन्ना खिलाड़ी बड़े ही आसानी से फुटबॉल को अपने पैरों, घुटनों और छाती से उछालते हुए निरंतर कंट्रोल कर रहा है। बच्चे का फोकस और गेंद पर उसका कंट्रोल इतना सटीक है कि फुटबॉल एक बार भी जमीन को नहीं छूती। उसके चेहरे का आत्मविश्वास और शांत रवैया यह साफ दर्शाता है कि उसने इस कला के लिए काफी अभ्यास किया है। छोटे बच्चे ने जिद ही ऐसी पकड़ ली कि टीटीई अपना काम करे या फिर बच्चे की जिद को पूरा करे, यही जद्दोजहद एक चलती ट्रेन में देखने को मिली। दरअसल टीटीई साहब टैब में टिकट चेक कर रहे हैं और पास बैठा बच्चा उसी टैब को देख रहा है। बच्चे को लगता है कि इस पे कार्टून या रील्स देख सकते हैं, फिर क्या था, बच्चा टीटीई के हाथ से टैब छीनने की कोशिश करने लगा। टीटीई साहब परेशान हो गए क्योंकि टैब में सैकड़ों यात्रियों की जरूरी जानकारी थी, उन्हें डर था कि बच्चे ने कुछ डिलीट कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बच्चे की मासूम जिद के आगे आखिरकार टीटीई साहब को हार माननी पड़ी। खींचतान में आखिर छोटे पैसेंजर की जीत हुई। टैब मिलते ही वह सीधे अपनी मम्मी की सीट पर चला गया और उसमें अपनी पसंद की चीज ढूंढने लगा। ये मजेदार वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस नन्हे बच्चे और टीचर के बीच की क्यूट बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। ये टीचर इस मासूम के लिए खास है, ऐसे में ये रोज अपनी टीचर को फूल देता। टीचर को उसका ये प्यार इतना अच्छा लगा कि वो हर रोज उसकी रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। अब वही रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर सबका दिल जीत रही है। वीडियो में बच्चे को हर रोज अलग अलग फूल लाते हुए देखा जा रहा है, कभी मुस्कुराते हुए तो कभी बिना किसी एक्सप्रेशन के क्यूट वाले फेस के साथ वो फूल देता दिख रहा है।

0: स्कूल ड्रेस में बैठी बच्ची की कॉपी की शानदार हैंडराइटिंग ने लोगों को हैरान कर दिया। लिखावट इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है कि पहली नजर में कई लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। अक्षरों की बनावट, उनके बीच की दूरी और पूरी लाइन में एक जैसी लिखावट देखकर लोग लगातार बच्ची की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद लोगों का ध्यान बच्ची से ज्यादा उसकी कॉपी पर टिक गया। बच्ची की हैंडराइटिंग देखकर सोशल मीडिया पर मजेदार बहस भी शुरू हो गई। कुछ यूजर्स को लिखावट इतनी परफेक्ट लगी कि उन्होंने मजाक में सवाल कर दिया कि कहीं यह किसी AI टूल का कमाल तो नहीं है। कभी कभी सपने सिर्फ दिल में ही रह जाते हैं और सालों बाद किसी अपने की वजह से पूरे होते हैं, तब आंखों में खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं। धीरज नाम के शख्स ने अपने माता पिता की पहली हवाई यात्रा की खुशी को कैमरे में कैद किया है, जिसे देखकर लोग वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। दरअसल धीरज के पिता का भी हमेशा से हवाई जहाज में उड़ने का सपना था। धीरे धीरे यही सपना धीरज का भी सपना बन गया। वायरल वीडियो के ऊपर टेक्स्ट है, मुझे 29 साल लगे लेकिन उन्हें 60 साल लगे। ये लाइन बताती है कि अपनों के सपने पूरे करने के लिए कितना समर्पण चाहिए। फ्लाइट में बैठने के बाद जब धीरज अपने माता पिता की चमकती आंखें और मुस्कान देखी तो उनके लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि सालों पुराना वादा पूरा होने जैसा था।
1: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
0: फ्लाई दुबई के भारतीय कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की कहानी ने अब इसराइल के सिंगर बेन राइविट्स को भी प्रभावित किया है। कैप्टन मच्छर ने मुश्किल वक्त में हनुमान चालीसा का पाठ कर हिम्मत बनाए रखने की बात कही थी।
1: जय जय जय।
0: इससे प्रभावित होकर बेन राइविट्स ने उनके सम्मान में हनुमान चालीसा गाई और अपनी ये प्रस्तुति कैप्टन मच्छर को समर्पित की। सोशल मीडिया पर सामने आया उनका ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है।

ट्रेन का सफर अक्सर शोर, यात्रियों की बातचीत और स्टेशन की आवाजाही के बीच गुजरता है, लेकिन कभी कभी इसी सफर में ऐसा पल भी आ जाता है जो पूरे डिब्बे का माहौल बदल देता है। ट्रेन में बैठे कुछ यात्रियों ने भजन गाना शुरू किया और देखते ही देखते पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।

दोनों बिना किसी खास तैयारी या संगीत के सहज अंदाज में भजन गाते दिखाई देते हैं। वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब नीचे बैठे एक बाबा जी भी युवकों के स्वर में सुर मिलाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज में भक्ति और आत्मीयता साफ महसूस होती है। बाबा जी के जुड़ते ही भजन और भी प्यारा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन का एक छोटा सा डिब्बा कुछ पलों के लिए किसी भजन सभा में बदल गया हो।

पुलिस की वर्दी देखते ही आमतौर पर लोगों के मन में ड्यूटी, कानून और अनुशासन की तस्वीर बनती है, लेकिन ये वीडियो पुलिस अधिकारी का बिल्कुल अलग अंदाज दिखा रहा है। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर निशांत मिश्रा ने गिटार बजाते हुए ऐसा सुर लगाया कि लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए।

0: ये मल्टी सॉकेट है।
1: क्या बनाया है ये पापा?
0: ये मल्टी सॉकेट है, छोटा सा, कहीं सफर में आना जाना हो इसे वहाँ लगाया।
1: तो गाइस ये डब्बा था, इसके अंदर 20 थे और इसको पापा ने एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं इसके, सॉकेट। तो सॉकेट
2: बेकार पड़े सामान से काम की चीज बना लेना कुछ लोगों की खास खासियत मानी जाती है। ऐसा ही एक दिलचस्प जुगाड़ का ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। एक शख्स ने एक साधारण डिब्बी से पोर्टेबल मल्टी सॉकेट बनाकर लोगों को हैरान कर दिया है।
1: क्या बनाया है ये पापा?
0: ये मल्टी सॉकेट है, छोटा सा, कहीं सफर में आना जाना हो इसे वहाँ लगाया।
1: तो गाइस ये डब्बा था, इसके अंदर 20 थे और इसको पापा ने एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं इसके, सॉकेट। तो सॉकेट ये इसके अंदर लग जाता है।
2: देखने वाले आसानी से समझ सकते हैं कि बेकार पड़ी डिब्बी में सॉकेट पॉइंट्स फिट करके पोर्टेबल बोर्ड बना लिया गया है। ये सुरक्षित और इस्तेमाल में आसान लगता है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
6: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि भक्तों को जगत जनने का इंतजार, 3 दिन बाद शारदीय नवरात्र के मौके पर माँ का आगमन होना है। इसके साथ ही विजयदशमी के मौके पर अधर्म पर धर्म की जीत का त्यौहार मनाने की परंपरा, आंतरिक शुद्धि का मौका मिलेगा, साथ ही एआई का बढ़ता इस्तेमाल सफर को सुरक्षित और आसान बनाने का दावा। दिल्ली के भारत मंडपम में ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो चल रहा है। तमाम खबरें होंगी लेकिन पहले हेडलाइंस।
9: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
6: फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केन्सो सोई को मिला नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। बदल रहा मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ सतोपंथ में भारी बर्फबारी, रास्ते में 2 फीट से ज्यादा बर्फ, चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी, सावधानी की अपील। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों की भीड़। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्र की भव्य तैयारियां, जगह जगह बनाए जा रहे पूजा पंडाल। चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में 51 वर्षों से हो रही मां की पूजा। एशियन पैरा गेम्स के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भावीना पटले होंगे भारत के ध्वजवाहक। 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के नागोया में आयोजित। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की, जिसकी शुरुआत में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में देश भर में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी अंतिम दौर में है। एक तरफ मूर्तिकार जहां देवी दुर्गा की मूर्तियों की फिनिशिंग में लगे हैं, वहीं कारीगर पूजा पंडालों को फाइनल टच देने में जुटे हैं। दुर्गा पूजा से जुड़ी इन तैयारियों में पर्यावरण का खास ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए ज्यादातर मूर्तिकार और पूजा समितियां इको फ्रेंडली मूर्तियां और पंडाल बनाने पर इस साल जोर दे रहे हैं।

0: सज रही है देवी दुर्गा की मूर्तियाँ और सज रहे हैं पूजा पंडाल, क्योंकि 3 दिन बाद आने वाली है देवी दुर्गा, जिनके स्वागत के लिए ये भव्य तैयारी शहर शहर की जा रही है। खासकर बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर एक अलग ही रौनक अभी से देखने को मिल रही है। यहाँ पूजा पंडाल करीब करीब बनकर तैयार है और अब कारीगर उन्हें फाइनल टच देने में जुटे हैं। पुरुलिया का ये पूजा पंडाल भी लगभग बनकर तैयार है। इस दुर्गा पूजा पंडाल को पाषाणों प्राण यानी पत्थरों में प्राण थीम पर तैयार किया गया है। इस थीम के तहत पूरे पंडाल को मानो किसी पहाड़ को तराश कर बनाया गया हो। पहाड़ पर मंदिर बनाया गया है। मंदिर के चारों तरफ देवी देवताओं की विभिन्न आकृतियां उकेरी गई है, जिन्हें देखने पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे देवी देवताओं की इन आकृतियों को पत्थर पर नक्काशी करके बनाया गया हो।
1: दुर्गा पूजा का और कुछ ही दिन बाकी है और हम पहुंच गए हैं पुरुलिया के बिग बजट थीम बेसिस पूजा, पुरुलिया के भामुरिया दुर्गा पूजा पंडाल में। हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा।
0: दुर्गा पूजा समिति के लोगों का दावा है कि भामुरिया की इस दुर्गा पूजा को देखने के लिए हर साल पुरुलिया के अलावा राज्य के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। साथ ही पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड और बिहार से भी काफी संख्या में लोग आते हैं। इस साल भी लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद पूजा कमेटी को है।
1: इस साल जो थीम बना हुआ है वो थीम के बारे में बताइए।
2: ये थीम है हम लोग को जो बांग्ला में बोलता है पाषाण प्राण, अर्थात जिसको समझता है मनुष्य को जो पाथर का पाषाण का उसका में जो जान है इस शिल्पी का क्रेडिट है। इस शिल्पी का जो बना हुआ है इसमें मनुष्य समझ जाएगा ये पाषाण में प्राण है।
1: कितना साल हो गया पूजा?
2: 17 साल।
1: 17 साल हो गया।
2: हाँ,
1: इस साल भी वैसे ही भीड़ होगा।
2: हाँ हाँ।
0: शक्ति उपासना की इस पर्व के लिए पूजा पंडाल तो बन ही रहे हैं, देवी माँ की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ भी बनकर तैयार हो रही है। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, मूर्तिकार देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को सजाने और संवारने में जुटे हैं। ये तस्वीर प्रयागराज की है, जहां मूर्तिकारों ने गंगा की मिट्टी से मां की ये मनोहारी मूर्ति

0: जी की मिट्टी का प्रयोग किया गया है, लकड़ी है और पैरे का प्रयोग करके इन दुर्गा प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। इन मूर्तियों में कलर भरे जा रहे हैं और वो भी कलर पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं।
1: डिमांड तो बहुत है लेकिन हम लोग पूरा कर नहीं पाते हैं। अभी इस टाइम कारीगर का मौसम चेंज हो गया है, मौसम चेंज में हमारा कारीगर सब थोड़ा बीमार पड़ा है, तो भी काम लगे है जो छोड़ा नहीं है। अब आखिरी तक उसको देना ही है, हम भी उसको साथ में है।
2: यहाँ की मूर्तियाँ सभी को फ्रेंडली हैं, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, गंगा जी की मिट्टी से बनती हैं। तो हम लोग अभी से यहाँ लेने आ रहे हैं क्योंकि बहुत तेज बिक जाती है।
3: वहीं यूपी के झांसी की ये चार बहनें अपने परिवार की करीब 15 साल पुरानी मूर्ति निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। साधना, किरण, ज्योति और दीपिका अपने भाई रोहित के साथ मिलकर माँ दुर्गा समेत अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाओं को आकार दे रही है। इस बार इस परिवार ने करीब 150 मूर्तियां तैयार की है जो बंगाली पैटर्न पर आधारित है।
4: मिट्टी, घास, पानी और कलर पेंट वगैरह, सिंगार विंगार, ये सारी चीज
5: कलर और मिट्टी का यूज किया गया है।
4: काली मिट्टी का और लाल मिट्टी का यूज किया गया है। इसमें पेंट जो है वो कच्चा यूज करते हैं, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे।
5: सामग्री कहाँ से आती है सर?
4: ये हमारा सारा सामान कलकत्ता से मंगाते हैं, ऑर्डर पे बनवाते हैं।
6: इस बार 150 के समथिंग मूर्तियां बनाई हैं हम लोगों ने। चार काली जी हैं, एक मौट की है, एक जी मुन्ना लाल धर्मशाला की है और एक ग्वालियर की भी है, एक बगरामंडी की भी है।
3: उधर राजस्थान के भी अलग अलग शहरों से देवी मां की मूर्तियों की सजावट का काम जोर शोर से चल रहा है। डिमांड को देखते हुए ज्यादातर मूर्तिकारों ने इको फ्रेंडली मूर्तियां ही बनाई है जो जल्द ही पूजा पंडालों की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। पुरुलिया से सत्यजीत बनर्जी, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: दुर्गा पूजा के साथ साथ देश में विजयादशमी यानी कि दशहरा मनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। शहर शहर रामलीला के मंचन की तैयारी और रावण दहन के लिए पुतले बनाने का काम भी इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। इस साल भी राजस्थान के कोटा में विशालकाय रावण का पुतला बनाया जा रहा है जो अभी से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि कोटा का ये रावण का पुतला दशहरा पर 360 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमाता नजर आने वाला है।

0: रावण के पुतले के लिए बांस और लोहे की छड़ों का ये विशालकाय ढांचा पूरी तरह से बना भी नहीं है और ये अभी से सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में आने के पीछे की वजह है इसका साइज। राजस्थान के कोटा में तैयार किया जा रहा ये पुतला 105 फीट से ज्यादा ऊंचा है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले करीब 70-70 फीट ऊंचे बनाए जा रहे हैं। इन विशाल पुतलों को तैयार करने के लिए खास तौर पर दिल्ली NCR से कारीगर बुलाए गए हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत से पुतलों को बनाने में जुटे हैं।
1: ये रावण 105 को प्लस हो जाएगा, कुंभकर्ण 70 है, मेघनाथ 70 है।
2: कितने कारीगर लग रहे हैं इसको काम करने?
1: 20 कारीगर एक महीने से रात और दिन लगे हुए हैं। सारे घर के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। रावण जब बन जाता है, हमें भी शौक है रावण बनाने का, कमाई तो एक अलग चीज है।
0: इन पुतलों को बनाने में लगे कारीगर ने बताया कि इनके निर्माण में करीब 5 टन लोहे और लगभग 500 बांस की खपच्चियों का इस्तेमाल किया गया है। इनके बाहरी हिस्से के लिए करीब 1500 मीटर वेलवेट कपड़ा लगाया जा रहा है, वहीं 300 किलो सुतली और करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, पुतलों को मौसम से बचाने के लिए वाटरप्रूफ इंपोर्टेड कागज लगाया जा रहा है और कागज को चिपकाने के लिए मैदा से तैयार की गई 1 से 2 क्विंटल लेई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा रावण के भीतर विशेष प्रकार की आतिशबाजी भी सेट की जा रही है, ताकि विजयदशमी के दिन दहन के दौरान अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले।
1: इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, रद्दी है तो 250 किलो के आसपास लग जाएगी। नहीं बनाते हम 150 किलो या 200 किलो लग जाती है। सुतली है जिस

0: बांधते इसको 300 किलोमीटर 300 लेके आसान।
1: कोटा में दशहरा पर रावण का ये पुतला 360 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमाता नजर आएगा, हाथ में तलवार लेकर चलाएगा, मूछें हिलाएगा और आंखें भी झपकाएगा। कारीगरों का कहना है कि 10 से 11 तारीख तक रावण का पुतला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।
0: विशेषतर रावण में, कोटा के रावण में खुद ही विशेष है, सारी चीजें इसमें होती है, जिससे गर्दन घुमाता है, पलके चलाता है, तलवार भी चलाएगा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो। अब आने वाले टाइम में हमारा काम जो है इस टाइम 90% हो चुका है, 10% रहना, उसमें देखेंगे क्या हम नया दिखा सकते हैं कोटा के। 10% मात्र काम रहना, इसको देख रहे हैं, फिनिशिंग होना पड़ा, फिनिशिंग करनी है।
1: दशहरा के साथ ही रामलीला मंचन की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में यूपी के प्रयागराज में श्री महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी ने एक दिन पहले मुकुट पूजन समारोह किया। ये कार्यक्रम शाहगंज के राम मंदिर में विधि विधान से संपन्न हुआ। परंपराओं के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मुकुट की पूजा 11 ब्राह्मणों और वेद पाठियों ने मंत्रोच्चार से की। इस दौरान मंदिर श्रद्धालुओं से भर गया और जयकारे गूंजते रहे। बताया जाता है कि ये मुकुट 100 साल से भी अधिक पुराने हैं और इन्हें लाहौर के कुशल कारीगरों ने तैयार किया था। कमेटी की ओर से इन बहुमूल्य मुकुटों को बेहद सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और रामलीला शुरू होने से पहले इनकी साफ सफाई कर पूजा की जाती है। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन श्री राम समेत अन्य स्वरूपों को ये मुकुट पहनाए जाते हैं। इसी के साथ पजावा रामलीला के दशहरा उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाती है।
2: जो हमारी कमेटी का इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और प्रयागराज के दशहरा में बहुत ही अभूतपूर्व अतुल्य सहयोग भी रहा है हमारे श्री महान बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी का। और ये मुकुट आपके सामने जो समक्ष प्रस्तुत हुआ है, सोने एवं चांदी से निर्मित है। ये लाहौर के कारीगरों द्वारा निर्मित है, जो कि लाहौर अब इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। जब ये निर्मित हुआ था तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए ये अपने में ही बहुत पौराणिक और अतुल्य है।
1: कहा यह भी जा रहा है कि पजावा रामलीला इस बार आधुनिक तकनीक और भव्य मंचन से खास रहेगी और कई नए प्रसंग भी जोड़े गए हैं। कोटा से चेतन गुर्जर और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और अब बात दिल्ली में एक ऐसे एक्सपो की जिसका मकसद सड़क पर सुरक्षित और आसान यात्रा के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्मार्ट बनाना है। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो में ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़ी एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा जा रहा है। इस साल के एक्सपो में 55 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आयोजन में 9 देशों की भागीदारी है। इस मंच से ये मंत्र देने की कोशिश है कि एआई का बढ़ता इस्तेमाल हर सफर को सुरक्षित और आसान बनाएगा।

0: देश के चाहे छोटे या बड़े शहर हो, वहाँ ट्रैफिक जाम एक गंभीर और आम समस्या हो चुकी है। ट्रैफिक के पीक आवर में महज एक दो किलोमीटर की दूरी तय करने में आधे से एक घंटा लग जाना आम सी बात है। पीक आवर्स में वाहनों की रफ्तार थम सी जाती है। रोजाना घंटों सड़कों पर जाम में फंसकर अपना समय गंवाने और परेशान होने के अलावा आम लोग कुछ नहीं कर पाते। सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक जाम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सरकार और सरकारी एजेंसियों की तरफ से आधुनिक तकनीक आधारित कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जो अभी भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में निजी कंपनियां भी शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर नई नई तकनीक विकसित करने पर जोर दे रही हैं। इसके जरिए सड़कों को जाम मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ये एक्सपो सिर्फ ऑटोमोबाइल या इंफ्रास्ट्रक्चर की नुमाइश नहीं है, बल्कि भारत के बदलते ट्रैफिक और मोबिलिटी इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट है। 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस एक्सपो में सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर खास जोर है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस जैसी तकनीक के जरिए वाहनों की स्पीड और ट्रैफिक की स्थिति को रियल टाइम में मॉनिटर करने में मदद कर सकते हैं। वह इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरों की मदद से रियल टाइम ट्रैफिक के हिसाब से लाइटों का समय बदल देते हैं। मौजूदा वक्त में AI संचालित यातायात प्रबंधन, मल्टी लेन फ्री फ्लो और बैरियर मुक्त टोलिंग जैसी एडवांस तकनीक हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यातायात के तौर तरीकों को बदल रही है।
1: एक्सपो का मकसद ये है, हमारा अभी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को सेफ और फास्ट ट्रैवल दे देने का, यू नो, लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तरफ से उनको एक्सीडेंट बिना, हमारा जीरो विजन बोलता है, जीरो एक्सीडेंट फैटलिटी को कैसे कमती करना है, हाईवे बनाना है, थ्री लेन फोर लेन, फोर लेन को हम लोग सिक्स लेन बनाते हैं, उनको कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्मूथ ट्रैवल इनको देना है।
0: सर्दियों के मौसम में सफर के दौरान कोहरा एक बड़ी समस्या बन जाता है, सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। भारत के मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की शुरुआत नवंबर के आखिरी हफ्तों से हो जाती है। कोहरे से जुड़ी समस्या कई बार फरवरी की शुरुआत तक बनी रहती है। इस दौरान सड़क हादसों के लिए वाहन चालकों की लापरवाही के अलावा तकनीकी गड़बड़ियों को भी जिम्मेदार माना जाता है। एक्सपो में कमर्शियल ड्राइवरों की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए नई तकनीकों को विकसित और उनको इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। कोहरे में कोई गाड़ी आगे रुकी है या नहीं, कैमरे आधारित अडास यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम 50 मीटर पहले ही अलर्ट दे देगा।
2: कुछ ही महीनों में ठंड आने वाली है और ठंड के साथ आती है धुंध, फॉग। ये फॉग आपको हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर बहुत ज्यादा परेशान करता है। कई बार हम खबरें सुनते हैं कि लाइन से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई धुंध की वजह से, क्योंकि वो एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ रही थी। इसी का एक सोल्यूशन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ AL नरसिम्हन जी हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं कैमरे में ही, जो कि ड्राइवर को असिस्ट करने के लिए है, यानी कि एक ड्राइवर किस तरह से सेफ रहे, किस तरह से उसकी यात्रा अच्छी रहे, उसके असिस्टेंस के लिए कुछ कैमरे बनाए गए हैं। तो पहली जो हेल्प है वो ये है कि एक ऐसा कैमरा बनाया गया है जो फॉग में भी ये पहचान सकता है कि कहीं आगे कोई गाड़ी खड़ी तो नहीं है।
3: तो फॉग के कारण से जब ये होती है तो ड्राइवर कभी कभी जब थका हुआ रहता है तो आगे में उसकी गाड़ी जो रहती है वो दिखाई नहीं देती है, और बहुत ज़्यादा फॉग के कारण से बहुत सारे दिखाई नहीं देती। तो हमारे पास कुछ ऐसे कैमरास सॉल्यूशंस हैं जो आपको अलर्ट कर सकता है ड्राइवर को कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या आगे कोई किसी तरह का गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है। इस कारण से उनको पहले से एक अलर्ट मिल जाता है, सो दैट द ड्राइवर कैन इमीडिएटली टेक एक्शन ऑन दैट।
0: ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस का काम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। चाहे झुलसती गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, भारी ट्रैफिक के बीच उन्हें घंटों खड़े होकर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ता है। स्पीड कैमरा और रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे आधारित तकनीक ने निश्चित रूप से उनका काम आसान किया है, लेकिन फिर भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यकीनन अधिक सक्षम और मजबूत बना रहा है।
2: ट्रैफिक पुलिस का काम सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो लोगों का चालान काटें, ट्रैफिक को इन्फोर्स करें, बल्कि ये भी होता है कि वो लोगों को लाइफ को सुरक्षित बनाए सड़क पर। इंटरसेप्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसका इस्तेमाल करती है अमूमन ट्रैफिक पुलिस पेट्रोलिंग के लिए। उस इंटरसेप्टर को अब एक बहुत हाईटेक तरीके से उसे तैयार किया गया है। यहाँ पर आप बहुत सारे कैमराज देख रहे हैं, चाहे वो बाइक इंटरसेप्टर हो, चाहे वो आप कार देख रहे हो, उसमें भी ऐसे बहुत सारे कैमराज लगाए गए हैं जो कई सारे ट्रैफिक पुलिस काम को आसान कर देता है। खासकर जो हम लोग सुनते हैं कि किसी एक जगह पर पुलिस ने कैमराज लगा दिए हैं, वहाँ से कोई भी गाड़ी अगर ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रही है तो उसका चालान कट जाएगा और उसकी जो चीज़ें हैं उस कैमरे में दर्ज हो जाएंगे। लेकिन ये सिस्टम वो है जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लगाया जाता है। इस गाड़ी के जरिए आप इस गाड़ी को उस जगह लेकर जा सकते हैं जहां पर लगातार ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है।
4: ये एक वाहन जो है ये कंप्लीट सिस्टम बनता है और प्राइमरी डिवाइस इसका ये है लिडार बेस्ड स्पीड एनफोर्समेंट कैमरा, और ये उसका डिस्प्ले है और ये उसका लिडार सेंसर है। लिडार आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है हाई डेंसिटी ट्रैफिक। एक सिनारियो के अंदर, एक स्ट्रीट सीन के अंदर आपको 10, 20, 30 वाहन मिलते हैं और वो काफ़ी अलग अलग गति से जाते हैं, तो आपको एक डिवाइस चाहिए जो कि एनफोर्समेंट फॉर श्योर, जैसे प्योर फॉर श्योर एविडेंस लेके आए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम चलान करें तो हमें एक फुल प्रूफ अनएम्बिगुअस एविडेंस देना होता है और वो फोटोग्राफिक एविडेंस के तौर पे हमारा सिस्टम देता है। अगर एक सिनारियो में एक से अधिक वाहन है तो ये निशाना टानता है जस्ट लाइक अ स्नाइपर गन, और वो स्नाइपर गन की एक्यूरेसी अगर एक बारी टारगेट पे आ जाए तो वो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट मानी जाती है। और उसके अलावा एफिशिएंसी भी चाहिए, आफ्टर ऑल एक हमने लगा रखा है तो एक सेकंड के अंदर ये 3 मेजरमेंट लेने की काबिलियत रखता है और पूरे 2 सेकंड के अंदर इसका एक वाहन का एविडेंस बन जाता है।
0: सड़कों पर लगने वाला जाम सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है, खासकर पीक ट्रैफिक आवर में, यानी दिन का वो समय जब छोटे बड़े शहरों की सड़कों पर वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यह आमतौर पर सुबह और शाम का वो समय होता है जब लोग अपने काम या स्कूल से आने जाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं। पीक ट्रैफिक आवर के दौरान सड़कों पर लगने वाला लंबा लंबा जाम आपातकालीन सेवाओं को भी बाधित करता है, दुर्घटनाओं से जुड़े खतरे को भी बढ़ाता है। जाम में लंबे समय तक फंसे लोगों में तनाव भी पैदा करता है। ऐसे में जरूरत है भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ज्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड बनाने की, ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट का तरीका ही बदल जाए। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूले न्यूज पाथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
7: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति अगर अच्छे से बोले, उसकी वाणी मीठी हो, तो जीवन में बहुत सारे काम उसके बड़े आसानी से बन जाते हैं और बड़ी सारी मुश्किलें बड़ी आसानी से दूर हो जाती हैं। आखिर क्या करें ऐसा कि वाणी अच्छी हो, मधुर हो। आज बात करेंगे मीठी वाणी का वरदान कैसे मिले आपको। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:15 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:20 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में तथा चंद्रमा और केतु फिलहाल विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आपकी वाणी के बारे में। वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है पहले ये जानते हैं। किसी कुंडली का दूसरा भाव और इसका स्वामी वाणी को नियंत्रित करता है, वाणी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा तीसरा भाव और आठवां भाव भी वाणी से संबंध रखता है। इन्हीं भावों से व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी देखी जाती है। इसीलिए आपकी जो वाणी है ये आपकी आर्थिक स्थिति से और पारिवारिक स्थिति से जुड़ी हुई है। वृषभ राशि और बुध, इसका सीधा संबंध होता है आपकी वाणी के साथ। और बुध मुख्यतः व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, बोलने की, समझने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। बृहस्पति डायरेक्टली तो वाणी को प्रभावित नहीं करता, लेकिन वाणी में वजन लाना, वाणी में गंभीरता लाना, मजबूत बात, वजनदार बात बोलना, ये बृहस्पति जीवन में ले आता है। वाणी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग हैं, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, परिवार में शुभ कार्य होने के योग हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किसी आदमी के बोलने की आदतें, उसके वाणी की आदतें किन ग्रहों से प्रभावित होती हैं। पाप ग्रहों का अगर वाणी से संबंध हो, शनि का, राहु का, मंगल का, सूर्य का, केतु का, तो ये वाणी को खराब करता है। अगर बुध या बृहस्पति कुंडली में गड़बड़ हो तो ये भी वाणी को खराब करते हैं। वाणी को सबसे ज्यादा खराब करते हैं शनि और राहु। बुध और बृहस्पति का अच्छा होना वाणी को अच्छा बना देता है, वाणी को अच्छा कर देता है। जो आपकी वाणी का ग्रह है, सेकंड हाउस का जो स्वामी है, अगर वो शुक्र की राशि में बैठे या शुक्र के साथ संबंध हो, तब भी व्यक्ति की वाणी सामान्यतः अच्छी हो जाती है। वाणी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, आपके ग्रहों से आपके जीवन साथी को लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, यात्राओं से बचाव करें, स्वास्थ्य के लिए वहम ना पालें, खान पान का ध्यान रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप अपने बोलने को, अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, किस्मत को बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करिए, कम से कम 27 बार सुबह शाम या 108 बार। अपने खान पान को शुद्ध रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग करने से बचिएगा। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। और मान लिया मुंह से अपशब्द निकल गया, मुंह से खराब बात निकल गई, तो शिव शिव कृष्ण कृष्ण उसी समय कहें, ताकि उस वाणी का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ का तनाव मत पालिए, जल्दबाजी में काम करने से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, नया काम कर सकते हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आपके काम की प्रशंसा होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपकी जो वाणी है वो जिस भाव से कुंडली से देखी जाती है वही भाव आपके परिवार का भी है, वही भाव आपके धन का भी है। तो अगर आप अपशब्द बोलेंगे, खराब वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान होगा, आपके परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी। दूसरा भाव आपकी आंखों का भी होता है, तो खराब वाणी का या गलत वाणी का प्रयोग करने से आपकी आंखों में भी समस्या आ सकती है। आप अगर अपनी वाणी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान का नाम जपते रहिए। आपकी वाणी से अगर निरंतर भगवान का नाम चलता रहेगा, कोई मंत्र चलता रहेगा, तो उसकी पवित्रता आपकी वाणी पर रहेगी और उस पवित्रता की वजह से आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। तो भगवान के नाम का जप, मंत्र का जप निरंतर करने से आपकी वाणी की समस्या दूर होगी, आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली बन जाएगी। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य के लिए क्या है लकी टिप। पक्षियों को कभी भी पिंजड़े में कैद करके मत रखिएगा। अगर आप पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखेंगे तो कर्ज और बीमारियों की समस्या आपकी बढ़ जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 8 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: पहाड़ों पर तेजी से मौसम करवट बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। आसमान पर बादलों का डेरा है और कई जगहों पर ठंडी हवाओं के साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है।
2: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते पहाड़ कूल कूल हो गए। आसमान पर बादल छाए, ठंडी हवाओं ने दस्तक दी और फिर शुरू हुई झमाझम बारिश। धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, यानी मौसम ने पल भर में गर्मी से राहत का ऐसा इंतजाम किया कि पहाड़ों की फिजा ही बदल गई। इस बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए धर्मशाला और मैक्लोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंडी हवाओं, बारिश और पहाड़ों की हसीन फिजाओं ने सैलानियों का मजा दोगुना कर दिया है। बारिश और ओलावृष्टि के बीच भी त्रिउंड ट्रैक को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों की खूबसूरती और बदलते मौसम का मजा लेने त्रिउंड का रुख कर रहे हैं। असल में मौसम के इस बदलते मिजाज का अंदेशा मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था। विभाग ने आने वाले दिनों में भी पहाड़ों पर मौसम के ऐसे ही तेवर बनने के अनुमान जताए हैं।
3: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हमारे जो स्पेशली क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगभग 9 अक्टूबर तक प्रदेश के जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मध्यम बारिश का दौर है वो देखने को मिलेगा।
2: इसी के साथ पहाड़ों पर मौसम का अगला रंग बर्फबारी का हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरने के साथ बर्फ गिरने की संभावना है। इसी को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है।
3: प्रभाव से जो हमारे जो क्षेत्र है जिसमें कांगड़ा है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हाँ संभावना है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। देखिए अलर्ट मुख्यतः जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और शिमला, यहाँ पे आफ्टरनून और लेट इवनिंग में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया गया आगामी 4 दिनों के लिए येलो कैटेगरी में।
2: मौसम के बदले मिजाज ने पहाड़ों की फिजा के साथ साथ पर्यटन का रंग भी बदल दिया है। अब सबकी नजरें मौसम के अगले करवट पर है, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम अपने साथ खूबसूरती के नए रंग भी लेकर आता है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केंसो सोई को मिला नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। आठ अक्टूबर को भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायु वीरों का शौर्य और पराक्रम। पहाड़ों में बदल रहा मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ सतोपंथ में भारी बर्फबारी, रास्ते में 2 फीट से ज्यादा बर्फ, चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी, सावधानी की अपील। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही भक्तों की भीड़। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्र की भव्य तैयारियां, जगह जगह बनाए जा रहे हैं पूजा पंडाल, चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में 51 वर्षों से हो रही मां की पूजा। एशियन पैरा गेम्स के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटले होंगे भारत के ध्वजवाहक, 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के नागोया में आयोजित।

0: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा नवरात्र को लेकर आस्था की एक विशेष यात्रा की भी है। देखिए
1: कोई जलती हुई जोत लेकर नंगे पांव दौड़ लगा रहा है तो कुछ लोग बाइक पर धर्म ध्वज लहराते और माता का जयकारा लगाते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। आस्था की ये यात्रा हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। दरअसल ये सभी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जुनोनी गांव के वो श्रद्धालु हैं जो गुजरात के अंबाजी से ये जोत लेकर लौट रहे हैं। जुनोनी नवरात्रि उत्सव मंडल के ये सभी सदस्य अपने गांव से 2 अक्टूबर को गाड़ी से अंबाजी के लिए निकले थे और अब अंबाजी माता के दर्शन कर वहां से ये जलती हुई जोत लेकर अपने गांव लौट रहे हैं। 68 सदस्यों वाले दल के सभी सदस्य नंगे पांव करीब 1170 किलोमीटर के धर्म यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालु बारी बारी से मशाल लेकर दौड़ लगाते हैं। इस जोत की स्थापना के बाद गांव में नवरात्रि उत्सव की शुरुआत होती है। इस दल में शामिल सदस्य नवरात्रि और दशहरा तक इसी तरह नंगे पांव रहेंगे। जुनोनी नवरात्रि उत्सव मंडल के धर्म यात्रा की ये परंपरा पिछले 25 वर्षों से चल रही है। शारदीय नवरात्र अभी भले ही शुरू नहीं हुई है लेकिन प्रयागराज में दशहरा की झलक भी देखने को मिल गई। हालांकि इसमें रावण दहन नहीं बल्कि रावण पूजन का भाग था। दरअसल प्रयागराज में रावण की पूजा अर्चना और भव्य शोभा यात्रा के साथ दशहरा उत्सव की शुरुआत होती है। हर वर्ष पितृपक्ष के एकादशी को ऋषि भारद्वाज मुनि के आश्रम के शिव मंदिर में रावण रूपी कलाकार की पूजा अर्चना के साथ आरती उतारी जाती है और फिर दशानन के रूप में श्रृंगार किया जाता है। विशेष पूजा अर्चना के बाद दशानन अपने रथ पर सवार होकर भव्य शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। रावण की शोभा यात्रा में पत्नी मंदोदरी समेत परिवार के दूसरे सदस्य भी अलग अलग रथों पर विराजमान रहते हैं। साथ में मायावी सेना भी चल रही होती है। रंग बिरंगी लाइट और बैंड बाजा ढोल ताशा के साथ धूमधाम से निकले इस शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। प्रयागराज में रावण को विद्वता के चलते पूजा जाता है। इस वजह से कटरा इलाके में रावण के पुतले तक को नहीं जलाया जाता। पुतले को दारागंज रामलीला कमेटी को दहन के लिए सौंप दिया जाता है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की हैं जो इन दोनों पर्यटकों से गुलजार हैं। इन सब के बीच पर्यटकों को यहाँ अचानक से मौसम में हुए बदलाव के बाद के नजारे का लुत्फ लेने का मौका भी मिला। मैक्लोडगंज समेत आसपास की ऊंचाई वाले इलाके में मंगलवार शाम झमाझम बारिश के साथ ही ओले भी गिरे जो चारों ओर सफेद मोती के बिखरे होने का एहसास करा रहे थे। इसके चलते तापमान में गिरावट होने से ठंड का असर भी बढ़ गया लेकिन पर्यटकों के लिए यह खुशनुमा एहसास है लिहाजा वो पहाड़ों की खूबसूरती और मौसम का आनंद उठाते नजर आए। यूपी के भदोही में चल रहे इंडिया कारपेट एक्सपो में एक से एक आकर्षक कालीन देखने को मिल रहे हैं। उनमें से एक ऐसा खास कालीन भी है जिसमें बच्चन परिवार की 3 पीढ़ियां नजर आती हैं। जमीन पर बिछे होने पर ये एक सामान्य कालीन की तरह दिखता है लेकिन उठाकर गौर से देखने पर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन तीनों की तस्वीर नजर आने लगती है। भदोही की ग्लोबल ओवरसीज ने इस कालीन को डिजाइन किया है जो एक तरह से वॉल हैंगिंग है यानी इसे दीवार पर सजाया जा सकता है ताकि दूर से देखने पर इसमें बच्चन परिवार के 3 सदस्यों की तस्वीर साफ दिख सके। 6 महीने की मेहनत से तैयार ये हैंड नॉटेड कारपेट है जिसमें प्योर वूल का इस्तेमाल किया गया है। इसकी लागत लगभग 1,00,000 रुपए आई है। फिलहाल इसे सिर्फ स्टॉल पर देखने के लिए हाथ से लगाया गया है न कि बेचने के लिए रखा गया है।
2: और कुछ ईरानी भी कस्टमर हैं जो इसमें अगर अमिताभ बच्चन को देखते ही बोलते हैं शोले तो वह एक बहुत अच्छा अनुभव होता है कि भाई हमारे देश के जो एक्टर्स हैं इतने फेमस है कि फॉरेन के लोग जो यहाँ के लैंग्वेज भी नहीं समझते हैं लेकिन यहाँ के एक्टर्स को पहचानते हैं। लगभग लगा है 6 महीने बनाने में और इसकी कॉस्ट लगभग 1,00,000 रुपये है।
1: सरिस्का के जंगल से निकलकर एक बाघ मंगलवार रात अलवर के थानागाजी कस्बे तक पहुंच गया। रात करीब 9 बजे सड़क पर बाघ को चहलकदमी करते देखकर गाड़ियों की रफ्तार थम गई और गाड़ी सवार बाघ का वीडियो बनाने लगे। ये बाघ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी के रास्ते से होते हुए पुलिस थाने के पास पहुंच गया। मामले की जानकारी सरिस्का टाइगर रिजर्व प्रशासन को मिली जिसके बाद अलवर जयपुर मार्ग को बंद कर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई। सरिस्का वन विभाग की टीम टाइगर के मूवमेंट की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है।
0: और अब बात करते हैं वायुसेना की तरंग शक्ति की। राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा एडिशन चल रहा है। इसमें दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की भागीदारी भी खास आकर्षण है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त हवाई अभियानों के जरिए आपसी तालमेल, अनुभव साझा करने और एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं को समझने का अवसर देना है।

0: आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, हवा को चीरते C-130 ग्लोब मास्टर। जोधपुर एयरबेस पर तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान आसमान में हैरत अंगेज नजारे देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते पश्चिमी राजस्थान का एयर स्पेस किसी वास्तविक युद्ध क्षेत्र की तरह नजर आ रहा है, जहां एक साथ 60 से 80 लड़ाकू विमानों ने जटिल हवाई मिशन को अंजाम दिया। जोधपुर में चल रहे इस युद्धाभ्यास पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत की अगुवाई में दुनिया के शक्तिशाली देशों की वायुसेना अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। और गुड न्यूज ये है कि इस एक्सरसाइज में महिला अधिकारी भी पुरुष पायलटों के साथ उड़ान भर रही हैं।
1: भारतीय वायुसेना की मेगा एक्सरसाइज तरंग शक्ति में इन दिनों पूरी दुनिया की 40 वायुसेनाएं अपने अलग अलग फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ अपना दमखम दिखा रही हैं। और पहली बार अमेरिका अपने F-35 भारत लेकर आया भी है और साथ ही इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज भी साझा कर रहा है। 6 F-35 और फ्रांस के 4 रफाल भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के साथ जोधपुर के आसमान में अलग अलग फॉर्मेशंस दिखा रहे हैं। और खास बात यह है कि ये सब कुछ पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक भी हो रहा है और तमाम वायुसेनाएं अपने फाइटर जेट्स के साथ अपनी क्षमताएं तो दिखा ही रही हैं, साथ ही भारत से उसका कौशल भी सीख रही हैं। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने प्रिसिशन स्ट्राइक्स की, वो सभी के लिए एक बड़ी मिसाल बना। और तरंग शक्ति में भी तमाम देशों की वायुसेना भारत के वायु सैनिकों से

0: अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। 80 से ज्यादा अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं और 3000 से ज्यादा जवान अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तरंग शक्ति अभ्यास 2.0 को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ सैन्य एक्सरसाइज कड़ी होती जा रही है। दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने और डॉग फाइट से लेकर एयरलिफ्ट और टैक्टिकल ड्रॉप्स को अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय और विदेशी फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान भरते हुए टैंकर विमानों से ईंधन रिफिल कर रहे हैं ताकि उनके स्ट्राइक रेंज को कई गुना बढ़ाया जा सके।
1: देखा जाए तो तरंग शक्ति से काफी रणनीतिक बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा। जो अमेरिका का F-35 सबसे ज्यादा स्टेल्थ है, पहली बार भारत के अंदर हिस्सा ले रहा है, रफेल हिस्सा ले रहे हैं, तेजस हिस्सा ले रहा है, साथ साथ में भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहा है। इससे ना केवल हमारी देश की जो प्रोडक्ट है, देश की जो जहाज और हेलीकॉप्टर है उनका प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी जो ताकत है उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़े पर किस प्रकार से मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन सिस्टम्स, एयरफोर्स के बारीकियां, लड़ने का तरीका, डॉग पॉइंट, किल चेन, सब चीजों के ऊपर रिहर्सल किया जाएगा, जिससे मैं समझता हूँ कि भारत की एयरफोर्स को बहुत ही फायदा होगा।
0: तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से तेजस, सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों को उतारा गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हवा में ही ईंधन भरने वाले एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी शामिल किए गए हैं। वायु युद्धाभ्यास का खास आकर्षण अमेरिकी एयरफोर्स का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 है, जो भारत की सरजमी पर हो रहे युद्धाभ्यास में पहली बार शामिल हुआ है। अमेरिकी एयरफोर्स के 2KC-135 हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। फ्रांस वायुसेना की ओर से 7 राफेल लड़ाकू विमान, 3A-400 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान और 2 हवा में ईंधन भरने वाले विमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना ने इस युद्धाभ्यास में 6 F-16 लड़ाकू विमान और 1 सैन्य निगरानी विमान भेजा है। ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना की ओर से 1C-130J सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। जर्मनी की वायुसेना की ओर से 1A-400M एटलस सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। बांग्लादेश वायुसेना के 1 C-130J ट्रांसपोर्ट विमान और श्रीलंका के 1 किंग एयर 350 निगरानी विमान भी इस युद्धाभ्यास में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: अमेरिका का F-35 पहली बार इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है, जो कि भारत के अंदर जोधपुर में हो रहा है। जब पाकिस्तान ये देख रहा है कि किस प्रकार से भारत की एयरफोर्स, अमेरिका की एयरफोर्स, दुनिया की आधुनिक एयरफोर्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब की एयरफोर्स हिस्सा ले रही है, तो पाकिस्तान की सीने पर सांप लौट रहे। दूसरी बात यह कि भारत इनसे सीख रहा है। F-35 एक बहुत ही आधुनिक स्टेल्थ जहाज है, मल्टी रोल जहाज है, जिसके द्वारा किस प्रकार से हम कम्युनिकेट करेंगे, डाटा शेयर करेंगे, किस प्रकार से लॉजिस्टिक्स होंगे, किस प्रकार से हम मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं, ये सब के द्वारा भारत की एयरफोर्स को काफी सीखने का मौका मिलेगा और उनको भारत के एक्सरसाइज सिंगरूर में जो अनुभव है, किस प्रकार से पाकिस्तान को हमने खत्म कर दिया, उनकी एयर बेस को खत्म कर दिया, ज्वाइंट ऑपरेशन किस प्रकार से किया, वो सीखने का मौका मिलेगा।
0: युद्धाभ्यास के दौरान अलग अलग देशों के ये लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरकर रणनीतिक तालमेल और हवाई युद्ध की बारीकियों को आपस में साझा कर रहे हैं। एयर क्रू और मिशन प्लानर्स एक साथ बैठकर जटिल रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक कम्बाइंड एयर ऑपरेशन आर्किटेक्चर विकसित किया जा सके। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन अनुभव और अलग अलग क्षमताओं को सीखने का मौका मिलेगा।
1: एक्सरसाइज चालन शक्ति में तकरीबन 40 देश हिस्सा ले रहे हैं।

0: आठ एक्टिव देश है और 32 ऑब्जर्वर देश है, जिसमें दुनिया के आधुनिकतम जहाज मोस्ट मॉडर्न एयरफोर्स हिस्सा ले रही है। आपस में मिलकर किस तरह से लड़ाई लड़नी है, किस प्रकार से मिलकर हम कहीं ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को समझना, स्टेल्थ, ईडब्ल्यू, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, इसको सभी एंगल्स को देखते हुए ये एक्सरसाइज हो रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से जैसे पाकिस्तान की सीमा के पास जोधपुर में एक्सरसाइज हो रही है, तो भारत की एयरफोर्स को बाकियों से और बाकी की एयरफोर्स को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव और भारत की एयरफोर्स से सीखने का मौका मिलेगा। इसमें F-35, राफेल, सुखोई, इस तरह के आधुनिक जहाज हिस्सा ले रहे, साथ में तेजस भी हिस्सा ले रहे।
1: तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का ये दूसरा संस्करण है। ये एक्सरसाइज 12 अक्टूबर तक चलेगी। 2024 में पहली बार दो चरणों में सुलूर और जोधपुर में इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया था। तब अमेरिका A-10 और F-16 जैसे विमान लेकर पहुंचे थे, लेकिन अब पहली बार अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान F-35 अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। जाहिर है वैश्विक मंच पर भारत के मजबूत होते रक्षा संबंध के बुलंद तस्वीर की ये एक नई वानगी है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सहारनपुर की गौशाला में गाय के गोबर से बन रहा है पौधा उगाने वाला सीड बॉल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की और बताया कि उन्होंने भगवान श्री गणेश से देश भर के अपने परिवार जनों की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। भारतीय वायुसेना के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है। GE एरोस्पेस ने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 4 और F-404N20 इंजन भेजे हैं। इसके साथ ही तेजस MK-1A प्रोग्राम के लिए अब तक भेजे गए इंजनों की संख्या 14 हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि अब हर महीने करीब 4 F-404N20 इंजन की डिलीवरी हो सकती है, और अगर ये सप्लाई इसी रफ्तार से जारी रहती है तो HAL के तेजस MK-1A प्रोडक्शन प्रोग्राम को बड़ी रफ्तार मिल सकती है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार पूरी अयोध्या जी को रामायण थीम पर सजाने की तैयारी है। रामनगरी के 56 घाटों पर करीब 30 लाख दिए जलाए जाएंगे। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए करीब 10 प्रमुख स्थानों पर थीम आधारित वे फाइंडर लगाए जाएंगे। इनके जरिए लोगों को संबंधित स्थानों की जानकारी और दिशा निर्देश मिल सकेंगे। शहर के प्रमुख हाईवे और धर्मपथ पर रामायण की थीम से सजे 10 भव्य द्वार तैयार किए जाएंगे। 20 सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, तो वहीं सरयू और राम की पैड़ी पर आकर्षक फ्लोटर्स भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचेंगे। इनके अलावा राम रथ, राम दरबार, भरत मिलाप मंच विशेष आकर्षण होंगे। सहारनपुर के कान्हा उपवन गौशाला में अब गाय के गोबर से अनूठा सीड बॉल तैयार हो रहा है। इन सीड बॉल की खासियत ये है कि ये न सिर्फ आसपास हरियाली लाते हैं बल्कि पर्यावरण को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। असल में इनके अंदर फूलों और सब्जियों के बीज डाले जाते हैं, जिससे इन्हें मिट्टी में डालने पर अनुकूल परिस्थितियों में पौधे उग सकते हैं। इनमें गेंदे सहित विभिन्न फूलों और इलायची, लौंग, हरी मिर्च, लौकी, तुरई, भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों के बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गौशाला में तैयार की जा रही इन सीड बॉल की कीमत मात्र 10 रुपए रखी गई है। इन्हें ऑफलाइन बेचने के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन के जरिए भी ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। मैदानी इलाकों में भले ही अभी सर्दी ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है और जमीन पर रुई के फाहों सी बर्फ बिछ गई है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र बद्रीनाथ संतोपत में भी भारी बर्फबारी के बाद यहां का नजारा पूरी तरह बदल गया। रास्तों पर 2 फीट से अधिक बर्फ जमी है। चक्रतीर्थ से आगे का पूरा इलाका पूरी तरह बर्फ की आगोश में है। चारों ओर बर्फ की मखमली चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। ये नजारा सैलानियों के लिए खास है। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में साच पास में हुई ताजा बर्फबारी के बाद साच पास का प्राकृतिक सौंदर्य और भी निखर गया है। मंगलवार शाम शुरू हुआ हिमपात देर रात तक जारी रहा, जिसके बाद साच पास और आसपास का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। ताजा बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन बढ़ने के साथ साथ ऊंचाई वाले क्षेत्र में ठंड भी काफी बढ़ गई है।
2: और अब बात नवरात्र उत्सव की। शारदीय नवरात्र शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल से लेकर काशी तक माँ दुर्गा के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं विशाल पंडाल सज रहा है तो कहीं प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि दुर्गा पूजा से जुड़ी इन तैयारियों में पर्यावरण का खास ख्याल भी रखा जा रहा है। इसलिए ज्यादातर मूर्तिकार और पूजा समितियां इको फ्रेंडली मूर्तियां और पंडाल बनाने पर जोर दे रहे हैं।

0: माँ दुर्गा के स्वागत के लिए देश भर में भव्य तैयारियां चल रही हैं। बंगाल से लेकर अमरावती और काशी से लेकर प्रयागराज तक हर तरफ भक्ति, आस्था और उल्लास का रंग दिखाई देने लगा है, क्योंकि 3 दिन बाद देवी दुर्गा का आगमन होने वाला है, जिनके स्वागत के लिए ये भव्य तैयारी शहर शहर की जा रही है। खासकर बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर एक अलग ही रौनक अभी से देखने को मिल रही है। यहाँ पूजा पंडाल करीब करीब बनकर तैयार हैं और अब कारीगर इन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का ये पूजा पंडाल माँ के स्वागत के लिए तैयार है। यहाँ के प्रसिद्ध भामुरिया बाथनेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी हर साल एक खास थीम पर पंडाल बनाती है। इस साल पाषाणे प्राण यानी पत्थरों में प्राण की थीम पर पंडाल तैयार किया जा रहा है। इस थीम के तहत पूरे पंडाल को मानो किसी पहाड़ को तराश कर बनाया गया हो। पहाड़ पर मंदिर बनाया गया है और मंदिर के चारों तरफ देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं।
1: दुर्गा पूजा का और कुछ ही दिन बाकी है और हम पहुंच गए हैं पुरुलिया के बिग बजट थीम बेसिस पूजा, पुरुलिया के भामुरिया दुर्गा पूजा पंडाल में। हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा।
0: दुर्गा पूजा समिति के लोगों का दावा है कि भामुरिया की इस दुर्गा पूजा को देखने के लिए हर साल पुरुलिया के अलावा राज्य के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। साथ ही पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड और बिहार से भी काफी संख्या में लोग यहां आते हैं और इस साल भी लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।
1: अभी इस साल जो थीम बना हुआ है वो थीम के बारे में बताइए।
2: थीम है हम लोग को जो बांग्ला में बोलता है पाषाणे प्राण, अर्थात जिसको समझता है मनुष्य को जो पाषाण का पाषाण का उसका में जो जान है इस शिल्पी का क्रेडिट है। इस शिल्पी का जो बना हुआ है इसमें मनुष्य समझ जाएगा ये पाषाण में प्राण है।
1: कितना साल हो गया पूजा?
2: 17 साल।
1: 17 साल हो गया।
2: हाँ,
1: इस साल भी वैसे ही भीड़ होगा।
2: हाँ हाँ।
0: वहीं यूपी के झांसी की ये चार बहनें अपने परिवार की करीब 15 साल पुरानी मूर्ति निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। साधना, किरण, ज्योति और दीपिका अपने भाई रोहित के साथ मिलकर मिट्टी और रंगों से माँ दुर्गा समेत अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाओं को आकार दे रही हैं। इस बार इस परिवार ने करीब 150 मूर्तियां तैयार की हैं जो बंगाली पैटर्न पर आधारित हैं।
3: मिट्टी, घास, पानी और कलर पेंट वगैरह, सिंगार ये सारी चीज
4: मिट्टी का यूज किया गया है।
3: काली मिट्टी का और लाल मिट्टी का यूज किया गया है। इसमें पेंट जो है वो कच्चा यूज करते हैं, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे।
4: सामग्री कहाँ से आती है?
3: ये हमारा सारा सामान कलकत्ता से मंगाते हैं, ऑर्डर पे बनवाते हैं।
5: इस बार 150 के समथिंग मूर्तियाँ बनाई हैं हम लोगों ने। 4 काली जी हैं, 1 मौट की है, 1 जी मुन्ना लाल धर्मशाला की है और 1 ग्वालियर की भी है, 1 बगरा मंडी की भी है।
0: शक्ति उपासना के इस पर्व के लिए पूजा पंडाल तो बन ही रहे हैं, देवी माँ की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ भी बनकर तैयार हो रही हैं। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी, मूर्तिकार देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को सजाने और संवारने में जुटे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी माँ के भव्य स्वरूप को सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। प्रयागराज के भारद्वाज पार्क में कोलकाता से आए मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहाँ की खासियत है कि ये मूर्तियाँ गंगा की शुद्ध मिट्टी से तैयार की जा रही हैं। मूर्तिकारों ने गंगा की मिट्टी से माँ की ये मनोहारी मूर्तियाँ बनाई हैं। ये मूर्तियाँ 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की हैं। माँ दुर्गा की आंखों के भाव, उनके मुकुट और आभूषणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
6: पूरे देश में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त भरद्वाज पार्क में हैं जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो बनाने का काम है वो चल रहा है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इसमें गंगा जी की मिट्टी का प्रयोग किया गया है, लकड़ी है और पैरे का प्रयोग करके इन दुर्गा प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। इन मूर्तियों में कलर भरे जा रहे हैं और वो भी कलर पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं।
7: डिमांड तो बहुत है लेकिन हम लोग पूरा कर नहीं पाते हैं। अभी इस टाइम कारीगर का मौसम चेंज हो गया है, मौसम चेंज में हमारा कारीगर सब थोड़ा बीमार पड़ा है तो भी काम लगे है जो छोड़ा नहीं है। अब आखिरी तक उसको देना ही है, हम भी उसको साथ में है।
8: यहाँ नवरात्र शुरू होने वाला है 11 तारीख से, तो यहाँ की मूर्तियाँ सभी को फ्रेंडली है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, गंगा जी की मिट्टी से बनती हैं। तो हम लोग अभी से यहाँ लेने आ रहे हैं क्योंकि बहुत तेज बिक जाती है।
0: पंडालों के साथ साथ मंदिरों को भी सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। नवरात्र से पहले माँ के भव्य स्वागत की तैयारियाँ अपने चरम पर हैं। विदर्भ की कुलस्वामिनी अमरावती की आराध्य माँ अम्बा का दरबार भी सजाया जा रहा है। अमरावती के शक्करसाठ इलाके में माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। खास बात यह है कि इन प्रतिमाओं को तैयार करने के लिए पिछले करीब 50 सालों से बंगाल के कलाकार यहाँ आते हैं और नवरात्र उत्सव से करीब 3 महीने पहले से ही प्रतिमाएं बनाने का काम शुरू कर देते हैं। बंगाल की पारंपरिक शैली में तैयार की जा रही इन प्रतिमाओं में माँ दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी स्वरूप खास आकर्षण का केंद्र है।
9: नवदुर्गा और शारदीय उत्सव जो है वो पूरे देश में सबसे बड़े पैमाने पर जो है बंगाल में मनाया जाता है, लेकिन अमरावती में भी जो है बंगाल पैटर्न की जो देवी की प्रतिमा जो इको फ्रेंडली है, पूरी तरीके से मिट्टी की प्रतिमाएं जो है वो बनाने का काम पिछले 50 सालों से ये मंडले परिवार जो है वो बना रहा है। वो देवी बनाने के लिए माँ जगदम्बा आदिशक्ति की प्रतिमा बनाने के लिए लगभग 50 सालों से 3 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बंगाली पैटर्न की खास इस वक्त की ट्रेंडिंग जो प्रतिमाएं चल रही है वो राक्षस वाली है, जो राक्षस का वध करने वाली है जो प्रतिमाएं है उसे जो है अब जो है बनाकर लगभग उस पर साड़ी चोली चढ़ाने का काम उसको अभी जारी है।
0: उधर राजस्थान के भी अलग अलग शहरों में देवी मां की मूर्तियों की सजावट का काम जोर शोर से चल रहा है। राजस्थान के धौलपुर जिले में तैयारियां जोरों पर हैं और चारों ओर भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। इस बार पंडालों और घरों में विराजमान करने के लिए देवी मां के मनमोहक स्वरूपों की भव्य प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। यहां मिट्टी और प्लास्टर से बनने वाली मूर्तियों को तराशने में कारीगर दिन रात जुटे हैं और खास बात यह है कि ज्यादातर मूर्तिकारों ने इको फ्रेंडली मूर्तियां ही बनाई हैं, जो जल्द ही पूजा पंडालों की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। पुरुलिया से सत्यजीत बनर्जी, झांसी से अजय झा, धौलपुर से उमेश मिश्रा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ अकोला से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
10: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: रेपो रेट में बढ़ोतरी के आरबीआई के फैसले का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। बुधवार 7 अक्टूबर को शेयर बाजार में गिरावट रही। लगातार 2 दिनों की बढ़त के बाद सेंसेक्स 429 अंक लुढ़क कर 72,640 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 173 अंक फिसला, ही गिरकर 22,603 पर आ गया। राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। स्थानीय स्तर पर कम मांग और वैश्विक स्तर पर कमजोर रुझान के कारण सोना 700 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,48,900 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमत में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। 1 किलो चांदी की कीमत लगातार 30वें दिन 2,27,000 रुपए पर स्थिर रही। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 43 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 96.78 रुपए हो गई।
10: तंदूर का ट्रेलर जारी हो गया है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
0: दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर शानदार ट्रेंड जारी है। मंगलवार को भी फिल्म का कलेक्शन सोमवार के लगभग बराबर रहा। खास बात यह है कि वीकडेज में फिल्म को कोई ऑफर या डिस्काउंटेड टिकट स्कीम का फायदा नहीं मिला, फिर भी कमाई मजबूत बनी हुई है। फिल्म का ये प्रदर्शन दिखाता है कि दर्शकों के बीच क्रेज बरकरार है। अब नजर आने वाली वीकेंड पर है, खासकर इस शुक्रवार किसी बड़ी फिल्म की रिलीज नहीं होने से दृश्यम 3 की कमाई में और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। जेकी शॉ पर शरद केलकर स्टारर ग्रामीण हॉरर फिल्म काली खेती की रिलीज डेट बदल गई है। पहले ये फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन अब 20 नवंबर को रिलीज होगी। मेकर्स ने अक्टूबर की कई फिल्मों के बीच टकराव से बचने के लिए ये रणनीतिक फैसला लिया है। नई रिलीज डेट के साथ जेकी शॉ पर शरद केलकर के कैरेक्टर पोस्टर भी जारी किए गए हैं। हारिस इम्तियाज खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में नेहा सरगम, वीरेंद्र सक्सेना और शाहजी चौधरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
11: हमारे कुल रोमान सुमेर सिंह के नाम से है।
0: राजस्थान की मिट्टी और संस्कृति की कहानी कहने वाली फिल्म धूर सैंडस्टॉर्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। खास बात यह है कि धूर पहली ऐसी राजस्थानी फिल्म है जो पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। 1990 के दशक की शुरुआत के राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म को आनंद सिंह चौहान ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में यशपाल शर्मा, अलका अमीन समेत कई कलाकार नजर आएंगे। धूर को मिराज सिनेमा पूरे देश में रिलीज करेगा। मुंबई में अभिनेता विद्युत जामवाल का एक ऐसा अंदाज देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपनी आगामी हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर के स्पेशल लुक और ट्रेलर लॉन्च इवेंट में विद्युत जामवाल वीडियो गेमिंग के मशहूर किरदार धलसिम के लुक में नजर आए। खास अंदाज और दमदार लुक में विद्युत ने खूब सुर्खियां बटोरी। सबसे खास बात यह है कि स्ट्रीट फाइटर के जरिए विद्युत जामवाल आधिकारिक तौर पर हॉलीवुड में अपना कदम रखने जा रहे हैं, यानी अब एक्शन का ये देसी सितारा हॉलीवुड में भी अपना दम दिखाने को तैयार है।
10: न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
10: फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केंसो सोई को मिला नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। आठ अक्टूबर को भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायु वीरों का शौर्य और पराक्रम। पहाड़ों में बदल रहा मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ सतोपंत में भारी बर्फबारी, रास्ते में 2 फीट से ज्यादा बर्फ, चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी, सावधानी की अपील। चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: पढ़ाई के साथ साथ इस बच्ची की हैंडराइटिंग भी लोगों का ध्यान खींच रही है। कॉपी के पन्नों पर लिखे एक एक अक्षर को देखकर मेहनत और लगन साफ दिखाई देती है। बच्ची की सुंदर और साफ लिखावट देखकर हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई के साथ लिखावट पर इतनी अच्छी पकड़, वाकई काबिले तारीफ है। पिता के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे बच्चे। इंतजार था उस पल का जब अपनी मेहनत से हासिल किया मेडल पापा के गले में पहनाएंगे। जैसे ही पिता घर पहुंचे, बच्चों ने खुशी से उन्हें मेडल पहना दिया। बच्चों की इस कामयाबी और पिता के चेहरे की खुशी ने इस पल को बेहद खास बना दिया। आखिर एक पिता इससे ज्यादा और क्या चाहेगा कि उसके बच्चे मेहनत करें, कामयाबी हासिल करें और अपनी जीत की खुशी सबसे पहले उसके साथ बांटें। एक पेड़ गिरा और उसी पेड़ ने करीब 10 बच्चों की दुनिया सजा दी। न महंगे खिलौने चाहिए, न किसी पार्क की जरूरत। बच्चों ने गिरे हुए पेड़ को ही अपना झूला बना लिया। 2 बच्चे झूला झूला रहे हैं, जबकि पीछे कई बच्चे बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों की ये मस्ती देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को अपना बचपन याद आ गया। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि यही तो असली बचपन है, जहां छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां मिल जाती थी। अब जिम जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस शख्स ने ऐसा देसी जुगाड़ खोज निकाला है जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। फिसलन भरी मिट्टी में ये शख्स जिस तरह चल रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहा हो। पैर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंसान अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। वीडियो देखकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे देसी ट्रेडमिल बता रहे हैं और इस अनोखे जुगाड़ की खूब चर्चा हो रही है।
10: उत्तराखंड के कैची धाम में पिछले वीकेंड 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कई बड़े फैसले किए। बैठक में श्रद्धालुओं का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, 20,000 से 25,000 श्रद्धालुओं की सीमा, मंदिर में अलग एंट्री एग्जिट प्वाइंट, शटल सेवा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और होटल होम स्टे की निगरानी जैसे कदम उठाने पर जोर दिया गया है।

0: ये आस्था का वो बड़ा धाम है जहां हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। बाबा नीम करौली के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बीते दिनों तो कैची धाम में आस्था का ऐसा समंदर उमड़ा कि सड़कों से लेकर मंदिर परिसर तक हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए। बढ़ती आस्था के साथ बढ़ती भीड़ ने प्रशासन के सामने एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी। ऐसे में अब प्रशासन ने व्यवस्था को और बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आला अधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।
1: जैसे आपने देखा पिछले वीकेंड में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि वहाँ पर श्रद्धालु का है, उनकी संख्या में देखी गई। इनफैक्ट जो डिटेल्स पुलिस ने मुझे बताए हैं 50,000 को भी एक दिन में वो क्रॉस कर गया। और उस कैपेसिटी के लिए जहाँ पे जो मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं बना है और अन्य भी नहीं बना है। तो आज सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक थी, इसमें पुलिस प्रशासन आरटीओ के अलावा लोकल्स के भी जितने स्टेक होल्डर्स थे, उसमें मीडिया खुद थी, बाहर के लोग थे, होटल हमारा जो एसोसिएशन है उनके लोग थे, केमो के थे, टैक्सी यूनियंस थी।
2: कैची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने को लेकर हमने लोकल व्यापारियों से बात की और उनकी राय जानी।
3: अभी प्रशासन द्वारा कैची धाम में जो अत्यधिक ट्रैफिक हो गया था उसकी वजह से एक इमरजेंसी मीटिंग ली गई थी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया गया था और उसमें एक डिसीजन लिया गया है कि जल्द ही यहाँ पर को चार धाम के तर्ज पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। हम देख रहे हैं जब भी एक्सटेंडेड वीकेंड्स होते हैं या दो तीन दिन की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो श्रद्धालुओं का रुख काफ़ी ज़्यादा तादाद में कैची की तरफ रहता है, जिसकी वजह से श्रद्धालु और आम जनमानस को भी काफ़ी परेशानी का सबब झेलना पड़ रहा है। और ये रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जितनी कैरिंग कैपेसिटी कैची की है उतने ही लोग वहाँ पर को पहुँचेंगे ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। और जो हमारा कुमाऊं का पूरा ट्रैफिक जो कैची के सामने नेशनल हाईवे थ्रू गुजरता है उससे हमारा आगे का जितना भी प्लेसेस हैं, चाहे वो खेना, रानी के, तलमोड़ा, पिथौरागढ़, इन सब लोगों के बिजनेसेस और लोगों की डेली का शेड्यूल बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ये कंट्रोल करने के कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, देखना होगा कि आगे को प्रशासन इसको धरातल पे किस तरह से अमल ला पाता है।
4: देखिए अब कोई कभी आप नंबर ऑफ वेसेस आप क्या करेंगे, जब आदमी कम आएंगे तो गाड़ी भी कम आएंगी, उससे ऑटोमेटिकली हर चीज जगह पे आ जाएगी। क्योंकि अगर आप विजिटर कम आएगा तो उतनी गाड़ी कम आएंगी, उतना कम जैम लगेगा, उतनी पार्किंग का इशू कम रहेगा। अब ये अब देखना ये है कि कितने विजिटर कैप में लगाने पे होता है, वो अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे इसको, तो एग्जैक्ट कुछ महीनों बाद ही फिगर आ पाएगा कि कितने कैप लगाने जिससे कि कंफर्टेबली वहाँ का ये आपका जो ट्रैफिक है वो कंफर्टेबली मैनेज हो सके। जो ये रानीखेत है या अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़, इंटीरियर जितने भी हैं, क्योंकि रास्ता सब जगह कैची होते हो जाता है, वो कैची पिछले कुछ वर्षों से जाम लगने की वजह से वहाँ का एक तो वहाँ के लोगों को दिक्कत होने लगी है, वहाँ पर जो एसेंशियल सर्विसेज नहीं आ पा रही हैं, उसके अलावा वहाँ का पर्यटन बिल्कुल चौपट हो गया है क्योंकि टूरिस्ट कैची के आगे जा नहीं पाता और डरता जाना में क्योंकि जाम अटक जाएगा आदमी। इसलिए वहाँ का पिछले दो तीन वर्षों से एक तो पर्यटन चौपट हो गया है, दूसरा लोगों को बहुत दिक्कत हो गई, उनका सामान नहीं पहुँच पा रहा है, कोई बीमार भी हो गया तो उसकी एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है। तो उन्होंने विशेष हमने पॉइंट उठाया था कि वहाँ के लोगों को रिलीज देने के लिए कम से कम इस तरह ये किया जाए कि हाईवे कोई ब्लॉक ना हो, हाईवे हमेशा खुला रहे।
5: देखिए ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है 2 साल पहले बात हुई थी, नहीं लागू हुई। अब बात हुई है, प्रशासन शासन की तरफ से पहल हुई है, हमने भी ये बात उठाई है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन कैपिंग की सीमा को 25,000 की जो बात हो रही है वो सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। 25,000 आप एक युद्ध स्तर पे पुलिस लगती है तो मैनेज होता है, तो इतनी बड़ी संख्या को क्या जरूरत है यहां लाने की। आप शुरुआत 10,000 से 12,000 करिए, कंफर्टेबली मैनेज होता है, उसे 15 पे ले जाइए, 18 पे ले जाइए, आप जितने पे अगर कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हैं लेके जाइए। 25 से आप नहीं मैनेज होगा तो नीचे लाएंगे, ये रिवर्स चलने वाली प्रक्रिया समझ में नहीं आई। पहले आप मुसीबतें झेले, 25 करके 5 नीचे लाएं, लेकिन 5 जब तक नीचे लाएंगे तब तक प्रॉब्लम्स हम सहन करें। इससे बेटर है आप 10 से 12 से शुरू करिए, कंफर्टेबली मैनेज होता है, आप 15 ले जाइए, 17 ले जाइए, 20 ले जाइए, नीचे से ऊपर चलिए। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है ये बहुत अच्छा कदम है, और कैपिंग जो है इसमें रखने वाली बात भी जरूरी है, और 10 से 12 हज़ार से शुरुआत करी जाए। सब सही मैनेज हो तो ऊपर करिए उसकी कैपिंग, ऊपर से नीचे ना लाएं। और 25,000 तो रियली अग्रीबल नहीं है, मंदिर समिति को भी अग्रीबल नहीं है, कल की मीटिंग से क्लियर हुआ है, और किसी को अग्रीबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा तैयारियों के साथ ये मैनेज हो पा रहा है। इतनी तैयारियों में नैनीताल को कोलैटरल डैमेज हो रहा है, नैनीताल मैनेज नहीं हो पा रहा है। नैनीताल में क्या कोई आप कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होगी तो कैसे मैनेज करेंगे? ना हमारे पास मेडिकल इमरजेंसीज है, ना मेडिकल फैसिलिटीज नैनीताल में है। एयर एम्बुलेंस उठाने के लिए, लैंड कराने के लिए कहाँ पे जगह है? चार चार एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी अगर कोई भगवान ना करे। अब सब भगवान भरोसे चलने देंगे तो कब तक इसको भगवान भरोसे चलते हुए, किसी दिन हम हाथ मलते रह जाएंगे।
6: ये जो कल मीटिंग ली ये बहुत जरूरी थी क्योंकि जब तक का दूसरे रास्ते नहीं बन जाते, क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि हम कैंची धाम के एरिया को या जो वहां भक्त जन आते हैं उनको हम टच नहीं करें, पर जो हमारे अल्मोड़ा जाने वाले लोग हैं, रानीखेत जाने वाले लोग हैं, बागेश्वर जाने वाले लोग हैं, पिथौरागढ़ जाने वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए कोई ऑल्टरनेटिव रूट हो जाए। क्योंकि दुर्भाग्य क्या होता है कि कई बार मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह, जाम की वजह लोग फंस जाते हैं, लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं। देखिए टूरिज्म होना चाहिए अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा तरीका है। पर यहाँ जो क्योस हम देख रहे हैं उस क्योस की वजह बहुत से लोग उल्टा गुस्सा होने लग गए हैं, रोष आने लग गया है। तो जो कल प्रशासन ने मीटिंग ली ये बहुत सुंदर तरीका है। हमारा मानना है एक कूपन सिस्टम होना चाहिए और उस कूपन सिस्टम में भी संख्या होनी चाहिए।
2: और अब बात उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की, जिसमें श्रद्धालुओं की अपार आस्था दिख रही है और यही वजह है कि इस वर्ष चारों धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और अभी भी वो पहुंच ही रहे हैं। चारधाम यात्रा अभी चल ही रही है जिससे कि इस बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा मौजूदा आंकड़े से कहीं अधिक होना तय है। चार साल पहले जो एक रिकॉर्ड बना था वो पीछे टूट चुका है। इसके वजह धार्मिक आस्था तो है ही, लेकिन साथ में श्रद्धालुओं का जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो भी आंकड़े को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है।

0: केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, या गंगोत्री या फिर यमुनोत्री, चारों ही धाम की यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं ने जो उत्साह दिखाया है उसने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस बार की चार धाम यात्रा ये बता रही है कि इसके प्रति देश दुनिया के श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी ये बता रही है कि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। इस बार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 56,18,497 के पार जा चुकी है, जबकि 2023 में सबसे अधिक 56,13,000 से अधिक श्रद्धालुओं की संख्या दर्ज की गई थी। इस वर्ष 2023 के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। चारों धामों के अलग अलग आंकड़े भी इस बार सबसे अधिक है। केदारनाथ धाम की यात्रा भी इस बार नए रिकॉर्ड की ओर तेजी से बढ़ रही है।
1: मॉनसून के खत्म होने के बाद से सितंबर माह के अंत से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। उसके दृष्टिगत जो हमारा पुलिस का व्यवस्थापन है उसको भी बढ़ाया गया है, साथ ही साथ जो हमारी प्रशासन की तैयारियां और प्रशासन की विभिन्न टीमें हैं उनको भी तैनात किया गया है ताकि इस बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा कराई जा सके।
0: इन दिनों केदारनाथ धाम में हर दिन औसतन 15,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस सीजन में अब तक 16,54,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं।
2: अभी एक माह की यात्रा शेष बची हुई है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यात्रा के पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और इस बार की केदारनाथ यात्रा नया कीर्तिमान रचेगी।
0: केदारनाथ धाम ही नहीं, भगवान बद्री विशाल के दर पर भी इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और ये सिलसिला अभी जारी है।
3: जो एक निरंतर नए कीर्तिमान की तरफ यात्रा हमारी बढ़ रही है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस बार प्रॉपर समन्वित प्रयास रहे हैं उसी की वजह से यात्रा बढ़ी और भविष्य में भी और अच्छी तादाद में यात्री आएंगे।
0: बद्रीनाथ धाम में इन दिनों पितृपक्ष के चलते भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। तप्तकुंड से लेकर ब्रह्म कपाल मंदिर परिसर और सभा मंडप तक हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम दिख रहा है। इस यात्रा सीजन में अब तक 18,70,000 से अधिक श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 2023 में ये आंकड़ा सबसे अधिक 18,39,000 का था। 2023 का रिकॉर्ड तो अभी ही टूट चुका है, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में अभी महीने भर से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है।
4: इस बार नया रिकॉर्ड क्या बनता है वही सबसे अधिक का आंकड़ा होगा। हालांकि अभी पिछला जो सबसे हाईएस्ट बद्रीनाथ धाम में आने वाले यात्रियों की जो संख्या थी वो पूरी ध्वस्त होकर एक नए रिकॉर्ड की ओर यात्रा बढ़ चुकी है।
0: केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के अलावा चार धाम यात्रा के सीजन में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। गंगोत्री धाम में पहली बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8,41,000 को पार कर चुका है। यहाँ भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। वहीं यमुनोत्री धाम पहुँचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 7,50,000 को पार कर चुका है। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने में भी अभी महीने भर का समय बाकी है, यानी अभी इन दोनों धामों में भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा कहीं अधिक होगा। कुल मिलाकर ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इस बार की चार धाम यात्रा मील का पत्थर साबित होने जा रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच।
5: आईसीसी की T20 रैंकिंग में श्रेयस अय्यर ने लगाई लंबी छलांग, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर।
0: आईसीसी की जारी T20 रैंकिंग में श्रेयस अय्यर 18 स्थान की लंबी छलांग लगाते हुए अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 7वें नंबर पर पहुंच गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ लखनऊ में खेले गए सीरीज के पहले T20 मैच में तूफानी शतक जड़ने का उन्हें जबरदस्त फायदा मिला है। भारत के T20 कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ ही अब T20 के टॉप 10 बल्लेबाजों में भारत के 4 खिलाड़ी शामिल हो गए हैं, जिसमें ईशान किशन पहले, अभिषेक शर्मा दूसरे और तिलक वर्मा 10वें स्थान पर हैं। वहीं T20 के टॉप 10 बॉलर्स में भारत के 2 खिलाड़ी अक्षर पटेल 7वें और जसप्रीत बुमराह 10वें नंबर पर हैं, जबकि ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या 8वें नंबर पर हैं। आईसीसी की जारी वनडे रैंकिंग में भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है। टॉप 10 बल्लेबाजों में भारत के 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें कप्तान शुभमन गिल ने 841 अंकों के साथ अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली है। बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं। वहीं केएल राहुल ने भी शानदार छलांग लगाते हुए टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने 7 पायदान की छलांग लगाकर वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 10वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। वहीं टॉप 10 गेंदबाजों में भारत के कुलदीप यादव शामिल हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को खेला जाएगा। ये मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। इसको लेकर क्रिकेट फैंस में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। लखनऊ में खेले के पहले मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में भारत 1-0 की बढ़त बना चुका है।
5: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: एंटोन पार इंडिया ने वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, प्रौद्योगिकी और वास्तविक दुनिया की उद्योग चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए नेक्सस 2026 का आयोजन किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में नवी मुंबई में ये चल रहा है। इंडस्ट्री इंसाइट्स टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य उद्योग के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने शिरकत की। शोधकर्ताओं ने उत्पाद विकास, गुणवत्ता, नियामकीय अनुपालन और विनिर्माण में उन्नत विश्लेषणात्मक तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की। साथ ही फार्मास्यूटिकल सामग्रियों के विश्लेषण, ड्रग डिलीवरी, डेटा इंटीग्रिटी और सॉलिड स्टेट कैरेक्टराइजेशन जैसे विषयों पर एक्सपर्ट ने अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण नेक्सस टेक्नोलॉजी एक्सपो रहा, जिसमें रियोलॉजी, विस्कोमेट्री, पार्टिकल कैरेक्टराइजेशन और एक्सरे एनालिसिस सहित विभिन्न तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया गया।
13: दिन का इवेंट हमारा यही इंटेंशन है कि हम कस्टमर्स को इकट्ठे यहाँ पे लेके आए, कस्टमर्स के क्या चैलेंजेस आते हैं वो हमारे से शेयर करें, हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करें, अगर एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है तो हम उनको इमीडिएटली प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास लोकल ग्लोबल सब एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, अगर कोई सोल्यूशन डेवलप करना है हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम वो सोल्यूशन डेवलप करें। एंड इस तरह से ये दो दिन का इवेंट, हमारे पूरे के पूरे प्रोडक्ट लाइन्स यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखी बर्फ की मोटी चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही है भक्तों की भारी भीड़। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार, देवताल में दूर दूर तक दिखी मखमली बर्फ की मोटी चादर, सतुपंत और चंबा में भारी बर्फबारी। अक्टूबर को भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर देखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कल होने वाले वायुसेना के स्थापना दिवस की। इस खास दिन होने वाले पराक्रम के प्रदर्शन की वायुसेना के शौर्य और इतिहास से जुड़ा है एयरफोर्स डे, जो अब देशभक्ति के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनता जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर होने वाले इस खास कार्यक्रम में वायुसेना के चीफ परेड की सलामी लेंगे, तो थल सेना और नौसेना चीफ भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। यहां पर देखिए, नभ में वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों और हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन भी करेगी। दूसरी खबर, जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास की भी हम करेंगे, जहां पर भारत समेत 8 देशों की वायुसेनाएं बेहतर तालमेल के लिए हवाई युद्ध अभ्यास कर रही हैं। इस एक्सरसाइज में बड़े देशों के आधुनिक लड़ाकू विमान अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत रहे हैं। तीसरी खबर, इंडियन कोस्ट गार्ड के एक्सरसाइज की भी करेंगे। 2 दिन के इस खोजी और बचाव अभ्यास में बड़ी संख्या में विमान और जहाज शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इसमें देखिए कई और एजेंसियों के साथ तालमेल के सामंजस्य की परख भी देखी जाएगी, ताकि विपरीत परिस्थितियों में बचाव अभियानों में पहले से और तेजी लाई जा सके। आज बात करेंगे सबसे पहले भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना 94वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शानदार समारोह का आयोजन होने वाला है। इस बार वायुसेना की थीम है अचूक, अभेद, सटीक। कल एयरफोर्स डे पर वायुसेना के जाबाज अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करेंगे। स्टैटिक डिस्प्ले में वायुसेना के फाइटर जेट्स और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का दमखम भी नजर आएगा।
4: अचूक, अभेद्य, सटीक, भारतीय वायुसेना की यही पहचान। नव के पहरदारों के पराक्रम से हिंदुस्तान का सुरक्षित आसमान। वायुवीरों के शौर्य की कहानी कहता हिंदुस्तान का इतिहास। एयरफोर्स डे पर जब जमीन पर वायुसेना के जाबाज एक तरफ परेड कर रहे होंगे, तो आसमान से इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ध्वज फॉर्मेशन का फ्लाई पास्ट कर रहे होंगे। हिंदुस्तान की वायुसेना के पराक्रम की पहचान फाइटर जेट्स और मिसाइलों की ताकत इस खास मौके पर वीरता और शौर्य की तस्वीरें पेश करेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट से लेकर तेजस लड़ाकू विमानों की मौजूदगी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए पराक्रम की याद दिलाएगी। वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जब वायुवीर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, तो हिंडन एयरवेज का आसमान वायुसेना की एयरक्राफ्ट की गड़गड़ाहट से गूंजने लगेगा। हिंडन एयरबेस पर मौजूद हर शख्स वायुसेना के हैरत अंगेज करतबों का गवाह बनेगा, तो देशभक्ति का जज्बा देखने लायक होगा। हेरिटेज फ्लाइट के दौरान आसमान में पुराने विमानों के करतब वायुसेना के पुराने और नए विमानों के मेल से वायुसेना की शक्ति और इतिहास की अनोखी झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा फाइटर जेट्स और हथियार वायुसेना की ताकत के नजीर पेश करेंगे। इस डिस्प्ले में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को रखा गया है। ब्रह्मोस के साथ ही तेजस, सुखोई और प्रचंड भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए हैं। सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार सिस्टम, रडार और एक तरफा हमला करने वाले मानव रहित हवाई सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल को भी दर्शाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम, जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर्स शामिल हैं, एक अनोखा म्यूजिकल प्रदर्शन पेश करने वाली है। इस परफॉर्मेंस में स्नेयर ड्रम, रोटो ड्रम, बास ड्रम और सिंबल का इस्तेमाल होगा। साथ ही खास ड्रमिंग पैटर्न, शानदार फॉर्मेशन और कालाबाजी वाली गतिविधियां भी शामिल होंगी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिसमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर 2 और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा।
5: भारतीय वायुसेना अपने अस्तित्व के 94 साल पूरे कर चुकी है और इस मौके पर एयरफोर्स डे की भव्य परेड हिंडन में की जाएगी। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में भव्य समारोह के दौरान ड्रमर्स ड्रिल के साथ स्टैटिक डिस्प्ले होगा, जिसमें भारत के फाइटर जेट्स जो सुखोई 30 MKI, रफाल, तेजस और तमाम जैगुआर जैसे विमान भी रखे जाएंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस की ताकत भी इस एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन की खास हाईलाइट।

0: 2021 तक एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन हिंडन में ही होता था, लेकिन 2022 से इस पैटर्न में बदलाव किया गया और 2022 में चंडीगढ़, 2023 में प्रयागराज और 2024 में इसे चेन्नई में आयोजित किया गया। सरकार के इस कदम का मकसद वायुसेना दिवस के आयोजन को अलग अलग शहरों तक पहुंचाना है, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता, पराक्रम और हवाई कर्तव्य को करीब से देखने का मौका मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ अब की बार वायुसेना दिवस समारोह को दो भागों में आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना दिवस की आधिकारिक मुख्य परेड और ग्राउंड डिस्प्ले हमेशा की तरह 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में ही होगी, लेकिन जनता के लिए बड़ा और मुख्य फ्लाईपास एयर शो इस बार वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इतिहास में ये पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा।
1: मेन इवेंट द एयर फोर्स डे परेड विल बी हेल्ड एट एयर फोर्स स्टेशन हिंडन ऑन 8 अक्टूबर। द परेड लास्ट ईयर वाज हेल्ड एट हिंडन आफ्टर अ गैप ऑफ 3 इयर्स। इन द ईयर 2022 द परेड वाज हेल्ड एट चंडीगढ़, इन 2023 एट प्रयागराज एंड इन 2024 एट चेन्नई, in alignment with the government's vision of offering citizens across the nation a closer glimpse of the might and capability of their Indian Air Force.
0: 24 से 26 अक्टूबर के बीच वाराणसी में एयर शो और फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो का आयोजन होगा। शो के दौरान वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा नदी के ऊपर एयरफोर्स के विमान करतब दिखाएंगे। मेगा एयर शो में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। राफेल, तेजस और सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम आसमान में जाबाजी का प्रदर्शन करेंगी। काशी की आध्यात्मिक पहचान को दर्शाने के लिए आसमान में विशेष त्रिशूल फॉर्मेशन भी बनाया जाएगा। सुखोई, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मिलकर इस डिस्प्ले को आकार देंगे।
2: इस पूरे भव्य समारोह का दूसरा हिस्सा बनारस में होगा, एक खास फ्लाई पास्ट के रूप में, जो कि अक्टूबर के अंत में होगा। यानी पहला हिस्सा भव्य समारोह का हिंडन में होने वाला है, जिसमें भारतीय वायुसेना का शौर्य, पराक्रम और भविष्य के लिए, भविष्य की चुनौतियों और लड़ाइयों के लिए उसकी तैयारी भी दिखाई देगी।
0: खबरों के मुताबिक वाराणसी में होने वाला ये एयर शो करीब 90 मिनट का होगा और 24 से 26 अक्टूबर के बीच रोजाना 12 बजे के करीब इसे आयोजित किया जाएगा। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच गंगा के किनारे लाखों लोग इस नजारे को देख सकेंगे। 8 अक्टूबर का दिन भारतीय वायुसेना के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को हिंदुस्तान में वायुसेना का गठन रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में किया गया था। आजादी के बाद 1950 में रॉयल शब्द हटाकर भारतीय जोड़ा गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने वाले वायुसेना के वीरों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देना है। इस खास मौके पर देश के अलग अलग एयरफोर्स स्टेशनों पर शानदार एयर शो, परेड और विमानों की कर्तव्य भरी प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाती है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के लिए 8 अक्टूबर का दिन गर्व का पल लेकर आता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की ताकत, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और स्वर्णिम इतिहास के रंग नजर आते हैं। भारतीय वायुसेना दुश्मन के सामने न तो हारती है न कोई गलती करती है, हर काम सटीकता से करती है। यही इस बार की एयरफोर्स डे का थीम भी है। हर बार की तरह आत्मनिर्भरता परेड के केंद्र में होगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें भारत में बनी है। तेजस विमान, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस सब मेक इन इंडिया की मिसाल हैं। मौजूदा दौर में वायुसेना के लिए सिर्फ लड़ाकू विमान काफी नहीं है, हवा की रक्षा, सही निशाना लगाने वाले हथियार और ड्रोन भी जरूरी हैं। ये हथियार दुश्मन पर वार करते हैं और जवानों का खतरा कम रखते हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड नेस्टडे।
3: बात करते हैं वायुसेना की तरंग शक्ति की। राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास दूसरा संस्करण प्रगति पर है और इस हवाई युद्धाभ्यास में दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखा रहे हैं। 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयर बेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। खास बात देखिए इसमें यह है कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली

बार अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की भागीदारी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त हवाई अभियानों के जरिए आपसी तालमेल, अनुभव साझा करने और एक दूसरे के संचालन प्रक्रियाओं को समझना है।

0: साझेदारी में शक्ति, इस थीम को लेकर जब जोधपुर के आसमान में कई देशों के फाइटर जेट्स एक साथ गरजे तो मौका बेहद ही शानदार नजर आया। आसमान में हैरत अंगेज नजारे सबका ध्यान खींच रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत की अगुवाई में दुनिया के शक्तिशाली देशों की वायुसेना अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। वायुसेना ने इसे पावर ऑफ पार्टनरशिप का नाम दिया है। इसके तहत सभी देशों के वायुवीर एक दूसरे के साथ आसमान में पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान एक दूसरे के जहाज में आसमान में ही रिफ्यूल भी कर रहे हैं, तो शानदार फॉर्मेशन और तालमेल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर मिलजुल कर दुश्मन को जवाब दिया जा सके। जोधपुर में 26 सितंबर से तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास चल रहा है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें भारत सहित 8 देशों की सेनाएं अपने लड़ाकू विमानों व संसाधनों के साथ भाग ले रही है, जबकि 32 देश बतौर पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। तरंग शक्ति अभ्यास 2.0 को शुरू हुए 11 दिन बीत चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ एक्सरसाइज का दायरा बड़ा और जटिल होता जा रहा है। दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने और डॉग फाइट से लेकर एयरलिफ्ट और टैक्टिकल ड्रॉप्स को अंजाम दिया जा रहा है। स्ट्राइक रेंज को कई गुना बढ़ाया जा सके, इसकी भी वानगी देखने को मिल रही है।
1: भारतीय वायुसेना की मेगा ड्रिल तरंग शक्ति जोधपुर में पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक जारी है, और इसमें 40 से ज्यादा अलग अलग देशों की वायु सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका के 6 F-35 यानी उनके 5th जेनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और जर्मनी के रफाल इसमें शामिल है। इसके अलावा तमाम दूसरे देश अपने अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर्स के साथ तरंग शक्ति का हिस्सा बने हैं, और जैसे जैसे तरंग शक्ति आगे बढ़ रही है, जो 26 सितंबर से शुरू हुई थी, हर दिन कॉम्बैट कैपेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और भारतीय वायुसेना के कौशल को भी यहाँ पर देखा जा रहा है।
0: इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण अमेरिकी एयरफोर्स का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 है, जो भारत की सरजमी पर हो रहे युद्ध अभ्यास में पहली बार शामिल हुआ है। अभ्यास में जर्मनी ने अपने अत्याधुनिक A400M एटलस परिवहन विमान को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया है। यह विमान भारी सामान और सैनिकों की आवाजाही के साथ जटिल लॉजिस्टिक्स और एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। जर्मनी के पायलट्स भी भारत की सरजमी पर आकर अपनी खुशी बयां कर रहे हैं।
2: Been in India before, but also very great experience. It's fun to work with Indian Air Force, and also fun to be in India. So it's a great country. I really like being here. And flying in India, you know, it's always different than flying in Germany. But this is how we get to learn a lot of new stuff, and that's one of the main points of this exercise, I think.
0: तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल देशों के एयर क्रू और मिशन प्लानर्स एक साथ बैठकर जटिल रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक कंबाइंड एयर ऑपरेशन आर्किटेक्चर विकसित किया जा सके।
1: खास तौर पे जो तमाम वायुसेनाएं आई हैं, उनके एयर चीफ्स यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सब ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रिसिजन स्ट्राइक से लेकर जो ड्रोन्स को किस तरह से काउंटर किया गया था और भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया आतंक के ठिकानों को तबाह करने के लिए, उन सब में किस तरह से भारतीय वायुसेना आगे बढ़ी, और वो भी आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ। यानी तरंग शक्ति एक मौका है जहां पर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, साथ ही पूरी दुनिया को भारत के हथियारों, भारत की वायुसेना का दमखम भी दिखाया जा रहा है।
0: जोधपुर में चल रहे वायुसेना की युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के दौरान 8 अक्टूबर यानी कल वायुसेना दिवस के मौके पर जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर एरोबेटिक टीम का एयर शो भी होगा। सूर्य किरण टीम अपने 9 हॉक जेट से आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन और एरोबेटिक करतब दिखाएगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करते हैं तटरक्षक बल के अभ्यास की। समंदर में बड़े पैमाने पर आपातकालीन बचाव, विमान दुर्घटना या समुद्री टक्कर जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी और तालमेल को परखने के लिए ओडिशा के पारादीप तट के पास 12वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2026 का प्रदर्शन और लाइव डेमो आयोजित होने जा रहा है। हालांकि इस युद्धाभ्यास का पहला चरण आज संपन्न हो चुका है।

0: वयम रक्षामः, यानी हम रक्षा करते हैं। ये रक्षा समंदर की हो, भारतीय तटों की हो, या समंदर में जीवन के लिए जूझ रहे इंसानों की, ये जज्बा इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों का होता है। अपने इसी संकल्प को दृढ़ता प्रदान करने के लिए भारतीय तट रक्षक बल हिंदुस्तान के समंदर, तट की सुरक्षा, खोज और बचाव के साथ दूसरे एजेंसियों से तालमेल को बेहतर बनाने के लिए वक्त वक्त पर कई तरह के अभ्यास का आयोजन करता है। ओडिशा के पारादीप तट पर कोस्ट गार्ड का सारेक्स 2026 अभ्यास शुरू हो गया है, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। 2 दिन के इस सबसे बड़े अभ्यास में कोस्ट गार्ड के 15 जहाज, 2 डॉर्नियर विमान, 3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, 1 चेतक हेलीकॉप्टर, IAF के C-130J और MI-17 हेलीकॉप्टर, भारतीय नौसेना के 2 जहाज के साथ राज्य के संसाधन और तट आधारित सहायता इकाइयां शामिल हो रही हैं। इसी अभ्यास के तहत भुवनेश्वर में 24वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की बैठक भी हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय खोज और बचाव की तैयारियों को मजबूत करने, संकट की सूचना मिलने पर बेहतर मैनेजमेंट करने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए बचाव के साधनों को तेजी से जुटाने पर चर्चा हो रही है।
1: ये एक बड़ी ड्रिल है जिसमें भारतीय तट रक्षक दल अपना पूरा ताकत दिखाएगा, अपनी पूरी ताकत के साथ साथ किस तरह से वो एक्सरसाइजेस करता है और अलग अलग एजेंसीज के साथ कैसे मिलकर कोऑर्डिनेट करता है इन ऑपरेशंस के लिए, ये सब कुछ भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा।
0: सारेक्स 2026 अभ्यास में एक साथ हवाई और समुद्री संकट की स्थितियों से निपटने वाले बड़े पैमाने पर बचाव अभियान का भी अभ्यास हो रहा है। इसमें 228 लोगों को ले जा रहे एक यात्री विमान के समुद्र में उतरने और कंटेनर जहाज MV जुम्बा से टकराने जैसे हालात भी शामिल होंगे, जिसका प्रदर्शन कल यानी 8 अक्टूबर को किया जाएगा।
1: भारतीय तटरक्षक दल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जो समुद्र की सीमाओं की सुरक्षा भी करता है और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी ड्रिल भी करता है, वो भुवनेश्वर में एक बड़ी ड्रिल कर रहा है। और ये जो मैरिटाइम सिक्योरिटी ड्रिल है, इसमें कोस्ट गार्ड के तमाम असेट्स, चाहे वो शिप हो, चाहे वो वेसल्स हो, छोटी नाव हो और हेलीकॉप्टर्स हो, वो सब एक साथ मिलकर अलग अलग तरह के ड्रिल्स में हिस्सा ले रही हैं। और खास बात यह है कि चाहे समुद्र में किसी भी तरह के पायरेट्स को रोकना हो, चाहे इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग रोकनी हो, या फिर समुद्र में किसी भी तरह का जो ऑयल स्पिल्स हो उनको रोकने का काम हो, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। और कैसे अलग अलग एजेंसीज, चाहे वो भारतीय नौसेना हो या फिर अलग अलग प्रदेशों की पुलिस हो, तमाम दूसरी एजेंसियां हो, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाकर इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार समुद्र का प्रहरी बना हुआ है, अलग अलग ऑपरेशंस करता है, ये सब कुछ इस ड्रिल में दिखाया जाएगा। और भुवनेश्वर में होने वाली इस ड्रिल में एक साथ साझा असेट्स इंडियन कोस्ट गार्ड के देखे जा रहे हैं।
0: इससे पहले भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय ने रिसारेक्स 26 नाम से मुंबई तट पर क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास 24 सितंबर 2026 को आयोजित किया था। सागर कवच अभ्यास के तहत तटीय सुरक्षा का अभ्यास महाराष्ट्र और गोवा तट के साथ साथ गुजरात और दमन दीव में भी सफल संचालन किया गया, जिसमें राज्य पुलिस, नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा तंत्र की जाँच की जाती है। इस अभ्यास की खास विशेषता 30 देशों के 32 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी, ये अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी इस अभ्यास के रणनीतिक महत्व और मिलकर काम करने की क्षमता को दर्शाएगी। यही नहीं, सारेक्स 2026 अभ्यास कोस्ट गार्ड की भावना के अनुरूप तेज, तकनीक सक्षम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े खोज और बचाव के ढांचे के निर्माण के भारत के संकल्प की झलक भी दिख रही है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: क्या आपका बच्चा झूठ बोलने लगा है? क्या बच्चे को चोरी करने की आदत पड़ रही है? क्या बच्चे का आकर्षण गलत तरफ हो रहा है? क्या है बच्चे की इन समस्याओं का कारण और उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। हिमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ देखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही है भक्तों की भीड़। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार, देवताल में दूर दूर तक दिखी मखमली बर्फ की मोटी चादर, सतोपंत और चंबा में भारी बर्फबारी। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केंसो सोई को मिला नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। रांची पहुंची भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें। 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे रांची के JSCS स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: अमरावती का अंबा माता मंदिर शारदीय नवरात्रि के लिए रंग बिरंगी रोशनी से सज गया है। रात में रोशनी से नहाया मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नवरात्रि से पहले मंदिर में माता के सोने चांदी के आभूषणों को चमकाया गया। घट स्थापना से पहले सुबह 5 बजे माता का सहस्त्र धारा अभिषेक। नवरात्रि में बड़ी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं लागू। अंबा माता की ओटी भरने वाली महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम। अंबा माता के दरबार में अब आस्था और भक्ति का रंग दिखेगा। नवरात्रि तक मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। बारी में गरबा को लेकर जबरदस्त तैयारी, बच्चों को दी जा रही है गरबा करने की ट्रेनिंग। बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी सीख रही हैं गरबा, भक्ति गीतों पर गरबा डांस। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां, रामनगरी के 56 घाटों पर करीब 30 लाख दिए प्रज्वलित। रामायण थीम पर सजेगी अयोध्या, 20 सेल्फी पॉइंट्स और भव्य द्वारों की श्रृंखला बढ़ाएंगे आकर्षण। अयोध्या में देखेगा रामायण का भव्य संसार, पुष्पक विमान से फ्लूटस तक होंगे मुख्य आकर्षण। 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल 4 से 5 फीट तक बर्फ से ढका हुआ है। ताजा बर्फबारी के बाद देवताल का पवित्र सरोवर भी जम चुका है, चारों तरफ बर्फ का अद्भुत नजारा। यारों के सड़क मार्ग खोलने के बाद बाइकर्स और पर्यटकों का दल देवताल पहुंचा। देवताल के पास भारत चीन सीमा पर सेना और ITBP के जवान तैनात। बाइकर्स ने जवानों की हिम्मत और मुश्किल हालात में ड्यूटी को सलाम किया। सीमा दर्शन योजना के तहत परमिट लेकर लोग देवताल पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए 2 से 3 किलोमीटर लगी हुई है लंबी लंबी कतारें। निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी। मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई। चंबा के साथ पास में ताजा बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर में ढके। बर्फ जमने से बैरागढ़ साचपास किलाड़ मार्ग पर यातायात प्रभावित। साचपास में इस सीजन में अब तक तीसरी बार हुई बर्फबारी। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें। ताजा हिमपात के बाद साचपास की चोटियां बर्फ से जगमगा उठी। बारिश के बाद धर्मशाला का मौसम हो गया है कूल कूल, धौलाधार की चोटियां ताजा बर्फबारी से सफेद नजर आई। बदले मौसम और बर्फ से ढकी धौलाधार की चोटियों ने पर्यटकों का दिल जीत लिया। हिमाचल में 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी, कई इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी। राजस्थान में 11-12 अक्टूबर से मौसम बदलेगा, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश के आसार। अगले 5 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान, माउंट आबू और सिरोही सबसे ठंडे। भारतीय वायुसेना अटकपुर को अपना 94वां स्थापना दिवस मनाएगी, हिंडन एयरबेस पर भव्य परेड और फ्लाईपास्ट। राफेल सुखोई 30 और तेजस जैसे लड़ाकू विमान अपनी ताकत और उड़ान कौशल क्षमता दिखाएंगे। हिंडन एयरबेस की प्रदर्शनी में इस बार ब्रह्मोस मिसाइल की भी प्रदर्शनी होगी, साथ में तेजस सुखोई और प्रचंड भी नजर आएंगे। हिंडन में जवानों ने परेड और बैंड के साथ जबरदस्त अभ्यास किया। इस साल की थीम अचूक अभेद सटीक, यानी दुश्मन के सामने मजबूत हर मिशन में सटीक और देश की सुरक्षा के लिए तैयार। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की गर्जना जारी, अमेरिका फ्रांस जर्मनी समेत कई देश शामिल। वायुसेना की तरंग शक्ति की रफ्तार, आसमान में दिखा साझेदारी कदम। भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल सुखोई मिराज 2000 तेजस जगुआर और मैक 29। 4 साल में पहली बार आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट 5.25 से 5.50 किया। होम से लेकर कार होंगे महंगे, बढ़ेगी ईएमआई। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना एशियन पैरा गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में भारत का ध्वजवाहक। जापान के नागोया में 18-24 अक्टूबर तक एशियन पैरा गेम्स। पैरा बैडमिंटन स्टार प्रमोद भगत ने एशियन पैरा गेम्स में अब तक 6 पदक जीते हैं। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने एशियन पैरा गेम्स में 2 पदक जीते। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया 8 अक्टूबर को टीम इंडिया का विदाई समारोह आयोजित करेगी। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक कैंसो सुई को मिला नोबेल पुरस्कार। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले दूसरे T20 मुकाबले के लिए रांची पहुंची दोनों टीम्स। ग्रेटर नोएडा में आज से गोल्फ की शुरू हुई कपिल देव इन्विटेशन टूर चैंपियनशिप, 2 करोड़ रुपए की प्राइज मनी। धौलपुर के जंगलों में दुर्लभ एशियाटिक का कैराकल यानी सियागूस की करीब 200 की संख्या कैमरे में ट्रैप। कैराकल संरक्षण को लेकर धौलपुर में हुआ सेमिनार। प्रधानमंत्री मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे होने के मौके पर सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत, लोगों ने उतारी मां गंगा की आरती। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां गंगा को दूध से किया अभिषेक, घाटों पर साफ सफाई। प्रधानमंत्री मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे होने के मौके पर राजपुर में 1500 विद्यार्थियों ने बनाई भारत के नक्शे की मानव श्रृंखला। गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा का केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। गाजियाबाद में सेवा संकल्प अभियान का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। फिल्म रामायण से राजा दशरथ का नया पोस्टर हुआ रिलीज, दशरथ के किरदार में नजर आएंगे अरुण गोविल। जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की फिल्म काली खेती की बदल दी रिलीज डेट, 20 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म धूड़ का ट्रेलर हुआ रिलीज, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ये कहानी। दूसरी बात, पेरेंट्स बनेंगे कियारा और सिद्धार्थ। राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, तत्काल 1.25 करोड़ का ड्राफ्ट जमा कराएं। करण जौहर और अभिषेक बर्मन ने अपनी नई फिल्म गदाधारी भीम का ऐलान किया। कॉफी विद करण के नए सीजन में आलिया भट्ट और उनकी बहन शाहीन भट्ट नजर आएंगी। आर माधवन दुबई में नए बिजनेस रियलिटी शो द गेम चेंजर्स की करेंगी मेजबानी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्टिंग लाइव और मंदाड़ी समेत 8 नई फिल्में और वेब सीरीज। जानवी कपूर ने शिखर पहाड़िया से प्यार का इजहार किया। चीन के शियानयू माउंटेन पर पहाड़ बादलों से ढक गए। जंगल पगडंडिया और पहाड़ी रास्ते धुंध के बीच बहुत खूबसूरत नजर आए। बादलों से गिरे पहाड़ों का नजारा अद्भुत। शियारियू माउंटेन पर तांगकाल का एक प्राचीन रास्ता आज भी मौजूद। दर्शनीय क्षेत्र का दशान गांव अक्सर कोहरे और बादलों से ढका रहता है। चीन में लोहे की चिंगारियों का शो, नदी पर ट्रामों की परी डांस और फायर शो। नेशनल डे की छुट्टियों में ताइपिंग शहर में नावों का कलाकारों ने पारंपरिक और आधुनिक डांस पेश किया। पर्यटकों के लिए कॉस्ट्यूम परफॉर्मेंस और फ्लैश मॉब जैसे खास कार्यक्रम। ताइपिंग में 20 से ज्यादा दुकानों ने स्थानीय स्नैक्स, कृषि और उत्पादन पेश किए। दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात में आगवा चिंगारियों के शो ने ताइपिंग को बनाया खास। चीन के चोंगकिंग के आसमान में हजारों ड्रोन, हॉटपॉट नूडल्स और मिर्च की तस्वीरें। ड्रोन ने 900 वाला मशहूर चोंगकिंग हॉटपॉट तैयार किया। रोड शो में चोंगकिंग नूडल्स और स्पाइसी डिश की तस्वीरें अद्भुत। हजारों ड्रोन ने आसमान में यह संदेश भी लिखा, इसके साथ दिस इज चोंगकिंग। ड्रोन से चली पेपर और फिंगर हार्ट का शेप भी बनाया गया। 130 मीटर ऊंची शंघाई टेलीकॉम बिल्डिंग पर गेम खेले गए और छठी मंजिल से लोग बड़ी स्क्रीन पर खेलते हुए नजर आए। शंघाई इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल में खास इंतजाम। गेमिंग सेशन करीब 2 मिनट का रखा गया था, लोग अकेले लेवल पार करने में जुटे हुए थे। इस खास गेमिंग अनुभव के लिए पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी। हांगकांग प्लाजा नॉर्थ टावर की छठी मंजिल से गेम खेले गए। चीन के शानक्सकी प्रांत में एक चिड़ियाघर में विशाल पांडा घास पर लेटता हुआ और धूप सेकता हुआ नजर आया। पांडा ने पूल के किनारे बैठकर भी सुकून भरे पल बिताए, भारी उत्साह। पांडा पूल पर भी मस्ती करते हुए नजर आया और फिर अपने बाड़े में कूद गया। पांडा की प्यारी हरकतों ने चिड़ियाघर में आया लोगों का ध्यान खींचा। पांडा ने खुले में बैठकर जमकर धूप भी सेकी और आराम फरमाया। इंडोनेशिया में लगी जंगल में आग से सिंगापुर प्रदूषण बढ़ गया है। बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स में 175 दर्ज। सिंगापुर में इस वीकेंड होने वाली फॉर्मूला 1 रेस पर धुंध का असर रह सकता है। इंडोनेशिया में एक दशक से ज्यादा समय से सबसे ज्यादा जंगल की आग लगी हुई है। F1 देखने के लिए पहुंची एक महिला ने कहा कि धुंध का उनका रोमांच खराब नहीं होगा। बुधवार शाम सिंगापुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 175। पेरिस में लुई विटों ने स्प्रिंग समर 2027 कलेक्शन पेश किया। लुई के मॉडल्स ब्रांडेड कारों के बीच हाईवे जैसे सेट पर रैंप वॉक करते हुए नजर आए। हल्के कपड़ों की इंजीनियरिंग बनी चुनौती। लियोनेल मेसी ने जीत के साथ इंटरनेशनल फुटबॉल से विदाई ले ली। बैनन के खिलाफ अपने आखिरी मैच में जीत दर्ज की। 17 अगस्त 2005 को अर्जेंटीना के लिए खेला था पहला मैच।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में मौजूद एक पान की दुकान इन दोनों चर्चा में बनी हुई है। ये कोई आम पान की दुकान नहीं है, बल्कि करीब सालों साल पुरानी पांडे पान दुकान है। इस दुकान की खासियत है कि यहाँ मिलने वाले करीब 150 तरह के पान, इस दुकान के पान को डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बराक ओबामा तक चख चुके हैं। जी हाँ, तो आखिर क्या है इस पान की दुकान का राज, चलिए आपको बताते हैं।
2: अकबर इलाहाबादी का मशहूर शेर है कि लगावट की अदा से उनका कहना पान हाजिर है, कयामत है सितम है, दिल फिदा है जान हाजिर है। समझ लीजिए इस दुकान की बरकत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ के पान केवल महकते नहीं हैं, मुंह में घुलते भी हैं और हमेशा के लिए जहन में उतरते भी हैं।
3: दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में है हम, और मेरे पीछे आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई पड़ रहा है। आज आपको एक ऐसी पान की दुकान में लेकर जाऊंगा जो इस राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब है। खास बात क्या है कि आज़ादी के बाद से लगातार इस पान की दुकान से राष्ट्रपति भवन में पान जाते रहे हैं, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि देश के हर राष्ट्रपति ने इस दुकान का पान खाया है।
2: इस दुकान में केवल पान का हर पत्ता ही खास नहीं है, बल्कि इस दुकान का पता भी खास है। यहाँ दीवारों पर देश के कई राष्ट्रपतियों की तस्वीरें हैं, और दावा तो यहाँ तक है कि बराक ओबामा और ट्रंप जैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भी यहाँ का पान चखा है।
3: देवी प्रसाद पांडे जी मेरे साथ में हैं, इस दुकान की तीसरी पीढ़ी है ये। बाबूजी, जब से शुरू हुआ था तब से आज तक बदलाव क्या आया, पहले ये बताइए मुझे।
4: बदलाव ये आया कि तम्बाकू खाने वालों की बहुत कमी हो गई। अब जो यंग जनरेशन है वो मीठा और सादा पान पे ही ध्यान देते हैं, तो तम्बाकू ना के बराबर रह गए। जो पुराने लोग हैं वही खाते हैं, बाकी हम नए जो बच्चे हैं मुलाल ना हो ये ना हो, इसके हमने खास ध्यान रखा है। मीठा पान अब हमारा 20 खाले मुलाल नहीं होगा।
2: इस दुकान की कहानी आज की नहीं है। साल 1943 में शिवनारायण पांडे ने महज 8 पैसे से इस कारोबार की शुरुआत की थी, और आज यही दुकान दिल्ली के सबसे चर्चित पान ठिकानों में शामिल है। साल 1948 से राष्ट्रपति भवन को यहां से पान की सप्लाई शुरू हुई, जो बदस्तूर जारी है। पांडे पान की पहुंच सिर्फ हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन तक नहीं रही। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आए थे तो उन्हें भी पांडे पान का खास पान खिलाया गया था। पांडे पान के पते पर पान की किस्मों की कोई कमी नहीं है। आपको यहाँ एक से बढ़कर एक फ्लेवर मिल जाएंगे, लेकिन जिस पान का किस्सा और स्वाद आपके मुंह में घुल जाएगा वो है माधुरी दीक्षित के नाम का स्पेशल पान।
4: माधुरी जी के नाम से पान है वो तो एक डिफरेंट केस ही हो गया।
3: क्या क्या किस्सा है वो?
4: कि हुसैन साहब उनको खिलाते थे,
3: हुसैन साहब,
4: और बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे इनके नाम से पान लॉन्च करो, जो फार्मूला इन्हें पसंद है। तो हमने कहा ठीक है, फिर पेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पेंटिंग दी, और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये पेंटिंग यहाँ लगाओ और माधुरी के नाम से। तो माधुरी का मेनू में नाम लिख दिया, मेनू में माधुरी का नाम लिखा लेकिन स्टिकर नहीं लगाया उस पर।
3: क्यों नहीं लगाया?
4: नहीं लगा, नाम का स्टिकर नहीं लगा। हमने और बटर स्कॉच वगैरह चॉकलेट वगैरह इनके स्टिकर लगाए, किसी का नाम का स्टिकर नहीं।
3: और आप देखिए कि ये उस पेंटिंग की बात कर रहे हैं जो आप हनुमान जी देख रहे हैं, वो पेंटिंग एम एफ हुसैन जी ने खुद इन्हें गिफ्ट की थी। उसके नीचे आप हुसैन साहब का फोटो भी देख पा रहे हैं।
4: खास बात यह है कि जो पहाड़ उठाए हनुमान जी उस पे पान का पत्ता है।
3: ये हमने भी नोटिस किया
4: कि सजीवन बूटी पान का पत्ता ही था।
2: कहते हैं हिंदुस्तानी शहरों के तमाम किस्से पान की दुकानों के हवाले होते हैं, लेकिन दिल्ली के दिल में बसा पान का ये वो ठिकाना है जिसका ठिकाना न जाने कितनों के किस्सों के हिस्सों में शामिल है।
3: बड़ी बात ये है कि कभी भी आपको यहाँ पर कोई ऐसी चीज, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी दिखाई नहीं पड़ेगी कि कोई बड़ा एक्टर आया तो फोटो खिंचाई और टांग दी, या सोशल मीडिया पे डाल दिया, कोई बड़ा क्रिकेटर आया तो फोटो खिंचाई डाल दी, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अपने पान को अहमियत देते हैं और कहते हैं जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक आप पहुंच गए हैं तो उसके बाद किसी और तक क्या पहुंचना है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
5: क्या आपका बच्चा झूठ बोलने लगा है? क्या बच्चे को चोरी करने की आदत पड़ रही है? क्या बच्चे का आकर्षण गलत तरफ हो रहा है? क्या है बच्चे की इन समस्याओं का कारण और उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है
12: एवरेस्ट दिखा ला सही दिखा सही लाल।
1: शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ देखिए बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही है भक्तों की भारी भीड़। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार, देवताल में दूर दूर तक दिख रही है मखमली बर्फ की मोटी चादर, सतुपंथ और चंबा में भारी बर्फबारी। आठ अक्टूबर को भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केंसो सुई को मिला नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। रांची पहुंची भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें, 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के अंदर बुरी आदतों के बारे में। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के अंदर बुरी आदतें अपने आप आ जाती हैं, झूठ बोलना, चोरी करना। तो ये आदतें क्यों आ जाती हैं और इनको दूर करने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।

0: काल या शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप सप्ताह में एक दिन बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो हर तरह की ग्रह की बाधा से सुरक्षित बने रहेंगे।
1: और चलिए अब जान लेते हैं 8 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 8 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:15 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:20 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बच्चों के अंदर बुरी आदतों के बारे में। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि किसी बच्चे की आदतों से किन ग्रह का संबंध होता है।
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बच्चे की बुरी आदतों के बारे में। आपके बच्चे को बुरी आदतें किन ग्रहों की वजह से पड़ती हैं और उन आदतों को दूर करने के उपाय क्या हैं? देखिए, किसी बच्चे की आदत से कुछ विशेष ग्रहों का संबंध होता है। जैसे बच्चे के ऊपर सामान्यतः 8 तक चंद्रमा का प्रभाव होता है और कभी कभी चंद्रमा का प्रभाव 12 तक भी रहता है। 12 के बाद किशोरावस्था में बच्चे के ऊपर बुध का प्रभाव आना आरंभ होता है। तो कुल मिलाकर शुरुआत में चंद्रमा का और बाद में बुध का प्रभाव बच्चे पर होता है और चंद्र तथा बुध बच्चे की आदतों पर असर डालते हैं। अगर किसी बच्चे को बचपन में राहु केतु की या शुक्र की दशा मिल जाती है तो ये भी बच्चे की आदतों पर गहरा असर डालती है। तो किसी भी बच्चे की आदत के लिए चंद्रमा और बुध को देखना होगा, साथ ही साथ ये देखना होगा कि बचपन में बच्चे की महादशा क्या है, बच्चे की अंतरदशा क्या है और उसका कैसा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव ना पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपका बच्चा झूठ बोलता हो तो इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव होता है और इन्हें दूर करने के उपाय क्या हैं?
0: बच्चे के अंदर बहुत सारी आदतें बचपन से आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपका बच्चा झूठ बोलने लगा हो, उसके अंदर झूठ बोलने की आदत आ गई हो, तो किन ग्रहों की भूमिका होती है? देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव है, जो सेकंड हाउस है, इसके दूषित होने पर बच्चा झूठ बोलने लगता है। दूसरा भाव बोलने का या वाणी का होता है, इसके खराब होने पर बच्चा झूठ बोलता है। इस भाव से अगर शनि या राहु का संबंध हो जाए तो बच्चे को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। और बुध अगर बच्चे का गड़बड़ हो तो बच्चा झूठ बोल करके दूसरों को बेवकूफ बनाता है, दूसरों से अपना काम निकालता है। अगर आपके बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत आ रही हो तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे को प्रातः तुलसी दल ग्रहण करवाइए, ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के बच्चे को खिलाइए। बच्चे को सुबह शाम कम से कम 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाइए और बच्चे को गले में चांदी का स्वस्तिक धारण करवाइए। बच्चे को तीखी चीजें मत खिलाइए, तीखे और मसालेदार भोजन से बच्चे को बचाइएगा। अगर इन बातों का ध्यान रखें तो आपके बच्चे की झूठ बोलने की आदत समाप्त हो जाए।

0: होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, जीवन साथी को लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, यात्राओं से बचाव करें, स्वास्थ्य के लिए वहम ना पालें, खान पान का ध्यान रखें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और गुडलक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न ज्योत्सना जी ने हमें लिखा है और ज्योत्सना जी पुणे महाराष्ट्र से हमें मेल लिखती हैं। 5 सितंबर 1980 का जन्म है, रात में 11:10 जन्म स्थान है पुणे महाराष्ट्र। ज्योत्सना कह रही हैं कि मैं काफी समय से विदेश जाने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन बार बार उसमें अड़चन आ जाती है, तो मैं विदेश कब जा पाऊंगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। ज्योत्सना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, आप इस साल के अंत में और अगले साल के आरंभ में विदेश जा सकेंगी, लेकिन विदेश में सेटलमेंट की संभावना कुंडली में नहीं बनती है और करियर आपका आने वाले समय में कुल मिला जुलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमें सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया हमारे दूसरे प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा प्रश्न वो किसका लेंगे।
0: जी, अगला प्रश्न हमें जयवर्धन जी ने लिखा है और जयवर्धन जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की

तारीख है 13 जनवरी 1990। जन्म का समय दोपहर के 3:45। जन्म स्थान है इटावा, उत्तर प्रदेश। जयवर्धन जी कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं, लेकिन पिछले कुछ समय से मेरा काम बेहतर नहीं चल रहा है और मेरे ऊपर कर्ज भी हो गया है, तो मेरा काम कब तक बेहतर होगा और कर्ज से मुक्ति मुझे कब तक मिलेगी? जयवर्धन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 के शुरुआती समय में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। 2027 के मिड में, मध्य में आपका स्थान परिवर्तन होगा, ये संभावना बन रही है। नई जगह पर जा करके आप काम शुरू करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। कर्ज से छुटकारा मिलने में और जीवन को बेहतर करने में अभी भी लगभग 1 वर्ष लग जाएंगे। आपका करियर बेहतर हो, आपको जीवन में सफलता मिले, इसके लिए एक मोती बनवा करके पहनिए। आ

0: निवारण करने से लाभ होगा।
1: अगर आपका बच्चा चोरी करता हो, लगातार आप उसे मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसकी ये आदत बरकरार है, तो इसके पीछे कौन से ग्रह हैं जो जिम्मेदार हैं और इनके दूर होने के उपाय क्या हैं, आइए जानते हैं।
0: अगर आपके बच्चे के अंदर चोरी की आदत आ गई हो, पैसा चुराने लगा हो, थोड़ा ही सही लेकिन पैसा चोरी करता हो, तो कारण क्या है? अगर राहु का ज्यादा प्रभाव बचपन में बच्चे के ऊपर आ गया, राहु का ज्यादा प्रभाव पड़ गया, तो ये बच्चे के अंदर चोरी की आदत पैदा कर देता है। लग्नेश अगर गड़बड़ हो जाए या चंद्रमा अगर दूषित हो जाए, तो ये भी बच्चे से चोरी करवाता है। कुंडली में पृथ्वी तत्व गड़बड़ हो, वृषभ, कन्या या मकर राशि में स्थितियां ठीक ना हो, तो भी बच्चे के अंदर चोरी की आदत पैदा होती है। लेकिन ज्यादातर जो ग्रह चोरी करवाता है वो ग्रह होता है राहु। क्या उपाय करें अगर बच्चे के अंदर चोरी की आदत आ गई है? बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइए। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये जो फास्ट फूड हैं, इसको खाने से बच्चे को बचाइए। बच्चे को गाढ़े रंग के कपड़े, काले, नीले, भूरे, इस रंग के कपड़े कम से कम पहनाइए। अपने बच्चे को एक आदत डलवाइए कि आपका बच्चा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए या स्कूल जाने के पहले सूर्य देव को नमस्कार करके तब स्कूल जाए। और चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में बांध करके बच्चे के गले में पहनाइए। और बच्चे को सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर, मंदिर में, आश्रम में, शिवालय में ले जाकर बच्चे से प्रार्थना करवाइए। अगर आप ये उपाय करेंगे तो बच्चे के ऊपर से राहु का प्रभाव कम होगा, बच्चे के अंदर चोरी करने की, बेईमानी करने की आदत नहीं आएगी।
1: और चलिए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए जानते हैं कि अगर बच्चा गलत आकर्षण में पड़ गया हो, गलत संगत हो गई हो उसकी, तो इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं और इनको दूर करने के उपाय क्या क्या है, आइए जान लेते हैं।
0: बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा गलत आकर्षण में पड़ जाता है, प्रेम का आकर्षण का चक्कर कम उम्र में शुरू हो जाता है। कब होता है ऐसा? चंद्रमा अगर कुंडली में खराब है तो कम उम्र से ही गलत आकर्षण की संभावना बन जाती है। कम उम्र से बच्चा गलत चीजों की तरफ या प्रेम आदि की तरफ आकर्षित हो जाता है। शुक्र अगर दूषित हो कुंडली में, शुक्र पर नकारात्मक प्रभाव हो, तो भी बच्चा गलत आकर्षण में पड़ जाता है। जिन बच्चों की कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, ऐसे बच्चे भी गलत आकर्षण में पड़ जाते हैं या कम उम्र से गलत रास्ते पर गलत संगति में भटक जाते हैं। क्या करें अगर आपका बच्चा गलत आकर्षण में पड़ रहा हो या गलत आकर्षण में फंस रहा हो, तो क्या करेंगे? बच्चे को सुगंध और आभूषणों के प्रयोग से बचाइए। छोटी उम्र में कॉस्मेटिक्स और सुगंध का प्रयोग मत करवाइए। बच्चे को शौक में या फैशन में हीरा बिल्कुल धारण मत करवाइएगा। बच्चे को सुबह और शाम दोनों समय या तो हनुमान चालीसा के पाठ का प्रयास करवाइएगा या हनुमान चालीसा पढ़ करके बच्चे को सुनाइएगा। और जब भी आपका बच्चा नहाए, बच्चे के स्नान के जल में जरा सी हल्दी मिलाइएगा। बच्चे के हाथ से शुक्रवार को सफेद फूल भगवान को अर्पित करवाइएगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपका बच्चा गलत आकर्षण में, गलत संगति में नहीं पड़ेगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का। तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, क्या कहता है उनका राशिफल।
0: मकर राशि, व्यर्थ का तनाव मत पालें, जल्दबाजी में काम करने से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, नया काम कर सकते हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की प्रशंसा होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का तीसरा प्रश्न उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न दीपाली ने हमें लिखा है और दीपाली हमें मेल लिखती हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 23 दिसंबर सन 2000, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है इंदौर। दीपाली कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। दीपाली, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, बैंकिंग, मैनेजमेंट या फाइनेंस की नौकरी की तैयारी करें तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और साल 2027 इस मामले में आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो गया इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी,

0: जी ने कोलकाता से हमें लिखा है, जयदीप जी की जन्म की तारीख है 28 अक्टूबर 1975, जन्म का समय रात में 9:10, जन्म स्थान है कोलकाता पश्चिम बंगाल। जयदीप जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं काफी समय से और अब मैं व्यापार करना चाहता हूं, क्या व्यापार में मेरा जाना बेहतर रहेगा? जयदीप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी हम आपको कोई व्यापार करने की सलाह नहीं देंगे, 2 साल इंतजार करिए, 2029 के मार्च के बाद अगर स्थितियां अनुकूल रहती हैं तो उस समय आपको व्यापार की सलाह दी जा सकती है। अभी आप नौकरी करें, जीवन आपका अच्छा चल रहा है, बेवजह उसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना आपके लिए बेहतर होगा।
1: पंडित जी, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बच्चों के अंदर बुरी आदतों के बारे में, तो बचपन से ही उनके अंदर ये आदतें ना आए, कोई दोष ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: जी देखिए, आपके बच्चे की राशि कोई भी हो, आपके बच्चे का लग्न कोई भी हो, याद रखिए कि अगर आप बचपन से 2 काम करने की आदत अपने बच्चे को डलवाते हैं या डलवाएंगे तो आपके बच्चे के बिगड़ने की, भटकने की, गलत रास्ते पर चलने की आदत नहीं आएगी। पहला, अपने बच्चे को बचपन से सूर्य देव को जल चढ़ाने की आदत डलवाइए। जब ज्यादा छोटा हो तो स्कूल जाने के पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करके जाए और थोड़ा बड़ा हो जाए तो सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तब वो विद्यालय जाए या दिन की शुरुआत करे। और दूसरा, बचपन से ही बच्चे की अच्छी शिक्षा और अच्छी एकाग्रता के लिए शुरुआत में 3 बार और बाद में 9-9 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र आपका बच्चा बोले, ऐसा अभ्यास करवाइएगा। तो सूर्य देव की उपासना और गायत्री मंत्र का उच्चारण अगर कोई बच्चा या बच्ची बचपन से करे तो उसके बिगड़ने, भटकने की संभावना नहीं रहेगी।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 8 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, करियर की स्थिति मध्यम रहेगी, धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। इस साल विवाह होने की और संतान प्राप्ति की संभावनाएं कमजोर हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो जानेंगे पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर बुध की खराब दशा चले तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे स्नान करिए, सुगंध लगाइए, नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, मांस मदिरा प्याज लहसुन का प्रयोग बंद कर दीजिए।
1: और आइए अब आपको बता देते हैं कि 8 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 8 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और यश बढ़ेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 8 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब जान लेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में। तो जानते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।

0: कैसी रहती है? आज की गुड लक राशि है सिंह। इनकी शिक्षा में बार बार रुकावट जरूर आती है, शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षा में सफलता के लिए इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर कोई महिला है, उसका बार बार मिसकैरेज होता है, बार बार गर्भपात हो जाता है, तो क्या करेंगे? गर्भ धारण करने के साथ भगवान कृष्ण की उपासना आरंभ कर दें। काले कपड़े पहनने से और सुगंध से परहेज करें। रोज सवेरे एक बार इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करें, गर्भपात की समस्या से सुरक्षित रहेंगे।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, ऐसे में देश भर में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। एक तरफ मूर्तिकार जहां देवी दुर्गा की मूर्तियों की फिनिशिंग में लगे हैं, वहीं पर कारीगर पूजा पंडालों को फाइनल टच देने में जुटे हुए हैं। दुर्गा पूजा से जुड़ी इन तैयारियों में पर्यावरण का खास ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए ज्यादातर मूर्तिकार और पूजा समितियां इको फ्रेंडली मूर्तियां और पंडाल बनाने पर इस साल जोर दे रहे हैं।

0: सज रही है देवी दुर्गा की मूर्तियाँ और सज रहे हैं पूजा पंडाल, क्योंकि 3 दिन बाद आने वाली है देवी दुर्गा, जिनके स्वागत के लिए ये भव्य तैयारी शहर शहर की जा रही है। खासकर बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर एक अलग ही रौनक अभी से देखने को मिल रही है। यहाँ पूजा पंडाल करीब करीब बनकर तैयार है और अब कारीगर उन्हें फाइनल टच देने में जुटे हैं। पुरुलिया का ये पूजा पंडाल भी लगभग बनकर तैयार है। इस दुर्गा पूजा पंडाल को पाषाणों प्राण यानी पत्थरों में प्राण थीम पर तैयार किया गया है। इस थीम के तहत पूरे पंडाल को मानो किसी पहाड़ को तराश कर बनाया गया हो। पहाड़ पर मंदिर बनाया गया है। मंदिर के चारों तरफ देवी देवताओं की विभिन्न आकृतियां उकेरी गई है, जिन्हें देखने पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे देवी देवताओं की इन आकृतियों को पत्थर पर नक्काशी करके बनाया गया हो।
1: दुर्गा पूजा का और कुछ ही दिन बाकी है और हम पहुंच गए हैं पुरुलिया के बिग बजट थीम बेसिस पूजा, पुरुलिया के भामुरिया दुर्गा पूजा पंडाल में। हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा।
0: दुर्गा पूजा समिति के लोगों का दावा है कि भामुरिया की इस दुर्गा पूजा को देखने के लिए हर साल पुरुलिया के अलावा राज्य के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। साथ ही पड़ोसी राज्यों जैसे झारखंड और बिहार से भी काफी संख्या में लोग आते हैं। इस साल भी लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद पूजा कमेटी को है।
1: इस साल जो थीम बना हुआ है वो थीम के बारे में बताइए।
2: थीम है हम लोग को जो बांग्ला में बोलता है पाषाण प्राण, अर्थात जिसको समझता है मनुष्य को जो पाथर का पाषाण का उसका में जो जान है इस शिल्पी का क्रेडिट है। इस शिल्पी का जो बना हुआ है इसमें मनुष्य समझ जाएगा ये पाषाण में प्राण है।
1: कितना साल हो गया पूजा?
2: 17 साल।
1: 17 साल हो गया।
2: हाँ,
1: इस साल भी वैसे ही भीड़ होगा।
2: हाँ हाँ।
0: शक्ति उपासना के इस पर्व के लिए पूजा पंडाल तो बन ही रहे हैं, देवी माँ की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ भी बनकर तैयार हो रही है। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, मूर्तिकार देवी दुर्गा के 900 रूपों को सजाने और संवारने में जुटे हैं। ये तस्वीर प्रयागराज की है, जहां मूर्तिकारों ने गंगा की मिट्टी से मां की ये मनोहारी मूर्तियां बनाई है। ये मूर्तियां 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की है।
3: पूरे देश में नवरात्र की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त भरद्वाज पार्क में हैं, जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो बनाने का काम है वो चल रहा है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इसमें गंगा जी की मिट्टी का प्रयोग किया गया है, लकड़ी है और पैरे का प्रयोग करके इन दुर्गा प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। इन मूर्तियों में कलर भरे जा रहे हैं और वो भी कलर पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं।
4: दीवान तो बहुत है लेकिन हम लोग पूरा कर नहीं पाते हैं। अभी इस टाइम कारीगर का मौसम चेंज हो गया है, मौसम चेंज में हमारा कारीगर सब पूरा बीमार पड़ा है, तो भी काम लगे है जो छोड़ा नहीं है। अब आखिरी तक उसको देना ही है, हम भी उसको साथ में है।
5: यहाँ की मूर्तियाँ सभी को फ्रेंडली है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, गंगा जी की मिट्टी से बनती हैं। तो हम लोग अभी से यहाँ लेने आ रहे हैं क्योंकि बहुत तेज बिक जाती है।
0: वहीं यूपी के झांसी की ये 4 बहनें अपने परिवार की करीब 15 साल पुरानी मूर्ति निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। साधना, किरण, ज्योति और दीपिका अपने भाई रोहित के साथ मिलकर माँ दुर्गा समेत अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाओं को आकार दे रही है। इस बार इस परिवार ने करीब 150 मूर्तियां तैयार की है जो बंगाली पैटर्न पर आधारित है।
6: मिट्टी, घास, पानी और दिन कलर पेंट वगैरह सिंगार विंगार ये सारी चीज
7: कलर और मिट्टी का यूज किया गया है।
6: काली मिट्टी का और लाल मिट्टी का यूज किया गया है। इसमें पेंट जो है वो कच्चा यूज करते हैं, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे।
7: सामग्री कहाँ से आती है?
6: ये हमारा सारा सामान कलकत्ता से मंगाते हैं, ऑर्डर पे बनवाते हैं।
8: इस बार 150 के समथिंग मूर्तियाँ बनाई हैं हम लोगों ने। 4 काली जी हैं, 1 मौट की है, 1 जी मुन्ना लाल धर्मशाला की है और 1 ग्वालियर की भी है, 1 बगरामंडी की भी है।
0: उधर राजस्थान के भी अलग अलग शहरों से देवी माँ की मूर्तियों की सजावट का काम जोर शोर से चल रहा है। डिमांड को देखते हुए ज्यादातर मूर्तिकारों ने इको फ्रेंडली मूर्तियां ही बनाई है जो जल्द ही पूजा पंडालों की शोभा बढ़ाती नजर आएंगी। पुरुलिया से सत्यजीत बनर्जी, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: दुर्गा पूजा के साथ साथ देश में विजयादशमी यानी दशहरा मनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर रामलीला के मंचन की तैयारियां और रावण दहन के लिए पुतले बनाने का काम भी इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। इस साल भी राजस्थान के कोटा में विशालकाय रावण का पुतला बनाया जा रहा है जो अभी से चर्चा में है।

0: रावण के पुतले के लिए बांस और लोहे की छड़ों का ये विशालकाय ढांचा पूरी तरह से बना भी नहीं है और ये अभी से सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में आने के पीछे की वजह है इसका साइज। राजस्थान के कोटा में तैयार किया जा रहा ये पुतला 105 फीट से ज्यादा ऊंचा है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले करीब 70-70 फीट ऊंचे बनाए जा रहे हैं। इन विशाल पुतलों को तैयार करने के लिए खास तौर पर दिल्ली NCR से कारीगर बुलाए गए हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत से पुतलों को बनाने में जुटे हैं।
1: ये रावण 105 फुट प्लस हो जाएगा, कुंभकर्ण 70 फुट, मेघनाथ 70 फुट।
2: कितने कारीगर लग रहे हैं इसको काम करने?
1: 20 कारीगर एक महीने से रात और दिन लगे हुए हैं। सारे के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। रावण जब बन जाता है, हमें भी शौक है रावण बनाने का, कमाई तो एक अलग चीज है।
0: इन पुतलों को बनाने में लगे कारीगर ने बताया कि इनके निर्माण में करीब 5 टन लोहे और लगभग 500 बांस की खपच्चियों का इस्तेमाल किया गया है। इनके बाहरी हिस्से के लिए करीब 1500 मीटर वेलवेट कपड़ा लगाया जा रहा है, वहीं 300 किलो सुतली और करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, पुतलों को मौसम से बचाने के लिए वाटरप्रूफ इंपोर्टेड कागज लगाया जा रहा है और कागज को चिपकाने के लिए मैदा से तैयार की गई 1 से 2 क्विंटल लेई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा रावण के भीतर विशेष प्रकार की आतिशबाजी भी सेट की जा रही है, ताकि विजयदशमी के दिन दहन के दौरान अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले।
1: इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, रद्दी है तो 250 किलो के आसपास लग जाएगी। नहीं बनाते हम 150 से 200 किलो लग जाती है। सुतली है जिससे बांधते हैं इसको, 300 किलो के आसपास लगेगा।
0: कोटा में दशहरा पर रावण का ये पुतला 360 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमाता नजर आएगा, हाथ में तलवार लेकर चलाएगा, मूछें हिलाएगा और आंखें भी झपकाएगा। कारीगरों का कहना है कि 10 से 11 तारीख तक रावण का पुतला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।
1: विशेषतर रावण में, कोटा के रावण में खुद ही विशेष है, सारी चीजें इसमें होती है। जिसे गर्दन घुमाता है, पलके चलाता है, तलवार भी चलाएगा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो। आने वाले टाइम में हमारा काम जो है इस टाइम 90% हो चुका है, 10% रह रहा है, उसमें देखेंगे क्या हम नया दिखा सकते हैं कोटे को। 10% मात्र काम रहना है, इसको देख रहे हैं, फिनिशिंग होना पड़ा, फिनिशिंग करनी है।
0: दशहरा के साथ ही रामलीला मंचन की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में यूपी के प्रयागराज में श्री महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी ने एक दिन पहले मुकुट पूजन समारोह किया। ये कार्यक्रम शाहगंज के राम मंदिर में विधि विधान से संपन्न हुआ। परंपराओं के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मुकुट की पूजा 11 ब्राह्मणों और वेद पाठियों ने मंत्रोच्चार से की। इस दौरान मंदिर श्रद्धालुओं से भर गया और जयकारे गूंजते रहे। बताया जाता है कि ये मुकुट 100 साल से भी अधिक पुराने हैं और इन्हें लाहौर के कुशल कारीगरों ने तैयार किया था। कमेटी की ओर से इन बहुमूल्य मुकुटों को बेहद सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और रामलीला शुरू होने से पहले इनकी साफ सफाई कर पूजा की जाती है। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन श्री राम समेत अन्य स्वरूपों को ये मुकुट पहनाए जाते हैं। इसी के साथ पजावा रामलीला के दशहरा उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाती है।
3: जो हमारी कमेटी का इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और प्रयागराज के दशहरा में बहुत ही अभूतपूर्व अतुल्य सहयोग भी रहा है हमारे श्री महान बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी का। और ये मुकुट आपके सामने जो समक्ष प्रस्तुत हुआ है, सोने एवं चांदी से निर्मित है। ये लाहौर के कारीगरों द्वारा निर्मित है, जो कि लाहौर अब इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। जब ये निर्मित हुआ था तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए ये अपने में ही बहुत पौराणिक और अतुल्य है।
0: कहा यह भी जा रहा है कि पजावा रामलीला इस बार आधुनिक तकनीक और भव्य मंचन से खास रहेगी और कई नए प्रसंग भी जोड़े गए हैं। कोटा से चेतन गुर्जर और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बात करेंगे दिल्ली में एक ऐसे एक्सपो की जिसका मकसद सड़क पर सुरक्षित और आसान यात्रा के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्मार्ट बनाना है। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक इंफ्रा टेक एक्सपो में ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़ी एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी को दुनिया का सामने रखा जा रहा है और साल के एक्सपो में 55 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आयोजन में 9 देशों की भागीदारी है।

0: देश के चाहे छोटे या बड़े शहर हो, वहाँ ट्रैफिक जाम एक गंभीर और आम समस्या हो चुकी है। ट्रैफिक के पीक आवर में महज एक दो किलोमीटर की दूरी तय करने में आधे से एक घंटा लग जाना आम सी बात है। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सरकार और सरकारी एजेंसियों की तरफ से आधुनिक तकनीक आधारित कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जो अभी भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में निजी कंपनियां भी शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर नई नई तकनीक विकसित करने पर जोर दे रही हैं। इसके जरिए सड़कों को जाम मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ये एक्सपो सिर्फ ऑटोमोबाइल या इंफ्रास्ट्रक्चर की नुमाइश नहीं है, बल्कि भारत के बदलते ट्रैफिक और मोबिलिटी इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट है। 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस एक्सपो में सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर खास जोर है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस जैसी तकनीक के जरिए वाहनों की स्पीड और ट्रैफिक की स्थिति को रियल टाइम में मॉनिटर करने में मदद कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में सफर के दौरान कोहरा एक बड़ी समस्या बन जाता है, सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। भारत के मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की शुरुआत नवंबर के आखिरी हफ्तों से हो जाती है। कोहरे से जुड़ी समस्या कई बार फरवरी की शुरुआत तक बनी रहती है। इस दौरान सड़क हादसों के लिए वाहन चालकों की लापरवाही के अलावा तकनीकी गड़बड़ियों को भी जिम्मेदार माना जाता है। एक्सपो में कमर्शियल ड्राइवरों की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए नई तकनीकों को विकसित और उनको इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। कोहरे में कोई गाड़ी आगे रुकी है या नहीं, कैमरे आधारित अडास यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम 50 मीटर पहले ही अलर्ट दे देगा।
1: कुछ ही महीनों में ठंड आने वाली है और ठंड के साथ आती है धुंध, फॉग। ये फॉग आपको हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कई बार हम खबरें सुनते हैं कि लाइन से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई धुंध की वजह से, क्योंकि वो एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ रही थी। इसी का एक सोल्यूशन यहां पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ एएल नरसिम्हन जी हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं कैमरे में ही, जो कि ड्राइवर को असिस्ट करने के लिए हैं। यानी कि एक ड्राइवर किस तरह से सेफ रहे, किस तरह से उसकी यात्रा अच्छी रहे, उसके असिस्टेंस के लिए कुछ कैमरे बनाए गए हैं।
0: ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस का काम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। चाहे झुलसती गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, भारी ट्रैफिक के बीच उन्हें घंटों खड़े होकर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ता है। स्पीड कैमरा और रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे आधारित तकनीक ने निश्चित रूप से उनका काम आसान किया है, लेकिन फिर भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यकीनन अधिक सक्षम और मजबूत बना रहा है।
1: इंटरसेप्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसका इस्तेमाल करती है अमूमन ट्रैफिक पुलिस पेट्रोलिंग के लिए। उस इंटरसेप्टर को अब एक बहुत हाईटेक तरीके से उसे तैयार किया गया है। यहाँ पर आप बहुत सारे कैमराज देख रहे हैं, चाहे वो बाइक इंटरसेप्टर हो, चाहे वो आप कार देख रहे हो, उसमें भी ऐसे बहुत सारे कैमराज लगाए गए हैं जो कई सारे ट्रैफिक पुलिस के काम को आसान कर देता है।
0: जाम में लंबे समय तक फंसे लोगों में तनाव भी पैदा करता है। ऐसे में जरूरत है भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ज्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड बनाने की, ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट का तरीका ही बदल जाए। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में बात करने जा रहे हैं द ग्रेट इंडिया फेस्टिवल की, जिसकी शुरुआत जो है अब से 3 दिन बाद होने वाली है। 11 अक्टूबर रविवार को नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही देश में फेस्टिवल सीजन का एक बार फिर से आगाज हो जाएगा, जो नवरात्र, दशहरा, दिवाली और फिर छठ तक यूं ही जारी रहने वाला है। ऐसे में देश में त्योहारों की तैयारियां तमाम चल रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इसके साथ ही शहर शहर गरबे का रंग जमने लगा है। कभी जो उत्सव गुजरात के शहरों तक सिमटा था, अब वो भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंच चुका है। अब देश भर के शहरों में नवरात्र के दौरान गरबे का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अब शहर शहर गरबा की तैयारियां दिख रही हैं। बाजारों में गरबा की पोशाकों की बहार है। इसी तरीके से तैयारियों में माँ दुर्गा के पंडालों के लिए भी दिख रही हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक माँ भवानी के स्वागत की तैयारियां तमाम चल रही हैं। कलाकार देवी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। पंडालों का निर्माण आखिरी दौर में नजर आ रहा है, तो वहीं पर देश भर में रामलीला के मंचन की तमाम तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अलग अलग कमेटियां रामलीला के आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। मंच सज रहे हैं, रिहर्सल चल रहा है और शहर शहर रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रावण की भव्य शोभा यात्रा के साथ दशहरा उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। प्रयाग दुनिया का वो अकेला शहर है जहां पर रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। आखिर प्रयाग में क्यों निभाई जाती है परंपरा, चलिए आपको पहले यह बताते हैं।

0: था, संगीत का पुजारी था, देवों का उपासक था, कुशल प्रशासक था, लेकिन फिर भी उसका नाम बुराई का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान होने की वजह से इन दोनों के गुणों के साथ जन्मा था वो, और शायद यही वजह थी कि अच्छाई और बुराई दोनों के भाव हमेशा उसके अंतर मन को मचते रहे। वक्त के साथ बुराई उसकी अच्छाइयों पर हावी होती चली गई और रावण अधर्म का चेहरा बन गया। और शायद यही वजह रही कि त्रेता युग और आने वाले हर युग के लिए रावण की पराजय दुनिया में विजय का उत्सव बन गई और उसका दहन बुराई के अंत का त्योहार बन गया। बावजूद इसके कहना गलत नहीं होगा कि भले ही रामायण हर तरह से भगवान राम की कथा है, लेकिन ये भी सच है कि बिना रावण के ये कहानी अधूरी है। श्री राम का पक्ष उजला है तो रावण का पक्ष काला था। लेकिन दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जहां न केवल रावण की कहानी का उजला पक्ष उभर कर आता है, बल्कि हर साल उसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रावण से जुड़ी एक परंपरा बरसों से निभाई जा रही है। हर साल प्रयागराज में नवरात्र से पहले धूमधाम से रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। श्री कटरा रामलीला कमेटी इस शोभा यात्रा का आयोजन हर साल पूरी भव्यता के साथ करती है। इसी शोभा यात्रा के साथ प्रयागराज में हर साल दशहरा उत्सव की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में होती है। यह तीनों लोगों के विजेता कहे जाने वाले लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का श्री गणेश होता है। संगम नगरी में रावण की ये शोभा यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें झांकियां निकलती हैं, अलग अलग कलाकार रावण, मंदोदरी, मेघनाद, कुंभकर्ण और विभीषण का किरदार निभाते हैं।
1: मैं रावण की पत्नी मंदोदरी बनी हूँ आज, और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ भ्रमण के लिए निकले हैं। हमारे परिवार मेघनाद, कुंभकर्ण और विभीषण और उनके दास लोग हैं हम लोग के साथ, और हम लोग अपने नाना के ननिहाल आए हुए हैं। बहुत बड़ा इतिहास है, 6000 साल पुरानी है इतिहास।
0: आपको बता दें कि प्रयागराज का कटरा क्षेत्र भरद्वाज मुनि के आश्रम क्षेत्र में आता है और इस स्थान को रावण का ननिहाल माना जाता है। दरअसल रावण के पिता महर्षि विश्रवा प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य के बेटे थे, जबकि महर्षि भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति के पुत्र ऋषि अंगिरा के वंशज थे। पौराणिक इतिहास और ऋषि कुलों के आपसी संबंधों के आधार पर रावण को महर्षि भारद्वाज के ही कुल का वंशज यानी उनका प्रपौत्र माना जाता है। इसी वजह से प्रयागराज को रावण का ननिहाल भी कहते हैं। और रावण के ननिहाल प्रयाग के कटरा इलाके में ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। पहले मुगलों के शासन और फिर अंग्रेजों के काल में भी इस परंपरा को यूं ही निभाया जाता रहा। दरअसल प्रयागराज के कटरा इलाके में रावण को बुराई का प्रतीक माना ही नहीं जाता, बल्कि उसकी पहचान यहाँ एक विद्वान और शिव भक्त के रूप में है। और इस परंपरा और मान्यता का आधार रामायण का वो प्रसंग है जो श्री राम की लंका विजय के बाद घटा था। मान्यता के मुताबिक जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते समय संगम पर महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे, तो मुनि भारद्वाज ने उनसे सीधे मिलने से संकोच किया। इसके बाद महर्षि भारद्वाज के ही निर्देश पर भगवान राम ने प्रयाग की पावन भूमि पर कोटि तीर्थ की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की, ताकि वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सके। यही कारण है कि प्रयागराज में रावण की विद्वता, शिव भक्ति और ऋषिकुल से उसके संबंध का सम्मान करते हुए उसे एक राक्षस मानकर तिरस्कृत नहीं किया जाता, बल्कि नवरात्र से पहले सम्मान के प्रतीक के रूप में उसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है।
2: श्री कटरा रामलीला कमेटी महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र में स्थापित है और अनेकों वर्षों से 100-150 वर्षों से तो हमने ही अपने पूर्वजों से इसके बारे में सुनते चले आ रहे हैं। हजारों वर्षों का पुराना इतिहास है जी। रावण की शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। रावण का ननिहाल महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र में महर्षि भारद्वाज मुनि नाना लगते थे, इसलिए हम लोग सम्मान देने के नाते रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान श्री राम की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन सम्मान देने के नाते रावण की भी शोभा यात्रा हम लोग रामलीला मंचन के पहले निकालते हैं। इस जो परंपरा ऐतिहासिक बहुत दिनों से चली आ रही है, रावण अपने पूर्व सज्जस के साथ अपने भाइयों अपने रानियों अपने पुत्रों के साथ यहाँ पर सज्जस के साथ निकलता है और अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए श्री कटरा रामलीला कमेटी का निर्धारित मार्ग से होते हुए लगभग 6 किलोमीटर का मार्ग होते हुए या कर्नलगंज और कटरा के क्षेत्रों से भ्रमण करता हुआ यहाँ पर लोग बीच बीच में अलग अनेकों जगह आरती और पूजन करते हुए रावण की शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं।
0: ये उत्तर भारत की एकमात्र परंपरा है जहाँ दशहरा रावण दहन से नहीं बल्कि रावण वंदना के साथ मनाया जाता है। वास्तव में प्रयागराज की ये परंपरा उस संतुलन का भी प्रतीक है जहाँ बुराई में भी अच्छाई देखने की दृष्टि है और जहाँ इतिहास धर्म परंपरा और संस्कृति एक साथ चलते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: रावण की अनोखी परंपरा जहां पर प्रयागराज में देखी तो वहीं पर कोटा में दशहरा से पहले महारावण तैयार किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कोटा में अब की बार विजयादशमी के उत्सव के लिए 105 फीट का विशाल का रावण तैयार किया जा रहा है। लकड़ी के इस फ्रेम के आकार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ रावण की ये कितना विशाल स्वरूप देखने को मिल रहा है। इस रावण के निर्माण में 5 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। बांस के 500 से ज्यादा टुकड़ों से पुतले को आकार दिया गया है। करीब 1500 मीटर वेलवेट से रावण के वस्त्रों को तैयार किया जा रहा है। करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी से रावण के पुतले को बांधा जा रहा है। कागज को चिपकाने के लिए करीब 2 क्विंटल गोंद का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, पूरा बनकर तैयार होने पर जब ये रावण खड़ा हो जाएगा तो इसका दीदार काफी दूर तक आपको नजर आएगा। लेकिन इस रावण की खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है, इस रावण का दहन भी बहुत रोचक होने वाला है। इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि दहन से पहले ये रावण अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमाता हुआ आपको नजर आएगा। अपनी विशाल भुजाओं से ये रावण तलवार भी चलाता हुआ नजर आएगा, मूंछ लाएगा और अपनी पलकें भी झपकाएगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल जीवंत है। रावण के इस विशाल पुतले को तैयार करने के लिए दिल्ली NCR से कारीगरों को खास तौर पर कोटा बुलाया गया है। तस्वीरें देखिए। तो त्योहारों की शुरुआत में 3 दिन बाकी हैं और 3 तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रामलीला के मंचों की तरह माँ दुर्गा के भव्य पंडाल सजाने का काम भी अब लगभग पूरा हो चुका है। रविवार से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है, लिहाजा शहर शहर माँ के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। माँ की प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जा रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि माँ के दरबार को भव्य और दिव्य रूप से सजाया जाए।

माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। हर तरफ माँ के आगमन की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। माँ की मूर्ति का निर्माण

0: पार्क में कोलकाता से आए मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सभी मूर्तियाँ गंगा की शुद्ध मिट्टी से बनाई जा रही हैं, जिन्हें प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल रंगों से इन्हें सजाया जा रहा है।
1: ये इको फ्रेंडली कलर है, ये कोई मूर्तियों में हाँ फूल नहीं है। मूर्तियाँ गंगा जी की मिट्टियों से बनी है और नवरात्र है तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रयागराज के जितने भी पंडाल की मूर्तियां हैं हमें बनाने को मिल रही है, उसका डिजाइन करने, उसको कलर करने की प्रतिमाओं को मिल रहा है। पंडाल में हमने क्या नाम है कलर किए हैं, डिजाइन बनाई है, मूर्ति को सजाया है, साड़ी से लेकर बॉर्डर हर एक एक चीज, मतलब माता रानी को एकदम अच्छे से सजा दिया है कि वो बहुत सुंदर लगती है देखने के, मन ही नहीं करता कि इनको विसर्जन किया जाए।
0: कहीं माँ दुर्गा की आंखों में भाव उकेरे जा रहे हैं तो कहीं उनके मुकुट और आभूषणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रंगों की अंतिम परत के साथ प्रतिमाओं में मानो जीवन का संचार हो रहा है। यहाँ 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। साथ भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी गंगा की मिट्टी से ही बनाई जा रही है।
2: पूरे देश में नवरात्र की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त भरद्वाज पार्क में हैं, जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो बनाने का काम है वो चल रहा है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं और इन मूर्तियों को बनाया और संवारा जा रहा है। ये मूर्तियां 3 फीट से लेकर के 10 फीट तक हैं और तमाम ये बड़ी छोटी मूर्तियां यहां बनाई जाती हैं। तमाम कलाकार यहां पर इन रंग भरने का इन मूर्तियों में काम कर रहे हैं।
0: नवरात्र शुरू होते ही ये प्रतिमाएं शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में स्थापित की जाएगी। एक ओर जहां आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं आकार ले रही है, वहीं दूसरी ओर मां जगदम्बे को ही समर्पित भव्य पंडालों का निर्माण भी जोरों पर है। ये भव्य तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की है, जहां भव्य पंडालों का बनाने का काम शुरू हो गया है। पुरुलिया में प्रसिद्ध भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी हर साल खास थीम पर पंडाल बनाती है। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए खास थीम पाषाणे प्राण यानी पत्थरों में प्राण पर पंडाल निर्माण किया गया है। इस थीम के जरिए प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक को सामने लाने की कोशिश की गई है, यानी शानदार थीम और पारंपरिक भव्यता को किस तरीके से दर्शाया जाए इसको लेकर कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई व्यस्त है। पूजा आयोजकों और कलाकारों ने पुराने समय के उस धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को जीवंत करने का प्रयास किया है, जब पहाड़ों और गुफाओं के बीच मंदिरों में देवी देवताओं की आराधना की जाती थी।
3: हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा और हर साल की तरह इस साल भी भीड़ उमड़ पड़ेगा इधर।
0: यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा है। उनके दाईं ओर भगवान शिव और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। पंडाल के प्रत्येक पिलर और दीवार पर भारतीय संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं की विभिन्न आकृतियाँ पत्थर की नक्काशी की शैली में उकेरी गई है। ऐसी गुफा मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होगी और यही माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ पुरुलिया से सत्यजीत बैनर्जी, गुड न्यूज टुडे।
4: फेस्टिवल सीजन का ही एक और रंग है गरबे का। नवरात्र के दौरान देश भर में शहर शहर गरबा आयोजन होते हैं। पूरे 9 दिन गरबे का उत्सव नजर आता है। नवरात्रि के समय हर कोई गरबा करने के लिए उत्सुक नजर आता है। कभी जो गरबा केवल गुजरात की शान था, आज लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में बहुत उत्साह के साथ खेला जाता है। रविवार से गरबा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं देश में कैसी चल रही है गरबा की तैयारियां।

0: ये तैयारी है माँ दुर्गा के महापर्व पर गरबा खेलने की, और सबसे बढ़कर ये तैयारी है साल भर की बीती बातों, किस्सों और वाकयों को पीछे छोड़ त्योहार की खुशियों में डूबकर धूम मचाने की। माँ के आगमन का उत्सव है, सो देश भर में शहर शहर गरबा प्रेमी पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हैं। रंग बिरंगी परंपरागत पोशाकों से लेकर सजे धजे डांडिया तक हर तैयारी पूरे मन और लगन से की जा रही है। चनिया चोली केड़िया सब तैयार है। जरा सोचिए, जब तैयारी ऐसी जानदार है तो उत्सव कितना शानदार होगा। वैसे तो गरबा और डांडिया नृत्य मूल रूप से गुजरात की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन अब नवरात्र के दौरान देश भर के शहरों पर गुजरात का ये रंग चढ़ा नजर आता है। शहर शहर अलग अलग क्लब्स और डांस ग्रुप्स विशेष गरबा नाइट्स का आयोजन करते हैं, जिसमें पूरी तैयारी और सज धज के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। अब की बार भी तैयारी जोरों पर है। चनिया चोली और केड़िया के पारंपरिक परिधानों से देश भर के बाजार सज चुके हैं। ये तस्वीरें मुंबई के बोरीवली की हैं, जहां गरबा डांडिया के लिए पोशाकों से बाजार सज गया है।
1: नवरात्रि में गरबा राज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब बात मुंबई की हो तो बात ही अलग है। मुंबई के बोरीवली इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 80% गुजराती समाज रहता है, और देखिए यहाँ का बाजार किस तरीके से चनिया चोली और केड़िया से सज चुका है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग डिमांडिंग चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं फैशन हब के नाम के एक शॉप में एंट्री कर रहा हूँ, और खरीदारी बहुत ही ज्यादा जोरों पर है। महिलाएं और स्पेशली जो जेंजेस हैं और युवती हैं, वो देखिए अपने अपने पसंद के चनिया चोली और केड़िया यहाँ पर खरीद रहे।
0: ट्रेडिशनल पोशाक भी खूब है, तो ट्रेंडिंग डिजाइन की भी कमी नहीं। जिसे जो भा रहा है वही ले जा रहा है। प्रैक्टिस अपनी जगह है, लेकिन गरबा खेलने के लिए लुक कम्प्लीट होना भी जरूरी है।
1: अमृता, मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तक आपको कुछ पसंद नहीं है?
2: मतलब मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लूँ और क्या नहीं।
1: क्या सोच करके आए थे, क्या लेना है?
2: मतलब मुझे पर्टिकुलर, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मतलब घाघरास है जो लोअर पहनते हैं, और ब्लाउजेस की यहाँ पे वैरायटीज है, तो वो उसी से रिलेटेड कुछ सोच रही हूँ।
1: अच्छा, ये 9 दिन अलग अलग थीम पर ही काम करने वाले हो ना?
2: हाँ, मतलब कलर्स रहते हैं और उसके हिसाब से हम लाइक एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ। और वैसे हम जनरली तो हम क्या करते हैं, एवरी ईयर एक एक लेते हैं और फिर वो कलेक्ट हो जाते हैं ओवर द टाइम।
1: अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या सोचकर आए, क्या ट्रेंड में है, क्या डिमांड में, आपको क्या लगता है, या फिर ऑर्डर भी देते हैं?
2: हाँ, मतलब कस्टम मेड भी होता है, और अभी मार्केट में बहुत सारी हर एक नए नए डिजाइन भी आते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि कैसा है क्या।
0: और ये तस्वीरें आई हैं गुजरात के सुरेंद्र नगर से, जहां इन दिनों गरबा डांडिया से जुड़ी पोशाकों की डिमांड बढ़ गई है। यहां अलग अलग डिजाइन और अलग अलग रंगों की पारंपरिक चनिया चोली तैयार की जा रही हैं, जिनकी डिमांड यूपी एमपी दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक है।
3: चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली, केड़िया सेट, जिमी सेट सब हम यहाँ बनाते हैं। हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है, और हम बनाते हैं सब, बाहर गांव जाते हैं बॉम्बे साइड, उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, और आरी वर्क होता है, और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है।
0: गुजरात में लोग पारंपरिक गरबा परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं, तो राजस्थान के पाली में भी गरबा खेलने की तैयारियां जोरों पर हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले गरबा रास को लेकर जोरदार प्रैक्टिस चालू है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी दिल लगाकर गरबा सीखने में जुटे हैं।
4: नृत्य एक ऐसा फॉर्म है जिसमें लाइक हम सब कुछ भूल के सिर्फ डांस के थ्रू माँ से कनेक्ट हो सकते हैं।
5: गरबा में बेसिकली तो 2 ताली, 3 ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं, बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन जी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डाल दे, तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते हैं तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
0: गीतों की थाप पर झूमती फिरकती महिलाओं की ऐसी ही तस्वीरें झांसी से भी आई। ये नजारा झांसी के ऐतिहासिक किले के छांव पार्क का है, जहां सैकड़ों महिलाएं और युवतियां डांडिया की ट्रेनिंग ले रही हैं।
6: पता नहीं कितने लोग हैं, बट लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि हाँ सब गरबा के लिए बहुत एक्साइटेड है। और इनको देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जब पब्लिक आपकी जोश में होती है तो अपने आप अंदर से जोश आ जाता है। और डेफिनेटली ये माता रानी के लिए सभी की भक्ति है, और मैं भी बस इस भक्ति में झूमते हुए सबको नृत्य सिखा रही हूँ, डांडिया सिखा रही हूँ।
0: ट्रेडिशनल के साथ टेम्पररी ताल का धमाल अब की बार डांडिया उत्सव का उत्साह और बढ़ा रहा है, जिसकी तान पर गरबा के स्टेप सीखती महिलाओं का उत्साह देखने लायक है।
7: पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये आज के लिए जो डांस जुम्बा क्लासेस हुआ है। रितु मैम ने हम लोगों को जो डांस सिखाया है बहुत अच्छी इन डांसर सिखाती हैं हम लोगों को, और जो 12th October को हो रहा है डांडिया नाइट, हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं।
8: नवरात्रि के लिए तो बहुत एक्साइटेड है, 12th October को हम सब लोग मिल के जाने वाले हैं, हमारे सारे बच्चे भी जाएंगे साथ में।
0: वास्तव में गरबा नृत्य शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, मात्र शक्ति की महिमा और जीवन के उत्सव को मनाने के लिए किया जाता है। मूल रूप से गुजरात से शुरू हुआ ये पारंपरिक लोक नृत्य अब पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है, और इसी लोकप्रियता के बीच पोशाक तैयार है और प्रैक्टिस भी जोरदार है। अब तो बस इंतजार है उस उत्सव का, जिसके शुभारंभ के साथ ही देश गरबा और डांडिया के रंग और उमंग में डूब जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, झांसी से अजय झा और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: खास कार्यक्रम में नहीं, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: पहाड़ों पर तेजी से मौसम करवट बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। आसमान पर बादलों का डेरा है और कई जगहों पर ठंडी हवाओं के साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है।
3: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते पहाड़ कूल कूल हो गए। आसमान पर बादल छाए, ठंडी हवाओं ने दस्तक दी और फिर शुरू हुई झमाझम बारिश। धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, यानी मौसम ने पल भर में गर्मी से राहत का ऐसा इंतजाम किया कि पहाड़ों की फिजा ही बदल गई। इस बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए धर्मशाला और मैक्लोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंडी हवाओं, बारिश और पहाड़ों की हसीन फिजाओं ने सैलानियों का मजा दोगुना कर दिया है। बारिश और ओलावृष्टि के बीच भी त्रिवेणी ट्रैक को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों की खूबसूरती और बदलते मौसम का मजा लेने त्रिवेणी का रुख कर रहे हैं। असल में मौसम के इस बदलते मिजाज का अंदेशा मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था। विभाग ने आने वाले दिनों में भी पहाड़ों पर मौसम के ऐसे ही तेवर बनने के अनुमान जताए हैं।
4: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हमारे जो स्पेशली क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगभग 9 अक्टूबर तक प्रदेश के जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मध्य बारिश का दौर है वो देखने को मिलेगा।
3: इसी के साथ पहाड़ों पर मौसम का अगला रंग बर्फबारी का हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरने के साथ बर्फ गिरने की संभावना है। इसी को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है।
4: प्रभाव से जो हमारे जो क्षेत्र है जिसमें कांगड़ा है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हाँ संभावना है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। देखिए अलर्ट मुख्यतः जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और शिमला, यहाँ पे आफ्टरनून और लेट इवनिंग में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया गया आगामी 4 दिनों के लिए येलो कैटेगरी में।
3: मौसम के बदले मिजाज ने पहाड़ों की फिजा के साथ साथ पर्यटन का रंग भी बदल दिया है। अब सबकी नजरें मौसम के अगले करवट पर है, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम अपने साथ खूबसूरती के नए रंग भी लेकर आता है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
9: आज भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही है भक्तों की भीड़। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार, देवताल में दूर दूर तक दिखी मखमली बर्फ की मोटी चादर, सतुपंथ और चंबा में भारी बर्फबारी। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केंसो सुई को मिला नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। रांची पहुंची भारत और वेस्टइंडीज की टीमें। 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कल होने वाले वायुसेना के स्थापना दिवस की। इस खास दिन होने वाले पराक्रम के प्रदर्शन की, वायुसेना के शौर्य और इतिहास से जुड़ा है एयरफोर्स डे, जो अब देशभक्ति के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनता जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर होने वाले इस खास कार्यक्रम में वायुसेना के चीफ परेड की सलामी लेंगे तो थल सेना और नौसेना चीफ भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। यहां पर देखिए, नभ में वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों और हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन भी करेगी। दूसरी खबर, जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास की भी हम करेंगे, जहां पर भारत समेत 8 देशों की वायुसेनाएं बेहतर तालमेल के लिए हवाई युद्ध अभ्यास कर रही हैं। इस एक्सरसाइज में बड़े देशों के आधुनिक लड़ाकू विमान अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत रहे हैं। तीसरी खबर, इंडियन कोस्ट गार्ड के एक्सरसाइज की भी करेंगे। 2 दिन के इस खोजी और बचाव अभ्यास में बड़ी संख्या में विमान और जहाज शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इसमें देखिए कई और एजेंसियों के साथ तालमेल के सामंजस्य की परख भी देखी जाएगी, ताकि विपरीत परिस्थितियों में बचाव अभियानों में पहले से और तेजी लाई जा सके। आज बात करेंगे सबसे पहले भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना 94वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शानदार समारोह का आयोजन होने वाला है। इस बार वायुसेना की थीम है अचूक, अभेद, सटीक। कल एयरफोर्स डे पर वायुसेना के जवान अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करेंगे। स्टैटिक डिस्प्ले में वायुसेना के फाइटर जेट्स और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का दमखम भी नजर आएगा।
8: अचूक, अभेद्य, सटीक, भारतीय वायुसेना की यही पहचान। नभ के पहरदारों के पराक्रम से हिंदुस्तान का सुरक्षित आसमान। वायु वीरों के शौर्य की कहानी कहता हिंदुस्तान का इतिहास। एयरफोर्स डे पर जब जमीन पर वायुसेना के जाबाज एक तरफ परेड कर रहे होंगे, तो आसमान से इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ध्वज फॉर्मेशन का फ्लाई पास्ट कर रहे होंगे। हिंदुस्तान की वायुसेना के पराक्रम की पहचान फाइटर जेट्स और मिसाइलों की ताकत इस खास मौके पर वीरता और शौर्य की तस्वीरें पेश करेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट से लेकर तेजस लड़ाकू विमानों की मौजूदगी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए पराक्रम की याद दिलाएगी। वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जब वायु वीर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, तो हिंडन एयरबेस का आसमान वायुसेना की एयरक्राफ्ट की गड़गड़ाहट से गूंजने लगेगा। हिंडन एयरबेस पर मौजूद हर शख्स वायुसेना के हैरतअंगेज करतबों का गवाह बनेगा, तो देशभक्ति का जज्बा देखने लायक होगा। हेरिटेज फ्लाइट के दौरान आसमान में पुराने विमानों के करतब वायुसेना के पुराने और नए विमानों के मेल से वायुसेना की शक्ति और इतिहास की अनोखी झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा फाइटर जेट्स और हथियार वायुसेना की ताकत के नजीर पेश करेंगे। इस डिस्प्ले में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को रखा गया है। ब्रह्मोस के साथ ही तेजस, सुखोई और प्रचंड भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए हैं। सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार सिस्टम, रडार और एक तरफा हमला करने वाले मानव रहित हवाई सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल को भी दर्शाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम, जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर्स शामिल हैं, एक अनोखा म्यूजिकल प्रदर्शन पेश करने वाली है। इस परफॉर्मेंस में स्नेयर ड्रम, रोटो ड्रम, बास ड्रम और सिंबल का इस्तेमाल होगा। साथ ही खास ड्रमिंग पैटर्न, शानदार फॉर्मेशन और कालाबाजी वाली गतिविधियां भी शामिल होंगी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिसमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर 2 और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा।
10: भारतीय वायुसेना अपने अस्तित्व के 94 साल पूरे कर चुकी है और इस मौके पर एयरफोर्स डे की भव्य परेड हिंडन में की जाएगी। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में भव्य समारोह के दौरान ड्रमर्स ड्रिल के साथ स्टैटिक डिस्प्ले होगा, जिसमें भारत के फाइटर जेट्स जो सुखोई 30 MKI, रफाल, तेजस और तमाम जैगुआर जैसे विमान भी रखे जाएंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस की ताकत भी इस एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन की खास हाईलाइट होने वाली है। इसके अलावा शक्ति ऑल विमेन कंटिंजेंट की असॉल्ट राइफल ड्रिल और ड्रमर्स ड्रिल भी एयरफोर्स डे पर एक खास आयोजन का हिस्सा होगी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह एयरफोर्स डे के मौके पर देशवासियों को संबोधित करेंगे।
8: 2021 तक एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन हिंडन में ही होता था, लेकिन 2022 से इस पैटर्न में बदलाव किया गया और 2022 में चंडीगढ़, 2023 में प्रयागराज और 2024 में इसे चेन्नई में आयोजित किया गया। सरकार के इस कदम का मकसद वायुसेना दिवस के आयोजन को अलग अलग शहरों तक पहुंचाना है, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता, पराक्रम और हवाई कर्तव्य को करीब से देखने का मौका मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ अब की बार वायुसेना दिवस समारोह को दो भागों में आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना दिवस की आधिकारिक मुख्य परेड और ग्राउंड डिस्प्ले हमेशा की तरह 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में ही होगी, लेकिन जनता के लिए बड़ा और मुख्य फ्लाईपास्ट एयर शो इस बार वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इतिहास में ये पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा।
11: The main event, the Air Force Day Parade, will be held at Air Force Station Hindon on 8th October. The parade last year was held at Hindon after a gap of 3 years. In the year 2022, the parade was held at Chandigarh, in 2023 at Prayagraj, and in 2024 at Chennai. In alignment with the government's vision of offering citizens across the nation a closer glimpse of the might and capability of their Indian Air Force.
8: 24 से 26 अक्टूबर के बीच वाराणसी में एयर शो और फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो का आयोजन होगा। शो के दौरान वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा नदी के ऊपर एयरफोर्स के विमान करतब दिखाएंगे। मेगा एयर शो में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। राफेल, तेजस और सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम आसमान में जाबाजी का प्रदर्शन करेंगी। काशी की आध्यात्मिक पहचान को दर्शाने के लिए आसमान में विशेष त्रिशूल फॉर्मेशन भी बनाया जाएगा। सुखोई, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मिलकर इस डिस्प्ले को आकार देंगे।
10: इस पूरे भव्य समारोह का दूसरा हिस्सा बनारस में होगा, एक खास फ्लाईपास के रूप में, जो कि अक्टूबर के अंत में होगा। यानी पहला हिस्सा भव्य समारोह का हिंडन में होने वाला है, जिसमें भारतीय वायुसेना का शौर्य, पराक्रम और भविष्य के लिए, भविष्य की चुनौतियों और लड़ाइयों के लिए उसकी तैयारी भी दिखाई देगी।
8: खबरों के मुताबिक वाराणसी में होने वाला ये एयर शो करीब 90 मिनट का होगा और 24 से 26 अक्टूबर के बीच रोजाना 12 बजे के करीब इसे आयोजित किया जाएगा। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच गंगा के किनारे लाखों लोग इस नजारे को देख सकेंगे। 8 अक्टूबर का दिन भारतीय वायुसेना के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को हिंदुस्तान में वायुसेना का गठन रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में किया गया था। आजादी के बाद 1950 में रॉयल शब्द हटाकर भारतीय जोड़ा गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने वाले वायुसेना के वीरों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देना है। इस खास मौके पर देश के अलग अलग एयरफोर्स स्टेशनों पर शानदार एयर शो परेड और विमानों की कर्तव्य भरी प्रस्तुतियां आयोजित की जाती हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के लिए 8 अक्टूबर का दिन गर्व का पल लेकर आता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की ताकत, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और स्वर्णिम इतिहास के रंग नजर आते हैं। भारतीय वायुसेना दुश्मन के सामने न तो हारती है न कोई गलती करती है, हर काम सटीकता से करती है। यही इस बार की एयरफोर्स डे का थीम भी है। हर बार की तरह आत्मनिर्भरता परेड के केंद्र में होगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें भारत में बनी है। तेजस विमान, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस सब मेक इन इंडिया की मिसाल है। मौजूदा दौर में वायुसेना के लिए सिर्फ लड़ाकू विमान काफी नहीं है, हवा की रक्षा, सही निशाना लगाने वाले हथियार और ड्रोन भी जरूरी हैं। ये हथियार दुश्मन पर वार करते हैं और जवानों का खतरा कम रखते हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड स्टडे।
9: बात करते हैं वायुसेना की तरंग शक्ति की। राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास दूसरा संस्करण प्रगति पर है और इस हवाई युद्धाभ्यास में दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखा रहे हैं। 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। खास बात देखिए इसमें यह है कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की भागीदारी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त हवाई अभियानों के जरिए आपसी तालमेल, अनुभव साझा करने और एक दूसरे के संचालन प्रक्रियाओं को समझना है।

0: साझेदारी में शक्ति, इस थीम को लेकर जब जोधपुर के आसमान में कई देशों के फाइटर जेट्स एक साथ गरजे तो मौका बेहद ही शानदार नजर आया। आसमान में हैरत अंगेज नजारे सबका ध्यान खींच रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत की अगुवाई में दुनिया के शक्तिशाली देशों की वायुसेना अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। वायुसेना ने इसे पावर ऑफ पार्टनरशिप का नाम दिया है। इसके तहत सभी देशों के वायुवीर एक दूसरे के साथ आसमान में पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान एक दूसरे के जहाज में आसमान में ही रिफ्यूल भी कर रहे हैं, तो शानदार फॉर्मेशन और तालमेल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर मिलजुल कर दुश्मन को जवाब दिया जा सके। जोधपुर में 26 सितंबर से तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास चल रहा है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें भारत सहित 8 देशों की सेनाएं अपने लड़ाकू विमानों व संसाधनों के साथ भाग ले रही है, जबकि 32 देश बतौर पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। तरंग शक्ति अभ्यास 2.0 को शुरू हुए 11 दिन बीत चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ एक्सरसाइज का दायरा बड़ा और जटिल होता जा रहा है। दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने और डॉग फाइट से लेकर एयरलिफ्ट और टैक्टिकल ड्रॉप्स को अंजाम दिया जा रहा है। स्ट्राइक रेंज को कई गुना बढ़ाया जा सके, इसकी भी वानगी देखने को मिल रही है।
1: भारतीय वायुसेना की मेगा ड्रिल तरंग शक्ति जोधपुर में पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक जारी है, और इसमें 40 से ज्यादा अलग अलग देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका के 6 F-35 यानी उनके फिफ्थ जेनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और जर्मनी के रफाल इसमें शामिल है। इसके अलावा तमाम दूसरे देश अपने अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर्स के साथ तरंग शक्ति का हिस्सा बने हैं, और जैसे जैसे तरंग शक्ति आगे बढ़ रही है, जो 26 सितंबर से शुरू हुई थी, हर दिन कॉम्बैट कैपेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और भारतीय वायुसेना के कौशल को भी यहाँ पर देखा जा रहा है।
0: इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण अमेरिकी एयरफोर्स का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 है, जो भारत की सरजमी पर हो रहे युद्ध अभ्यास में पहली बार शामिल हुआ है। अभ्यास में जर्मनी ने अपने अत्याधुनिक A400M एटलस परिवहन विमान को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया है। यह विमान भारी सामान और सैनिकों की आवाजाही के साथ जटिल लॉजिस्टिक्स और एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। जर्मनी के पायलट्स भी भारत की सरजमी पर आकर अपनी खुशी बयां कर रहे हैं।
2: In India before, but also very great experience. It's fun to work with Indian Air Force, and also fun to be in India. So it's a great country. I really like being here. And flying in India, you know, it's always different than flying in Germany. But this is how we get to learn a lot of new stuff, and that's one of the main points of this exercise, I think.
0: तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल देशों के एयर क्रू और मिशन प्लानर्स एक साथ बैठकर जटिल रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक कंबाइंड एयर ऑपरेशन आर्किटेक्चर विकसित किया जा सके।
1: खास तौर पे जो तमाम वायुसेनाएं आई हैं, उनके एयर चीफ्स यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सब ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रिसिशन स्ट्राइक से लेकर जो ड्रोन्स को किस तरह से काउंटर किया गया था और भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया आतंक के ठिकानों को तबाह करने के लिए, उन सब में किस तरह से भारतीय वायुसेना आगे बढ़ी, और वो भी आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ। यानी तरंग शक्ति एक मौका है जहां पर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, साथ ही पूरी दुनिया को भारत के हथियारों, भारत की वायुसेना का दमखम भी दिखाया जा रहा है।
0: जोधपुर में चल रहे वायुसेना की युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति के दौरान 8 अक्टूबर यानी कल वायुसेना दिवस के मौके पर जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर एरोबेटिक टीम का एयर शो भी होगा। सूर्य किरण टीम अपने 9 हॉक जेट से आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन और एरोबेटिक करतब दिखाएगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करते हैं तटरक्षक बल के अभ्यास की। समंदर में बड़े पैमाने पर आपातकालीन बचाव, विमान दुर्घटना या समुद्री टक्कर जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी और तालमेल को परखने के लिए ओडिशा के पारादीप तट के पास 12वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2026 का प्रदर्शन और लाइव डेमो आयोजित होने जा रहा है। हालांकि इस युद्धाभ्यास का पहला चरण आज संपन्न हो चुका है।

0: वयम रक्षामः यानी हम रक्षा करते हैं। ये रक्षा समंदर की हो, भारतीय तटों की हो, या समंदर में जीवन के लिए जूझ रहे इंसानों की, ये जज्बा इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों का होता है। अपने इसी संकल्प को दृढ़ता प्रदान करने के लिए भारतीय तट रक्षक बल हिंदुस्तान के समंदर, तट की सुरक्षा, खोज और बचाव के साथ दूसरे एजेंसियों से तालमेल को बेहतर बनाने के लिए वक्त वक्त पर कई तरह के अभ्यास का आयोजन करता है। ओडिशा के पारादीप तट पर कोस्ट गार्ड का सारेक्स 2026 अभ्यास शुरू हो गया है, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। दो दिन के इस सबसे बड़े अभ्यास में कोस्ट गार्ड के 15 जहाज, 2 डॉर्नियर विमान, 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, 1 चेतक हेलीकॉप्टर IAF के C-130J और MI-17 हेलीकॉप्टर, भारतीय नौसेना के 2 जहाज के साथ राज्य के संसाधन और तट आधारित सहायता इकाइयां शामिल हो रही हैं। इसी अभ्यास के तहत भुवनेश्वर में 24वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की बैठक भी हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय खोज और बचाव की तैयारियों को मजबूत करने, संकट की सूचना मिलने पर बेहतर मैनेजमेंट करने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए बचाव के साधनों को तेजी से जुटाने पर चर्चा हो रही है।
1: ये एक बड़ी ड्रिल है जिसमें भारतीय तट रक्षक दल अपना पूरा ताकत दिखाएगा, अपनी पूरी ताकत के साथ सब किस तरह से वो एक्सरसाइजेस करता है और अलग अलग एजेंसीज के साथ कैसे मिलकर कोऑर्डिनेट करता है इन ऑपरेशंस के लिए, ये सब कुछ भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा।
0: सारेक्स 2026 अभ्यास में एक साथ हवाई और समुद्री संकट की स्थितियों से निपटने वाले बड़े पैमाने पर बचाव अभियान का भी अभ्यास हो रहा है। इसमें 228 लोगों को ले जा रहे एक यात्री विमान के समुद्र में उतरने और कंटेनर जहाज MV जुम्बा से टकराने जैसे हालात भी शामिल होंगे, जिसका प्रदर्शन कल यानी 8 अक्टूबर को किया जाएगा।
1: भारतीय तटरक्षक दल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जो समुद्र की सीमाओं की सुरक्षा भी करता है और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी ड्रिल भी करता है, वो भुवनेश्वर में एक बड़ी ड्रिल कर रहा है। और ये जो मैरिटाइम सिक्योरिटी ड्रिल है, इसमें कोस्ट गार्ड के तमाम असेट्स, चाहे वो शिप हो, चाहे वो वेसल्स हो, छोटी नाव हो और हेलीकॉप्टर्स हो, वो सब एक साथ मिलकर अलग अलग तरह के ड्रिल्स में हिस्सा ले रही हैं। और खास बात यह है कि चाहे समुद्र में किसी भी तरह के पायरेट्स को रोकना हो, चाहे इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग रोकनी हो, या फिर समुद्र में किसी भी तरह का जो ऑयल स्पिल्स हो उनको रोकने का काम हो, वो सब कुछ यहां पर दिखाया जाएगा। और कैसे अलग अलग एजेंसीज, चाहे वो भारतीय नौसेना हो या फिर अलग अलग प्रदेशों की पुलिस हो, तमाम दूसरी एजेंसियां हो, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाकर इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार समुद्र का प्रहरी बना हुआ है, अलग अलग ऑपरेशंस करता है, ये सब कुछ इस ड्रिल में दिखाया जाएगा। और भुवनेश्वर में होने वाली इस ड्रिल में एक साथ साझा असेट्स इंडियन कोस्ट गार्ड के देखे जा रहे हैं।
0: इससे पहले भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय ने RESAREX-26 नाम से मुंबई तट पर क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास 24 सितंबर 2026 को आयोजित किया था। सागर कवच अभ्यास के तहत तटीय सुरक्षा का अभ्यास महाराष्ट्र और गोवा तट के साथ साथ गुजरात और दमन दीव में भी सफल संचालन किया गया, जिसमें राज्य पुलिस, नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा तंत्र की जांच की जाती है। इस अभ्यास की खास विशेषता 30 देशों के 32 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी, ये अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी इस अभ्यास के रणनीतिक महत्व और मिलकर काम करने की क्षमता को दर्शाएगी। यही नहीं, सारेक्स 2026 अभ्यास कोस्ट गार्ड की भावना के अनुरूप तेज, तकनीक सक्षम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े खोज और बचाव के ढांचे के निर्माण के भारत के संकल्प की झलक भी दिख रही है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दुर्गा पूजा के साथ साथ देश में विजयादशमी यानी दशहरा मनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर रामलीला के मंचन की तैयारियां और रावण दहन के लिए पुतले बनाने का काम भी इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। इस साल भी राजस्थान के कोटा में विशालकाय रावण का पुतला बनाया जा रहा है, जो अभी से चर्चा में है।

0: रावण के पुतले के लिए बांस और लोहे की छड़ों का ये विशालकाय ढांचा पूरी तरह से बना भी नहीं है और ये अभी से सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में आने के पीछे की वजह है इसका साइज। राजस्थान के कोटा में तैयार किया जा रहा ये पुतला 105 फीट से ज्यादा ऊंचा है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले करीब 70-70 फीट ऊंचे बनाए जा रहे हैं। इन विशाल पुतलों को तैयार करने के लिए खास तौर पर दिल्ली NCR से कारीगर बुलाए गए हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत से पुतलों को बनाने में जुटे हैं।
1: ये रावण 105 प्लस हो जाएगा, कुंभकर्ण 70 फुट, मेघनाथ 70 फुट।
2: कितने कारीगर लग रहे हैं इसको काम करने?
1: 20 कारीगर एक महीने से रात और दिन लगे हुए हैं। सारे घर के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। रावण जब बन जाता है, हमें भी शौक है रावण बनाने का, कमाई तो एक अलग चीज है।
0: इन पुतलों को बनाने में लगे कारीगर ने बताया कि इनके निर्माण में करीब 5 टन लोहे और लगभग 500 बांस की खपच्चियों का इस्तेमाल किया गया है। इनके बाहरी हिस्से के लिए करीब 1500 मीटर वेलवेट कपड़ा लगाया जा रहा है, वहीं 300 किलो सुतली और करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, पुतलों को मौसम से बचाने के लिए वाटरप्रूफ इंपोर्टेड कागज लगाया जा रहा है और कागज को चिपकाने के लिए मैदा से तैयार की गई 1 से 2 क्विंटल लेई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा रावण के भीतर विशेष प्रकार की आतिशबाजी भी सेट की जा रही है, ताकि विजयदशमी के दिन दहन के दौरान अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले।
1: इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, रद्दी है तो 250 किलो के आसपास लग जाएगी। नहीं बनाते हम 150 किलो लग जाती है। सुतली है जिससे बांधते हैं इसको, 300 किलो के आसपास लगेगा।
0: कोटा में दशहरा पर रावण का ये पुतला 360 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमाता नजर आएगा, हाथ में तलवार लेकर चलाएगा, मूछें हिलाएगा और आंखें भी झपकाएगा। कारीगरों का कहना है कि 10 से 11 तारीख तक रावण का पुतला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।
1: विशेषतर रावण में, कोटा के रावण में खुद ही विशेष है, सारी चीजें इसमें होती है। जिसे गर्दन घुमाता है, पलके चलाता है, तलवार भी चलाएगा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो। अब आने वाले टाइम में हमारा काम जो है इस टाइम 90% हो चुका है, 10% रह रहा है, उसमें देखेंगे क्या नया दिखा सकते हैं कोटा के लिए। 10% मात्र काम रहना है, इसको देख रहे हैं, फिनिशिंग होना पड़ा, फिनिशिंग करनी है।
0: दशहरा के साथ ही रामलीला मंचन की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में यूपी के प्रयागराज में श्री महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी ने एक दिन पहले मुकुट पूजन समारोह किया। ये कार्यक्रम शाहगंज के राम मंदिर में विधि विधान से संपन्न हुआ। परंपराओं के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मुकुट की पूजा 11 ब्राह्मणों और वेद पाठियों ने मंत्रोच्चार से की। इस दौरान मंदिर श्रद्धालुओं से भर गया और जयकारे गूंजते रहे। बताया जाता है कि ये मुकुट 100 साल से भी अधिक पुराने हैं और इन्हें लाहौर के कुशल कारीगरों ने तैयार किया था। कमेटी की ओर से इन बहुमूल्य मुकुटों को बेहद सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और रामलीला शुरू होने से पहले इनकी साफ सफाई कर पूजा की जाती है। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन श्री राम समेत अन्य स्वरूपों को ये मुकुट पहनाए जाते हैं। इसी के साथ पजावा रामलीला के दशहरा उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाती है।
3: जो हमारी कमेटी का इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और प्रयागराज के दशहरा में बहुत ही अभूतपूर्व अतुल्य सहयोग भी रहा है हमारे श्री महान बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी का। और ये मुकुट आपके सामने जो समक्ष प्रस्तुत हुआ है, सोने एवं चांदी से निर्मित है। ये लाहौर के कारीगरों द्वारा निर्मित है, जो कि लाहौर अब इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। जब ये निर्मित हुआ था तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए ये अपने में ही बहुत पौराणिक और अतुल्य है।
0: कहा यह भी जा रहा है कि पजावा रामलीला इस बार आधुनिक तकनीक और भव्य मंचन से खास रहेगी और कई नए प्रसंग भी जोड़े गए हैं। कोटा से चेतन गुर्जर और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आज भारतीय वायुसेना बनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही है भक्तों की भीड़। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार, देवताल में दूर दूर तक दिखी मखमली बर्फ की मोटी चादर, सतुपंथ और चंबा में भारी बर्फबारी। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केंसो सुई को मिला नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। रांची पहुंची भारत और वेस्टइंडीज की टीमें, 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में बात करने जा रहे हैं द ग्रेट इंडिया फेस्टिवल की, जिसकी शुरुआत जो है अब से 3 दिन बाद होने वाली है। 11 अक्टूबर रविवार को नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही देश में फेस्टिवल सीजन का एक बार फिर से आगाज हो जाएगा, जो नवरात्र, दशहरा, दिवाली और फिर छठ तक यूं ही जारी रहने वाला है। ऐसे में देश में त्योहारों की तैयारियां तमाम चल रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इसके साथ शहर शहर गरबे का रंग जमने लगा है। कभी जो उत्सव गुजरात के शहरों तक सिमटा था, अब वो भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंच चुका है। अब देश भर के शहरों में नवरात्र के दौरान गरबे का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अब शहर शहर गरबा की तैयारियां दिख रही हैं। बाजार में गरबा की पोशाकों की बहार है। इसी तरीके से तैयारियों में माँ दुर्गा के पंडालों के लिए भी दिख रही हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक माँ भवानी के स्वागत की तैयारियां तमाम चल रही हैं। कलाकार देवी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। पंडालों का निर्माण आखिरी दौर में नजर आ रहा है, तो वहीं पर देश भर में रामलीला के मंचन की तमाम तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अलग अलग कमेटियां रामलीला के आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। मंच सज रहे हैं, रिहर्सल चल रहा है और शहर शहर रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रावण की भव्य शोभा यात्रा के साथ दशहरा उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। प्रयाग दुनिया का वो अकेला शहर है जहां पर रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। आखिर प्रयाग में क्यों निभाई जाती है परंपरा, चलिए आपको पहले यह बताते हैं।

0: गाता था, संगीत का पुजारी था, देवों का उपासक था, कुशल प्रशासक था, लेकिन फिर भी उसका नाम बुराई का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान होने की वजह से इन दोनों के गुणों के साथ जन्मा था वो, और शायद यही वजह थी कि अच्छाई और बुराई दोनों के भाव हमेशा उसके अंतर मन को मचते रहे। वक्त के साथ बुराई उसकी अच्छाइयों पर हावी होती चली गई और रावण अधर्म का चेहरा बन गया। और शायद यही वजह रही कि त्रेता युग और आने वाले हर युग के लिए रावण की पराजय दुनिया में विजय का उत्सव बन गई और उसका दहन बुराई के अंत का त्योहार बन गया। बावजूद इसके कहना गलत नहीं होगा कि भले ही रामायण हर तरह से भगवान राम की कथा है, लेकिन ये भी सच है कि बिना रावण के ये कहानी अधूरी है। श्री राम का पक्ष उजला है तो रावण का पक्ष काला था। लेकिन दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जहां न केवल रावण की कहानी का उजला पक्ष उभर कर आता है, बल्कि हर साल उसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रावण से जुड़ी एक परंपरा बरसों से निभाई जा रही है। हर साल प्रयागराज में नवरात्र से पहले धूमधाम से रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। श्री कटरा रामलीला कमेटी इस शोभा यात्रा का आयोजन हर साल पूरी भव्यता के साथ करती है। इसी शोभा यात्रा के साथ प्रयागराज में हर साल दशहरा उत्सव की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में होती है। यह तीनों लोगों के विजेता कहे जाने वाले लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का श्री गणेश होता है। संगम नगरी में रावण की ये शोभा यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें झांकियां निकलती हैं, अलग अलग कलाकार रावण, मंदोदरी, मेघनाद, कुंभकर्ण और विभीषण का किरदार निभाते हैं।
1: मैं रावण की पत्नी मंदोदरी बनी हूँ आज, और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ भ्रमण के लिए निकले हैं। हमारे परिवार मेघनाद, कुंभकर्ण और विभीषण और उनके दास लोग हैं हम लोग के साथ, और हम लोग अपने नाना के ननिहाल आए हुए हैं।
2: कितना बड़ा इतिहास है ये आपके इतिहास का?
1: बहुत बड़ा इतिहास है, 6000 साल पुरानी है इतिहास।
0: आपको बता दें कि प्रयागराज का कटरा क्षेत्र भरद्वाज मुनि के आश्रम क्षेत्र में आता है और इस स्थान को रावण का ननिहाल माना जाता है। दरअसल रावण के पिता महर्षि विश्रवा प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य के बेटे थे, जबकि महर्षि भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति के पुत्र ऋषि अंगिरा के वंशज थे। पौराणिक इतिहास और ऋषि कुलों के आपसी संबंधों के आधार पर रावण को महर्षि भारद्वाज के ही कुल का वंशज यानी उनका प्रपौत्र माना जाता है। इसी वजह से प्रयागराज को रावण का ननिहाल भी कहते हैं। और रावण के ननिहाल प्रयाग के कटरा इलाके में ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। पहले मुगलों के शासन और फिर अंग्रेजों के काल में भी इस परंपरा को यूं ही निभाया जाता रहा। दरअसल प्रयागराज के कटरा इलाके में रावण को बुराई का प्रतीक माना ही नहीं जाता, बल्कि उसकी पहचान यहाँ एक विद्वान और शिव भक्त के रूप में है। और इस परंपरा और मान्यता का आधार रामायण का वो प्रसंग है जो श्री राम की लंका विजय के बाद घटा था। मान्यता के मुताबिक जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते समय संगम पर महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे, तो मुनि भारद्वाज ने उनसे सीधे मिलने से संकोच किया। इसके बाद महर्षि भारद्वाज के ही निर्देश पर भगवान राम ने प्रयाग की पावन भूमि पर कोटि तीर्थ की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की, ताकि वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सके। यही कारण है कि प्रयागराज में रावण की विद्वता, शिव भक्ति और ऋषि कुल से उसके संबंध का सम्मान करते हुए उसे एक राक्षस मानकर तिरस्कृत नहीं किया जाता, बल्कि नवरात्र से पहले सम्मान के प्रतीक के रूप में उसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है।
3: श्री कटरा रामलीला कमेटी महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र में स्थापित है और अनेकों वर्षों से 100-150 वर्षों से तो हमने ही अपने पूर्वजों से इसके बारे में सुनते चले आ रहे हैं। हजारों वर्षों का पुराना इतिहास है जी। रावण की शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। रावण का ननिहाल महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र में महर्षि भारद्वाज मुनि नाना लगते थे, इसलिए हम लोग सम्मान देने के नाते रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान श्री राम की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन सम्मान देने के नाते रावण की भी शोभा यात्रा हम लोग रामलीला मंचन के पहले निकालते हैं। इस जो परंपरा ऐतिहासिक बहुत दिनों से चली आ रही है, रावण अपने पूर्व सज्जस के साथ अपने भाइयों अपने रानियों अपने पुत्रों के साथ यहाँ पर सज्जस के साथ निकलता है और अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए श्री कटरा रामलीला कमेटी का निर्धारित मार्ग से होते हुए लगभग 6 किलोमीटर का मार्ग होते हुए या कर्नलगंज और कटरा के क्षेत्रों से भ्रमण करता हुआ यहाँ पर लोग बीच बीच में अलग अनेकों जगह आरती और पूजन करते हुए रावण की शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं।
0: ये उत्तर भारत की एकमात्र परंपरा है जहाँ दशहरा रावण दहन से नहीं बल्कि रावण वंदना के साथ मनाया जाता है। वास्तव में प्रयागराज की ये परंपरा उस संतुलन का भी प्रतीक है जहाँ बुराई में भी अच्छाई देखने की दृष्टि है और जहाँ इतिहास धर्म परंपरा और संस्कृति एक साथ चलते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: रावण की अनोखी परंपरा जहां पर प्रयागराज में देखी तो वहीं पर कोटा में दशहरा से पहले महारावण तैयार किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कोटा में अब की बार विजयादशमी के उत्सव के लिए 105 फीट का विशाल का रावण तैयार किया जा रहा है। लकड़ी के इस फ्रेम के आकार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ रावण की ये कितना विशाल स्वरूप देखने को मिल रहा है। इस रावण के निर्माण में 5 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। बांस के 500 से ज्यादा टुकड़ों से पुतले को आकार दिया गया है। करीब 1500 मीटर वेलवेट से रावण के वस्त्रों को तैयार किया जा रहा है। करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी से रावण के पुतले को बांधा जा रहा है। कागज को चिपकाने के लिए करीब 2 क्विंटल गोंद का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, पूरा बनकर तैयार होने पर जब ये रावण खड़ा हो जाएगा तो इसका दीदार काफी दूर तक आपको नजर आएगा। लेकिन इस रावण की खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है, इस रावण का दहन भी बहुत रोचक होने वाला है। इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि दहन से पहले ये रावण अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमाता हुआ आपको नजर आएगा। अपनी विशाल भुजाओं से ये रावण तलवार भी चलाता हुआ नजर आएगा, मूंछ लाएगा और अपनी पलकें भी झपकाएगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल जीवंत है। रावण के इस विशाल पुतले को तैयार करने के लिए दिल्ली NCR से कारीगरों को खास तौर पर कोटा बुलाया गया है। तस्वीरें देखिए। तो त्योहारों की शुरुआत में 3 दिन बाकी हैं और 3 तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रामलीला के मंचों की तरह माँ दुर्गा के भव्य पंडाल सजाने का काम भी अब लगभग पूरा हो चुका है। रविवार से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है, लिहाजा शहर शहर माँ के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। माँ की प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जा रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि माँ के दरबार को भव्य और दिव्य रूप से सजाया जाए।

0: दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। हर तरफ माँ के आगमन की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। माँ की मूर्ति का निर्माण और श्रृंगार कार्य अंतिम चरण में है। वहीं माँ का दरबार सजाने संवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है, जहाँ भारद्वाज पार्क में कोलकाता से आए मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सभी मूर्तियां गंगा की शुद्ध मिट्टी से बनाई जा रही हैं, जिन्हें प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल रंगों से इन्हें सजाया जा रहा है।
1: ये इको फ्रेंडली कलर है, ये कोई मूर्तियों में हाँ फूल नहीं है। मूर्तियां गंगा जी की मिट्टियों से बनी है और नवरात्र है तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रयागराज के जितने भी पंडाल की मूर्तियां हैं हमें बनाने को मिल रही है, उसका डिजाइन करने उसको कलर करने की प्रतिमाओं को मिल रहा है पंडाल में।

0: दुर्गा की आंखों में भाव उकेरे जा रहे हैं, तो कहीं उनके मुकुट और आभूषणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रंगों की अंतिम परत के साथ प्रतिमाओं में मानव जीवन का संचार हो रहा है। यहां 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। साथ भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी गंगा की मिट्टी से ही बनाई जा रही है।
1: पूरे देश में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त भरद्वाज पार्क में हैं, जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो बनाने का काम है वो चल रहा है, और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं और इन मूर्तियों को बनाया और संवारा जा रहा है। ये मूर्तियां 3 फीट से लेकर के 10 फीट तक हैं, और तमाम ये बड़ी छोटी मूर्तियां यहां बनाई जाती हैं। तमाम कलाकार यहां पर इन रंग भरने का इन मूर्तियों में काम कर रहे हैं।
0: नवरात्र शुरू होते ही ये प्रतिमाएं शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में स्थापित की जाएगी। एक ओर जहां आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं आकार ले रही है, वहीं दूसरी ओर मां जगदम्बे को ही समर्पित भव्य पंडालों का निर्माण भी जोरों पर है। ये भव्य तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की है, जहां भव्य पंडालों का बनाने का काम शुरू हो गया है। पुरुलिया में प्रसिद्ध भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी हर साल खास थीम पर पंडाल बनाती है। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए खास थीम पाषाणे प्राण यानी पत्थरों में प्राण पर पंडाल निर्माण किया गया है। इस थीम के जरिए प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक को सामने लाने की कोशिश की गई है, यानी शानदार थीम और पारंपरिक भव्यता को किस तरीके से दर्शाया जाए, इसको लेकर कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई व्यस्त है। पूजा आयोजकों और कलाकारों ने पुराने समय के उस धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को जीवंत करने का प्रयास किया है, जब पहाड़ों और गुफाओं के बीच मंदिरों में देवी देवताओं की आराधना की जाती थी।
2: हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है, और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं, जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा, और हर साल के तरह इस साल भी भीड़ उमड़ पड़ेगा इधर।
0: यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा है, उनके दाईं ओर भगवान शिव और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। पंडाल के प्रत्येक पिलर और दीवार पर भारतीय संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं की विभिन्न आकृतियाँ पत्थर की नक्काशी की शैली में उकेरी गई है। ऐसी गुफा मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होगी और यही माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ पुरुलिया से सत्यजीत बैनर्जी, गुड न्यूज टुडे।
3: फेस्टिवल सीजन का ही एक और रंग है गरबे का। नवरात्र के दौरान देश भर में शहर शहर गरबा आयोजन होते हैं। पूरे 9 दिन गरबे का उत्सव नजर आता है। नवरात्रि के समय हर कोई गरबा करने के लिए उत्सुक नजर आता है। कभी जो गरबा केवल गुजरात की शान था, आज लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में बहुत उत्साह के साथ खेला जाता है। रविवार से गरबा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं देश में कैसी चल रही है गरबा की तैयारियां।

तैयारी है माँ दुर्गा के महापर्व पर गरबा खेलने की, और सबसे बढ़कर ये तैयारी है साल भर की बीती बातों, किस्सों और वाकयों को पीछे छोड़ त्योहार की खुशियों में डूबकर धूम मचाने की। माँ के आगमन का उत्सव है, सो देश भर में शहर शहर गरबा प्रेमी पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हैं। रंग बिरंगी परंपरागत पोशाकों से लेकर सजे धजे डांडिया तक हर तैयारी पूरे मन और लगन से की जा रही है। चनिया चोली केड़िया सब तैयार है। जरा सोचिए, जब तैयारी ऐसी जानदार है तो उत्सव

0: कितना शानदार होगा। वैसे तो गरबा और डांडिया नृत्य मूल रूप से गुजरात की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन अब नवरात्र के दौरान देश भर के शहरों पर गुजरात का ये रंग चढ़ा नजर आता है। शहर शहर अलग अलग क्लब्स और डांस ग्रुप्स विशेष गरबा नाइट्स का आयोजन करते हैं, जिसमें पूरी तैयारी और सज धज के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। अब की बार भी तैयारी जोरों पर है। चनिया चोली और केड़िया के पारंपरिक परिधानों से देश भर के बाजार सज चुके हैं। ये तस्वीरें मुंबई के बोरीवली की हैं, जहां गरबा डांडिया के लिए पोशाकों से बाजार सज गया है।
1: नवरात्रि में गरबा राज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब बात मुंबई की हो तो बात ही अलग है। मुंबई के बोरीवली इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 80% गुजराती समाज रहता है, और देखिए यहाँ का बाजार किस तरीके से चन्या चोली और केडी से सज चुका है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग डिमांडिंग चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं फैशन हब के नाम के एक शॉप में एंट्री कर रहा हूँ, और खरीदारी बहुत ही ज्यादा जोरों पर है। महिलाएं और स्पेशली जो जेंजेस हैं और युवती हैं, वो देखिए अपने अपने पसंद के चन्या चोली और केडिया यहाँ पर खरीद रहे।
0: ट्रेडिशनल पोशाक भी खूब हैं, तो ट्रेंडिंग डिजाइन की भी कमी नहीं। जिसे जो भा रहा है वही ले जा रहा है। प्रैक्टिस अपनी जगह है, लेकिन गरबा खेलने के लिए लुक कम्प्लीट होना भी जरूरी है।
1: अमृता, मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तक आपको कुछ पसंद नहीं आया?
2: मतलब मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लूँ और क्या नहीं।
1: क्या सोच करके आए थे, क्या लेना है?
2: मतलब मुझे पर्टिकुलर, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मतलब घाघरास है जो लोअर पहनते हैं, और ब्लाउजेस की यहाँ पे वैरायटीज है, तो वो उसी से रिलेटेड कुछ सोच रहा
1: हूँ। अच्छा, ये 9 दिन अलग अलग थीम पर ही काम करने वाले हो ना?
2: मतलब कलर्स रहते हैं, और उसके हिसाब से हम लाइक एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ। और वैसे हम जनरली तो हम क्या कहते हैं, एवरी ईयर एक एक लेते हैं, और फिर वो कलेक्ट हो जाते हैं ओवर द टाइम।
1: अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या सोच कर आया है, क्या ट्रेंड में है, क्या डिमांड में, आपको क्या लगता है, या फिर ऑर्डर भी देते हैं?
2: हाँ, मतलब कस्टम मेड भी होता है, और अभी मार्केट में बहुत सारी हर एक नए नए डिजाइन भी आते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि कैसा है क्या।
0: और ये तस्वीरें आई हैं गुजरात के सुरेंद्र नगर से, जहाँ इन दिनों गरबा डांडिया से जुड़ी पोशाकों की डिमांड बढ़ गई है। यहाँ अलग अलग डिजाइन और अलग अलग रंगों की पारंपरिक चनिया चोली तैयार की जा रही है, जिनकी डिमांड यूपी, एमपी, दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक है।
3: चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली, कैरियर सेट, जिमी सेट सब हम यहाँ बनाते हैं। हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है, और हम बनाते हैं सब बाहर गाँव जाते हैं बॉम्बे साइड, उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, और आरी वर्क होता है, और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है।
0: गुजरात में लोग पारंपरिक गरबा परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं, तो राजस्थान के पाली में भी गरबा खेलने की तैयारियां जोरों पर है। माँ को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले गरबा रास को लेकर जोरदार प्रैक्टिस चालू है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी दिल लगाकर गरबा सीखने में जुटे हैं।
4: नृत्य एक ऐसा फॉर्म है जिसमें लाइक हम सब कुछ भूल के सिर्फ डांस के थ्रू माँ से कनेक्ट हो सकते हैं।
5: गरबा में बेसिकली तो 2 ताली, 3 ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं, बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन जी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डाल दे, तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते हैं तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
0: गीतों की थाप पर झूमती थिरकती महिलाओं की ऐसी ही तस्वीरें झांसी से भी आई। ये नजारा झांसी के ऐतिहासिक किले के छांव पार्क का है, जहां सैकड़ों महिलाएं और युवतियां डांडिया की ट्रेनिंग ले रही हैं।
6: पानी कितने लोग हैं, बट लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि हाँ, सब गरबा के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और इनको देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जब पब्लिक आपकी जोश में होती है तो अपने आप अंदर से जोश आ जाता है, और डेफिनेटली ये माता रानी के लिए सभी की भक्ति है, और मैं भी बस इस भक्ति में झूमते हुए सबको नृत्य सिखा रही हूँ, डांडिया सिखा रही हूँ।
0: ट्रेडिशनल के साथ टेम्पररी ताल का धमाल अब की बार डांडिया उत्सव का उत्साह और बढ़ा रहा है, जिसकी तान पर गरबा के स्टेप सीखती महिलाओं का उत्साह देखने लायक है।
7: तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये आज के लिए जो डांस जुम्बा क्लासेस हुआ है। रितु मैम ने हम लोगों को जो डांस सिखाया है बहुत अच्छी इन डांस सिखाती हैं हम लोगों को, और जो 12th October को हो रहा है डांडिया नाइट, हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं।
8: नवरात्रि के लिए तो बहुत एक्साइटेड है, 12th October को हम सब लोग मिलकर जाने वाले हैं, हमारे सारे बच्चे भी जाएंगे साथ में।
0: वास्तव में गरबा नृत्य शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, मात्र शक्ति की महिमा और जीवन के उत्सव को मनाने के लिए किया जाता है। मूल रूप से गुजरात से शुरू हुआ ये पारंपरिक लोक नृत्य अब पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है, और इसी लोकप्रियता के बीच पोशाक तैयार है और प्रैक्टिस भी जोरदार है। अब तो बस इंतजार है उस उत्सव का, जिसके शुभारंभ के साथ ही देश गरबा और डांडिया के रंग और उमंग में डूब जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, झांसी से अजय झा और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: खास कार्यक्रम में नहीं, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
2: पहाड़ों पर तेजी से मौसम करवट बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। आसमान पर बादलों का डेरा है और कई जगहों पर ठंडी हवाओं के साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है।
3: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते पहाड़ कूल कूल हो गए। आसमान पर बादल छाए, ठंडी हवाओं ने दस्तक दी और फिर शुरू हुई झमाझम बारिश। धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, यानी मौसम ने पल भर में गर्मी से राहत का ऐसा इंतजाम किया कि पहाड़ों की फिजा ही बदल गई। इस बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए धर्मशाला और मैकलोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंडी हवाओं, बारिश और पहाड़ों की हसीन फिजाओं ने सैलानियों का मजा दोगुना कर दिया है। बारिश और ओलावृष्टि के बीच भी त्रिउंड ट्रैक को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों की खूबसूरती और बदलते मौसम का मजा लेने त्रिउंड का रुख कर रहे हैं। असल में मौसम के इस बदलते मिजाज का अंदेशा मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था। विभाग ने आने वाले दिनों में भी पहाड़ों पर मौसम के ऐसे ही तेवर बनने के अनुमान जताए हैं।
4: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हमारे जो स्पेशली क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगभग 9 अक्टूबर तक प्रदेश के जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मध्यम बारिश का दौर है वो देखने को मिलेगा।
3: इसी के साथ पहाड़ों पर मौसम का अगला रंग बर्फबारी का हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरने के साथ बर्फ गिरने की संभावना है। इसी को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है।
4: प्रभाव से जो हमारे जो क्षेत्र है जिसमें कांगड़ा है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हाँ संभावना की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। देखिए अलर्ट मुख्यतः जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और शिमला, यहाँ पे आफ्टरनून और लेट इवनिंग में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया गया आगामी 4 दिनों के लिए येलो कैटेगरी में।
3: मौसम के बदले मिजाज ने पहाड़ों की फिजा के साथ साथ पर्यटन का रंग भी बदल दिया है। अब सबकी नजरें मौसम के अगले करवट पर है, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम अपने साथ खूबसूरती के नए रंग भी लेकर आता है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: आज भारतीय वायुसेना बनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही है भक्तों की भीड़। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार, देवताल में दूर दूर तक दिखी मखमली बर्फ की मोटी चादर, सतुपंथ और चंबा में भारी बर्फबारी। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केंसो सुई को मिला नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान, ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। रांची पहुंची भारत और वेस्टइंडीज की टीमें। 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कल होने वाले वायुसेना के स्थापना दिवस की। इस खास दिन होने वाले पराक्रम के प्रदर्शन की, वायुसेना के शौर्य और इतिहास से जुड़ा है एयरफोर्स डे, जो अब देशभक्ति के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनता जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर होने वाले इस खास कार्यक्रम में वायुसेना के चीफ परेड की सलामी लेंगे तो थल सेना और नौसेना चीफ भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। यहां पर देखिए, नभ में वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों और हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन भी करेगी। दूसरी खबर, जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास की भी हम करेंगे, जहां पर भारत समेत 8 देशों की वायुसेनाएं बेहतर तालमेल के लिए हवाई युद्ध अभ्यास कर रही हैं। इस एक्सरसाइज में बड़े देशों के आधुनिक लड़ाकू विमान अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत रहे हैं। तीसरी खबर, इंडियन कोस्ट गार्ड के एक्सरसाइज की भी करेंगे। 2 दिन के इस खोजी और बचाव अभ्यास में बड़ी संख्या में विमान और जहाज शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इसमें देखिए कई और एजेंसियों के साथ तालमेल के सामंजस्य की परख भी देखी जाएगी, ताकि विपरीत परिस्थितियों में बचाव अभियानों में पहले से और तेजी लाई जा सके। आज बात करेंगे सबसे पहले भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना 94वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शानदार समारोह का आयोजन होने वाला है। इस बार वायुसेना की थीम है अचूक, अभेद, सटीक। कल एयरफोर्स डे पर वायुसेना के जवान अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करेंगे। स्टैटिक डिस्प्ले में वायुसेना के फाइटर जेट्स और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का दमखम भी नजर आएगा।
9: अचूक, अभेद्य, सटीक, भारतीय वायुसेना की यही पहचान। नभ के पहरतारों के पराक्रम से हिंदुस्तान का सुरक्षित आसमान। वायु वीरों के शौर्य की कहानी कहता हिंदुस्तान का इतिहास। एयरफोर्स डे पर जब जमीन पर वायुसेना के जाबाज एक तरफ परेड कर रहे होंगे, तो आसमान से इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ध्वज फॉर्मेशन का फ्लाई पास्ट कर रहे होंगे। हिंदुस्तान की वायुसेना के पराक्रम की पहचान फाइटर जेट्स और मिसाइलों की ताकत इस खास मौके पर वीरता और शौर्य की तस्वीरें पेश करेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट से लेकर तेजस लड़ाकू विमानों की मौजूदगी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए पराक्रम की याद दिलाएगी। वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जब वायु वीर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, तो हिंडन एयरबेस का आसमान वायुसेना की एयरक्राफ्ट की गड़गड़ाहट से गूंजने लगेगा। हिंडन एयरबेस पर मौजूद हर शख्स वायुसेना के हैरत अंगेज करतबों का गवाह बनेगा, तो देशभक्ति का जज्बा देखने लायक होगा। हेरिटेज फ्लाइट के दौरान आसमान में पुराने विमानों के करतब, वायुसेना के पुराने और नए विमानों के मेल से वायुसेना की शक्ति और इतिहास की अनोखी झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा फाइटर जेट्स और हथियार वायुसेना की ताकत के नजीर पेश करेंगे। इस डिस्प्ले में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को रखा गया है। ब्रह्मोस के साथ ही तेजस, सुखोई और प्रचंड भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए हैं। सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार सिस्टम, रडार और एक तरफा हमला करने वाले मानव रहित हवाई सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल को भी दर्शाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर्स शामिल हैं, एक अनोखा म्यूजिकल प्रदर्शन पेश करने वाली है। इस परफॉर्मेंस में स्नेयर ड्रम, रोटो ड्रम, बास ड्रम और सिंबल का इस्तेमाल होगा। साथ ही खास ड्रमिंग पैटर्न, शानदार फॉर्मेशन और कालाबाजी वाली गतिविधियां भी शामिल होंगी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिसमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर 2 और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा।
10: भारतीय वायुसेना अपने अस्तित्व के 94 साल पूरे कर चुकी है और इस मौके पर एयरफोर्स डे की भव्य परेड हिंडन में की जाएगी। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में भव्य समारोह के दौरान ड्रमर्स ड्रिल के साथ स्टैटिक डिस्प्ले होगा, जिसमें भारत के फाइटर जेट्स जो सुखोई 30 MKI, रफाल, तेजस और तमाम जैगुआर जैसे विमान भी रखे जाएंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस की ताकत भी इस एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन की खास हाईलाइट होने वाली है। इसके अलावा शक्ति ऑल विमेन कंटिंजेंट की असॉल्ट राइफल ड्रिल और ड्रमर्स ड्रिल भी एयरफोर्स डे पर एक खास आयोजन का हिस्सा होगी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह एयरफोर्स डे के मौके पर देशवासियों को संबोधित करेंगे।
9: 2021 तक एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन हिंडन में ही होता था, लेकिन 2022 से इस पैटर्न में बदलाव किया गया और 2022 में चंडीगढ़, 2023 में प्रयागराज और 2024 में इसे चेन्नई में आयोजित किया गया। सरकार के इस कदम का मकसद वायुसेना दिवस के आयोजन को अलग अलग शहरों तक पहुंचाना है, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता, पराक्रम और हवाई कर्तव्य को करीब से देखने का मौका मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ अब की बार वायुसेना दिवस समारोह को दो भागों में आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना दिवस की आधिकारिक मुख्य परेड और ग्राउंड डिस्प्ले हमेशा की तरह 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में ही होगी, लेकिन जनता के लिए बड़ा और मुख्य फ्लाई पास एयर शो इस बार वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इतिहास में ये पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा।
11: The main event, the Air Force Day Parade, will be held at Air Force Station Hindon on 8th October. The parade last year was held at Hindon after a gap of 3 years. In the year 2022, the parade was held at Chandigarh, in 2023 at Prayagraj, and in 2024 at Chennai. In alignment with the government's vision of offering citizens across the nation a closer glimpse of the might and capability of their Indian Air Force.
8: 24 बात करते हैं वायुसेना की तरंग शक्ति की। राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास दूसरा संस्करण प्रगति पर है और इस हवाई युद्धाभ्यास में दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखा रहे हैं। 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। खास बात देखिए इसमें यह है कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की भागीदारी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त हवाई अभियानों के जरिए आपसी तालमेल, अनुभव साझा करने और एक दूसरे के संचालन प्रक्रियाओं को समझना है।

0: साझेदारी में शक्ति, इस थीम को लेकर जब जोधपुर के आसमान में कई देशों के फाइटर जेट्स एक साथ गरजे तो मौका बेहद ही शानदार नजर आया। आसमान में हैरत अंगेज नजारे सबका ध्यान खींच रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत की अगुवाई में दुनिया के शक्तिशाली देशों की वायुसेना अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। वायुसेना ने इसे पावर ऑफ पार्टनरशिप का नाम दिया है। इसके तहत सभी देशों के वायुवीर एक दूसरे के साथ आसमान में पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान एक दूसरे के जहाज में आसमान में ही रिफ्यूल भी कर रहे हैं, तो शानदार फॉर्मेशन और तालमेल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर मिलजुल कर दुश्मन को जवाब दिया जा सके। जोधपुर में 26 सितंबर से तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास चल रहा है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें भारत सहित 8 देशों की सेनाएं अपने लड़ाकू विमानों व संसाधनों के साथ भाग ले रही है, जबकि 32 देश बतौर पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। तरंग शक्ति अभ्यास 2.0 को शुरू हुए 11 दिन बीत चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ एक्सरसाइज का दायरा बड़ा और जटिल होता जा रहा है। दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने और डॉग फाइट से लेकर एयरलिफ्ट और टैक्टिकल ड्रॉप्स को अंजाम दिया जा रहा है। स्ट्राइक रेंज को कई गुना बढ़ाया जा सके, इसकी भी वानगी देखने को मिल रही है।
1: भारतीय वायुसेना की मेगा ड्रिल तरंग शक्ति जोधपुर में पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक जारी है, और इसमें 40 से ज्यादा अलग अलग देशों की वायु सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका के 6 F-35 यानी उनके 5th जेनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और जर्मनी के रफाल इसमें शामिल है। इसके अलावा तमाम दूसरे देश अपने अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर्स के साथ तरंग शक्ति का हिस्सा बने हैं, और जैसे जैसे तरंग शक्ति आगे बढ़ रही है, जो 26 सितंबर से शुरू हुई थी, हर दिन कॉम्बैट कैपेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और भारतीय वायुसेना के कौशल को भी यहाँ पर देखा जा रहा है।
0: इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण अमेरिकी एयरफोर्स का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 है, जो भारत की सरजमी पर हो रहे युद्ध अभ्यास में पहली बार शामिल हुआ है। अभ्यास में जर्मनी ने अपने अत्याधुनिक A400M एटलस परिवहन विमान को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया है। यह विमान भारी सामान और सैनिकों की आवाजाही के साथ जटिल लॉजिस्टिक्स और एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। जर्मनी के पायलट्स भी भारत की सरजमी पर आकर अपनी खुशी बयां कर रहे हैं।
2: Been in India before, but also very great experience. It's fun to work with the Indian Air Force, and also fun to be in India. So it's a great country. I really like being here. And flying in India, you know, it's always different than flying in Germany. But this is how we get to learn a lot of new stuff, and that's one of the main points of this exercise, I think.
0: तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल देशों के एयर क्रू और मिशन प्लानर्स एक साथ बैठकर जटिल रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक कंबाइंड एयर ऑपरेशन आर्किटेक्चर विकसित किया जा सके।
1: खास तौर पर जो तमाम वायुसेनाएं आई हैं, उनके एयर चीफ्स यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सब ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रिसिशन स्ट्राइक से लेकर जो ड्रोन्स को किस तरह से काउंटर किया गया था और भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया आतंक के ठिकानों को तबाह करने के लिए, उन सब में किस तरह से भारतीय वायुसेना आगे बढ़ी, और वो भी आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ। यानी तरंग शक्ति एक मौका है जहां पर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, साथ ही पूरी दुनिया को भारत के हथियारों, भारत की वायुसेना का दमखम भी दिखाया जा रहा है।
0: जोधपुर में चल रहे वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के दौरान 8 अक्टूबर यानी कल वायुसेना दिवस के मौके पर जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर एरोबेटिक टीम का एयर शो भी होगा। सूर्य किरण टीम अपने 9 हॉक जेट से आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन और एरोबेटिक करतब दिखाएगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करते हैं तटरक्षक बल के अभ्यास की। समंदर में बड़े पैमाने पर आपातकालीन बचाव, विमान दुर्घटना या समुद्री टक्कर जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी और तालमेल को परखने के लिए ओडिशा के पारादीप तट के पास 12वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2026 का प्रदर्शन और लाइव डेमो आयोजित होने जा रहा है। हालांकि इस युद्धाभ्यास का पहला चरण आज संपन्न हो चुका है।

0: वयम रक्षामः, यानी हम रक्षा करते हैं। ये रक्षा समंदर की हो, भारतीय तटों की हो, या समंदर में जीवन के लिए जूझ रहे इंसानों की, ये जज्बा इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों का होता है। अपने इसी संकल्प को दृढ़ता प्रदान करने के लिए भारतीय तट रक्षक बल हिंदुस्तान के समंदर, तट की सुरक्षा, खोज और बचाव के साथ दूसरे एजेंसियों से तालमेल को बेहतर बनाने के लिए वक्त वक्त पर कई तरह के अभ्यास का आयोजन करता है। ओडिशा के पारादीप तट पर कोस्ट गार्ड का सारेक्स 2026 अभ्यास शुरू हो गया है, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। दो दिन के इस सबसे बड़े अभ्यास में कोस्ट गार्ड के 15 जहाज, 2 डॉर्नियर विमान, 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, 1 चेतक हेलीकॉप्टर, IAF के C-130J और MI-17 हेलीकॉप्टर, भारतीय नौसेना के 2 जहाज के साथ राज्य के संसाधन और तट आधारित सहायता इकाइयां शामिल हो रही हैं। इसी अभ्यास के तहत भुवनेश्वर में 24वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की बैठक भी हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय खोज और बचाव की तैयारियों को मजबूत करने, संकट की सूचना मिलने पर बेहतर मैनेजमेंट करने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए बचाव के साधनों को तेजी से जुटाने पर चर्चा हो रही है।
1: ये एक बड़ी ड्रिल है जिसमें भारतीय तट रक्षक दल अपना पूरा ताकत दिखाएगा, अपनी पूरी ताकत के साथ साथ किस तरह से वो एक्सरसाइजेस करता है और अलग अलग एजेंसीज के साथ कैसे मिलकर कोऑर्डिनेट करता है इन ऑपरेशंस के लिए, ये सब कुछ भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा।
0: सारेक्स 2026 अभ्यास में एक साथ हवाई और समुद्री संकट की स्थितियों से निपटने वाले बड़े पैमाने पर बचाव अभियान का भी अभ्यास हो रहा है। इसमें 228 लोगों को ले जा रहे एक यात्री विमान के समुद्र में उतरने और कंटेनर जहाज MV जुम्बा से टकराने जैसे हालात भी शामिल होंगे, जिसका प्रदर्शन कल यानी 8 अक्टूबर को किया जाएगा।
1: भारतीय तटरक्षक दल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जो समुद्र की सीमाओं की सुरक्षा भी करता है और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी ड्रिल भी करता है, वो भुवनेश्वर में एक बड़ी ड्रिल कर रहा है। और ये जो मैरिटाइम सिक्योरिटी ड्रिल है, इसमें कोस्ट गार्ड के तमाम असेट्स, चाहे वो शिप हो, चाहे वो वेसल्स हो, छोटी नाव हो और हेलीकॉप्टर्स हो, वो सब एक साथ मिलकर अलग अलग तरह के ड्रिल्स में हिस्सा ले रही हैं। और खास बात यह है कि चाहे समुद्र में किसी भी तरह के पायरेट्स को रोकना हो, चाहे इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग रोकनी हो, या फिर समुद्र में किसी भी तरह का जो ऑयल स्पिल्स हो उनको रोकने का काम हो, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। और कैसे अलग अलग एजेंसीज, चाहे वो भारतीय नौसेना हो या फिर अलग अलग प्रदेशों की पुलिस हो, तमाम दूसरी एजेंसियां हो, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाकर इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार समुद्र का प्रहरी बना हुआ है, अलग अलग ऑपरेशंस करता है, ये सब कुछ इस ड्रिल में दिखाया जाएगा। और भुवनेश्वर में होने वाली इस ड्रिल में एक साथ साझा असेट्स इंडियन कोस्ट गार्ड के देखे जा रहे हैं।
0: इससे पहले भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय ने रिसारेक्स 26 नाम से मुंबई तट पर क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास 24 सितंबर 2026 को आयोजित किया था। सागर कवच अभ्यास के तहत तटीय सुरक्षा का अभ्यास महाराष्ट्र और गोवा तट के साथ साथ गुजरात और दमन दीव में भी सफल संचालन किया गया, जिसमें राज्य पुलिस, नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा तंत्र की जांच की जाती है। इस अभ्यास की खास विशेषता 30 देशों के 32 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी, ये अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी इस अभ्यास के रणनीतिक महत्व और मिलकर काम करने की क्षमता को दर्शाएगी। यही नहीं, सारेक्स 2026 अभ्यास कोस्ट गार्ड की भावना के अनुरूप तेज, तकनीक सक्षम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े खोज और बचाव के ढांचे के निर्माण के भारत के संकल्प की झलक भी दिख रही है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दुर्गा पूजा के साथ साथ देश में विजयादशमी यानी दशहरा मनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर रामलीला के मंचन की तैयारियां और रावण दहन के लिए पुतले बनाने का काम भी इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। इस साल भी राजस्थान के कोटा में विशालकाय रावण का पुतला बनाया जा रहा है, जो अभी से चर्चा में है।

0: रावण के पुतले के लिए बांस और लोहे की छड़ों का ये विशालकाय ढांचा पूरी तरह से बना भी नहीं है और ये अभी से सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में आने के पीछे की वजह है इसका साइज। राजस्थान के कोटा में तैयार किया जा रहा ये पुतला 105 फीट से ज्यादा ऊंचा है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले करीब 70-70 फीट ऊंचे बनाए जा रहे हैं। इन विशाल पुतलों को तैयार करने के लिए खास तौर पर दिल्ली NCR से कारीगर बुलाए गए हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत से पुतलों को बनाने में जुटे हैं।
1: ये रावण 105 फुट प्लस हो जाएगा, कुंभकर्ण 70 फुट, मेघनाथ 70 फुट।
2: कितने कारीगर लग रहे हैं इसको काम करने?
1: 20 कारीगर एक महीने से रात और दिन लगे हुए हैं। सारे घर के लोग हैं, मेरे के परिवार के लोग हैं। रावण जब बन जाता है, हमें भी शौक है रावण बनाने का, कमाई तो एक अलग चीज है।
0: इन पुतलों को बनाने में लगे कारीगर ने बताया कि इनके निर्माण में करीब 5 टन लोहे और लगभग 500 बांस की खपच्चियों का इस्तेमाल किया गया है। इनके बाहरी हिस्से के लिए करीब 1500 मीटर वेलवेट कपड़ा लगाया जा रहा है, वहीं 300 किलो सुतली और करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, पुतलों को मौसम से बचाने के लिए वाटरप्रूफ इंपोर्टेड कागज लगाया जा रहा है और कागज को चिपकाने के लिए मैदा से तैयार की गई 1 से 2 क्विंटल लेई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा रावण के भीतर विशेष प्रकार की आतिशबाजी भी सेट की जा रही है, ताकि विजयदशमी के दिन दहन के दौरान अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले।
1: इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, रद्दी है तो 250 किलो के आसपास मिल जाएगी। नहीं बनाते हम 150 किलो लग जाती है। सुतली है जिससे बांधते हैं इसको, 300 किलो के आसपास लगेगा।
0: कोटा में दशहरा पर रावण का ये पुतला 360 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमाता नजर आएगा, हाथ में तलवार लेकर चलाएगा, मूछें हिलाएगा और आंखें भी झपकाएगा। कारीगरों का कहना है कि 10 से 11 तारीख तक रावण का पुतला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।
1: विशेषता रावण में, कोटा के रावण में खुद ही विशेष है, सारी चीजें इसमें होती है। जिससे गर्दन घुमाता है, पलके चलाता है, तलवार भी चलाएगा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो। अब आने वाले टाइम में हमारा काम जो है इस टाइम 90% हो चुका है, 10% रह रहा है, उसमें देखेंगे क्या हम नया दिखा सकते हैं कोटा के। 10% मात्र काम रहना है, इसको देख रहे हैं, फिनिशिंग होना पड़ा, फिनिशिंग करनी है।
0: दशहरा के साथ ही रामलीला मंचन की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में यूपी के प्रयागराज में श्री महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी ने एक दिन पहले मुकुट पूजन समारोह किया। ये कार्यक्रम शाहगंज के राम मंदिर में विधि विधान से संपन्न हुआ। परंपराओं के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मुकुट की पूजा 11 ब्राह्मणों और वेद पाठियों ने मंत्रोच्चार से की। इस दौरान मंदिर श्रद्धालुओं से भर गया और जयकारे गूंजते रहे। बताया जाता है कि ये मुकुट 100 साल से भी अधिक पुराने हैं और इन्हें लाहौर के कुशल कारीगरों ने तैयार किया था। कमेटी की ओर से इन बहुमूल्य मुकुटों को बेहद सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और रामलीला शुरू होने से पहले इनकी साफ सफाई कर पूजा की जाती है। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन श्री राम समेत अन्य स्वरूपों को ये मुकुट पहनाए जाते हैं। इसी के साथ पजावा रामलीला के दशहरा उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाती है।
3: जो हमारी कमेटी का इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और प्रयागराज के दशहरा में बहुत ही अभूतपूर्व अतुल्य सहयोग भी रहा है हमारे श्री महान बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी का। और ये मुकुट आपके सामने जो समक्ष प्रस्तुत हुआ है, सोने एवं चांदी से निर्मित है। ये लाहौर के कारीगरों द्वारा निर्मित है, जो कि लाहौर अब इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। जब ये निर्मित हुआ था तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए ये अपने में ही बहुत पौराणिक और अतुल्य है।
0: कहा यह भी जा रहा है कि पजावा रामलीला इस बार आधुनिक तकनीक और भव्य मंचन से खास रहेगी और कई नए प्रसंग भी जोड़े गए हैं। कोटा से चेतन गुर्जर और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं।
0: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: आज भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही है भक्तों की भीड़। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार, देवताल में दूर दूर तक दिखी मखमली बर्फ की मोटी चादर, सतुपंथ और चंबा में भारी बर्फबारी। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक कैंसो सुई को मिला नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। रांची पहुंची भारत और वेस्टइंडीज की टीमें, 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में बात करने जा रहे हैं द ग्रेट इंडिया फेस्टिवल की, जिसकी शुरुआत जो है अब से 3 दिन बाद होने वाली है। 11 अक्टूबर रविवार को नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही देश में फेस्टिवल सीजन का एक बार फिर से आगाज हो जाएगा, जो नवरात्र, दशहरा, दिवाली और फिर छठ तक यूं ही जारी रहने वाला है। ऐसे में देश में त्योहारों की तैयारियां तमाम चल रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इसके साथ शहर शहर गरबे का रंग जमने लगा है। कभी जो उत्सव गुजरात के शहरों तक सिमटा था, अब वो भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंच चुका है। अब देश भर के शहरों में नवरात्र के दौरान गरबे का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अब शहर शहर गरबा की तैयारियां दिख रही हैं। बाजारों में गरबा की पोशाकों की बहार है। इसी तरीके से तैयारियों में माँ दुर्गा के पंडालों के लिए भी दिख रही हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक माँ भवानी के स्वागत की तैयारियां तमाम चल रही हैं। कलाकार देवी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। पंडालों का निर्माण आखिरी दौर में नजर आ रहा है, तो वहीं पर देश भर में रामलीला के मंचन की तमाम तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अलग अलग कमेटियां रामलीला के आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। मंच सज रहे हैं, रिहर्सल चल रहा है और शहर शहर रावण के पुतले मंच सज रहे हैं, रिहर्सल चल रहा है और शहर शहर रावण के पुतले विश्व यात्रा के साथ दशहरा उत्सव की शुरुआत प्रयाग में क्यों निभाई जाती है परंपरा, चलिए आपको पहले यह बताते हैं।

0: संगीत का पुजारी था, देवों का उपासक था, कुशल प्रशासक था, लेकिन फिर भी उसका नाम बुराई का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान होने की वजह से इन दोनों के गुणों के साथ जन्मा था वो, और शायद यही वजह थी कि अच्छाई और बुराई दोनों के भाव हमेशा उसके अंतर मन को मचते रहे। वक्त के साथ बुराई उसकी अच्छाइयों पर हावी होती चली गई और रावण अधर्म का चेहरा बन गया। और शायद यही वजह रही कि त्रेता युग और आने वाले हर युग के लिए रावण की पराजय दुनिया में विजय का उत्सव बन गई और उसका दहन बुराई के अंत का त्योहार बन गया। बावजूद इसके कहना गलत नहीं होगा कि भले ही रामायण हर तरह से भगवान राम की कथा है, लेकिन ये भी सच है कि बिना रावण के ये कहानी अधूरी है। श्री राम का पक्ष उजला है तो रावण का पक्ष काला था। लेकिन दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जहां न केवल रावण की कहानी का उजला पक्ष उभर कर आता है, बल्कि हर साल उसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रावण से जुड़ी एक परंपरा बरसों से निभाई जा रही है। हर साल प्रयागराज में नवरात्र से पहले धूमधाम से रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। श्री कटरा रामलीला कमेटी इस शोभा यात्रा का आयोजन हर साल पूरी भव्यता के साथ करती है। इसी शोभा यात्रा के साथ प्रयागराज में हर साल दशहरा उत्सव की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में होती है। यह तीनों लोगों के विजेता कहे जाने वाले लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का श्री गणेश होता है। संगम नगरी में रावण की ये शोभा यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें झांकियां निकलती हैं, अलग अलग कलाकार रावण, मंदोदरी, मेघनाद, कुंभकर्ण और विभीषण का किरदार निभाते हैं।
1: मैं रावण की पत्नी मंदोदरी बनी हूँ आज, और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ भ्रमण के लिए निकले हैं। हमारे परिवार मेघनाद, कुंभकर्ण और विभीषण और उनके दास लोग हैं हम लोग के साथ, और हम लोग अपने नाना के नलियाल आए हुए हैं।
2: कितना बड़ा इतिहास है ये आपके इतिहास का?
1: बहुत बड़ा इतिहास है, 6000 साल पुरानी है इतिहास।
0: आपको बता दें कि प्रयागराज का कटरा क्षेत्र भरद्वाज मुनि के आश्रम क्षेत्र में आता है और इस स्थान को रावण का ननिहाल माना जाता है। दरअसल रावण के पिता महर्षि विश्रवा प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य के बेटे थे, जबकि महर्षि भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति के पुत्र ऋषि अंगिरा के वंशज थे। पौराणिक इतिहास और ऋषि कुलों के आपसी संबंधों के आधार पर रावण को महर्षि भारद्वाज के ही कुल का वंशज यानी उनका प्रपौत्र माना जाता है। इसी वजह से प्रयागराज को रावण का ननिहाल भी कहते हैं। और रावण के ननिहाल प्रयाग के कटरा इलाके में ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। पहले मुगलों के शासन और फिर अंग्रेजों के काल में भी इस परंपरा को यूं ही निभाया जाता रहा। दरअसल प्रयागराज के कटरा इलाके में रावण को बुराई का प्रतीक माना ही नहीं जाता, बल्कि उसकी पहचान यहाँ एक विद्वान और शिव भक्त के रूप में है। और इस परंपरा और मान्यता का आधार रामायण का वो प्रसंग है जो श्री राम की लंका विजय के बाद घटा था। मान्यता के मुताबिक जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते समय संगम पर महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे तो मुनि भारद्वाज ने उनसे सीधे मिलने से संकोच किया। इसके बाद महर्षि भारद्वाज के ही निर्देश पर भगवान राम ने प्रयाग की पावन भूमि पर कोटि तीर्थ की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की ताकि वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सके। यही कारण है कि प्रयागराज में रावण की विद्वता, शिव भक्ति और ऋषिकुल से उसके संबंध का सम्मान करते हुए उसे एक राक्षस मानकर तिरस्कृत नहीं किया जाता, बल्कि नवरात्र से पहले सम्मान के प्रतीक के रूप में उसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है।
3: श्री कटरा रामलीला कमेटी महाराज महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र में स्थापित है अनेकों वर्षों से, 100-150 वर्षों से, तो हमने ही अपने पूर्वजों से इसके बारे में सुनते चले आ रहे हैं। हजारों वर्षों का पुराना इतिहास है जी। रावण की शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। रावण का ननिहाल महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र में, महर्षि भारद्वाज मुनि नाना लगते थे, इसलिए हम लोग सम्मान देने के नाते रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान श्री राम की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन सम्मान देने के नाते रावण की भी शोभा यात्रा हम लोग रामलीला मंचन के पहले निकालते हैं। इस जो परंपरा ऐतिहासिक बहुत दिनों से चली आ रही है, रावण अपने पूर्व सज्जस के साथ, अपने भाइयों, अपने रानियों, अपने पुत्रों के साथ यहाँ पर सज्जस के साथ निकलता है और अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए श्री कटरा रामलीला कमेटी का निर्धारित मार्ग से होते हुए लगभग 6 किलोमीटर का मार्ग होते हुए या कर्नलगंज और कटरा के क्षेत्रों से भ्रमण करता हुआ यहाँ पर लोग बीच बीच में अलग अनेकों जगह आरती और पूजन करते हुए रावण की शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं।
0: ये उत्तर भारत की एकमात्र परंपरा है जहाँ दशहरा रावण दहन से नहीं बल्कि रावण वंदना के साथ मनाया जाता है। वास्तव में प्रयागराज की ये परंपरा उस संतुलन का भी प्रतीक है जहाँ बुराई में भी अच्छाई देखने की दृष्टि है और जहाँ इतिहास, धर्म, परंपरा और संस्कृति एक साथ चलते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: रावण की अनोखी परंपरा जहां पर प्रयागराज में देखी, तो वहीं पर कोटा में दशहरा से पहले महारावण तैयार किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कोटा में अब की बार विजयादशमी के उत्सव के लिए 105 फीट का विशालकाय रावण तैयार किया जा रहा है। लकड़ी के इस फ्रेम के आकार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां रावण की ये कितना विशाल स्वरूप देखने को मिल रहा है। इस रावण के निर्माण में 5 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। बांस के 500 से ज्यादा टुकड़ों से पुतले को आकार दिया गया है। करीब 1500 मीटर वेलवेट से रावण के वस्त्रों को तैयार किया जा रहा है। करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी से रावण के पुतले को बांधा जा रहा है। कागज को चिपकाने के लिए करीब 2 क्विंटल गोंद का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, पूरा बनकर तैयार होने पर जब ये रावण खड़ा हो जाएगा तो इसका दीदार काफी दूर तक आपको नजर आएगा। लेकिन इस रावण की खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है, इस रावण का दहन भी बहुत रोचक होने वाला है। इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि दहन से पहले ये रावण अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमाता हुआ आपको नजर आएगा। अपनी विशाल भुजाओं से ये रावण तलवार भी चलाता हुआ नजर आएगा, मूंछ लाएगा और अपनी पलकें भी झपकाएगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल जीवंत है। रावण के इस विशाल पुतले को तैयार करने के लिए दिल्ली NCR से कारीगरों को खास तौर पर कोटा बुलाया गया है। तस्वीरें देखिए। तो त्योहारों की शुरुआत में 3 दिन बाकी हैं और 3 तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रामलीला के मंचों की तरह माँ दुर्गा की भव्य पंडाल सजाने का काम भी अब लगभग पूरा हो चुका है। रविवार से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है, लिहाजा शहर शहर माँ के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। माँ की प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जा रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि माँ के दरबार को भव्य और दिव्य रूप से सजाया जाए।

0: माँ दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। हर तरफ माँ के आगमन की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। माँ की मूर्ति का निर्माण और श्रृंगार कार्य अंतिम चरण में है। वहीं माँ का दरबार सजाने सवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है, जहाँ भारद्वाज पार्क में कोलकाता से आए मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सभी मूर्तियां गंगा की शुद्ध मिट्टी से बनाई जा रही हैं, जिन्हें प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल रंगों से इन्हें सजाया जा रहा है।
1: ये इको फ्रेंडली कलर है, ये कोई मूर्तियों में हाफ फूल नहीं है। मूर्तियां गंगा जी की मिट्टियों से बनी है और नवरात्र है तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रयागराज के जितने भी पंडाल की मूर्तियां हैं हमें बनाने को मिल रही है, उसका डिजाइन करने उसको कलर करने की प्रतिमाओं को मिल रहा है। पंडाल में हमने क्या नाम है कलर किए हैं, डिजाइन बनाई है, मूर्ति को सजाया है, साड़ी से लेकर बॉर्डर हर एक एक चीज मतलब माता रानी को एकदम अच्छे से सजा दिया है कि वो बहुत सुंदर लगती है देखने के, मन ही नहीं करता कि इनको विसर्जन किया जाए।
0: कहीं माँ दुर्गा की आंखों में भाव उकेरे जा रहे हैं तो कहीं उनके मुकुट और आभूषणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रंगों की अंतिम परत के साथ प्रतिमाओं में मानो जीवन का संचार हो रहा है। यहाँ 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। साथ भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी गंगा की मिट्टी से ही बनाई जा रही है।
2: पूरे देश में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त भरद्वाज पार्क में हैं, जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो बनाने का काम है वो चल रहा है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं और इन मूर्तियों को बनाया और संवारा जा रहा है। ये मूर्तियां 3 फीट से लेकर के 10 फीट तक हैं और तमाम ये बड़ी छोटी मूर्तियां यहां बनाई जाती हैं। तमाम कलाकार यहां पर इन रंग भरने का इन मूर्तियों में काम कर रहे हैं।
0: नवरात्र शुरू होते ही ये प्रतिमाएं शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में स्थापित की जाएगी। एक ओर जहां आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं आकार ले रही है, वहीं दूसरी ओर मां जगदम्बे को ही समर्पित भव्य पंडालों का निर्माण भी जोरों पर है। ये भव्य तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की है, जहां भव्य पंडालों का बनाने का काम शुरू हो गया है। पुरुलिया में प्रसिद्ध भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी हर साल खास थीम पर पंडाल बनाती है। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए खास थीम पाषाणे प्राण यानी पत्थरों में प्राण पर पंडाल निर्माण किया गया है। इस थीम के जरिए प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक को सामने लाने की कोशिश की गई है, यानी शानदार थीम और पारंपरिक भव्यता को किस तरीके से दर्शाया जाए इसको लेकर कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई व्यस्त है। पूजा आयोजकों और कलाकारों ने पुराने समय के उस धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को जीवंत करने का प्रयास किया है, जब पहाड़ों और गुफाओं के बीच मंदिरों में देवी देवताओं की आराधना की जाती थी।
3: हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा और हर साल की तरह इस साल भी भीड़ उमड़ पड़ेगा इधर।
0: यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा है। उनके दाईं ओर भगवान शिव और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। पंडाल के प्रत्येक पिलर और दीवार पर भारतीय संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं की विभिन्न आकृतियाँ पत्थर की नकाशी की शैली में उकेरी गई है। ऐसी गुफा मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होगी और यही माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ पुरुलिया से सत्यजीत बैनर्जी, गुड न्यूज टुडे।
4: फेस्टिवल सीजन का ही एक और रंग है गरबे का। नवरात्र के दौरान देश भर में शहर शहर गरबा आयोजन होते हैं। पूरे 9 दिन गरबे का उत्सव नजर आता है। नवरात्रि के समय हर कोई गरबा करने के लिए उत्सुक नजर आता है। कभी जो गरबा केवल गुजरात की शान था, आज लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में बहुत उत्साह के साथ खेला जा

0: ये तैयारी है माँ दुर्गा के महापर्व पर गरबा खेलने की, और सबसे बढ़कर ये तैयारी है साल भर की बीती बातों, किस्सों और वाकयों को पीछे छोड़ त्योहार की खुशियों में डूबकर धूम मचाने की। माँ के आगमन का उत्सव है, सो देश भर में शहर शहर गरबा प्रेमी पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हैं। रंग बिरंगी परंपरागत पोशाकों से लेकर सजे धजे डांडिया तक हर तैयारी पूरे मन और लगन से की जा रही है। चनिया चोली केड़िया सब तैयार है। जरा सोचिए, जब तैयारी ऐसी जानदार है तो उत्सव कितना शानदार होगा। वैसे तो गरबा और डांडिया नृत्य मूल रूप से गुजरात की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन अब नवरात्र के दौरान देश भर के शहरों पर गुजरात का ये रंग चढ़ा नजर आता है। शहर शहर अलग अलग क्लब्स और डांस ग्रुप्स विशेष गरबा नाइट्स का आयोजन करते हैं, जिसमें पूरी तैयारी और सज धज के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। अब की बार भी तैयारी जोरों पर है। चनिया चोली और केड़िया के पारंपरिक परिधानों से देश भर के बाजार सज चुके हैं। ये तस्वीरें मुंबई के बोरीवली की हैं, जहां गरबा डांडिया के लिए पोशाकों से बाजार सज गया है।
1: नवरात्रि में गरबा राज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब बात मुंबई की हो तो बात ही अलग है। मुंबई के बोरीवली इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 80% गुजराती समाज रहता है, और देखिए यहाँ का बाजार किस तरीके से चन्या चोली और केडी से सज चुका है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग डिमांडिंग चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं फैशन हब के नाम के एक शॉप में एंट्री कर रहा हूँ, और खरीदारी बहुत ही ज्यादा जोरों पर है। महिलाएं और स्पेशली जो जेंजेस हैं और युवती हैं, वो देखिए अपने अपने पसंद के चन्या चोली और केडिया यहाँ पर खरीद रहे।
0: ट्रेडिशनल पोशाक भी खूब हैं, तो ट्रेंडिंग डिजाइन की भी कमी नहीं। जिसे जो भा रहा है वही ले जा रहा है। प्रैक्टिस अपनी जगह है, लेकिन गरबा खेलने के लिए लुक कम्प्लीट होना भी जरूरी है।
1: अमृता, मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तक आपको कुछ पसंद नहीं आया?
2: मतलब मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लूँ और क्या नहीं।
1: क्या सोच करके आए थे, क्या लेना है?
2: मतलब मुझे पर्टिकुलर, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मतलब घाघरास है जो लोअर पहनते, और ब्लाउजेस की यहाँ पे वेराइटीज है, तो वो उसी से रिलेटेड कुछ सोच रहा हूँ।
1: अच्छा, ये 9 दिन अलग अलग थीम पर ही काम करने वाले हो ना?
2: मतलब कलर्स रहते हैं, और उसके हिसाब से हम लाइक एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ। और वैसे हम जनरली तो हम क्या करते हैं, एवरी ईयर एक एक लेते हैं, और फिर वो कलेक्ट हो जाते हैं ओवर द टाइम।
1: अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या सोच कर आया है, क्या ट्रेंड में है, क्या डिमांड में, आपको क्या लगता है, या फिर ऑर्डर भी देते हैं?
2: हाँ, मतलब कस्टम मेड भी होता है, और अभी मार्केट में बहुत सारी हर एक नए नए डिजाइन भी आते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि कैसा है क्या।
0: और ये तस्वीरें आई हैं गुजरात के सुरेंद्र नगर से, जहाँ इन दिनों गरबा डांडिया से जुड़ी पोशाकों की डिमांड बढ़ गई है। यहाँ अलग अलग डिजाइन और अलग अलग रंगों की पारंपरिक चनिया चोली तैयार की जा रही है, जिनकी डिमांड यूपी एमपी दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक है।
3: चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली, केड़िया सेट, जिमी सेट सब हम यहाँ बनाते हैं। हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है, और हम बनाते हैं सब बाहर गाँव जाते हैं बॉम्बे साइड, उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, और आरी वर्क होता है, और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है।
0: गुजरात में लोग पारंपरिक गरबा परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं, तो राजस्थान के पाली में भी गरबा खेलने की तैयारियां जोरों पर है। माँ को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले गरबा रास को लेकर जोरदार प्रैक्टिस चालू है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी दिल लगाकर गरबा सीखने में जुटे हैं।
4: नृत्य एक ऐसा फॉर्म है जिसमें लाइक हम सब कुछ भूल के सिर्फ डांस के थ्रू माँ से कनेक्ट हो सकते हैं।
5: गरबा में बेसिकली तो 2 ताली, 3 ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं, बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन ज़ी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डाल दे, तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते हैं तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
0: गीतों की थाप पर झूमती थिरकती महिलाओं की ऐसी ही तस्वीरें झांसी से भी आई। ये नजारा झांसी के ऐतिहासिक किले

0: के छांव पार्क का है, जहां सैकड़ों महिलाएं और युवतियां डांडिया की ट्रेनिंग ले रही हैं।
1: पानी कितने लोग हैं, बट लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि हाँ सब गरबा के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और इनको देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जब पब्लिक आपकी जोश में होती है तो अपने आप अंदर से जोश आ जाता है। और डेफिनेटली ये माता रानी के लिए सभी की भक्ति है, और मैं भी बस इस भक्ति में झूमते हुए सबको नृत्य सिखा रही हूँ, डांडिया सिखा रही हूँ।
0: ट्रेडिशनल के साथ टेम्पररी ताल का धमाल अब की बार डांडिया उत्सव का उत्साह और बढ़ा रहा है, जिसकी तान पर गरबा के स्टेप सीखती महिलाओं का उत्साह देखने लायक है।
2: तो पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये आज के लिए जो डांस जुम्बा क्लासेस हुआ है। रितु मैम ने हम लोगों को जो डांस सिखाया है बहुत अच्छी इन डांसर सिखाती हैं हम लोगों को, और जो 12th October को हो रहा है डांडिया नाइट, हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं।
3: नवरात्रि के लिए तो बहुत एक्साइटेड है, 12th October को हम सब लोग मिल के जाने वाले हैं, हमारे सारे बच्चे भी जाएंगे साथ में।
0: वास्तव में गरबा नृत्य शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, मात्र शक्ति की महिमा और जीवन के उत्सव को मनाने के लिए किया जाता है। मूल रूप से गुजरात से शुरू हुआ ये पारंपरिक लोक नृत्य अब पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है, और इसी लोकप्रियता के बीच पोशाक तैयार है और प्रैक्टिस भी जोरदार है। अब तो बस इंतजार है उस उत्सव का, जिसके शुभारम्भ के साथ ही देश गरबा और डांडिया के रंग और उमंग में डूब जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, झांसी से अजय झा और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खास कार्यक्रम में नहीं, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: पहाड़ों पर तेजी से मौसम करवट बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। आसमान पर बादलों का डेरा है और कई जगहों पर ठंडी हवाओं के साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है।
2: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते पहाड़ कूल कूल हो गए। आसमान पर बादल छाए, ठंडी हवाओं ने दस्तक दी और फिर शुरू हुई झमाझम बारिश। धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, यानी मौसम ने पल भर में गर्मी से राहत का ऐसा इंतजाम किया कि पहाड़ों की फिजा ही बदल गई। इस बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए धर्मशाला और मैक्लोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंडी हवाओं, बारिश और पहाड़ों की हसीन फिजाओं ने सैलानियों का मजा दो गुना कर दिया है। बारिश और ओलावृष्टि के बीच भी त्रिउंड ट्रैक को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों की खूबसूरती और बदलते मौसम का मजा लेने त्रिउंड का रुख कर रहे हैं। असल में मौसम के इस बदलते मिजाज का अंदेशा मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था। विभाग ने आने वाले दिनों में भी पहाड़ों पर मौसम के ऐसे ही तेवर बनने के अनुमान जताए हैं।
3: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हमारे जो स्पेशली क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगभग 9 अक्टूबर तक प्रदेश के जो मध्य व डिस्ट्रिक्ट में जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे मध्य बारिश का दौर है वो देखने को मिलेगा।
2: इसी के साथ पहाड़ों पर मौसम का अगला रंग बर्फबारी का हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरने के साथ बर्फ गिरने की संभावना है। इसी को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है।
3: प्रभाव से जो हमारे जो क्षेत्र है जिसमें कांगड़ा है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हाँ संभावना है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। देखिए अलर्ट मुख्यतः जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और शिमला, यहाँ पे आफ्टरनून और लेट इवनिंग में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया गया है आगामी 4 दिनों के लिए येलो कैटेगरी में।
2: मौसम के बदले मिजाज ने पहाड़ों की फिजा के साथ साथ पर्यटन का रंग भी बदल दिया है। अब सबकी नजरें मौसम के अगले करवट पर है, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम अपने साथ खूबसूरती के नए रंग भी लेकर आता है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: आज भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही है भक्तों की भीड़। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार, देवताल में दूर दूर तक दिखी मखमली बर्फ की मोटी चादर, सतुपंथ और चंबा में भारी बर्फबारी। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक कैंसो सुई को मिला नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। रांची पहुंची भारत और वेस्टइंडीज की टीमें। 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कल होने वाले वायुसेना के स्थापना दिवस की। इस खास दिन होने वाले पराक्रम के प्रदर्शन की वायुसेना के शौर्य और इतिहास से जुड़ा है एयरफोर्स डे, जो अब देशभक्ति के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनता जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर होने वाले इस खास कार्यक्रम में वायुसेना के चीफ परेड की सलामी लेंगे तो थल सेना और नौसेना चीफ भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। यहां पर देखिए, नभ में वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों और हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन भी करेगी। दूसरी खबर, जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास की भी हम करेंगे, जहां पर भारत समेत 8 देशों की वायुसेनाएं बेहतर तालमेल के लिए हवाई युद्ध अभ्यास कर रही हैं। इस एक्सरसाइज में बड़े देशों के आधुनिक लड़ाकू विमान अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत रहे हैं। तीसरी खबर, इंडियन कोस्ट गार्ड के एक्सरसाइज की भी करेंगे। 2 दिन के इस खोजी और बचाव अभ्यास में बड़ी संख्या में विमान और जहाज शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इसमें देखिए कई और एजेंसियों के साथ तालमेल के सामंजस्य की परख भी देखी जाएगी, ताकि विपरीत परिस्थितियों में बचाव अभियानों में पहले से और तेजी लाई जा सके। आज बात करेंगे सबसे पहले भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना 94वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शानदार समारोह का आयोजन होने वाला है। इस बार वायुसेना की थीम है अचूक, अभेद, सटीक। कल एयरफोर्स डे पर वायुसेना के जाबाज अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करेंगे। स्टैटिक डिस्प्ले में वायुसेना के फाइटर जेट्स और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का दमखम भी नजर आएगा।
7: अचूक, अभेद्य, सटीक, भारतीय वायुसेना की यही पहचान। नभ के पहरदारों के पराक्रम से हिंदुस्तान का सुरक्षित आसमान। वायु वीरों के शौर्य की कहानी कहता हिंदुस्तान का इतिहास। एयरफोर्स डे पर जब जमीन पर वायुसेना के जाबाज एक तरफ परेड कर रहे होंगे, तो आसमान से इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ध्वज फॉर्मेशन का फ्लाई पास्ट कर रहे होंगे। हिंदुस्तान की वायुसेना के पराक्रम की पहचान फाइटर जेट्स और मिसाइलों की ताकत इस खास मौके पर वीरता और शौर्य की तस्वीरें पेश करेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट से लेकर तेजस लड़ाकू विमानों की मौजूदगी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए पराक्रम की याद दिलाएगी। वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जब वायुवीर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, तो हिंडन एयरबेस का आसमान वायुसेना की एयरक्राफ्ट की गड़गड़ाहट से गूंजने लगेगा। हिंडन एयरबेस पर मौजूद हर शख्स वायुसेना के हैरत अंगेज करतबों का गवाह बनेगा, तो देशभक्ति का जज्बा देखने लायक होगा। हेरिटेज फ्लाइट के दौरान आसमान में पुराने विमानों के करतब वायुसेना के पुराने और नए विमानों के मेल से वायुसेना की शक्ति और इतिहास की अनोखी झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा फाइटर जेट्स और हथियार वायुसेना की ताकत के नजीर पेश करेंगे। इस डिस्प्ले में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को रखा गया है। ब्रह्मोस के साथ ही तेजस, सुखोई और प्रचंड भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए हैं। सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार सिस्टम, रडार और एक तरफा हमला करने वाले मानव रहित हवाई सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल को भी दर्शाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम, जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर्स शामिल हैं, एक अनोखा म्यूजिकल प्रदर्शन पेश करने वाली है। इस परफॉर्मेंस में स्नेयर ड्रम, रोटो ड्रम, बास ड्रम और सिंबल का इस्तेमाल होगा। साथ ही खास ड्रमिंग पैटर्न, शानदार फॉर्मेशन और कालाबाजी वाली गतिविधियां भी शामिल होंगी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिसमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर 2 और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा।
8: भारतीय वायुसेना अपने अस्तित्व के 94 साल पूरे कर चुकी है और इस मौके पर एयरफोर्स डे की भव्य परेड हिंडन में की जाएगी। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में भव्य समारोह के दौरान ड्रमर्स ड्रिल के साथ स्टैटिक डिस्प्ले होगा, जिसमें भारत के फाइटर जेट्स जो सुखोई 30 एमकेआई, रफाल, तेजस और तमाम जैगुआर जैसे विमान भी रखे जाएंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस की ताकत भी इस एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन की खास हाईलाइट होने वाली है। इसके अलावा शक्ति ऑल वुमेन कंटिंजेंट की असॉल्ट राइफल ड्रिल और ड्रमर्स ड्रिल भी एयरफोर्स डे पर एक खास आयोजन का हिस्सा होगी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह एयरफोर्स डे के मौके पर देशवासियों को संबोधित करेंगे।
7: 2021 तक एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन हिंडन में ही होता था, लेकिन 2022 से इस पैटर्न में बदलाव किया गया और 2022 में चंडीगढ़, 2023 में प्रयागराज और 2024 में इसे चेन्नई में आयोजित किया गया। सरकार के इस कदम का मकसद वायुसेना दिवस के आयोजन को अलग अलग शहरों तक पहुंचाना है, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता, पराक्रम और हवाई कर्तव्य को करीब से देखने का मौका मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ अब की बार वायुसेना दिवस समारोह को दो भागों में आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना दिवस की आधिकारिक मुख्य परेड और ग्राउंड डिस्प्ले हमेशा की तरह 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में ही होगी, लेकिन जनता के लिए बड़ा और मुख्य फ्लाईपास एयर शो इस बार वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इतिहास में ये पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा।
9: मेन इवेंट द एयरफोर्स डे परेड विल बी हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन हिंडन ऑन 8 अक्टूबर। द परेड लास्ट ईयर वॉज हेल्ड एट हिंडन आफ्टर अ गैप ऑफ 3 ईयर्स। इन द ईयर 2022 द परेड वॉज हेल्ड एट चंडीगढ़, इन 2023 एट प्रयागराज एंड इन 2024 एट चेन्नई, in alignment with the government's vision of offering citizens across the nation a closer glimpse of the might and capability of their Indian Air Force.
7: 24 से 26 अक्टूबर के बीच वाराणसी में एयर शो और फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो का आयोजन होगा। शो के दौरान वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा नदी के ऊपर एयरफोर्स के विमान करतब दिखाएंगे। मेगा एयर शो में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। राफेल, तेजस और सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम आसमान में जांबाजी का प्रदर्शन करेंगी। काशी की आध्यात्मिक पहचान को दर्शाने के लिए आसमान में विशेष त्रिशूल फॉर्मेशन भी बनाया जाएगा। सुखोई, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मिलकर इस डिस्प्ले को आकार देंगे।
8: इस पूरे भव्य समारोह का दूसरा हिस्सा बनारस में होगा, एक खास फ्लाईपास्ट के रूप में, जो कि अक्टूबर के अंत में होगा। यानी पहला हिस्सा भव्य समारोह का हिंडन में होने वाला है, जिसमें भारतीय वायुसेना का शौर्य, पराक्रम और भविष्य के लिए, भविष्य की चुनौतियों और लड़ाइयों के लिए उसकी तैयारी भी दिखाई देगी।
7: खबरों के मुताबिक वाराणसी में होने वाला ये एयर शो करीब 90 मिनट का होगा और 24 से 26 अक्टूबर के बीच रोजाना 12 बजे के करीब इसे आयोजित किया जाएगा। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच गंगा के किनारे लाखों लोग इस नजारे को देख सकेंगे। 8 अक्टूबर का दिन भारतीय वायुसेना के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को हिंदुस्तान में वायुसेना का गठन रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में किया गया था। आजादी के बाद 1950 में रॉयल शब्द हटाकर भारतीय जोड़ा गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने वाले वायुसेना के वीरों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देना है। इस खास मौके पर देश के अलग अलग एयरफोर्स स्टेशनों पर शानदार एयर शो, परेड और विमानों की कर्तव्य भरी प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाती है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के लिए 8 अक्टूबर का दिन गर्व का पल लेकर आता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की ताकत, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और स्वर्णिम इतिहास के रंग नजर आते हैं। भारतीय वायुसेना दुश्मन के सामने न तो हारती है न कोई गलती करती है, हर काम सटीकता से करती है। यही इस बार की एयरफोर्स डे का थीम भी है। हर बार की तरह आत्मनिर्भरता परेड के केंद्र में होगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें भारत में बनी है। तेजस विमान, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस सब मेक इन इंडिया की मिसाल है। मौजूदा दौर में वायुसेना के लिए सिर्फ लड़ाकू विमान काफी नहीं है, हवा की रक्षा, सही निशाना लगाने वाले हथियार और ड्रोन भी जरूरी हैं। ये हथियार दुश्मन पर वार करते हैं और जवानों का खतरा कम रखते हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: बात करते हैं वायुसेना की तरंग शक्ति की। राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास दूसरा संस्करण प्रगति पर है और इस हवाई युद्धाभ्यास में दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखा रहे हैं। 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। खास बात देखिए इसमें यह है कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की भागीदारी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त हवाई अभियानों के जरिए आपसी तालमेल, अनुभव साझा करने और एक दूसरे के संचालन प्रक्रियाओं को समझना है।

0: साझेदारी में शक्ति, इस थीम को लेकर जब जोधपुर के आसमान में कई देशों के फाइटर जेट्स एक साथ गरजे तो मौका बेहद ही शानदार नजर आया। आसमान में हैरत अंगेज नजारे सबका ध्यान खींच रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत की अगुवाई में दुनिया के शक्तिशाली देशों की वायुसेना अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। वायुसेना ने इसे पावर ऑफ पार्टनरशिप का नाम दिया है। इसके तहत सभी देशों के वायुवीर एक दूसरे के साथ आसमान में पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान एक दूसरे के जहाज में आसमान में ही रिफ्यूल भी कर रहे हैं, तो शानदार फॉर्मेशन और तालमेल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर मिलजुल कर दुश्मन को जवाब दिया जा सके। जोधपुर में 26 सितंबर से तरंग शक्ति युद्धाभ्यास चल रहा है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें भारत सहित 8 देशों की सेनाएं अपने लड़ाकू विमानों व संसाधनों के साथ भाग ले रही है, जबकि 32 देश बतौर पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। तरंग शक्ति अभ्यास 2.0 को शुरू हुए 11 दिन बीत चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ एक्सरसाइज का दायरा बड़ा और जटिल होता जा रहा है। दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने और डॉग फाइट से लेकर एयरलिफ्ट और टैक्टिकल ड्रॉप्स को अंजाम दिया जा रहा है। स्ट्राइक रेंज को कई गुना बढ़ाया जा सके, इसकी भी वानगी देखने को मिल रही है।
1: भारतीय वायुसेना की मेगा ड्रिल तरंग शक्ति जोधपुर में पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक जारी है, और इसमें 40 से ज्यादा अलग अलग देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका के 6 F-35 यानी उनके फिफ्थ जेनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और जर्मनी के रफाल इसमें शामिल है। इसके अलावा तमाम दूसरे देश अपने अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर्स के साथ तरंग शक्ति का हिस्सा बने हैं, और जैसे जैसे तरंग शक्ति आगे बढ़ रही है, जो 26 सितंबर से शुरू हुई थी, हर दिन कॉम्बैट कैपेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और भारतीय वायुसेना के कौशल को भी यहाँ पर देखा जा रहा है।
0: इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण अमेरिकी एयरफोर्स का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 है, जो भारत की सरजमी पर हो रहे युद्ध अभ्यास में पहली बार शामिल हुआ है। अभ्यास में जर्मनी ने अपने अत्याधुनिक A400M एटलस परिवहन विमान को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया है। यह विमान भारी सामान और सैनिकों की आवाजाही के साथ जटिल लॉजिस्टिक्स और एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। जर्मनी के पायलट्स भी भारत की सरजमी पर आकर अपनी खुशी बयां कर रहे हैं।
2: In India before, but also very great experience. It's fun to work with Indian Air Force, and also fun to be in India. So it's a great country. I really like being here. And flying in India, you know, it's always different than flying in Germany. But this is how we get to learn a lot of new stuff, and that's one of the main points of this exercise, I think.
0: तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल देशों के एयर क्रू और मिशन प्लानर्स एक साथ बैठकर जटिल रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक कंबाइंड एयर ऑपरेशन आर्किटेक्चर विकसित किया जा सके।
1: खास तौर पे जो तमाम वायुसेनाएं आई हैं, उनके एयर चीफ्स यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सब ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रिसिशन स्ट्राइक से लेकर जो ड्रोन्स को किस तरह से काउंटर किया गया था और भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया आतंक के ठिकानों को तबाह करने के लिए, उन सब में किस तरह से भारतीय वायुसेना आगे बढ़ी, और वो भी आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ। यानी तरंग शक्ति एक मौका है जहां पर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, साथ ही पूरी दुनिया को भारत के हथियारों, भारत की वायुसेना का दमखम भी दिखाया जा रहा है।
0: जोधपुर में चल रहे वायुसेना की युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के दौरान 8 अक्टूबर यानी कल वायुसेना दिवस के मौके पर जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर एरोबेटिक टीम का एयर शो भी होगा। सूर्य किरण टीम अपने 9 हॉक जेट से आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन और एरोबेटिक करतब दिखाएगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करते हैं तटरक्षक बल के अभ्यास की। समंदर में बड़े पैमाने पर आपातकालीन बचाव, विमान दुर्घटना या समुद्री टक्कर जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी और तालमेल को परखने के लिए ओडिशा के पारादीप तट के पास 12वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2026 का प्रदर्शन और लाइव डेमो आयोजित होने जा रहा है। हालांकि इस युद्धाभ्यास का पहला चरण आज संपन्न हो चुका है।

0: वयम रक्षामः, यानी हम रक्षा करते हैं। ये रक्षा समंदर की हो, भारतीय तटों की हो, या समंदर में जीवन के लिए जूझ रहे इंसानों की, ये जज्बा इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों का होता है। अपने इसी संकल्प को दृढ़ता प्रदान करने के लिए भारतीय तट रक्षक बल हिंदुस्तान के समंदर, तट की सुरक्षा, खोज और बचाव के साथ दूसरे एजेंसियों से तालमेल को बेहतर बनाने के लिए वक्त वक्त पर कई तरह के अभ्यास का आयोजन करता है। ओडिशा के पारादीप तट पर कोस्ट गार्ड का सारेक्स 2026 अभ्यास शुरू हो गया है, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। दो दिन के इस सबसे बड़े अभ्यास में कोस्ट गार्ड के 15 जहाज, 2 डॉर्नियर विमान, 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, 1 चेतक हेलीकॉप्टर IAF के C-130J और MI-17 हेलीकॉप्टर, भारतीय नौसेना के 2 जहाज के साथ राज्य के संसाधन और तट आधारित सहायता इकाइयां शामिल हो रही हैं। इसी अभ्यास के तहत भुवनेश्वर में 24वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की बैठक भी हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय खोज और बचाव की तैयारियों को मजबूत करने, संकट की सूचना मिलने पर बेहतर मैनेजमेंट करने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए बचाव के साधनों को तेजी से जुटाने पर चर्चा हो रही है।
1: ये एक बड़ी ड्रिल है जिसमें भारतीय तट रक्षक दल अपना पूरा ताकत दिखाएगा, अपनी पूरी ताकत के साथ सब किस तरह से वो एक्सरसाइजेस करता है और अलग अलग एजेंसीज के साथ कैसे मिलकर कोऑर्डिनेट करता है इन ऑपरेशंस के लिए, ये सब कुछ भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा।
0: सारेक्स 2026 अभ्यास में एक साथ हवाई और समुद्री संकट की स्थितियों से निपटने वाले बड़े पैमाने पर बचाव अभियान का भी अभ्यास हो रहा है। इसमें 228 लोगों को ले जा रहे एक यात्री विमान के समुद्र में उतरने और कंटेनर जहाज MV जुम्बा से टकराने जैसे हालात भी शामिल होंगे, जिसका प्रदर्शन कल यानी 8 अक्टूबर को किया जाएगा।
1: भारतीय तटरक्षक दल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जो समुद्र की सीमाओं की सुरक्षा भी करता है और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी ड्रिल भी करता है, वो भुवनेश्वर में एक बड़ी ड्रिल कर रहा है। और ये जो मैरिटाइम सिक्योरिटी ड्रिल है, इसमें कोस्ट गार्ड के तमाम असेट्स, चाहे वो शिप हो, चाहे वो वेसल्स हो, छोटी नाव हो और हेलीकॉप्टर्स हो, वो सब एक साथ मिलकर अलग अलग तरह के ड्रिल्स में हिस्सा ले रही हैं। और खास बात यह है कि चाहे समुद्र में किसी भी तरह के पायरेट्स को रोकना हो, चाहे इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग रोकनी हो, या फिर समुद्र में किसी भी तरह का जो ऑयल स्पिल्स हो उनको रोकने का काम हो, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। और कैसे अलग अलग एजेंसीज, चाहे वो भारतीय नौसेना हो या फिर अलग अलग प्रदेशों की पुलिस हो, तमाम दूसरी एजेंसियां हो, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाकर इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार समुद्र का प्रहरी बना हुआ है, अलग अलग ऑपरेशंस करता है, ये सब कुछ इस ड्रिल में दिखाया जाएगा। और भुवनेश्वर में होने वाली इस ड्रिल में एक साथ साझा असेट्स इंडियन कोस्ट गार्ड के देखे जा रहे हैं।
0: इससे पहले भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय ने रिसारेक्स 26 नाम से मुंबई तट पर क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास 24 सितंबर 2026 को आयोजित किया था। सागर कवच अभ्यास के तहत तटीय सुरक्षा का अभ्यास महाराष्ट्र और गोवा तट के साथ साथ गुजरात और दमन दीव में भी सफल संचालन किया गया, जिसमें राज्य पुलिस, नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा तंत्र की जांच की जाती है। इस अभ्यास की खास विशेषता 30 देशों के 32 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी, ये अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी इस अभ्यास के रणनीतिक महत्व और मिलकर काम करने की क्षमता को दर्शाएगी। यही नहीं, सारेक्स 2026 अभ्यास कोस्ट गार्ड की भावना के अनुरूप तेज, तकनीक सक्षम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े खोज और बचाव के ढांचे के निर्माण के भारत के संकल्प की झलक भी दिख रही है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दुर्गा पूजा के साथ साथ देश में विजयादशमी यानी दशहरा मनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर रामलीला के मंचन की तैयारियां और रावण दहन के लिए पुतले बनाने का काम भी इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। इस साल भी राजस्थान के कोटा में विशालकाय रावण का पुतला बनाया जा रहा है, जो अभी से चर्चा में है।

0: रावण के पुतले के लिए बांस और लोहे की छड़ों का ये विशालकाय ढांचा पूरी तरह से बना भी नहीं है और ये अभी से सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में आने के पीछे की वजह है इसका साइज। राजस्थान के कोटा में तैयार किया जा रहा ये पुतला 105 फीट से ज्यादा ऊंचा है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले करीब 70-70 फीट ऊंचे बनाए जा रहे हैं। इन विशाल पुतलों को तैयार करने के लिए खास तौर पर दिल्ली NCR से कारीगर बुलाए गए हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत से पुतलों को बनाने में जुटे हैं।
1: ये रावण 105 फुट प्लस हो जाएगा, कुंभकर्ण 70 फुट, मेघनाथ 70 फुट।
2: कितने कारीगर लग रहे हैं इसको काम
1: करने? 20 कारीगर एक महीने से रात और दिन लगे हुए हैं। सारे घर के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। रावण जब बन जाता है, हमें भी शौक है रावण बनाने का, कमाई तो एक अलग चीज है।
0: इन पुतलों को बनाने में लगे कारीगर ने बताया कि इनके निर्माण में करीब 5 टन लोहे और लगभग 500 बांस की खपच्चियों का इस्तेमाल किया गया है। इनके बाहरी हिस्से के लिए करीब 1500 मीटर वेलवेट कपड़ा लगाया जा रहा है, वहीं 300 किलो सुतली और करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, पुतलों को मौसम से बचाने के लिए वाटरप्रूफ इंपोर्टेड कागज लगाया जा रहा है और कागज को चिपकाने के लिए मैदा से तैयार की गई 1 से 2 क्विंटल लेई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा रावण के भीतर विशेष प्रकार की आतिशबाजी भी सेट की जा रही है, ताकि विजयदशमी के दिन दहन के दौरान अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले।
1: इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, रद्दी है तो 250 किलो के आसपास लग जाएगी। नहीं बनाते हम मैदा की, 150 से 200 किलो लग जाती है। सुतली है जिससे बांधते हैं इसको, 300 किलो के आसपास लगेगा।
0: कोटा में दशहरा पर रावण का ये पुतला 360 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमाता नजर आएगा, हाथ में तलवार लेकर चलाएगा, मूछें हिलाएगा और आंखें भी झपकाएगा। कारीगरों का कहना है कि 10 से 11 तारीख तक रावण का पुतला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।
1: विशेषता रावण में, कोटा के रावण में खुद ही विशेष है, सारी चीजें इसमें होती है। जिससे गर्दन घुमाता है, पलके चलाता है, तलवार भी चलाएगा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं वो। अब आने वाले टाइम में हमारा काम जो है इस टाइम 90% हो चुका है, 10% रह रहा है, उसमें देखेंगे क्या हम नया दिखा सकते हैं कोटे को। 10% मात्र काम रहना है, इसको देख रहे हैं, फिनिशिंग होना पड़ा, फिनिशिंग करनी है।
0: दशहरा के साथ ही रामलीला मंचन की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में यूपी के प्रयागराज में श्री महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी ने एक दिन पहले मुकुट पूजन समारोह किया। ये कार्यक्रम शाहगंज के राम मंदिर में विधि विधान से संपन्न हुआ। परंपराओं के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मुकुट की पूजा 11 ब्राह्मणों और वेद पाठियों ने मंत्रोच्चार से की। इस दौरान मंदिर श्रद्धालुओं से भर गया और जयकारे गूंजते रहे। बताया जाता है कि ये मुकुट 100 साल से भी अधिक पुराने हैं और इन्हें लाहौर के कुशल कारीगरों ने तैयार किया था। कमेटी की ओर से इन बहुमूल्य मुकुटों को बेहद सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और रामलीला शुरू होने से पहले इनकी साफ सफाई कर पूजा की जाती है। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन श्री राम समेत अन्य स्वरूपों को ये मुकुट पहनाए जाते हैं। इसी के साथ पजावा रामलीला के दशहरा उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाती है।
3: जो हमारी कमेटी का इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और प्रयागराज के दशहरा में बहुत ही अभूतपूर्व अतुल्य सहयोग भी रहा है हमारे श्री महान बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी का। और ये मुकुट आपके सामने जो समक्ष प्रस्तुत हुआ है, सोने एवं चांदी से निर्मित है। ये लाहौर के कारीगरों द्वारा निर्मित है, जो कि लाहौर अब इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। जब ये निर्मित हुआ था तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए ये अपने में ही बहुत पौराणिक और अतुल्य है।
0: कहा यह भी जा रहा है कि पजावा रामलीला इस बार आधुनिक तकनीक और भव्य मंचन से खास रहेगी और कई नए प्रसंग भी जोड़े गए हैं। कोटा से चेतन गुर्जर और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं।
0: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
9: आज भारतीय वायुसेना बनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही है भक्तों की भीड़। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार, देवताल में दूर दूर तक दिखी मखमली बर्फ की मोटी चादर, सतुपंथ और चंबा में भारी बर्फबारी। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक कैंसो सुई को मिला नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। रांची पहुंची भारत और वेस्टइंडीज की टीमें, 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में बात करने जा रहे हैं द ग्रेट इंडिया फेस्टिवल की, जिसकी शुरुआत जो है अब से 3 दिन बाद होने वाली है। 11 अक्टूबर रविवार को नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही देश में फेस्टिवल सीजन का एक बार फिर से आगाज हो जाएगा, जो नवरात्र, दशहरा, दिवाली और फिर छठ तक यूं ही जारी रहने वाला है। ऐसे में देश में त्योहारों की तैयारियां तमाम चल रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इसके साथ शहर शहर गरबे का रंग जमने लगा है। कभी जो उत्सव गुजरात के शहरों तक सिमटा था, अब वो भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंच चुका है। अब देश भर के शहरों में नवरात्र के दौरान गरबे का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अब शहर शहर गरबा की तैयारियां दिख रही हैं। बाजारों में गरबा की पोशाकों की बहार है। इसी तरीके से तैयारियों में माँ दुर्गा के पंडालों के लिए भी दिख रही हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक माँ भवानी के स्वागत की तैयारियां तमाम चल रही हैं। कलाकार देवी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। पंडालों का निर्माण आखिरी दौर में नजर आ रहा है, तो वहीं पर देश भर में रामलीला के मंचन की तमाम तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अलग अलग कमेटियां रामलीला के आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। मंच सज रहे हैं, रिहर्सल चल रहा है और शहर शहर रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रावण की भव्य शोभा यात्रा के साथ दशहरा उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। प्रयाग दुनिया का वो अकेला शहर है जहां पर रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। आखिर प्रयाग में क्यों निभाई जाती है परंपरा, चलिए आपको पहले यह बताते हैं।

0: संगीत का पुजारी था, देवों का उपासक था, कुशल प्रशासक था, लेकिन फिर भी उसका नाम बुराई का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। ऋषि पिता और राक्षसी माता की संतान होने की वजह से इन दोनों के गुणों के साथ जन्मा था वो, और शायद यही वजह थी कि अच्छाई और बुराई दोनों के भाव हमेशा उसके अंतर मन को मचते रहे। वक्त के साथ बुराई उसकी अच्छाइयों पर हावी होती चली गई और रावण अधर्म का चेहरा बन गया। और शायद यही वजह रही कि त्रेता युग और आने वाले हर युग के लिए रावण की पराजय दुनिया में विजय का उत्सव बन गई और उसका दहन बुराई के अंत का त्योहार बन गया। बावजूद इसके कहना गलत नहीं होगा कि भले ही रामायण हर तरह से भगवान राम की कथा है, लेकिन ये भी सच है कि बिना रावण के ये कहानी अधूरी है। श्री राम का पक्ष उजला है तो रावण का पक्ष काला था। लेकिन दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जहां न केवल रावण की कहानी का उजला पक्ष उभर कर आता है, बल्कि हर साल उसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रावण से जुड़ी एक परंपरा बरसों से निभाई जा रही है। हर साल प्रयागराज में नवरात्र से पहले धूमधाम से रावण की शोभा यात्रा निकाली जाती है। परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। श्री कटरा रामलीला कमेटी इस शोभा यात्रा का आयोजन हर साल पूरी भव्यता के साथ करती है। इसी शोभा यात्रा के साथ प्रयागराज में हर साल दशहरा उत्सव की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में होती है। यह तीनों लोकों के विजेता कहे जाने वाले लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना के साथ उत्सव का श्री गणेश होता है। संगम नगरी में रावण की ये शोभा यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें झांकियां निकलती हैं, अलग अलग कलाकार रावण, मंदोदरी, मेघनाद, कुंभकर्ण और विभीषण का किरदार निभाते हैं।
1: मैं रावण की पत्नी मंदोदरी बनी हूँ आज, और हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ भ्रमण के लिए निकले हैं। हमारे परिवार में मेघनाथ, कुंभकर्ण और विभीषण और उनके दास लोग हैं हम लोग के साथ, और हम लोग अपने नाना के नलियाल आए हुए हैं। बहुत बड़ा इतिहास है, 6000 साल पुरानी है इतिहास।
0: आपको बता दें कि प्रयागराज का कटरा क्षेत्र भरद्वाज मुनि के आश्रम क्षेत्र में आता है और इस स्थान को रावण का ननिहाल माना जाता है। दरअसल रावण के पिता महर्षि विश्रवा प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य के बेटे थे, जबकि महर्षि भरद्वाज देवगुरु बृहस्पति के पुत्र ऋषि अंगिरा के वंशज थे। पौराणिक इतिहास और ऋषि कुलों के आपसी संबंधों के आधार पर रावण को महर्षि भारद्वाज के ही कुल का वंशज यानी उनका प्रपौत्र माना जाता है। इसी वजह से प्रयागराज को रावण का ननिहाल भी कहते हैं। और रावण के ननिहाल प्रयाग के कटरा इलाके में ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। पहले मुगलों के शासन और फिर अंग्रेजों के काल में भी इस परंपरा को यूं ही निभाया जाता रहा। दरअसल प्रयागराज के कटरा इलाके में रावण को बुराई का प्रतीक माना ही नहीं जाता, बल्कि उसकी पहचान यहाँ एक विद्वान और शिव भक्त के रूप में है। और इस परंपरा और मान्यता का आधार रामायण का वो प्रसंग है जो श्री राम की लंका विजय के बाद घटा था। मान्यता के मुताबिक जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटते समय संगम पर महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे, तो मुनि भारद्वाज ने उनसे सीधे मिलने से संकोच किया। इसके बाद महर्षि भारद्वाज के ही निर्देश पर भगवान राम ने प्रयाग की पावन भूमि पर कोटि तीर्थ की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की, ताकि वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सके। यही कारण है कि प्रयागराज में रावण की विद्वता, शिव भक्ति और ऋषि कुल से उसके संबंध का सम्मान करते हुए उसे एक राक्षस मानकर तिरस्कृत नहीं किया जाता, बल्कि नवरात्र से पहले सम्मान के प्रतीक के रूप में उसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है।
2: श्री कटरा रामलीला कमेटी महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र में स्थापित है और अनेकों वर्षों से 100-150 वर्षों से तो हमने ही अपने पूर्वजों से इसके बारे में सुनते चले आ रहे हैं। हजारों वर्षों का पुराना इतिहास है जी। रावण की शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। रावण का ननिहाल महर्षि भारद्वाज मुनि क्षेत्र में महर्षि भारद्वाज मुनि नाना लगते थे, इसलिए हम लोग सम्मान देने के नाते रावण की शोभा यात्रा निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान श्री राम की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन सम्मान देने के नाते रावण की भी शोभा यात्रा हम लोग रामलीला मंचन के पहले निकालते हैं। इस जो परंपरा ऐतिहासिक बहुत दिनों से चली आ रही है, रावण अपने पूर्व सज्जस के साथ अपने भाइयों अपने रानियों अपने पुत्रों के साथ यहाँ पर सज्जस के साथ निकलता है और अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए श्री कटरा रामलीला कमेटी का निर्धारित मार्ग से होते हुए लगभग 6 किलोमीटर का मार्ग होते हुए या कर्नलगंज और कटरा के क्षेत्रों से भ्रमण करता हुआ यहाँ पर लोग बीच बीच में अलग अनेकों जगह आरती और पूजन करते हुए रावण की शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं।
0: ये उत्तर भारत की एकमात्र परंपरा है जहाँ दशहरा रावण दहन से नहीं बल्कि रावण वंदना के साथ मनाया जाता है। वास्तव में प्रयागराज की ये परंपरा उस संतुलन का भी प्रतीक है जहाँ बुराई में भी अच्छाई देखने की दृष्टि है और जहाँ इतिहास धर्म परंपरा और संस्कृति एक साथ चलते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: रावण की अनोखी परंपरा जहां पर प्रयागराज में देखी तो वहीं पर कोटा में दशहरा से पहले महारावण तैयार किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कोटा में अब की बार विजयादशमी के उत्सव के लिए 105 फीट का विशालकाय रावण तैयार किया जा रहा है। लकड़ी के इस फ्रेम के आकार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां रावण की ये कितना विशाल स्वरूप देखने को मिल रहा है। इस रावण के निर्माण में 5 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है। बांस के 500 से ज्यादा टुकड़ों से पुतले को आकार दिया गया है। करीब 1500 मीटर वेलवेट से रावण के वस्त्रों को तैयार किया जा रहा है। करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी से रावण के पुतले को बांधा जा रहा है। कागज को चिपकाने के लिए करीब 2 क्विंटल गूंद का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, पूरा बनकर तैयार होने पर जब ये रावण खड़ा हो जाएगा तो इसका दीदार काफी दूर तक आपको नजर आएगा। लेकिन इस रावण की खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है, इस रावण का दहन भी बहुत रोचक होने वाला है। इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि दहन से पहले ये रावण अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमाता हुआ आपको नजर आएगा। अपनी विशाल भुजाओं से ये रावण तलवार भी चलाता हुआ नजर आएगा, मूंछ लाएगा और अपनी पलकें भी झपकाएगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल जीवंत है। रावण के इस विशाल पुतले को तैयार करने के लिए दिल्ली NCR से कारीगरों को खास तौर पर कोटा बुलाया गया है। तस्वीरें देखिए। तो त्योहारों की शुरुआत में 3 दिन बाकी हैं और 3 तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रामलीला के मंचों की तरह माँ दुर्गा के भव्य पंडाल सजाने का काम भी अब लगभग पूरा हो चुका है। रविवार से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है, लिहाजा शहर शहर माँ के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। माँ की प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जा रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि माँ के दरबार को भव्य और दिव्य रूप से सजाया जाए।

0: दुर्गा के नौ भव्य और दिव्य स्वरूपों की आराधना का त्योहार नवरात्रि आने वाला है। देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारी चल रही है। हर तरफ माँ के आगमन की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है। अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडाल में स्थापित होने के लिए माँ की प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। माँ की मूर्ति का निर्माण और श्रृंगार कार्य अंतिम चरण में है। वहीं माँ का दरबार सजाने सवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है, जहाँ भारद्वाज पार्क में कोलकाता से आए मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर माँ दुर्गा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सभी मूर्तियां गंगा की शुद्ध मिट्टी से बनाई जा रही हैं, जिन्हें प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल रंगों से इन्हें सजाया जा रहा है।
1: ये इको फ्रेंडली कलर है, ये कोई मूर्तियों में हाफ फूल नहीं है। मूर्तियां गंगा जी की मिट्टियों से बनी है और नवरात्र है तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रयागराज के जितने भी पंडाल की मूर्तियां हैं हमें बनाने को मिल रही है, उसका डिजाइन करने, उसको कलर करने की प्रतिमाओं को मिल रहा है। पंडाल में हमने क्या नाम है कलर किए हैं, डिजाइन बनाई है, मूर्ति को सजाया है, साड़ी से लेकर बॉर्डर हर एक एक चीज, मतलब माता रानी को एकदम अच्छे से सजा दिया है कि वो बहुत सुंदर लगती है देखने के, मन ही नहीं करता कि इनको विसर्जन किया जाए।
0: कहीं माँ दुर्गा की आंखों में भाव उकेरे जा रहे हैं तो कहीं उनके मुकुट और आभूषणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रंगों की अंतिम परत के साथ प्रतिमाओं में मानो जीवन का संचार हो रहा है। यहाँ 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की दुर्गा प्रतिमाएं तैयार की जा रही है। साथ भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी गंगा की मिट्टी से ही बनाई जा रही है।
2: पूरे देश में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। हम इस वक्त भरद्वाज पार्क में हैं, जहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का जो बनाने का काम है वो चल रहा है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली दुर्गा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। जो कलाकार हैं इसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं और इन मूर्तियों को बनाया और संवारा जा रहा है। ये मूर्तियां 3 फीट से लेकर के 10 फीट तक हैं और तमाम ये बड़ी छोटी मूर्तियां यहां बनाई जाती हैं। तमाम कलाकार यहां पर इन रंग भरने का इन मूर्तियों में काम कर रहे हैं।
0: नवरात्र शुरू होते ही ये प्रतिमाएं शहर के विभिन्न दुर्गा पंडालों में स्थापित की जाएगी। एक ओर जहां आकर्षक दुर्गा प्रतिमाएं आकार ले रही है, वहीं दूसरी ओर मां जगदम्बे को ही समर्पित भव्य पंडालों का निर्माण भी जोरों पर है। ये भव्य तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की है, जहां भव्य पंडालों का बनाने का काम शुरू हो गया है। पुरुलिया में प्रसिद्ध भामुरिया बाथानेश्वर दुर्गा पूजा कमेटी हर साल खास थीम पर पंडाल बनाती है। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए खास थीम पाषाणे प्राण यानी पत्थरों में प्राण पर पंडाल निर्माण किया गया है। इस थीम के जरिए प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक को सामने लाने की कोशिश की गई है, यानी शानदार थीम और पारंपरिक भव्यता को किस तरीके से दर्शाया जाए इसको लेकर कारीगरों से लेकर कम्युनिटी पूजा कमेटियों तक हर कोई व्यस्त है। पूजा आयोजकों और कलाकारों ने पुराने समय के उस धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश को जीवंत करने का प्रयास किया है, जब पहाड़ों और गुफाओं के बीच मंदिरों में देवी देवताओं की आराधना की जाती थी।
3: हर साल की तरह इस साल भी पूजा पंडाल का थीम बेसिस पूजा होने जा रहा है और इस बार जैसे पहाड़ को खुदाई करके जो मंदिर का निर्माण होता था पुराने दिनों पर, वही चित्र देखने को मिलेगा इस पूजा पंडाल में। इस पूजा पंडाल में फोम जैसे चीज इस्तेमाल किए गए हैं जो बारिश में भीगने से भी कुछ नहीं होगा और हर साल की तरह इस साल भी भीड़ उमड़ पड़ेगा इधर।
0: यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले भगवान बजरंग बली की प्रतिमा है। उनके दाईं ओर भगवान शिव और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। पंडाल के प्रत्येक पिलर और दीवार पर भारतीय संस्कृति से जुड़े देवी देवताओं की विभिन्न आकृतियाँ पत्थर की नक्काशी की शैली में उकेरी गई है। ऐसी गुफा मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान होगी और यही माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ पुरुलिया से सत्यजीत बैनर्जी, गुड न्यूज टुडे।
4: फेस्टिवल सीजन का ही एक और रंग है गरबे का। नवरात्र के दौरान देश भर में शहर शहर गरबा आयोजन होते हैं। पूरे 9 दिन गरबे का उत्सव नजर आता है। नवरात्रि के समय हर कोई गरबा करने के लिए उत्सुक नजर आता है। कभी जो गरबा केवल गुजरात की शान था, आज लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में बहुत उत्साह के साथ खेला जाता है। रविवार से गरबा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं देश में कैसी चल रही है गरबा की तैयारियां।

ये तैयारी है माँ दुर्गा के महापर्व पर गरबा खेलने की, और सबसे बढ़कर ये तैयारी है साल भर की बीती बातों, किस्सों और वाकयों को पीछे छोड़ त्योहार की खुशियों में डूबकर धूम मचाने की। माँ के आगमन का उत्सव है, सो देश भर में शहर शहर गरबा प्रेमी पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हैं। रंग बिरंगी परंपरागत पोशाकों से लेकर सजे धजे डांडिया तक हर तैयारी पूरे मन और लगन से की जा रही है। चनिया चोली केड़िया सब तैयार है। जरा सोचिए, जब तैयारी ऐसी जानदार है तो उत्सव कितना शानदार होगा। वैसे तो गरबा और डांडिया नृत्य

0: सज धज के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। अब की बार भी तैयारी जोरों पर है। चनिया चोली और केड़िया के पारंपरिक परिधानों से देश भर के बाजार सज चुके हैं। ये तस्वीरें मुंबई के बोरीवली की हैं, जहां गरबा डांडिया के लिए पोशाकों से बाजार सज गया है।
1: नवरात्रि में गरबा राज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब बात मुंबई की हो तो बात ही अलग है। मुंबई के बोरीवली इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 80% गुजराती समाज रहता है, और देखिए यहाँ का बाजार किस तरीके से चन्या चोली और केडी से सज चुका है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग डिमांडिंग चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं फैशन हब के नाम के एक शॉप में एंट्री कर रहा हूँ, और खरीदारी बहुत ही ज्यादा जोरों पर है। महिलाएं और स्पेशली जो जेंजेस हैं और युवती हैं, वो देखिए अपने अपने पसंद के चन्या चोली और केडिया यहाँ पर खरीद रहे।
0: ट्रेडिशनल पोशाक भी खूब हैं, तो ट्रेंडिंग डिजाइन की भी कमी नहीं। जिसे जो भा रहा है वही ले जा रहा है। प्रैक्टिस अपनी जगह है, लेकिन गरबा खेलने के लिए लुक कम्प्लीट होना भी जरूरी है।
1: अमृता, मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तक आपको कुछ पसंद नहीं आया?
2: मतलब मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लूँ और क्या नहीं।
1: क्या सोच करके आए थे, क्या लेना है?
2: मतलब मुझे पर्टिकुलर, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मतलब घाघरा है जो लोअर पहनते हैं, और ब्लाउजेस की यहाँ पे वैरायटीज है, तो वो उसी से रिलेटेड कुछ सोच रही हूँ।
1: अच्छा, ये 9 दिन अलग अलग थीम पर ही काम करने वाले हो ना?
2: सॉरी, मतलब कलर्स रहते हैं और उसके हिसाब से हम लाइक एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ। और वैसे हम जनरली तो हम क्या करते हैं, एवरी ईयर एक एक लेते हैं और फिर वो कलेक्ट हो जाते हैं ना ओवर द टाइम।
1: अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या सोच कर आए, क्या ट्रेंड में है, क्या डिमांड में, आपको क्या लगता है, या फिर ऑर्डर भी देते हैं?
2: हाँ, मतलब कस्टम मेड भी होता है, और अभी मार्केट में बहुत सारी हर एक नए नए डिजाइन भी आते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि कैसा है।
0: और ये तस्वीरें आई हैं गुजरात के सुरेंद्र नगर से, जहां इन दिनों गरबा डांडिया से जुड़ी पोशाकों की डिमांड बढ़ गई है। यहां अलग अलग डिजाइन और अलग अलग रंगों की पारंपरिक चनिया चोली तैयार की जा रही हैं, जिनकी डिमांड यूपी, एमपी, दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक है।
3: चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली, केड़िया सेट, जिमी सेट सब हम यहाँ बनाते हैं। हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है, और हम बनाते हैं सब, बाहर गांव जाते हैं बॉम्बे साइड, उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, और आरी वर्क होता है, और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है।
0: गुजरात में लोग पारंपरिक गरबा परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं, तो राजस्थान के पाली में भी गरबा खेलने की तैयारियां जोरों पर है। मां को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले गरबा रास को लेकर जोरदार प्रैक्टिस चालू है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी दिल लगाकर गरबा सीखने में जुटे हैं।
4: नृत्य एक ऐसा फॉर्म है जिसमें लाइक हम सब कुछ भूल के सिर्फ डांस के थ्रू माँ से कनेक्ट हो सकते हैं।
5: गरबा में बेसिकली तो 2 ताली, 3 ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं, बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेंजी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डाल दे, तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते हैं तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
0: गीतों की थाप पर झूमती थिरकती महिलाओं की ऐसी ही तस्वीरें झांसी से भी आई है। ये नजारा झांसी के ऐतिहासिक किले के छांव पार्क का है, जहां सैकड़ों महिलाएं और युवतियां डांडिया की ट्रेनिंग ले रही हैं।
6: पानी कितने लोग हैं, बट लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि हाँ, सब गरबा के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और इनको देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जब पब्लिक आपकी जोश में होती है तो अपने आप अंदर से जोश आ जाता है, और डेफिनेटली ये माता रानी के लिए सभी की भक्ति है, और मैं भी बस इस भक्ति में झूमते हुए सबको नृत्य सिखा रही हूँ, डांडिया सिखा रही हूँ।
0: ट्रेडिशनल के साथ टेम्पररी ताल का धमाल अब की बार डांडिया उत्सव का उत्साह और बढ़ा रहा है, जिसकी तान पर गरबा के स्टेप सीखती महिलाओं का उत्साह देखने लायक है।
7: तो पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये आज के लिए, जो डांस जुम्बा क्लासेस हुआ है, रितु मैम ने हम लोगों को जो डांस सिखाया है बहुत अच्छी इन डांसर सिखाती हैं हम लोगों को, और जो 12th October को हो रहा है डांडिया नाइट, हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं।
8: नवरात्रि के लिए तो बहुत एक्साइटेड है, 12th October को हम सब लोग मिलके जाने वाले हैं, हमारे सारे बच्चे भी जाएंगे साथ में,

0: वास्तव में गरबा नृत्य शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, मातृ शक्ति की महिमा और जीवन के उत्सव को मनाने के लिए किया जाता है। मूल रूप से गुजरात से शुरू हुआ ये पारंपरिक लोक नृत्य अब पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है और इसी लोकप्रियता के बीच पोशाक तैयार है और प्रैक्टिस भी जोरदार है। अब तो बस इंतजार है उस उत्सव का जिसके शुभारंभ के साथ ही देश गरबा और डांडिया के रंग और उमंग में डूब जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, झांसी से अजय झा और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खास कार्यक्रम में नहीं, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: पहाड़ों पर तेजी से मौसम करवट बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। आसमान पर बादलों का डेरा है और कई जगहों पर ठंडी हवाओं के साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है।
2: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते पहाड़ कूल कूल हो गए। आसमान पर बादल छाए, ठंडी हवाओं ने दस्तक दी और फिर शुरू हुई झमाझम बारिश। धर्मशाला समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे, यानी मौसम ने पल भर में गर्मी से राहत का ऐसा इंतजाम किया कि पहाड़ों की फिजा ही बदल गई। इस बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए धर्मशाला और मैकलोडगंज में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ठंडी हवाओं, बारिश और पहाड़ों की हसीन फिजाओं ने सैलानियों का मजा दोगुना कर दिया है। बारिश और ओलावृष्टि के बीच भी त्रिवेणी ट्रैक को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों की खूबसूरती और बदलते मौसम का मजा लेने त्रिवेणी का रुख कर रहे हैं। असल में मौसम के इस बदलते मिजाज का अंदेशा मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था। विभाग ने आने वाले दिनों में भी पहाड़ों पर मौसम के ऐसे ही तेवर बनने के अनुमान जताए हैं।
3: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हमारे जो स्पेशली क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लगभग 9 अक्टूबर तक प्रदेश के जो मध्य डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मध्यम बारिश का दौर है वो देखने को मिलेगा।
2: इसी के साथ पहाड़ों पर मौसम का अगला रंग बर्फबारी का हो सकता है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरने के साथ बर्फ गिरने की संभावना है। इसी को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है।
3: प्रभाव से जो हमारे जो क्षेत्र है जिसमें कांगड़ा है, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हाँ संभावना है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। देखिए अलर्ट मुख्यतः जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा जो मध्य डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और शिमला, यहाँ पे आफ्टरनून और लेट इवनिंग में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया गया है आगामी 4 दिनों के लिए येलो कैटेगरी में।
2: मौसम के बदले मिजाज ने पहाड़ों की फिजा के साथ साथ पर्यटन का रंग भी बदल दिया है। अब सबकी नजरें मौसम के अगले करवट पर है, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम अपने साथ खूबसूरती के नए रंग भी लेकर आता है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: आज भारतीय वायुसेना मनाएगी अपना 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम। शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। हेमकुंड में बर्फबारी के बाद हर तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, बारिश के बावजूद दर्शन के लिए पहुंच रही है भक्तों की भीड़। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार, देवताल में दूर दूर तक दिखी मखमली बर्फ की मोटी चादर, सतुपंथ और चंबा में भारी बर्फबारी। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक कैंसो सुई को मिला नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए सम्मान। रांची पहुंची भारत और वेस्टइंडीज की टीमें। 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कल होने वाले वायुसेना के स्थापना दिवस की। इस खास दिन होने वाले पराक्रम के प्रदर्शन की वायुसेना के शौर्य और इतिहास से जुड़ा है एयरफोर्स डे, जो अब देशभक्ति के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनता जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर होने वाले इस खास कार्यक्रम में वायुसेना के चीफ परेड की सलामी लेंगे तो थल सेना और नौसेना चीफ भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। यहां पर देखिए, नभ में वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों और हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन भी करेगी। दूसरी खबर, जोधपुर में चल रहे तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास की भी हम करेंगे, जहां पर भारत समेत 8 देशों की वायुसेनाएं बेहतर तालमेल के लिए हवाई युद्ध अभ्यास कर रही हैं। इस एक्सरसाइज में बड़े देशों के आधुनिक लड़ाकू विमान अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत रहे हैं। तीसरी खबर, इंडियन कोस्ट गार्ड के एक्सरसाइज की भी करेंगे। 2 दिन के इस खोजी और बचाव अभ्यास में बड़ी संख्या में विमान और जहाज शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इसमें देखिए कई और एजेंसियों के साथ तालमेल के सामंजस्य की परख भी देखी जाएगी, ताकि विपरीत परिस्थितियों में बचाव अभियानों में पहले से और तेजी लाई जा सके। आज बात करेंगे सबसे पहले भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को अपना 94वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शानदार समारोह का आयोजन होने वाला है। इस बार वायुसेना की थीम है अचूक, अभेद, सटीक। कल एयरफोर्स डे पर वायुसेना के जाबाज अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करेंगे। स्टैटिक डिस्प्ले में वायुसेना के फाइटर जेट्स और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का दमखम भी नजर आएगा।
7: अचूक, अभेद्य, सटीक, भारतीय वायुसेना की यही पहचान। नभ के पहरतारों के पराक्रम से हिंदुस्तान का सुरक्षित आसमान। वायु वीरों के शौर्य की कहानी कहता हिंदुस्तान का इतिहास। एयरफोर्स डे पर जब जमीन पर वायुसेना के जाबाज एक तरफ परेड कर रहे होंगे, तो आसमान से इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ध्वज फॉर्मेशन का फ्लाई पास्ट कर रहे होंगे। हिंदुस्तान की वायुसेना के पराक्रम की पहचान फाइटर जेट्स और मिसाइलों की ताकत इस खास मौके पर वीरता और शौर्य की तस्वीरें पेश करेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट से लेकर तेजस लड़ाकू विमानों की मौजूदगी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए पराक्रम की याद दिलाएगी। वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जब वायुवीर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, तो हिंडन एयरबेस का आसमान वायुसेना की एयरक्राफ्ट की गड़गड़ाहट से गूंजने लगेगा। हिंडन एयरबेस पर मौजूद हर शख्स वायुसेना के हैरत अंगेज करतबों का गवाह बनेगा, तो देशभक्ति का जज्बा देखने लायक होगा। हेरिटेज फ्लाइट के दौरान आसमान में पुराने विमानों के करतब वायुसेना के पुराने और नए विमानों के मेल से वायुसेना की शक्ति और इतिहास की अनोखी झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा फाइटर जेट्स और हथियार वायुसेना की ताकत के नजीर पेश करेंगे। इस डिस्प्ले में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को रखा गया है। ब्रह्मोस के साथ ही तेजस, सुखोई और प्रचंड भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए हैं। सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाले गाइडेड हथियार सिस्टम, रडार और एक तरफा हमला करने वाले मानव रहित हवाई सिस्टम प्रदर्शित किए जाएंगे। ये भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल को भी दर्शाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम, जिसमें 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर्स शामिल हैं, एक अनोखा म्यूजिकल प्रदर्शन पेश करने वाली है। इस परफॉर्मेंस में स्नेयर ड्रम, रोटो ड्रम, बास ड्रम और सिंबल का इस्तेमाल होगा। साथ ही खास ड्रमिंग पैटर्न, शानदार फॉर्मेशन और कालाबाजी वाली गतिविधियां भी शामिल होंगी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले होगा, जिसमें विंटेज हिंदुस्तान ट्रेनर 2 और टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट का सोलो डिस्प्ले शामिल होगा।
8: भारतीय वायुसेना अपने अस्तित्व के 94 साल पूरे कर चुकी है और इस मौके पर एयरफोर्स डे की भव्य परेड हिंडन में की जाएगी। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में भव्य समारोह के दौरान ड्रमर्स ड्रिल के साथ स्टैटिक डिस्प्ले होगा, जिसमें भारत के फाइटर जेट्स जो सुखोई 30 MKI, रफाल, तेजस और तमाम जैगुआर जैसे विमान भी रखे जाएंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस की ताकत भी इस एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन की खास हाईलाइट होने वाली है। इसके अलावा शक्ति ऑल वुमेन कंटिंजेंट की असॉल्ट राइफल ड्रिल और ड्रमर्स ड्रिल भी एयरफोर्स डे पर एक खास आयोजन का हिस्सा होगी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह एयरफोर्स डे के मौके पर देशवासियों को संबोधित करेंगे।
7: 2021 तक एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन हिंडन में ही होता था, लेकिन 2022 से इस पैटर्न में बदलाव किया गया और 2022 में चंडीगढ़, 2023 में प्रयागराज और 2024 में इसे चेन्नई में आयोजित किया गया। सरकार के इस कदम का मकसद वायुसेना दिवस के आयोजन को अलग अलग शहरों तक पहुंचाना है, ताकि देश भर के लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत, क्षमता, पराक्रम और हवाई कर्तव्य को करीब से देखने का मौका मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ अब की बार वायुसेना दिवस समारोह को दो भागों में आयोजित किया जा रहा है। वायुसेना दिवस के आधिकारिक मुख्य परेड और ग्राउंड डिस्प्ले हमेशा की तरह 8 अक्टूबर को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में ही होगी, लेकिन जनता के लिए बड़ा और मुख्य फ्लाईपास एयर शो इस बार वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इतिहास में ये पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा।
9: The main event, the Air Force Day Parade, will be held at Air Force Station Hindon on 8th October. The parade last year was held at Hindon after a gap of 3 years. In the year 2022, the parade was held at Chandigarh, in 2023 at Prayagraj, and in 2024 at Chennai. In alignment with the government's vision of offering citizens across the nation a closer glimpse of the might and capability of their Indian Air Force.
7: 24 से 26 अक्टूबर के बीच वाराणसी में एयर शो और फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो का आयोजन होगा। शो के दौरान वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा नदी के ऊपर एयरफोर्स के विमान करतब दिखाएंगे। मेगा एयर शो में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स शामिल होंगे। राफेल, तेजस और सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम आसमान में जाबाजी का प्रदर्शन करेंगी। काशी की आध्यात्मिक पहचान को दर्शाने के लिए आसमान में विशेष त्रिशूल फॉर्मेशन भी बनाया जाएगा। सुखोई, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मिलकर इस डिस्प्ले को आकार देंगे।
8: इस पूरे भव्य समारोह का दूसरा हिस्सा बनारस में होगा, एक खास फ्लाईपास्ट के रूप में, जो कि अक्टूबर के अंत में होगा। यानी पहला हिस्सा भव्य समारोह का हिंडन में होने वाला है, जिसमें भारतीय वायुसेना का शौर्य, पराक्रम और भविष्य के लिए, भविष्य की चुनौतियों और लड़ाइयों के लिए उसकी तैयारी भी दिखाई देगी।
7: खबरों के मुताबिक वाराणसी में होने वाला ये एयर शो करीब 90 मिनट का होगा और 24 से 26 अक्टूबर के बीच रोजाना 12 बजे के करीब इसे आयोजित किया जाएगा। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच गंगा के किनारे लाखों लोग इस नजारे को देख सकेंगे। 8 अक्टूबर का दिन भारतीय वायुसेना के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को हिंदुस्तान में वायुसेना का गठन रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में किया गया था। आजादी के बाद 1950 में रॉयल शब्द हटाकर भारतीय जोड़ा गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने वाले वायुसेना के वीरों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देना है। इस खास मौके पर देश के अलग अलग एयरफोर्स स्टेशनों पर शानदार एयर शो, परेड और विमानों की कर्तव्य भरी प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाती है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना के लिए 8 अक्टूबर का दिन गर्व का पल लेकर आता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की ताकत, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और स्वर्णिम इतिहास के रंग नजर आते हैं। भारतीय वायुसेना दुश्मन के सामने न तो हारती है न कोई गलती करती है, हर काम सटीकता से करती है। यही इस बार की एयरफोर्स डे का थीम भी है। हर बार की तरह आत्मनिर्भरता परेड के केंद्र में होगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें भारत में बनी है। तेजस विमान, आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस सब मेक इन इंडिया की मिसाल है। मौजूदा दौर में वायुसेना के लिए सिर्फ लड़ाकू विमान काफी नहीं है, हवा की रक्षा, सही निशाना लगाने वाले हथियार और ड्रोन भी जरूरी हैं। ये हथियार दुश्मन पर वार करते हैं और जवानों का खतरा कम रखते हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: बात करते हैं वायुसेना की तरंग शक्ति की। राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास दूसरा संस्करण प्रगति पर है और इस हवाई युद्धाभ्यास में दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखा रहे हैं। 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। खास बात देखिए इसमें यह है कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की भागीदारी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त हवाई अभियानों के जरिए आपसी तालमेल, अनुभव साझा करने और एक दूसरे के संचालन प्रक्रियाओं को समझना है।

0: साझेदारी में शक्ति, इस थीम को लेकर जब जोधपुर के आसमान में कई देशों के फाइटर जेट्स एक साथ गरजे तो मौका बेहद ही शानदार नजर आया। आसमान में हैरत अंगेज नजारे सबका ध्यान खींच रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत की अगुवाई में दुनिया के शक्तिशाली देशों की वायुसेना अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। वायुसेना ने इसे पावर ऑफ पार्टनरशिप का नाम दिया है। इसके तहत सभी देशों के वायुवीर एक दूसरे के साथ आसमान में पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान एक दूसरे के जहाज में आसमान में ही रिफ्यूल भी कर रहे हैं, तो शानदार फॉर्मेशन और तालमेल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर मिलजुल कर दुश्मन को जवाब दिया जा सके। जोधपुर में 26 सितंबर से तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास चल रहा है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें भारत सहित 8 देशों की सेनाएं अपने लड़ाकू विमानों व संसाधनों के साथ भाग ले रही है, जबकि 32 देश बतौर पर्यवेक्षक भाग ले रहे हैं। तरंग शक्ति अभ्यास 2.0 को शुरू हुए 11 दिन बीत चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ एक्सरसाइज का दायरा बड़ा और जटिल होता जा रहा है। दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने और डॉग फाइट से लेकर एयरलिफ्ट और टैक्टिकल ड्रॉप्स को अंजाम दिया जा रहा है। स्ट्राइक रेंज को कई गुना बढ़ाया जा सके, इसकी भी वानगी देखने को मिल रही है।
1: भारतीय वायुसेना की मेगा ड्रिल तरंग शक्ति जोधपुर में पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक जारी है, और इसमें 40 से ज्यादा अलग अलग देशों की वायु सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका के 6 F-35 यानी उनके 5th जेनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और जर्मनी के रफाल इसमें शामिल है। इसके अलावा तमाम दूसरे देश अपने अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर्स के साथ तरंग शक्ति का हिस्सा बने हैं, और जैसे जैसे तरंग शक्ति आगे बढ़ रही है, जो 26 सितंबर से शुरू हुई थी, हर दिन कॉम्बैट कैपेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और भारतीय वायुसेना के कौशल को भी यहाँ पर देखा जा रहा है।
0: इस युद्धाभ्यास का खास आकर्षण अमेरिकी एयरफोर्स का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 है, जो भारत की सरजमी पर हो रहे युद्ध अभ्यास में पहली बार शामिल हुआ है। अभ्यास में जर्मनी ने अपने अत्याधुनिक A400M एटलस परिवहन विमान को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया है। यह विमान भारी सामान और सैनिकों की आवाजाही के साथ जटिल लॉजिस्टिक्स और एयरलिफ्ट ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। जर्मनी के पायलट भी भारत की सरजमी पर आकर अपनी खुशी बयां कर रहे हैं।
2: Been in India before, but also very great experience. It's fun to work with Indian Air Force, and also fun to be in India. So it's a great country. I really like being here. And flying in India, you know, it's always different than flying in Germany. But this is how we get to learn a lot of new stuff, and that's one of the main points of this exercise, I think.
0: तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल देशों के एयरक्रू और मिशन प्लानर्स एक साथ बैठकर जटिल रणनीतियों को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक कंबाइंड एयर ऑपरेशन आर्किटेक्चर विकसित किया जा सके।
1: खास तौर पे जो तमाम वायुसेनाएं आई हैं, उनके एयर चीफ्स यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सब ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रिसिशन स्ट्राइक से लेकर जो ड्रोन्स को किस तरह से काउंटर किया गया था, और भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया आतंक के ठिकानों को तबाह करने के लिए, उन सब में किस तरह से भारतीय वायुसेना आगे बढ़ी, और वो भी आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ। यानी तरंग शक्ति एक मौका है जहां पर इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, साथ ही पूरी दुनिया को भारत के हथियारों, भारत की वायुसेना का दमखम भी दिखाया जा रहा है।
0: जोधपुर में चल रहे वायुसेना की युद्धाभ्यास तरंग शक्ति के दौरान 8 अक्टूबर यानी कल वायुसेना दिवस के मौके पर जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर एरोबेटिक टीम का एयर शो भी होगा। सूर्य किरण टीम अपने 9 हॉक जेट से आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन और एरोबेटिक करतब दिखाएगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करते हैं तटरक्षक बल के अभ्यास की। समंदर में बड़े पैमाने पर आपातकालीन बचाव, विमान दुर्घटना या समुद्री टक्कर जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी और तालमेल को परखने के लिए ओडिशा के पारादीप तट के पास 12वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 2026 का प्रदर्शन और लाइव डेमो आयोजित होने जा रहा है। हालांकि इस युद्धाभ्यास का पहला चरण आज संपन्न हो चुका है।

0: वयम रक्षामः, यानी हम रक्षा करते हैं। ये रक्षा समंदर की हो, भारतीय तटों की हो, या समंदर में जीवन के लिए जूझ रहे इंसानों की, ये जज्बा इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों का होता है। अपने इसी संकल्प को दृढ़ता प्रदान करने के लिए भारतीय तट रक्षक बल हिंदुस्तान के समंदर, तट की सुरक्षा, खोज और बचाव के साथ दूसरे एजेंसियों से तालमेल को बेहतर बनाने के लिए वक्त वक्त पर कई तरह के अभ्यास का आयोजन करता है। ओडिशा के पारादीप तट पर कोस्ट गार्ड का सारेक्स 2026 अभ्यास शुरू हो गया है, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। दो दिन के इस सबसे बड़े अभ्यास में कोस्ट गार्ड के 15 जहाज, 2 डॉर्नियर विमान, 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, 1 चेतक हेलीकॉप्टर IAF के C-130J और MI-17 हेलीकॉप्टर, भारतीय नौसेना के 2 जहाज के साथ राज्य के संसाधन और तट आधारित सहायता इकाइयां शामिल हो रही हैं। इसी अभ्यास के तहत भुवनेश्वर में 24वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की बैठक भी हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय खोज और बचाव की तैयारियों को मजबूत करने, संकट की सूचना मिलने पर बेहतर मैनेजमेंट करने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अलग अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए बचाव के साधनों को तेजी से जुटाने पर चर्चा हो रही है।
1: ये एक बड़ी ड्रिल है जिसमें भारतीय तट रक्षक दल अपना पूरा ताकत दिखाएगा, अपनी पूरी ताकत के साथ साथ किस तरह से वो एक्सरसाइजेस करता है और अलग अलग एजेंसीज के साथ कैसे मिलकर कोऑर्डिनेट करता है इन ऑपरेशंस के लिए, ये सब कुछ भी इसमें प्रदर्शित किया जाएगा।
0: सारेक्स 2026 अभ्यास में एक साथ हवाई और समुद्री संकट की स्थितियों से निपटने वाले बड़े पैमाने पर बचाव अभियान का भी अभ्यास हो रहा है। इसमें 228 लोगों को ले जा रहे एक यात्री विमान के समुद्र में उतरने और कंटेनर जहाज MV जुम्बा से टकराने जैसे हालात भी शामिल होंगे, जिसका प्रदर्शन कल यानी 8 अक्टूबर को किया जाएगा।
1: भारतीय तटरक्षक दल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जो समुद्र की सीमाओं की सुरक्षा भी करता है और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी ड्रिल भी करता है, वो भुवनेश्वर में एक बड़ी ड्रिल कर रहा है। और ये जो मैरिटाइम सिक्योरिटी ड्रिल है, इसमें कोस्ट गार्ड के तमाम असेट्स, चाहे वो शिप हो, चाहे वो वेसल्स हो, छोटी नाव हो और हेलीकॉप्टर्स हो, वो सब एक साथ मिलकर अलग अलग तरह के ड्रिल्स में हिस्सा ले रही हैं। और खास बात यह है कि चाहे समुद्र में किसी भी तरह के पायरेट्स को रोकना हो, चाहे इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग रोकनी हो, या फिर समुद्र में किसी भी तरह का जो ऑयल स्पिल्स हो उनको रोकने का काम हो, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। और कैसे अलग अलग एजेंसीज, चाहे वो भारतीय नौसेना हो या फिर अलग अलग प्रदेशों की पुलिस हो, तमाम दूसरी एजेंसियां हो, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाकर इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार समुद्र का प्रहरी बना हुआ है, अलग अलग ऑपरेशंस करता है, ये सब कुछ इस ड्रिल में दिखाया जाएगा। और भुवनेश्वर में होने वाली इस ड्रिल में एक साथ साझा असेट्स इंडियन कोस्ट गार्ड के देखे जा रहे हैं।
0: इससे पहले भारतीय तटरक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय ने RESAREX-26 नाम से मुंबई तट पर क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास 24 सितंबर 2026 को आयोजित किया था। सागर कवच अभ्यास के तहत तटीय सुरक्षा का अभ्यास महाराष्ट्र और गोवा तट के साथ साथ गुजरात और दमन दीव में भी सफल संचालन किया गया, जिसमें राज्य पुलिस, नौसेना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा तंत्र की जाँच की जाती है। इस अभ्यास की खास विशेषता 30 देशों के 32 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी, ये अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी इस अभ्यास के रणनीतिक महत्व और मिलकर काम करने की क्षमता को दर्शाएगी। यही नहीं, सारेक्स 2026 अभ्यास कोस्ट गार्ड की भावना के अनुरूप तेज, तकनीक सक्षम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े खोज और बचाव के ढांचे के निर्माण के भारत के संकल्प की झलक भी दिख रही है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दुर्गा पूजा के साथ साथ देश में विजयादशमी यानी दशहरा मनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शहर शहर रामलीला के मंचन की तैयारियां और रावण दहन के लिए पुतले बनाने का काम भी इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। इस साल भी राजस्थान के कोटा में विशालकाय रावण का पुतला बनाया जा रहा है, जो अभी से चर्चा में है।

0: रावण के पुतले के लिए बांस और लोहे की छड़ों का ये विशालकाय ढांचा पूरी तरह से बना भी नहीं है और ये अभी से सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में आने के पीछे की वजह है इसका साइज। राजस्थान के कोटा में तैयार किया जा रहा ये पुतला 105 फीट से ज्यादा ऊंचा है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले करीब 70-70 फीट ऊंचे बनाए जा रहे हैं। इन विशाल पुतलों को तैयार करने के लिए खास तौर पर दिल्ली NCR से कारीगर बुलाए गए हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत से पुतलों को बनाने में जुटे हैं।
1: ये रावण 105 फुट प्लस हो जाएगा, कुंभकर्ण 70 फुट, मेघनाथ 70 फुट।
2: कितने कारीगर लग रहे हैं इसको काम करने?
1: 20 कारीगर एक महीने से रात और दिन लगे हुए हैं। सारे घर के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। रावण जब बन जाता है, हमें भी शौक है रावण बनाने का, कमाई तो एक अलग चीज है।
0: इन पुतलों को बनाने में लगे कारीगर ने बताया कि इनके निर्माण में करीब 5 टन लोहे और लगभग 500 बांस की खपच्चियों का इस्तेमाल किया गया है। इनके बाहरी हिस्से के लिए करीब 1500 मीटर वेलवेट कपड़ा लगाया जा रहा है, वहीं 300 किलो सुतली और करीब 2 क्विंटल मजबूत रस्सी का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, पुतलों को मौसम से बचाने के लिए वाटरप्रूफ इंपोर्टेड कागज लगाया जा रहा है और कागज को चिपकाने के लिए मैदा से तैयार की गई 1 से 2 क्विंटल लेई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा रावण के भीतर विशेष प्रकार की आतिशबाजी भी सेट की जा रही है, ताकि विजयदशमी के दिन दहन के दौरान अलग अलग इफेक्ट देखने को मिले।
1: इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, रद्दी है तो 250 किलो के आसपास बन जाएगी। नहीं बनाते हम मैदा की, 150 किलो लग जाती है। सुतली है जिससे बांधते इसको, 300 किलो के आसपास लगेगा।
0: कोटा में दशहरा पर रावण का ये पुतला 360 डिग्री पर अपनी गर्दन घुमाता नजर आएगा, हाथ में तलवार लेकर चलाएगा, मूछे हिलाएगा और आंखें भी झपकाएगा। कारीगरों का कहना है कि 10 से 11 तारीख तक रावण का पुतला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।
1: विशेषतर रावण में, कोटा के रावण में खुद ही विशेष है, सारी चीजें इसमें होती है। जिससे गर्दन घुमाता है, पलके चलाता है, तलवार भी चलाएगा, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। वो अब आने वाले टाइम में हमारा काम जो है इस टाइम 90% हो चुका है, 10% रहना, उसमें देखेंगे क्या नया दिखा सकते हैं कोटक के लिए। 10% मात्र काम रहना, इसको देख रहे हैं, फिनिशिंग होना पड़ा, फिनिशिंग करनी है।
0: दशहरा के साथ ही रामलीला मंचन की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में यूपी के प्रयागराज में श्री महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी ने एक दिन पहले मुकुट पूजन समारोह किया। ये कार्यक्रम शाहगंज के राम मंदिर में विधि विधान से संपन्न हुआ। परंपराओं के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मुकुट की पूजा 11 ब्राह्मणों और वेद पाठियों ने मंत्रोच्चार से की। इस दौरान मंदिर श्रद्धालुओं से भर गया और जयकारे गूंजते रहे। बताया जाता है कि ये मुकुट 100 साल से भी अधिक पुराने हैं और इन्हें लाहौर के कुशल कारीगरों ने तैयार किया था। कमेटी की ओर से इन बहुमूल्य मुकुटों को बेहद सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और रामलीला शुरू होने से पहले इनकी साफ सफाई कर पूजा की जाती है। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन श्री राम समेत अन्य स्वरूपों को ये मुकुट पहनाए जाते हैं। इसी के साथ पजावा रामलीला के दशहरा उत्सव की औपचारिक शुरुआत हो जाती है।
3: जो हमारी कमेटी का इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और प्रयागराज के दशहरा में बहुत ही अभूतपूर्व अतुल्य सहयोग भी रहा है हमारे श्री महान बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी का। और ये मुकुट आपके सामने जो समक्ष प्रस्तुत हुआ है, सोने एवं चांदी से निर्मित है। ये लाहौर के कारीगरों द्वारा निर्मित है, जो कि लाहौर अब इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। जब ये निर्मित हुआ था तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए ये अपने में ही बहुत पौराणिक और अतुल्य है।
0: कहा यह भी जा रहा है कि पजावा रामलीला इस बार आधुनिक तकनीक और भव्य मंचन से खास रहेगी और कई नए प्रसंग भी जोड़े गए हैं। कोटा से चेतन गुर्जर और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।